0: वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांच से समझे इन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं, हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वारे दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर यह आती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डरावनी वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि एक प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोरफा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा यह वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
5: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना है, पैसा दो।
2: वीडियो में टीटीई जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
5: टिकट नहीं है ना? हाँ, पैसा है। पूछो पापा मां को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत दिया है।
5: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम?
2: यूजर्स इस नाम नहीं को बार बार देख रहे हैं और कॉमेंट बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
5: टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दे। हाँ पैसा, वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो पर्ची लिखने के लिए।
6: पैसे देने?
5: टिकट नहीं है इनको।
6: टिकट नहीं है?
5: टिकट नहीं है। दस रुपए दीजिए।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची के इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टैं टैं टू टू टी टी गा रही है।

0: उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है। वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती है, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यहीं वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
4: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
5: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sport.
6: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ। तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी, लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर। तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था। जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नो मार्ट्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में यूकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होने वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल शिक्षा रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है, आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।

40 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे 14 लाख भक्त। मॉनसून का इंतजार कर रहे दिल्ली हरियाणा राजस्थान के लिए राहत की खबर, अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून।

0: रायगढ़ में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, हादसों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
1: जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं, लेकिन जो दुनिया को ही गलत समझो उसे शैतान कहते हैं। अगर शैतान की परिभाषा पूछी जाए तो शैतान की परिभाषा क्या है? शैतान की एक ही परिभाषा है, वो अपने को सही समझता, सबको गलत समझता। और जो केवल अपने को सही दूसरों को गलत समझे वो शैतान। जो सबको सही समझे, सब पर करुणा करे वो भगवान, लेकिन जिसका कभी अनुमान गलत ना हो वो हनुमान। हनुमान जी के अर्थ का एक नाम का एक और अर्थ, जो मान से परे, जो मान से परे वो हनुमान। हम लोगों को एक चाह है, क्या? लोग हमें जाने, या लोग हमें देखें, या लोग हमें समझें। अरे हमें हम हैं ये भाव, हम हैं ये भाव। आदमी आता भी, अब हमने बड़े लोग देखे हैं, हमेशा वो लेट ही आते हैं। वो लेट इसलिए आते हैं ताकि लोग देखें कि हम आ गए, तुम देखना। अच्छा, वो बीच से नहीं निकलेंगे, ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे ताकि मंच वाले की नजर पड़े, वो माइक से बोले अरे आने दो साहब को, आने दो। तो जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाते, अच्छा आप आए आए। तो हम लोगों की चाह है कि लोग हमें जाने, लोग हमें देखें। इसको कहते हैं मान पाना। क्या? बोलो बोलो बोलो, मान पाना। लेकिन इस मान की चाह को भी किसी ने एक साइड रखा, तो वो हनुमान जी ने रखा। जब भगवान राम जी ने लंका यात्रा के बाद हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम तो बड़े प्रतापी हो, अपने बल पर लंका गए, माता जानकी जी की खबर लाए, तब हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये हमारा प्रताप नहीं, प्रभु राम जी आपका प्रताप है, हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए। तो राम जी बोले, हमारा बल कहाँ, बल हमारा थोड़ी है, बल तो तुम्हारा है, हम थोड़ी उड़े, उड़े तो तुम हो। हनुमान जी बोले, उड़े जरूर हम दिख रहे थे, पर हवाई जहाज आपने दी। अब राम जी सोच में पड़ गए, हमने कौन सी हवाई जहाज दी? बोले, वाह आप जानते थे, इतने बानर भालू गए थे खोजने, अंगद दधिमुख के हरि जामवंत, पर सबको अंगूठी नहीं दी, हमको ही दी। इससे हम समझ गए कि हम अपने बल से लंका नहीं गए, आपके प्रताप के कारण, अंगूठी के बल के कारण। अच्छा अंगूठी, हनुमान जी ने अंगूठी कहां रखी? कहां रखी? मुख में। जलधि लांध गए अचरज प्रभु मुद्र का मेली मुख, तो अंगूठी कहां रखी? मुख में। अच्छा ये मुख में क्यों रखी? बगल में लगा लो अंगूठी, हाथ में रख लो, पहन लो। हनुमान जी बोले, हम पहन इसलिए नहीं सकते, भगवान की तो हमारी क्षमता ही नहीं पहनने की। कई शिष्यों से ऐसे होते हैं जो गुरु की गद्दी पर देखते ही देखते बैठ जाते। नेताओं में ये ज्यादा चलता है, छोटे नेता चाहते ही है कि बड़ा नेता खिसके तो हम बैठे। हाँ हाँ, अधिकारियों में भी ये होता है कि बड़ा अधिकारी जल्दी साइड होवे ताकि हम बैठे। लेकिन धन्य हनुमान जी, क्या अद्भुत मर्यादा। हनुमान जी ने मुद्रिका पहनी नहीं, रखी नहीं, कहाँ रखी? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांध गए अचर। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। मुख में क्यों रखा? पूछो क्यों रखा, जोर से पूछो, ध्यान से सुनो। मुद्रिका में लिखा राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा राम, और हनुमान जी संकेत देना चाहते कि राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए। मुद्रिका को मुख में रखने के पीछे ये लॉजिक है कि राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए, राम ना होता तो कहीं और रख लेते, पर उसमें राम है तो राम नाम को तो मुख में ही रखना। अच्छा, राम नाम को मुख में क्यों रखना चाहिए? ये भी बड़ी विचित्र बात, क्यों रखना चाहिए? पूछो क्यों, जोर से पूछो। आपके पास दो कमरे हो और दोनों में अंधेरा हो, दिया एक हो। दो कमरे हो, दोनों में अंधेरा हो और दिया एक हो, इतने में मेहमान आ जाए। अब बताओ, अपने कमरे में तुम दिया रखोगे तो मेहमान अंधेरे में रहेगा, और मेहमान के या कमरे में दिया रखोगे तो तुम अंधेरे में रहोगे, और यदि तुम अंधेरे में रहोगे तो कहीं सिर लगेगा कहीं हाथ। अब दोनों कमरों में उजाला हो जाए, ऐसा क्या किया जाए? क्या किया जाए? देहरी पर रख दिया जाए। किस पर रख दिया जाए? दरवाजे की देहरी पर। तो इधर भी उजाला जाएगा, उधर भी उजाला जाएगा, तुम भी अंधेरे में नहीं रहोगे, मेहमान भी अंधेरे में नहीं रहेगा। तो राम नाम है दीपक। क्या है? राम नाम है दीपक। और यदि तुम राम नाम को मुख पर रखोगे तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार। राम नाम रूपी दीपक को मुख में रखो, मुख में रखोगे तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। तो धन्य हनुमान जी, हनुमान जी ने मुद्रिका को कहां रखा? मुख में रखा। क्यों? उसमें राम लिखा, और राम को तो हमेशा मुख में ही रखना चाहिए। बोले क्यों? छड़ भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। है, इसलिए राम नाम मुख में रखना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म महात्मा जतन कराते पर अंत में राम नहीं कहे आता, ऐसा संभव नहीं है। बोले क्यों? काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष ये परेशान करते तो अंत में राम नहीं कही आता, और जो राम मुख से नहीं कह पाता वो किसी काम का। और संत कहते भैया, अंते यामति सागति, अंत में आपकी जैसी मति होगी गति भी वैसी ही होगी। इसलिए राम राम राम राम राम राम राम जे सुमरण करही, जो भगवान नाम का सुमरण करेंगे तो नर बिना किसी प्रयत्न के भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने राम नाम के कीर्तन का संकेत देने के लिए मुद्रिका को कहां रखा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जल धिलांधे गए अचरज नाही। इसी चौपाई पर दूसरा उदाहरण सुनो। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, मुख में मुद्रिका रखकर हनुमान जी समुद्र पार भये। अच्छा, समुद्र को कहते सागर, क्या कहते? सागर। और जीवन को भी भवसागर कहते हैं। समुद्र को कहते सागर और जीवन को भी भव सागर कहते। और कितना अच्छा सूत्र हनुमान जी ने लंका आने पे दिया कि यदि मुख में राम नाम लेकर के हम उड़े तो वो सागर पार हो गए, और यदि हम जीव राम नाम मुख में रख करके चले तो भव सागर पार हो जाएंगे। भव सागर पार हो जाएंगे, ये हनुमान जी का संकेत है। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जल धिलांधे गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज लंका आ गए, कहां से आए? बोले राम नाम को आधार बनाकर हनुमान जी लंका आए। लेकिन हनुमान जी लंका आए तो अब लंका में कैसे आना चाहिए, जरा ये भी सुन लो। हम श्रीलंका में बैठे, यहां कैसे आना चाहिए? आप लोग यहां रहने वाले भी सुने और श्रीलंका वाले भी सुने, श्रीलंका में जितने रहते तुम्हारे काम की बात सुनो, कैसे आना चाहिए। हनुमान जी जैसे ही लंका आए तो डायरेक्ट लंका नहीं देखी, फिर क्या किया? गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, और कहीं ना जाए अति दुर्ग विषेही। हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, ऊपर पर्वत पर बैठकर क्या देख रहे? बोले लंका। तो किसी ने कहा हनुमान जी से कि लंका क्यों देख रहे हैं? बोले लंका को ऊपर से ही देखनी चाहिए, नीचे से नहीं। तो किसी ने कहा अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए देख रहे? बोले नहीं नहीं दूर से ही, डिस्टेंस मेंटेन। क्यों? बोले यहां सोने की चमक है, और सोने की चमक को यदि नजदीक से देखोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए राम जी बड़े चतुर हैं। राम भगवान राम मनुष्यों को नहीं ले आए लंका, वानरों को लाए। क्यों? क्योंकि यहां गोल्डन हाउस थे। राम जी को पता था कि वानरों की जगह यदि मनुष्यों को लाया जाएगा कहीं रावण ऑफर कर दे 1-1 गोल्डन हाउस, 3 BHK गिफ्टेड, 2 BHK इन 3 BHK गिफ्टेड, 4, सब पार्टी बदल के रावण की तरफ हो जाते। तो रावण बहुत रावण बुद्धिमान तो था ही, ऐसा कर सकता। इसलिए राम जी किसको लाए? वानरों को लाए। इनको गोल्डन हाउस से कोई लेने ही देना। और हनुमान जी को तो बिल्कुल ही, सबसे पहले किसको भेजा? हनुमान जी को। हनुमान जी को गोल्ड से लेने ही देना नहीं। बोले क्यों? बोले कंचन वरण विराज, वो खुद गोल्डन है। इसलिए मिठाई वाला मिठाई से कम आकर्षित होता है। तो हनुमान जी को ही पहले नंबर पे भेजा। बोले क्यों? बोले हनुमान जी खुद गोल्ड है। बोले कैसे? कंचन वरण कानन कुंडल कुंचित केसा, हनुमान जी का खुद का रंग गोल्ड की तरह है। तो रावण की गोल्ड का क्या करेगा? तो हनुमान जी कहां कैसे आए लंका में, जरा देखो। लंका में आने का काम, गिरी पर चढ़ी लंका तई देखी और कहीं ना जाए अति दुर्ग विषय की। हनुमान जी ने ऊपर से चढ़कर लंका को देखा। अच्छा लंका है कैसी? अरे बोले पूछो मत, गजब की लंका है, चारों तरफ चमक रही है। अच्छा चमक धमक में फंसना नहीं चाहिए, हनुमान जी ये कह रहे, चमक धमक में फंसना नहीं चाहिए। अच्छा कितना गजब का सूत्र है यहां भी, एक और पूछो क्या? जोर से पूछो
2: क्या?
1: देख रहे लंका, आए लंका में। लंका में कैसे आए हनुमान जी? मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा देखे जय तय अग्नत जोधा गय दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई सयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना दीख वह दे हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। लंका में हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर्षोधा गए कैसे? बोले जैसे ही ऊपर से लंका को देखा, प्रवेश करे तो प्रवस नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा, फिर लंका में प्रवेश किया। मतलब सीधा सा उदाहरण है, सूत्र बहुत बढ़िया है कि यदि माया रूपी लंका में आना है तो मन में राम जी को रखो बाहर, अंदर मायापति को रखो, बाहर माया रखो। ये संकेत है। और कितना अच्छा संकेत, श्रीलंका में रहने वाले लोग भी सुनो कान खोलकर, अंदर मायापति को बैठा लो, बाहर खूब माया रहने दो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बोलो सीताराम।

0: हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में रख करके लंका में प्रवेश करते। लंका में यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी जाते, सब जगह हनुमान जी देखते, यहां देखते वहां देखते इधर देखते उधर देखते। लेकिन आचार्य जी एक बात याद रखना, हे हनुमान भक्त ध्यान से सुनना पागलो, लंका में भी हनुमान जी माया की नगरी में स्वर्ण की नगरी में खोज किसकी कर रहे? बोलो बोलो। हाँ, लंका में भी खोज किसकी है? भक्ति की है। और कितना अच्छा सिद्धांत है। हम आज सुबह जब बैठे बैठे लिख रहे थे तो हम यही मन में सोच रहे थे लिखते लिखते कि भाई हनुमान जी लंका आए तो हनुमान जी ने जो है भक्ति की खोज की, और हम भी लंका आए पर हम तो हनुमान जी के छोटे से भक्त हैं, हम क्या खोजें। तो हमने सोचा हनुमान जी ने लंका में भक्ति को खोजा तो हम यहां भक्त को खोज ले। तो हनुमान जी का संकेत है कि लंका में भी आने पर शंका मत रखो, डंका बजाओ। किसका? राम नाम का। बोलो बोलो बोलो किसका? रावण के राज्य में रहकर रावण के सामने भी हनुमान जी महाराज झुके नहीं। हनुमान जी महाराज झुके नहीं, विनम्रता उनका गुण रहा। अच्छा, विनम्रता गुण होना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, लेकिन विनम्रता को कोई कमजोरी समझ ले ये मूर्खता है। भाई कोई हाथ जोड़े, ये हमारा भाई संस्कार है, विनम्रता हमारा गुण है, लेकिन उसको ही कोई कमजोरी समझ ले कि बड़ा कमजोर आदमी तो मूर्ख है, इधर से दिया जाएगा 3200 फेंक जाएंगे। भाई विनम्र है, कमजोर थोड़ी है, तो विनम्र होना चाहिए, कमजोर। तो धन्य वीर बजरंग बली, लंका की खोज में भक्ति को खोजा, लंका की यात्रा में भक्ति को खोजा मेरे पागलो। ये हनुमान जी से सीखना है कि हम लंका में भी भक्ति को खोजें। तो जब भी हम संसार में रहें, जब भी आए भारत के लोग यहाँ आए तो हम यही कहेंगे, हमारी प्रार्थना है ये माइंड सेट करके आए कि हम यहाँ भक्ति और भक्त की खोज में आए। हमारे राम जी ने किया क्या? हमारे राम जी ने लंका और भारत के बीच में एक पुल बनाया। अच्छा, उसको कहते हैं राम से। कुछ लोग पूछते हैं ये राम सेतु क्या है? राम सेतु, अगर उसको ठीक से पढ़ा है राम सेतु, अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए कि राम सेतु है, राम से। कुछ लोग पूछते हैं ये राम सेतु क्या है? राम सेतु, अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए कि राम सेतु क्या है? राम से, राम से, यही राम सेतु, यही राम सेतु। तो भारत से श्रीलंका के बीच में राम जी ने क्या बनाया? अच्छा, राम सेतु बना कैसे? पत्थरों से। और पत्थर एक पत्थर था क्या? अनेक पत्थर जुड़े तब सेतु बना। और कितना अच्छा संकेत है कि मनुष्य मनुष्य से जब जुड़ेगा तो मानवता का सेतु बनेगा। है, ये राम जी का संकेत है। राम सेतु का अर्थ क्या? जोड़ने का अर्थ है। तोड़ने का अर्थ राम सेतु नहीं है, जोड़ने का अर्थ है। लेकिन वो जुड़े कैसे? राम से जुड़े कैसे? राम के कारण पत्थर, अनेक पत्थर जुड़ गए, जुड़ गए तो पुल बन गया। ऐसे ही श्रीलंका में होना चाहिए। यहां बैठे हुए हम लोगों से भी कहेंगे, हमारी बात को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जब मानवता मानवता से जुड़ेगी, भारतीय संस्कृति और श्रीलंका की संस्कृति आपस में जुड़ेगी, जब भेदों को मिटाकर अभेद हो जाएंगे, जब हम लोग ऊपर उठ करके देखने की दृष्टि रखेंगे और ये भेद मिटाएंगे, तो हमें लगता त्रेता युग में राम सेतु बना था, अब इस युग में कलयुग में मानव सेतु बनाया जाए, मानवता का एक सेतु बनाया जाए। और मानवता का सेतु बनेगा। आहा, अच्छा मानवता का सेतु क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो, और जोर से पूछो। मानवता का सेतु है प्रेम का। काहे का? प्रेम का। अच्छा, व्यक्ति आज के वर्तमान में, वर्तमान का आदमी है तो तुम चाहे जैसे रहो हम खुश रहे, बगल वाले की कुर्सी छुड़ा के, जबरदस्ती बैठ के धक्का दे के लाइन तोड़कर उसे जल्दी चाहिए, पहले चाहिए, बगल वाला भले ही मर जाए उससे कोई मतलब, हाँ चाहे जो हो जाए उससे उसे कोई लेना नहीं, उसे अपने से लेना नहीं। अच्छा दानव मानव और देवता इनका यदि निरूपण किया जाए, व्याख्या की जाए कि दानव मानव देवता कौन है, तो जो केवल अपने लिए सोचे वो है दानव, जो केवल अपने लिए सोचे वो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचे वो है मानव, लेकिन जो केवल दूसरों के लिए सोचे वो है देवता। तो तीनों अंदर ही है, कहां है? दानव मानव और देवता अंदर है। अब विचार।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
2: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
3: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
4: इसके ऊपर उसके
5: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन एक
7: दिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। दिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी।

0: पहुंचे 14 लाख भक्त। मॉनसून का इंतजार कर रहे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए राहत की खबर, अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, पास पालघर और रायगढ़ में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, हादसों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। बम बम भोले के जय घोष के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम भोले के जयकारों के बीच जत्था कश्मीर घाटी रवाना हुआ। सुरक्षा के लिए 670 कंपनियां तैनात की गई हैं। मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचकर यात्रियों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की।
1: श्रद्धालु पहुंचे भगवान।
0: तो श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखाया। इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों की निगरानी के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 670 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 57 दिन तक चलेगी। ये 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। तो देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो है भजन कीर्तन करते हुए अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा गुरुवार को यानी आज 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को रवाना किया। इस यात्रा के लिए प्रशासन और रेलवे ने भी सुरक्षा सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए हैं। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहुप्रतीक्षित श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष। आप सुन पा रहे होंगे कि कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे अमरनाथ यात्रा करने के लिए और सबकी जबान पर सिर्फ एक ही राम, बम बम भोले, जय भोलेनाथ। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थयात्रियों का काफिला बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। और आज यात्रा का पहला दिन भगवती नगर बेस कैंप में देश के भिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। प्रशासन की ओर से भी यात्रियों के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें निर्धारित वाहनों से उनके गंतव्य की ओर भेजा गया। सुरक्षा एजेंसी की निगरानी भी पूरे काफिले की आवाजाही सुनिश्चित कर रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है ताकि यात्रा में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। इस वर्ष ये यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और श्रद्धालु समुद्र तल से लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक दो मार्गों से पहुंचेंगे। इनमें अनंतनाग जिले का पारंपरिक 48 किलोमीटर वाला लंबा नूनवान पहलगाम मार्ग और दूसरा रूट जो है वो गांधरबल जिले का 14 किलोमीटर लंबा है लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग शामिल है। दोनों मार्गों से यात्रा एक साथ संचालित की जाएगी। तो यात्रा को लेकर जम्मू रेलवे डिवीजन ने भी व्यापक तैयारियां की है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए जोश भक्तों में साफ दिखाई दे रहा है। सबके चेहरे पर मुस्कान है और जबान पर सिर्फ एक ही नाम, बम बम भोले, जय भोलेनाथ। और हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों से बातचीत की। आप भी देखिए उनमें इस तीर्थयात्रा को लेकर कितना उत्साह है।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जो पहला जत्था है इनमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है। श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। इस यात्रा को लेकर देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है, और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और चेहरे पर इनके मुस्कान देखे, प्रसन्नता की अनुभूति देखे कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
3: दीपिका खंडेलवाल।
2: कहाँ के रहने वाले?
3: अलवर, राजस्थान।
2: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
3: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए, और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
2: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
3: मैं पहली बार आ रही हूँ।
2: कि जो महिलाएं हैं पारंपरिक अपने परिधान में आई, हम देख सकते हैं कि पूरे सजे धजे से आप हैं यात्रा के लिए जा रहे हैं, चेहरे पर खिली खिली मुस्कान है, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर?
4: यात्रा को लेकर बहुत खुश हुई हूँ, मैं आज यहाँ आई हूँ और बाबा ने बुलाया मुझे।
2: पहली बार यात्रा के लिए
4: आई हूँ।
2: पहले जत्थे में ही नंबर आ गया?
4: हाँ, पहले जत्थे में।
2: क्या भाव है मन में?
4: मन में है एक्साइटमेंट है भाई, यहाँ है।
2: आप में से कोई भजन गा सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का कोई भजन गा सकते हैं? जी आप बताइए आपका नाम?
5: जी किरण राठौर है मेरा नाम।
2: अच्छा, कहाँ से आप?
5: मैं जयपुर से हूँ।
2: अच्छा, क्या भाव है मन में?
5: मन में बस ये है कि थोड़ी उम्मीदें हैं, उत्साह है, और उन्हें एक नजर देखने की इच्छा है।
2: जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
5: सबसे पहले तो ये होता है कि निरोगी सुख काया होता है, कि सबसे पहले कि सभी को निरोग और सुखी रखे। दूसरी चीज ये कि जो इच्छाएं हैं, हम जिस इच्छाओं को लेकर जा रहे हैं वो सभी की इच्छाएं पूरी करें।
6: मन में बहुत श्रद्धा है बाबा के लिए, बहुत टाइम से बाबा से मिलना था, और
2: आखिरकार बुलावा।
6: हाँ, आज अब बुलावा आ गया। पहली बार है, बहुत एक्साइटमेंट है बाबा से मिलने का।
7: सर भाव तो बाबा के लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
2: मैं देख रहा हूँ आप काफी भावुक भी हो रहे हैं।
7: हाँ सर, बस बहुत मन था आने का। मैं तो बाबा को थैंक्स बोलने के लिए आ रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा। बाबा ने बिना इतना
2: मांगे ही मुरादें पूरी कर।

0: थे रे।
1: पिछली बार भी गए थे आप यात्रा?
2: मैं पिछली बार 8-9 साल।
1: क्या अनुभव रहा?
2: अनुभव ये रहा कि पिछली बार जब मैंने देखा तो मैं सोचा था मुझे दोबारा आना है, लेकिन मेरा गैप बहुत लंबा आया। अब सुन ली बाबा ने, अब आ गया,
1: बुलावा आ गया
2: बिल्कुल। और इंडिया का स्वर्ग इसलिए मैं देखना चाहता हूँ हर साल। अब आऊंगा कितनी बार मुझे नहीं पता।
1: तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे उनसे? हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन क्या मांगेंगे
2: ये नहीं बताऊंगा।
1: ये नहीं बताएंगे?
2: ये बाबा मांगे,
0: इतना कुछ दे दिया,
1: मांगे
0: कि मन की बात सुन लेते हैं।
1: ठीक है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु जो देश के अलग अलग भागों से आए हैं, ये जो श्रद्धालुओं का समूह है, ये राजस्थान से आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं जो हैं पारंपरिक परिधान में हैं, सजे धजे आए हैं और काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर। हम यहाँ पर कुछ और श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी क्या भाव है मन में?
3: बहुत अच्छे भाव है, बहुत श्रद्धा के भाव है। अमरनाथ यात्रा पहली बार जा रहा हूँ मैं और जयपुर से आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने और अपनी पत्नी के साथ आया हूँ।
1: क्या भाव है मन में?
4: बहुत अच्छा भाव है, दर्शन करने का पहली बार जा रहे हैं।
1: पहली बार?
4: हाँ।
1: बुलावा आ गया?
4: बुलावा आ गया।
1: तो क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ से?
4: अब ये तो अंदर
1: व्यक्तिगत बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। आप बताइए क्या नाम है आपका?
5: धर्मेंद्र सिंह।
1: कहाँ के रहने वाले? राजस्थान।
5: जयपुर राजस्थान। 25 साल से देख रहा हूँ और 25 साल के अंदर जो 2014 के बाद में जो अमन चयन यहाँ पे मिला है।
1: कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सभी श्रद्धालु जो है काफी व्याकुल है। तो यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है और श्रद्धालु जो है दोपहर के बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और कल ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू होगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से भी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट।
6: हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट बता रहे हैं कि जम्मू के बेस कैंप से तीर्थयात्रियों की रवानगी कैसे हुई।
7: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर घाटी की तरफ रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके भगवती नगर बेस कैंप से निकल रही है यहाँ जम्मू से, और दोपहर के बाद ये श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। कल ये यात्रा जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। इस समय श्रद्धालुओं का काफिला जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और प्रशासन ने भी व्यापक जो है प्रबंध किए हैं इस यात्रा को लेकर। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी खासा प्रबंध किए हैं और अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो ये यात्रा हमेशा संवेदनशील रहती है, इसीलिए भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात है, खासतौर पर जो केंद्रीय सशस्त्र बल है। इस बार 670 कंपनियां जो है केंद्रीय बलों की वो यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जम्मू बेस कैंप में भी जो सीआरपीएफ के जवान है वो भारी संख्या में तैनात है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी केंद्रीय बल जो है वो तैनात रहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस भी रहेगी और साथ ही में जो यात्रा मार्ग है चाहे पहलगाम हो या बालटल या यात्रा मार्ग हो, दोनों मार्गों पर भारी संख्या में जो है केंद्रीय बल तैनात रहेंगे और ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के शूरवीर भी रहेंगे। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे और सुरक्षा के बंदोबस्त जो है चाक चौबंद किए गए हैं। और यात्रियों की सुविधा की अगर बात करें तो जगह जगह लंगर लगे हैं, जगह जगह उनके लिए सुविधाएं हैं, आराम करने के स्थान बनाए गए हैं। फिलहाल यहां से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कतारों में गाड़ियां जो है यहाँ पर देख सकते हैं और एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रही है। इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 57 दिन तक चलेगी। कल जो है यात्रा विधिवत तौर पर जो है शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से, और ये यात्रा जो है 28 अगस्त को संपन्न होगी श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, शुभ अवसर पर। और श्रावण पूर्णिमा इस वर्ष 28 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन, और ये हमेशा से रीत चली आ रही है कि श्रावण पूर्णिमा को ही यात्रा जो है संपन्न होती है।
8: बहुत प्रसन्न है, ये हमारा 3रा साल है, हर बार ऐसा लगता है जैसे साल हम 365 दिन से इंतजार करते हैं जी। अच्छा। और जैसे ही शुरू होता है हम लोग पहले दिन पहुंच जाते हैं, इतनी खुशी होती है बाबा के दर्शन करके।
9: मैंने जत्थे में नंबर
8: जत्थे में हमने नंबर लगा दी। जय करा शिव शंकर का, बोल सच्चे दरबार की जय, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।
7: खासा उत्साह देखा जा सकता है श्रद्धालुओं में। ये पहला जत्था है जो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। 57 दिन तक ये यात्रा चलेगी और यहाँ जम्मू बेस कैंप से जो गाड़ियां हैं श्रद्धालुओं की वो एक एक करके यहाँ से अब निकल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना कर दिया है और दोपहर बाद ये श्रद्धालु कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे और कल यात्रा दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी।
9: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
12: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
11: Smartless.
13: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
11: Marketplace.
14: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
11: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
15: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे,
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुगंध जो है, खुशबू जो है, वो आपके मन को मोह लेती है और मन पर बड़ा गहरा असर डालती है। तो आज हम बात करेंगे सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में महत्व क्या है और सुगंध का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। 7 चक्र आपके मानसिक शरीर में हैं, जिनसे आपका मन प्रभावित होता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं: रंग, सुगंध और शब्द, यानी मंत्र। रंग, सुगंध और शब्दों का या मंत्रों का आपके शरीर के चक्रों पर गहरा असर पड़ता है। मन की अवस्था के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार, अगर अलग अलग तरह के सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की चिंताओं को, मन की जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम और अवसाद डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सुगंध का जब आप प्रयोग करते हैं तो सुगंध आपके सोच और विचार की क्षमता पर असर डालती है, इसीलिए पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का बहुत प्रयोग होता है, ताकि मन एकाग्र हो सके, मन पवित्र हो सके और उस पवित्र मन से आप साधना कर सकें। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं, जब आप सुगंध का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का या फूलों की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए।
अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुगंध जितनी हल्की होगी और जितने देर तक ठहरेगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो सुगंध को अपनी कलाइयों पर, गर्दन के पीछे और अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। जिन लोगों को तनाव पालने की आदत है या जो लोग बहुत चिंता करते हैं वो जल में भी सुगंध डालकर स्नान करें, लाभ होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं या अविवाहित हैं उनको केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंदन की सुगंध सात्विक है। गुलाब की, बेले की, मोगरे की सुगंध राजसिक है। ये मन की भावनाओं में निगेटिविटी पैदा कर सकती है, इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अगर सुगंध का प्रयोग करना है तो केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि पूजा स्थान पर, पढ़ने लिखने की जगह पर और काम के स्थान पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके पहले धूप बत्ती जला लें ताकि धुआं छट जाए, सुगंध बनी रहे, या प्लेन सुगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब धुआं समाप्त हो जाए तब पूजा करिए, तब काम करिए, तब ध्यान लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। काम की जगह पर, पढ़ने की जगह पर और पूजा की जगह पर चंदन या गुग्गल की सुगंध लाभकारी मानी जाती है। खास तौर से अगर आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो चंदन की सुगंध लगाकर या चंदन की धूप बत्ती जलाकर तब पूजा करें, तब ध्यान करें, आपको ज्यादा लाभ होगा। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में और स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिएगा। नहाने के पानी में एक ढक्कन, दो ढक्कन गुलाब जल डालकर भी नहा सकते हैं। सोने के पहले अपनी नाभि पर भी सुगंध लगाइएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुगंध हल्की हो, देर तक ठहरती हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। घर में सुबह और शाम या तो मिट्टी के पात्र में रखकर लोबान जलाएं
या लोबान की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। एक मिट्टी के पात्र में लोबान जलाएं और उसको पूरे घर में घुमाएं ताकि पूरे घर में उसकी सुगंध फैले। रोज शाम को पूजा करने के बाद अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो आज हमने आपको बताया सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर बार बार नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती हो, आपको बार बार नजर लग जाती हो या बार बार बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो नियमित रूप से रोज नहाने के बाद अपने शरीर पर और अपने कपड़ों पर अगर चंदन की सुगंध लगाएं तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल अपने ईष्ट देव को, देवी देवता को, भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: बाबर फानी के वक्तों का इंतजार हुआ खत्म, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात। कर्नाटक में कारा हुन्नी में बैलगाड़ी फेस्टिवल का आयोजन, मॉनसून के आगमन के उपलक्ष्य में उत्तरी कर्नाटक में मनाया जाता है ये पर्व। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर वालों की सुबह, कई इलाकों में हो रही है बारिश, दिल्ली हरियाणा राजस्थान में अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, पास पालघर और रायगढ़ में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, हादसों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह। चीन में गर्मी को मात देने का अनूठा तरीका, शंघाई में पूरे शहर में लगाए गए स्पेशल कूलिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर से तापमान कम करने की कोशिश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके हेयर स्टाइल के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा लोग अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं, कोई स्पाइक बनाता है तो कोई नॉर्मल हेयर कट लेता है, तो आपका हेयर स्टाइल बताएगा कि आपका स्वभाव कैसा और आपका होने वाला भविष्य, आने वाला भविष्य जो है वो कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: अगर आप को सेवकों से या सहायकों से समस्या हो रही है, आपके घर की मेड है, आपके घर के सर्वेंट हैं, सहायक हैं, उनसे अगर समस्या हो रही है तो हर शनिवार को निर्धनों को मीठी वस्तु का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सेवकों से और सहायकों से होने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी।
3: और आइए अब जान लेते हैं 2 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:27 तक, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और आइए अब जानते हैं कि आपके हेयर स्टाइल से आपके भाग्य और स्वभाव का आखिर संबंध क्या है।
4: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके हेयर स्टाइल का आपके भाग्य से क्या संबंध है। आपके बालों को रखने का तरीका, केश विन्यास आपके भाग्य और आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बालों का संबंध होता है बुध के साथ, मरकरी के साथ। लेकिन बालों का जो स्टाइल होगा, बाल कैसे रखे जाएंगे, इसका संबंध होता है शुक्र के साथ। बुध और शुक्र मिल करके आपके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं। सूर्य और शनि आपके बालों के बारे में बताते हैं, बाल कैसे होंगे और बालों के स्टाइल पर भी असर डालते हैं। आपके जो बाल हैं वो आपकी बुद्धि, स्वभाव और संघर्ष के बारे में बता सकते हैं। खास तौर से आप सोचते कैसा हैं, आपके विचार कैसे हैं, ये बात आप बालों के स्टाइल से जान सकते हैं।
3: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि अगर हम अपना हेयर स्टाइल जो होता है, अगर आप अपनी दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं तो इसका आखिर अर्थ क्या है।
4: देखिए, अगर आप दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं तो इसका विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं, आम तौर पर ऐसे लोग शनि प्रधान होते हैं, शनि की प्रधानता होती है। ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी और बड़े कर्मठ होते हैं। जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं, ऐसे लोगों को आयु के 32वें और 48वें साल में विशेष लाभ होता हुआ देखा जाता है। अगर आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल है, तो ये स्टाइल बदल दीजिए।
3: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
4: मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
3: तो चलिए जान लेते हैं, हमने इससे पहले जाना कि अगर हम अपनी दाई तरफ मांग निकालते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अब बारी है बाई तरफ की, तो अगर आप बाई तरफ मांग निकालते हैं तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं।
4: अब उन लोगों की बात करते हैं जो बाई तरफ मांग निकालते हैं, इसका अर्थ क्या है। जो बृहस्पति प्रधान लोग हैं या चंद्रमा प्रधान लोग हैं आम तौर पर बाई ओर मांग निकालते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, सरल बहुत होते हैं, लेकिन घनघोर लापरवाह भी होते हैं। भाग्य और ईश्वर की कृपा इनके पास दोनों होती है और कम उम्र में सफलता पा जाते हैं। जो लोग बाईं तरफ मांग निकालते हैं उम्र के 23वें और 33वें साल में ये लोग विशेष सफल होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, तो बाईं तरफ मांग निकालना बंद कर दीजिए, ये स्टाइल आपको बदल देना चाहिए।
3: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
4: कर्क राशि, करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा इस समय, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है
3: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
4: जी आज का पहला प्रश्न अमिता ने हमें लिखा है और अमिता हमें मेल लिखती हैं जयपुर से। 4 अप्रैल 1981 का जन्म है। सुबह 11:45 जन्म स्थान है दिल्ली। अमिता कह रही हैं कि मुझे नौकरी में परिवर्तन का एक ऑफर मिल रहा है मुंबई से। क्या मुझे नौकरी में परिवर्तन करना चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? अमिता आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मार्च 2027 तक अभी इंतजार करिए। मार्च 2027 के बाद अगर आप परिवर्तन करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। आपका आने वाला समय अगले साल करियर के लिहाज से बेहतर दिख रहा है। अभी जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको दिक्कत हो सकती है। करियर में स्थिरता बनी रहे और करियर में आप सफल हों इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
3: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
4: जी अगला प्रश्न मीना जी ने हमें लिखा है और मीना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 6 अक्टूबर 2003। जन्म का समय सुबह के 7:55। जन्म स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र आगे किस करियर में जाएगा। अभी उसने ग्रेजुएशन किया है और एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है। मीना जी आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये मैनेजमेंट में जाएं, फाइनेंस में जाएं, एचआर में जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाइए, उसमें सफलता मिलने की संभावना कुंडली में बढ़िया है। और आगे पढ़ाई करने के लिए ये लखनऊ से दूर जाएंगे, करियर भी दूर बनाएंगे, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा करें एक मोती बनवा दें उनके लिए। 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की

0: इनको पहनाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब बारी है सर के बीच से मांग निकालने वालों की, तो चलिए जानते हैं कि जो लोग बीच से मांग निकालते हैं उनका उनके भाग्य पर क्या असर पड़ता है।
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर के बीच से मांग निकालते हैं। अगर आप सर के बीच से मांग निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या है? शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं या जिनके जीवन में शुक्र की प्रधानता होती है, आम तौर पर सर के बीच से मांग निकालते हैं। जो लोग सर के बीच से मांग निकालते हैं, ऐसे लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं और बार बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे लोगों के पास धन बहुत आता है, लेकिन धन बचा पाना इनके लिए संभव नहीं होता। अक्सर इनको धन की किल्लत होती है, धन आने के बावजूद धन की कमी बनी रहती है। उम्र के 35वें, 42वें और 50वें वर्ष में इनको विशेष सफलता मिलती है। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर अपयश मिलता हो, जिनको छोटी छोटी बातों पर बदनामी मिलती हो, उनको बीच से मांग नहीं निकालना चाहिए, उनको ये स्टाइल नहीं रखना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बालों में मांग ही नहीं निकालते, यानी बाल या तो ऊपर की ओर होते हैं या फिर बिखरे हुए होते हैं, तो इसका आपके जीवन पर असर क्या पड़ता है?
0: देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बालों में मांग नहीं निकालते, यानी बाल या तो ऊपर की तरफ होते हैं या बिखरे हुए होते हैं, बाल में मांग नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? आम तौर पर जो लोग बुद्ध प्रधान होते हैं या जिनके जीवन में बुद्ध की प्रधानता होती है, ऐसे लोग या तो मांग नहीं निकालते या उनके बाल बिखरे होते हैं। जो लोग बाल में मांग नहीं निकालते, बाल ऊपर की तरफ रखते हैं या थोड़ा बिखरे हुए बाल रखते हैं, ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य और लेखन में बहुत रुचि रखते हैं और इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता पाते हैं।

0: धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब जानते हैं कि जिनके बाल घुंघराले हैं उनका भाग्य किस तरह से होता है, क्योंकि अगर आपकी दाईं तरफ की मांग है, आपकी बाईं तरफ की मांग है, आप बीच में से मांग निकालते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, तो आपने पंडित जी से जान लिया। लेकिन अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से।
0: देखिए, बहुत सारे लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की प्रधानता होती है उनके बाल कर्ली यानी घुंघराले होते हैं। ये बाल शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखते हैं। जिनके बाल घुंघराले होते हैं उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उनको भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम परेशान करती हैं। उम्र के 25वें, 38वें और 45वें साल में इनको बहुत सफलता मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो घुंघराले बाल रखने से आपको बचना चाहिए।
1: तो आइए अब जानते हैं कि अगर आपके सर पर बाल ही नहीं है, जी हाँ, अगर आपके सर पर बाल नहीं है, आप गंजे हैं, तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पर बाल नहीं होते या गंजापन होता है या बहुत थोड़े से बाल होते हैं। इसका क्या मतलब है? सूर्य अगर कुंडली में प्रधान हो गया, सूर्य अगर कुंडली में लीडिंग कंडीशन में आ गया तो सर पर या तो बाल नहीं होंगे या कम से कम बाल होते चले जाएंगे। जिनके सर पर बाल कम होते हैं या नहीं होते हैं,

0: ऐसा देखा गया है। ऐसे लोग राजनीति में, प्रशासन में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है और आम तौर पर इससे संबंध इनके वाणी की वजह से बिगड़ते हैं। उम्र के 29वें, 34वें और 40वें साल में इनको ज्यादा लाभ होता है। लेकिन ध्यान रखिए, सर को एकदम चिकना मत रखिए। एकदम चिकना रखने से सूर्य आपका कमजोर होगा।
1: और अब जानेंगे आज के अंतिम राशि के राशिफल को, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी। मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य, सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से सावधान रहें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न अजय कुमार ने हमें लिखा है और अजय जी हमें मेल लिखते हैं गुजरात अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1990। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है अहमदाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और तमाम प्रयास करने के बावजूद विवाह के मामले में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का योग शुरू हो गया है और अगले 4 से 5 महीने में आपकी शादी फाइनल होगी। ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। अगले साल के शुरुआत में आपका विवाह होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बार विवाह के पहले कुंडली मिला लीजिएगा, एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो काफी अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल, पंडित जी किसका लेंगे?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न लक्ष्मण दास जी ने हमें लिखा है, और लक्ष्मण दास जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1969। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। मेल लिखते हैं ऋषिकेश से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं और तमाम दवाइयां और तमाम उपचार करने के बाद भी मुझे कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करूं? लक्ष्मण दास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कोई ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, केवल आपकी कुंडली में हड्डियों की समस्या की संभावना बनती है, तो केवल आपको आपकी हड्डियां परेशान कर सकती हैं, अन्यथा आपकी चीजें बेहतर हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंदिर में देवी देवताओं को भोग लगाना जरूरी है? देखिए, देवी देवता को भोग आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको भोग लगाना ही लगाना है। देवी देवता को अपना मन समर्पित करिए, वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपनी मन और अपनी श्रद्धा समर्पित करना ही सबसे ज्यादा उत्तम है।
1: और आइए अब जानते हैं 2 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से संतान और शिक्षा की समस्याएं दूर होंगी।
1: गुडलक में हम जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आजकल समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है मेष। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। हालांकि धन और संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: जीवन में बेवजह के विवाद होते हैं तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष में रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाइए और घर में नियमित रूप से खास तौर से शाम के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्तियां जलाइए, आपके लिए बेहतर होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: And talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है,
6: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और अब एक ही जगह से कीजिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दुर्लभ दर्शन। 6G VR टेक्निक के जरिए मिलेगा मंदिर में मौजूद होने जैसा दिव्य अनुभव। दर्शन के साथ आरती, पूजा और आध्यात्मिक कथाओं का भी होगा साक्षात्कार। फिलहाल इस दुनिया का आनंद देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में लिया जा सकेगा। आस्था और टेक्निक के इस अद्भुत संगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं आशुतोष राणा, और इन 11 आध्यात्मिक कहानियों को साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। दुर्लभ दर्शन और उसके संस्थापक प्रशांत मिश्रा के साथ मिलकर आशुतोष राणा दुनिया के पहले 100 से ज्यादा 60 आध्यात्मिक अनुभव केंद्र उन्होंने लॉन्च किया।
9: हूँ आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
10: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
9: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
10: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे
11: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
10: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
12: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
10: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
11: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
10: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
13: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
10: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आंखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। इसमें अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
11: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
10: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
11: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
10: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
11: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
8: अब आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों अपनी मनमोहक खूबसूरती से सैलानियों को लुभा रही है। अब तक 7,294 लोग फूलों की घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं, जिनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मानसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे।
1: कुल 1 महीने बीतने के बाद हमारे पास कुल 7,294 लोग आ गए हैं, जिसमें 34 फॉरेनर्स हैं। और इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो ये संख्या 1.5 गुना है। पिछले बार इस समय तक 3,893 लोग आए थे, जिसमें 65 फॉरेनर्स थे। तो अगर देखा जाए तो इस बार काफी अच्छा पर्यटन सीजन रहा है।
0: यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है।
2: विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस बार पहले ही पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है, जबकि मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। सबसे ज्यादा फूल इस दौरान फूलों की घाटी में खुलते हैं। इस बार 1.5 गुना, पिछले वर्षों के अनुसार 1.5 गुना अधिक जो पर्यटक हैं वो अब तक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं।
0: अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा, ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को जिसे चलने फिरने में दिक्कत है ठेले पर बिठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा, लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना, पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों,
6: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: बम बम बोले के जयकारों के बीच अमरनाथ के लिए जम्मू बेस कैंप से पहला जत्था हुआ रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी।
10: अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात।
3: कर्नाटक में कारा हुन्ने में बैलगाड़ी फेस्टिवल का आयोजन। मॉनसून के आगमन के उपलक्ष्य में उत्तरी कर्नाटक में मनाया जाता है ये पर्व।
10: झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली NCR वालों की सुबह। कई इलाकों में हो रही बारिश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून।
3: मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश। पास पालघर और रायगढ़ में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट। हादसों से बचाव के लिए एहतियात बरतने की सलाह।
10: चाइना में गर्मी को मात देने का अनूठा तरीका। शंघाई में पूरे शहर में लगाए गए स्पेशल कूलिंग सिस्टम, तो वहीं स्प्रिंकल से तापमान कम करने की कोशिश।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशबू भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: शुभ समाचार की शुरुआत अमरनाथ यात्रा के साथ होगी। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच इस यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में काफी उत्साह है।
10: अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कल से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी।
3: अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कसर ना रहे। इस सब पर विस्तार से हम आगे करेंगे बात,
10: और साथ ही बात मॉनसून की भी होगी, जिसके पहुंचने की आहट दिल्ली में दिखनी शुरू हो गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। तो वहीं देश भर में कैसी है मॉनसून की चाल, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे।
3: तो बात न्यूयॉर्क में प्यार के परवानों स्टंटबाजों की भी हम करेंगे। इन दोनों ने वहां की एक मशहूर गगनचुंबी इमारत पर शांति का संदेश देने वाला एक बैनर लहराया और फिर प्यार का इजहार किया। इसके बाद क्या हुआ ये भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
10: 9 खबरों की शुरुआत करेंगे आस्था से जुड़ी गुड न्यूज के साथ। अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखा चुके हैं और यात्री दोपहर के बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत कल से होगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह नजर आया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये जत्था रवाना हुआ।
3: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 42 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 14 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
10: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस समय अपनी नैसर्गिक सुंदरता के चरम पर है और इस वर्ष 1 जून को फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और तब से लेकर अब तक घाटी की प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अब तक 7,260 भारतीय पर्यटकों और 34 विदेशी सैलानियों ने घाटी का दीदार किया है। कुल मिलाकर अब तक 7,294 पर्यटक यहाँ की सुंदरता का अनुभव ले चुके हैं।
3: तमिलनाडु के कोयम्बटूर के फॉरेस्ट कॉलेज कैंपस में कला और संरक्षण का संगम देखने को मिल रहा है। वनस्पति और जीव जंतुओं से सजी भित्ति चित्र यहां खास आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। दीवारों पर पक्षियों जानवरों समुद्री जीवों कीटों और फूलों को हाथ से बेहतरीन अंदाज में कलाकारों ने उकेरा है। चित्रों के साथ जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी लिखी गई है।
10: ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके की है, जहां पर आयोजित आम महोत्सव का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल में अलग अलग किस्मों के आम मौजूद हैं, जिसमें मालदा जिसे लंगड़ा भी कहा जाता है वो आम लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मालदा जिला का फजली आम भी यहां पर मौजूद है, जो हिमसागर से लेकर जैस्मिन आम भी मौजूद है, जो खासकर बंगाल के लोगों की पसंद बना हुआ है।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 11 शहरों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इंडिगो एयरलाइंस बुधवार से नवी मुंबई समेत भोपाल जयपुर देहरादून धर्मशाला समेत अन्य शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। अभी तक इंडिगो की विमान सेवा हैदराबाद बेंगलुरु अमृतसर जम्मू आदि शहरों के लिए ही उपलब्ध थी। नए शहरों के जुड़ने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा।
10: यूपी के प्रयागराज के धावक बजरंग पांडे का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन हुआ। फेडरेशन कप 2026 में बजरंग ने 100 मीटर की रेस में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में अपनी जगह पक्की की और अब 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मीटर रेस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे।
3: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जब मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका पर अपने पहले मैच में जीत का जश्न मनाया, तब 2 साल की बतख मर्लिन इंटरनेट पर सनसनी बन गई। इस तरह वो टूर्नामेंट की पहली अनऑफिशियल मस्कट बन गई। इस जश्न के दौरान मेक्सिको सिटी में मेक्सिकन राष्ट्र टीम की जर्सी और मोजे पहने मर्लिन की तस्वीरें देखते ही वायरल हो गई और उसने सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर लिए।
10: फिल्म उत्तर द पुत्र का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसे अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लॉन्च किया है। आपको बता दें ट्रेलर में इमोशनल ट्विस्ट और मनोरंजन का मिश्रण देखने को मिला है।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ। घाटी में भोलेनाथ के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, इन्हीं गगनभेदी जयकारों के साथ शुरू हो गई है करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की सबसे पवित्र यात्रा। अमरनाथ की पावन गुफा की ओर श्रद्धालुओं का पहला जत्था पूरे जोश और उल्लास के साथ रवाना हो चुका है। किसी के कंधे पर तिरंगा है तो किसी के हाथ में त्रिशूल, तो हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अटूट आस्था साफ साफ दिखाई दे रही है। 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उधर सुरक्षा के मोर्चे पर भी कोई ढील नहीं बरती गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। हाईटेक निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है। आस्था, उत्साह और सुरक्षा तीनों के संग शुरू हो चुकी है बाबा बर्फानी के दरबार की दिव्य यात्रा।
1: तो वहीं आपको बता दें, यात्रा के शुभारंभ से पहले भोलेनाथ के जयकारों और श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर पहलगाम और बालटाल मार्ग के लिए रवाना किया। मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की और उनकी सफल यात्रा की कामना भी की।
0: श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना के साथ बाबा अमरनाथ के पवित्र धाम की ओर प्रस्थान किया।
2: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर घाटी की तरफ रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके भगवती नगर बेस कैंप से निकल रही है यहाँ जम्मू से, और दोपहर के बाद ये श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। कल ये यात्रा जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। इस समय श्रद्धालुओं का काफिला जो है कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और प्रशासन ने भी व्यापक जो है प्रबंध किए हैं इस यात्रा को लेकर। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी खासा प्रबंध किए हैं और अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो ये यात्रा हमेशा संवेदनशील रहती है, इसीलिए भारी संख्या में जो है सुरक्षा बल तैनात है, खासतौर पर जो केंद्रीय सशस्त्र बल है। इस बार 670 कंपनियां जो है केंद्रीय बलों की वो यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जम्मू बेस कैंप में भी जो सीआरपीएफ के जवान है वो भारी संख्या में तैनात है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी केंद्रीय बल जो है वो तैनात रहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस भी रहेगी और साथ ही में जो यात्रा मार्ग है, चाहे पहलगाम हो या बालटल या यात्रा मार्ग हो, दोनों मार्गों पर भारी संख्या में जो है केंद्रीय बल तैनात रहेंगे और ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के शूरवीर भी रहेंगे। प्राथमिकता यही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे और सुरक्षा के बंदोबस्त जो है चाक चौबंद किए गए हैं। और यात्रियों की सुविधा की अगर बात करें तो जगह जगह लंगर लगे हैं, जगह जगह उनके लिए सुविधाएं हैं, आराम करने के स्थान बनाए गए हैं। फिलहाल यहां से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कतारों में गाड़ियां जो है यहाँ पर देख सकते हैं और एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रही है। इस वर्ष की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो 57 दिन तक चलेगी। कल जो है यात्रा विधिवत तौर पर जो है शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से, और ये यात्रा जो है 28 अगस्त को संपन्न होगी श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, शुभ अवसर पर। और श्रावण पूर्णिमा इस वर्ष 28 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन, और ये हमेशा से रीत चली आ रही है कि श्रावण पूर्णिमा को ही यात्रा जो है संपन्न होती है।
3: बहुत प्रसन्न है, ये हमारा तीसरा साल है, हर बार ऐसे लगता है जैसे साल हम 365 दिन से इंतजार करते हैं जी। अच्छा। और जैसे ही शुरू होता है हम लोग पहले दिन पहुंच जाते हैं, इतनी खुशी होती है बाबा के दर्शन करके।
4: मैंने जत्थे में नंबर
3: जत्थे में हमने नंबर लगा दी। जय करा शिव शंकर का, बोल सच्चे दरबार की जय, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।
2: खासा उत्साह देखा जा सकता है श्रद्धालुओं में। ये पहला जत्था है जो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। 57 दिन तक ये यात्रा चलेगी और यहाँ जम्मू बेस कैंप से जो गाड़ियां हैं श्रद्धालुओं की, वो एक एक करके यहाँ से अब निकल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना कर दिया है और दोपहर बाद ये श्रद्धालु कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे और कल यात्रा दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी।
1: अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई दिल्ली से, तो कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई महाराष्ट्र से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा है। कुछ लोग अपनी मंडली के साथ भगवान की भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हुए

0: आवश्यक व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं। फिलहाल आप देखिए, जब यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ, श्रद्धालुओं का जोश किस कदर हाई नजर आ रहा है।
1: इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में, और यहीं पर कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले जत्थे को रवाना किया। ज्यादातर गाड़ियां यहां से निकल चुकी है, अब कुछ गाड़ियां हैं वो अभी बस जा रही हैं, और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ निकल रहे हैं। मन में इनकी काफी प्रसन्नता है। बम बम बोले और जय हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु जा रहे हैं कश्मीर घाटी। जी आप बताए आपका नाम?
2: आशुतोष सेठ।
1: मन में कितनी प्रसन्नता है?
2: बहुत ज्यादा, बहुत।
3: नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
1: जी आप कहाँ के रहने वाले?
4: राजस्थान।
1: मन में कितनी प्रसन्नता का भाव?
4: बहुत अच्छा, चार साल हो गए बाबा वर्मा नहीं गया था।
1: प्रतिवर्ष आते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
3: बोलो बाबा काशी विश्वनाथ के।
5: हम लोग लखनऊ से आए और देखिए जोश, दो दिन से सोए नहीं है दर्शन करके।
1: का कहना है कि बड़ी व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचे, वहां दर्शन करें और यात्रा करें। आप देखिए कि ये कुछ बसें बची हैं, अब ये एक एक करके यहां से निकल रही हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। आप देखिए पीछे भी एक बस है, हम प्रयास करेंगे कुछ और श्रद्धालुओं से बात करने का। हाँ जी
6: सर, हम जनपद प्रताप उत्तर प्रदेश।
1: खुशी,
6: बहुत खुशी है सर इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर।
7: मेरा नाम है विशाल, मैं हूँ बीकानेर से, बहुत एक्साइटेड।
1: जा रहे कौन से? बालटल से जा रहे हैं?
7: पहलगांव से
1: बाबा पारंपरिक मार्ग से ही जाएंगे।
7: यस,
1: एक बार जय घोष कर दीजिए।
7: जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय बाबा बर्फानी।
1: कितनी देर में निकल रहे हैं?
8: बस अब निकल रहे हैं, गाड़ी पीछे से आ रही है। बस
1: जय घोष लगा दीजिए एक बार।
3: हर हर महादेव, बम बम
9: बोले,
3: बम बम
9: बोले,
3: बम बम
9: बोले,
3: बम बम
9: बोले।
1: एक बार कोई भजन गा दीजिए शिव जी का।
3: मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभू।

0: क्या भाव है मन में?
1: मन में यही भाव है कि पूरे जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और भारत विश्व गुरु बने। जी,
0: विश्व गुरु बने। एक बार जरा जोश के साथ जय घोष लगा।
1: अरे हरे मारे भोले, बम बम भोले,
2: जय बाबा और भानी, भूखे को अन्न, प्यासों को पानी।
0: देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और काफी व्याकुल है दर्शनों के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। देखिए यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें, भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, आला अधिकारी भी है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, केंद्रीय सशस्त्र बल हो, कड़ी सुरक्षा में जो है श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं एक एक करके और पूरी तरह से पूरी व्यापकता के साथ यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था है। ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है भारी संख्या में तैनात है। ज्यादातर श्रद्धालु निकल चुके हैं जो कि पहले जत्थे में थे, अब एक एक करके जो बाकी श्रद्धालु है वो जा रहे हैं।
3: जय भोले बाबा, जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।
0: कितनी प्रसन्नता है,
3: पहली बार आए हम लोग, बहुत उत्साह है, बहुत बढ़िया। जय
4: बढ़िया लग रहा है, जय भोले बाबा की।
0: चेहरे पर मुस्कान देखिए, श्रद्धालुओं की मुस्कान ही सब कुछ बयां करती है।
5: अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 4,822 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 259 वाहनों के काफिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम और बालटाल मार्गों के लिए रवाना किया गया। यात्रा में सुरक्षा घेरा पिछले सालों के मुकाबले मजबूत है, हर तरफ सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रोन और दूसरी टेक्निक से भी नजर रखी जा रही है। इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों की निगरानी के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 670 कंपनी तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आज जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए 4,822 श्रद्धालु रवाना हुए हैं, तो वहीं कल से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। पहले जत्थे में जा रहे श्रद्धालुओं से बात की है हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने, सुनिए।
0: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है, यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जो पहला जत्था है, इनमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है। श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। इस यात्रा को लेकर देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और चेहरे पर इनके मुस्कान देखिए, प्रसन्नता की अनुभूति देखिए कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
6: दीपिका खंडेलवाल।
0: कहाँ के रहने वाले?
6: अलवर, राजस्थान।
0: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
6: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
0: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
6: मैं पहली बार आ रही हूँ।
0: देखते हैं कि जो महिलाएं हैं पारंपरिक अपने परिधान में आई, हम देख सकते हैं कि पूरे सजे धजे से आप हैं यात्रा के लिए जा रहे हैं, चेहरे पर खिली खिली मुस्कान है, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर?
7: यात्रा को लेकर बहुत खुश हुई हूँ, मैं आज यहाँ आई हूँ और बाबा ने बुलाया मुझे।

0: मैं जयपुर से हूँ।
1: अच्छा, क्या भाव है मन में?
0: मन में बस ये है कि थोड़ी उम्मीदें हैं, उत्साह है और उन्हें एक नजर देखने की इच्छा है।
1: अच्छा, जब आप पवित्र गुफा में पहुँचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
0: सबसे पहले तो ये होता है कि निरोगी सुख काया होता है, कि सबसे पहले कि सभी को निरोग और सुखी रखे। दूसरी चीज ये कि जो इच्छाएं हैं, हम जिस इच्छाओं को लेकर जा रहे हैं वो सभी की इच्छाएं पूरी करें।
2: मन में बहुत श्रद्धा है बाबा के लिए, बहुत टाइम से बाबा से मिलना था और
1: आखिरकार बुलावा
2: हो रहे। हाँ, आज अब बुलावा आ गया, पहली बार है, बहुत एक्साइटमेंट है बाबा से मिलने का।
3: सर, भाव तो बाबा के लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
1: देख रहा हूँ आप काफी भावुक भी हो रहे हैं।
3: हाँ सर, बस बहुत मन था आने का। मैं तो बाबा को थैंक्स बोलने के लिए आ रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा। बाबा ने बिना
1: मांगे ही मुरादें पूरी कर।

0: जाते रहे।
1: इस बार भी गए थे आप यात्रा?
2: मैं पिछली बार 8-9 साल।
1: क्या अनुभव रहा?
2: अनुभव ये रहा कि पिछली बार जब मैंने देखा तो मैं सोचा था मुझे दोबारा आना है, लेकिन मेरा गैप बहुत लंबा आया। अब सुन ली बाबा ने, अब आ गया,
1: अलावा आ गया
2: बिल्कुल। और इंडिया का स्वर्ग इसलिए मैं देखना चाहता हूँ हर साल। अब आऊंगा कितनी बार मुझे नहीं पता।
1: तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे उनसे? हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन क्या मांगेंगे
2: ये नहीं बताऊंगा।
1: ये नहीं बताएंगे?
2: ये बाबा मांगे,
0: इतना कुछ दे दिया,
1: मांगे
0: कि मन की बात सुन लेते हैं।
1: ठीक है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु जो देश के अलग अलग भागों से आए हैं, ये जो श्रद्धालुओं का समूह है, ये राजस्थान से आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं जो हैं पारंपरिक परिधान में हैं, सजे धजे आए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहे। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सभी श्रद्धालु जो है काफी व्याकुल है। तो यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है और श्रद्धालु जो है दोपहर के बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और कल ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू होगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से भी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।
3: तो अमरनाथ यात्रा में युवाओं की अच्छी खासी संख्या है, इनका जोश देखते ही बन रहा है। इन शिव भक्तों ने जमकर बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। तो देखिए भक्तों का जोश साफ तौर पे आप देख सकते हैं। गुफा के लिए रवाना हो चुका है पहला जत्था और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बम बम भोले हर हर महादेव।
4: हर हर महादेव, बम बम भोले, ये जयकारे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं गूंजते जयकारों के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आस्था का कारवां जम्मू से रवाना हो चुका है। तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होने से पहले भगवती नगर बेस कैंप में भक्तों का उत्साह कैसा नजर आया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में यात्री निवास भवन के बाहर और जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा है और कुछ श्रद्धालु यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कुछ श्रद्धालु डमरू बजा रहे हैं, कई श्रद्धालुओं के हाथ में त्रिशूल है। हम यहाँ पर सीधा श्रद्धालुओं से बात करते हैं। पता है
5: मेरा नाम विजय कुमार, टाटा नगर झारखंड से आया हूँ।
1: कितनी प्रसन्नता की अनुभव?
5: और प्रसन्नता और उमंग जितनी है वो कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में एक ही आशा है, एक ही मनसा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन जितना जल्दी हो सके कर सके। जी
1: एक बार भगवान भोलेनाथ का कोई भजन गाइए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
4: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: बजरंगी, भोले की भोज, भोले शंभो,
1: बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा भवानी की।
2: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए राजधानी दिल्ली में राहत की फुहार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: बम बम भोले के जयकारों के बीच LG ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालित करने के लिए पंजीकरण हुआ अनिवार्य, बिना लाइसेंस संचालन पर होगी FIR। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान की PM ताकाइची, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, भारत जापान के जॉइंट विजन को मिलेगी रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। तीस दिनों तक जेल में रहने पर जा सकती है PM CM की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर JPC की फाइनल रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं 3 बिल। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें। दिल्ली NCR में भी झमाझम बारिश। चाइना में गर्मी को मात देने का अनूठा तरीका, शंघाई में पूरे शहर में लगाए गए स्पेशल कूलिंग सिस्टम, स्प्रिंकल से तापमान कम करने की कोशिश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

और अब बात करेंगे मॉनसून की, जिसके पहुंचने की आहट दिल्ली में दिखनी शुरू हो चुकी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक्टिव है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं गुजरात के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। राजस्थान की बात की जाए तो अगले कुछ घंटों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं देश भर में कैसी है मॉनसून की चाल, चलिए आपको बताते हैं।

तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहत की फुहारें बरस रही हैं और जो गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिल रही है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश हो रही है और कई जगहों पर कुछ जलभराव की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दी है, जिस तरह से मुंबई की तस्वीर आप देख सकते हैं।

0: ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून का सफर हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा भी कुछ ही घंटों में बादलों से ढक जाएगा। 48 घंटे से भी कम देर में राजस्थान में मानसून मन भर बरसेगा। चंद घंटों के इंतजार के बाद पंजाब की माटी भी मानसून की बारिश से महकेगी और थोड़े इंतजार के बाद हरियाणा दिल्ली में भी मानसून का मैजिक नजर आएगा। फिलहाल उत्तर के ज्यादातर हिस्सों में मानसून टफ की मेहरबानी बनी हुई है
1: और तो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे हम मानसून टफ कहते हैं जो जब पूरा इंडिया कवर हो जाता है, तो अभी उसको सीजनल टफ बोलते हैं। इन जनरल सीजनल टफ एक बना हुआ है पंजाब से लेके ब्यो बंगाल तक, तो उसके क्या होता है कि नीचे तो वेस्टर्लीज होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज आते हैं, तो वो एक मानसूनल फ्लो है, तो वो बना हुआ है। उसका वर्टिकल एक्सटेंशन भी है, 1 किलोमीटर तक, 0.9 किलोमीटर तक है, तो इट्स बिन पूरा का पूरा मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण आज भी ज़्यादातर हिस्से हमने कवर कर लिए। पूरा हिमालय कवर हो चुका है, पंजाब के कुछ हिस्से कवर हो गए, हरियाणा के कवर हो गए। तो आने वाले दिनों की अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में हमारा अनुमान है जो पंजाब के ज़्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज़्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है और साउथ ईस्ट गुजरात, साउथ ईस्ट राजस्थान भी कवर होने का अनुमान है।
0: ये जयपुर का आसमान है जहाँ छाए बादलों ने राजस्थान में मानसून के आने की मुनादी कर दी है, लेकिन पूरी तरह मानसून के छाने का इंतजार यहाँ अभी भी सबको है। मानसून पहले ही राजस्थान में 8 दिन लेट है, लेकिन अब बदला बदला माहौल बता रहा है कि राहत के बादल ज्यादा दूर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में राजस्थान में मानसून एंट्री कर जाएगा।
2: राजस्थान में इस बार मानसून 8 दिन की देरी के बाद अगले 24 से 48 घंटों के बीच में एंटर कर चुका होगा और ये जो मानसून है ये 13 साल बाद तीसरी बार जुलाई के महीने में एंटर करेगा और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें ये मानसून कोटा, बारा और उदयपुर संभाग से एंटर करेगा, जिसकी वजह से वहां पे भारी बारिश हो सकती है। वहीं ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ये खत्म होते होते मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से आने वाले 3 से 4 दिन जगह जगह पे भारी बारिश के अलर्ट हैं और साथ ही साथ में अंधड़ के भी अलर्ट दिए जा रहे हैं।
0: देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो कोंकण, गोवा और गुजरात के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है।
1: आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा 5 दिनों का अनुमान है कोंकण, गोवा, साउथ गुजरात, वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगी, उसके लिए हमारा रेड अलर्ट है। और जो साउथ वेस्ट एमपी के रीजन है वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा 2 दिन, उसके बाद सब्सिक्वेंट 1-2 दिन वहाँ भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। और बाकी हिस्सों में जितना हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट 5-6 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
0: मुंबई की बात करें तो यहाँ मानसून ने देर से आने की भरपाई करीब करीब कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरा हफ्ता इसी तरह ठीक ठाक बारिश होती रहेगी। मुंबई में जून के महीने में बारिश 50% कम हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के बारिश ने 6% का बचा कोटा पूरा कर दिया है। हालांकि जहाँ जहाँ मूसलाधार बारिश का अनुमान है वहाँ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये है कि ठंड से बचने के जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगाड़ भिड़ा रहा है। पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोप की गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनीज पर दबाव बढ़ गया है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: गर्मी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पसीने चीन की इन फैक्ट्रियों में काम करने वालों के छूट रहे हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से चीन में बने इन एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। अभी यूरोप के केवल 20% घरों में एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने बाकी 80% लोगों को भी एसी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की कंपनी में कर्मचारी देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए न दीवार तोड़नी पड़ती है और न ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यूरोप में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। यूरोप में जिस तरह गर्मी का कहर बरपा है, उसने मौसम को लेकर यूरोप की सोच बदल डाली है। यहाँ के जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर लगाना जरूरी नहीं माना जाता था, वहाँ अब एसी और कूलिंग फैन के लिए मारामारी मची हुई है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पोर्टेबल एयर कंडीशनर और कूलिंग फैन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। स्टोर मैनेजर का कहना है कि हर ग्राहक एसी या पंखा खरीदना चाहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ रही है। दरअसल यूरोप की ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और उनमें स्प्लिट एसी लगाना आसान नहीं है। किराए के घरों में मकान मालिक की मंजूरी के साथ साथ यहाँ सख्त बिल्डिंग नियम और ऊंची लागत भी स्प्लिट एसी के लिए मुफीद नहीं है। ऐसे में पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिलहाल सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। एसी को लेकर यूरोप में जिस तरह की बेचैनी है, उसने एक बार फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चिंताओं को नए सिरे से सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन का शाक्सी प्रांत इन दिनों गर्मी की चपेट में है। यहाँ पर गर्मी से बचने का तकनीकी जुगाड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में जगह जगह पर खासकर रिहायशी इलाकों और दफ्तरों में कूलिंग मिस्टिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। आपको बता दें, शहर की गलियां हों, इमारतें हों, सड़कें हों, पानी की बौछार यहाँ पर की जा रही है ताकि पारा काबू में रहे और लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना के शांक्सी की ये तस्वीरें, जहां पर पानी की बौछार की जा रही है और इसलिए ताकि लोगों को राहत दी जा सके, कूलिंग मिस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। गलियां, इमारतें, सड़कों पर पानी की बौछार की जा रही है, जिससे पारा काबू में रहे और भीषण गर्मी की वजह से जो लोगों को परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, उनका सामना ना करना पड़े।
2: और अब बात एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। कल आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की मोस्ट अवेटेड फिल्म अल्फा रिलीज होने जा रही है, जिसमें दोनों ने हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को अंजाम दिया है। फिल्म रिलीज से पहले आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने किरदार के लिए की गई जबरदस्त तैयारियों की झलक दिखाई है। अल्फा में आलिया एक खतरनाक असैसिन के रोल में नजर आने वाली है, जिसे बचपन से ही किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई है। तो कैसा है आलिया का ये एक्शन अवतार और कैसे इस कठिन रोल के लिए आलिया ने तैयारी की, देखिए आलिया के एक्शन अवतार की ये इनसाइड स्टोरी।
3: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
4: से तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो।
3: अब बात कर।
5: जब किरदार चैलेंजिंग हो तो उसके साथ न्याय करने के लिए एक्टर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं।
4: मरना है? नहीं ना, तुम मार दे।
5: कुछ ऐसा ही एफर्ट आलिया भट्ट ने शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म अल्फा के लिए किया है। अब तक आए ट्रेलर और टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। आलिया का ये एक्शन अवतार उनके अब तक पर्दे पर निभाए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग, बेहद खूंखार और घातक होने वाला है।
4: रोक लो तो बात कर लो।
5: जाहिर सी बात है, जब किरदार इतना चैलेंजिंग हो तो आलिया को इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ी होगी। आलिया ने अल्फा की रिलीज से जस्ट पहले एक वीडियो पोस्ट कर अपनी मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई है। वीडियो में आलिया भट्ट फैंस को उस ट्रेनिंग की झलक दिखा रही हैं, जिसने उन्हें अपने करियर के सबसे मुश्किल रोल में ढालने में मदद की। और इसका काफी हद तक श्रेय जाता है हॉलीवुड के मशहूर एक्शन और स्टंट एक्सपर्ट जेसन नोवियेलो को, जिन्होंने आलिया को ब्लैक बेल्ट लेवल की ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही आलिया के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरू शाही ने अल्फा की शूटिंग शुरू होने से पहले लगातार 4 महीनों तक आलिया की फिजिकल स्ट्रेंथ, कोर और एथलेटिक स्टेमिना बढ़ाने पर काम किया। आलिया ने स्टाइलिश और पावर पैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के लिए मार्शल आर्ट्स सीखी, हथियारों को चलाने और उन्हें पकड़ने का सही।
1: और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। मेक्सिको सिटी में मेक्सिकन फैंस ने अपनी टीम की जीत का जबरदस्त जश्न मनाया। मेक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर 40 साल में पहली बार वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में पहुंची। जाहिर है फैंस के लिए ये पल बेहद खास था। राउंड ऑफ 32 में मिली ये जीत 1986 में अपने घरेलू मैदान पर बल्गेरिया को हराने के बाद वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में मेक्सिको की पहली जीत थी, जिसके बाद फैंस का उत्साह यहां पर देखने को मिला है। कुछ इस कदर फैंस ने जश्न मनाया है।
2: और अब वॉशिंगटन डीसी में यूएस की जीत का जश्न देखिए। टीम यूएस ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर 2-0 से जीत हासिल कर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। 82वें मिनट में मलिक तिलमान के फ्री किक गोल ने यूएस टीम को बड़ा दिलाई और जीत पक्की की। 2002 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स की ये नॉकआउट राउंड में पहली जीत थी, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि 45वें मिनट में गोल करने वाले फोलारीन बालोगुन को 64वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया था। जाहिर है इस रोमांचक जीत का फैंस ने खूब लुत्फ उठाया और जमकर जश्न मनाया। यूएस 6 जुलाई को सिएटल में बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अनोखी स्टार की झलक आपको दिखाते हैं। ये 2 साल की बत्तख है जो इंटरनेट पर सनसनी बन गई है। मेक्सिको की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के दौरान मर्लिन नाम की ये बत्तख चर्चा में आई। सोशल मीडिया पर ये इस कदर छाई कि ये टूर्नामेंट की पहली अनऑफिशियल मस्कट बन गई। इस जश्न के दौरान मेक्सिको सिटी में मैक्सिकन राष्ट्रीय टीम की जर्सी और मोजे पहने मर्लिन की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई और उसे सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर लिए।
1: और अब बात करते हैं टेनिस की, जहां पर विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने सिर्फ अपनी जीत से ही नहीं बल्कि अपनी मजेदार मजाक से भी सभी का दिल जीत लिया है। 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली है, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जिसने सेंटर कोर्ट पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दरअसल जब उनके प्रतिद्वंदी वॉशरूम ब्रेक पर गए थे, तभी जोकोविच ने एक बॉल गर्ल से अपनी टी शर्ट के पीछे लगा टैग हटाने के लिए कहा और टैग हटते ही जोकोविच ने मजाक में ऐसी एक्टिंग की मानो बॉल गर्ल ने गलती से उनकी गर्दन काट दी हो। एक पल के लिए बॉल गर्ल घबरा गई, लेकिन अगले ही पल जोकोविच हंस पड़े और इशारे से बता दिया कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद पूरे सेंटर कोर्ट पर ठहाके गूंज उठे।
2: और चलिए अब जिक्र एक ऐसी खबर और एक ऐसी तस्वीर का जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। न्यूयॉर्क में 2 स्टंटबाजों ने वहां के एक मशहूर 1,500 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत पर बिना किसी सुरक्षा गियर के अवैध रूप से चढ़ाई की, शांति का संदेश देने वाला एक बैनर लहराया और फिर प्यार का इजहार किया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फिलहाल इन दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और बेहद खतरनाक बिजली वाले एंटीना पर किए गए स्टंट की जांच कर रही है।
5: कहते हैं मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, और अब तो वॉद के मुहाने पर आशिकी के इस वीडियो को देखकर लोग कहीं ये ना कहने लगे इजहारे मोहब्बत की भी कोई सीमा नहीं। न्यूयॉर्क सिटी की 1,454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर बुधवार दोपहर कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला,
0: जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। दो स्टंट बाजों ने न सिर्फ इस गगनचुंबी इमारत के बैंड ट्रांसमिशन टावर पर बिना किसी सेफ्टी गियर के चढ़ाई की, बल्कि वहां हवा में लटकते हुए अंगूठी पहनाकर एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया। हुआ ये कि दोपहर के वक्त जब आम पर्यटक इमारत के ऑब्जर्वेशन डेक से शहर का नजारा ले रहे थे, तभी काले कपड़ों और मास्क में दो लोग सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन टावर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए। टावर की पतली एंटीना पर बेहद जोखिम भरे तरीके से खड़े होकर इस जोड़े ने काले कपड़े का एक बड़ा सा बैनर लहराया। इस बैनर पर लिखा था, जब प्यार की ताकत ताकत के प्यार पर हावी हो जाएगी, तब दुनिया शांति को जानेगी। ये दोनों स्टंटबाज करीब 30 मिनट तक एंटीना पर रहे और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दोनों टावर पर ही नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरे, जहां लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और लड़की ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। सोशल मीडिया पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये दोनों स्टंटबाज दुनिया के मशहूर रूफ टॉपर्स एंजेला निकोलाओ और वान्या बीरकुस है। इससे पहले दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कुआलालंपुर की मर्डेका 118 पर भी दोनों अवैध चढ़ाई कर चुके हैं। इनकी जिंदगी पर 2024 में नेटफ्लिक्स पर स्काई वॉकर्स अ लव स्टोरी नाम की मशहूर डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। इस इमारत के देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों को जब इन स्टंटबाजों की हरकत का पता चला, तो उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर ऑब्जर्वेशन डेक को तुरंत खाली कराया। आसपास की सड़कों को बंद किया गया और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेलीकॉप्टर ने आसमान से निगरानी की। अब न्यूयॉर्क पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि स्टंटबाज प्रतिबंधित एरिया में कैसे घुसे। जांच के बाद दोनों पर ट्रेस पासिंग और लापरवाही से जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ इंस्टा स्टोरीज। इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए दीपिका सिंह की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: पसंदीदा पति मिल तो गया, पर अब यो पसंद ना आ रहा। यो तो पूरा दिन फोन चलावे और बेफालतू का ज्ञान देवे। फोन ले लेगा।
7: कहां जा रही हो?
8: मरने।
7: इतनी सच दस के?
8: हाँ तो फोटो आएगी ना कल अखबार में।
1: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही।
10: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession.
8: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: टिकरी बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूल माला पहनाकर हुआ स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालित करने के लिए पंजीकरण हुआ अनिवार्य, बिना लाइसेंस संचालन पर होगी एफआईआर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान के पीएम ताकाइची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिलेगी रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुगंध जो है, खुशबू जो है, वो आपके मन को मोह लेती है और मन पर बड़ा गहरा असर डालती है। तो आज हम बात करेंगे सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:27 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में महत्व क्या है और सुगंध का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। 7 चक्र आपके मानसिक शरीर में हैं, जिनसे आपका मन प्रभावित होता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं, रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। रंग, सुगंध और शब्दों का या मंत्रों का आपके शरीर के चक्रों पर गहरा असर पड़ता है। मन की अवस्था के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार अगर अलग अलग तरह के सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की चिंताओं को, मन की जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम
और अवसाद डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सुगंध का जब आप प्रयोग करते हैं तो सुगंध आपके सोच और विचार की क्षमता पर असर डालती है, इसीलिए पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का बहुत प्रयोग होता है ताकि मन एकाग्र हो सके, मन पवित्र हो सके और उस पवित्र मन से आप साधना कर सकें। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं, जब आप सुगंध का इस्तेमाल करते हैं तो इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का या फूलों की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुगंध जितनी हल्की होगी और जितने देर तक ठहरेगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो सुगंध को अपनी कलाइयों पर, गर्दन के पीछे और अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। जिन लोगों को तनाव पालने की आदत है या जो लोग बहुत चिंता करते हैं, वो जल में भी सुगंध डालकर स्नान करें, लाभ होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं या अविवाहित हैं उनको केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंदन की सुगंध सात्विक है। गुलाब की, बेले की, मोगरे की सुगंध राजसिक है। ये मन की भावनाओं में निगेटिविटी पैदा कर सकती है,
इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अगर सुगंध का प्रयोग करना है तो केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा स्थान पर, पढ़ने लिखने की जगह पर और काम के स्थान पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके पहले धूप बत्ती जला लें ताकि धुआं छंट जाए, सुगंध बनी रहे, या प्लेन सुगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब धुआं समाप्त हो जाए तब पूजा करिए, तब काम करिए, तब ध्यान लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। काम की जगह पर, पढ़ने की जगह पर और पूजा की जगह पर चंदन या गुग्गल की सुगंध लाभकारी मानी जाती है। खास तौर से अगर आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो चंदन की सुगंध लगाकर या चंदन की धूप बत्ती जलाकर तब पूजा करें, तब ध्यान करें, आपको ज्यादा लाभ होगा। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में और स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिएगा। नहाने के पानी में एक ढक्कन दो ढक्कन गुलाब जल डालकर भी नहा सकते हैं। सोने के पहले अपनी नाभि पर भी सुगंध लगाइएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुगंध हल्की हो, देर तक ठहरती हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा।
अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में सुबह और शाम या तो मिट्टी के पात्र में रखकर लोबान जलाएं या लोबान की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। एक मिट्टी के पात्र में लोबान जलाएं और उसको पूरे घर में घुमाएं ताकि पूरे घर में उसकी सुगंध फैले। रोज शाम को पूजा करने के बाद अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में अशांति से बचें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर बार बार नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती हो, आपको बार बार नजर लग जाती हो या बार बार बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो नियमित रूप से रोज नहाने के बाद अपने शरीर पर और अपने कपड़ों पर अगर चंदन की सुगंध लगाएं तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल अपने ईष्ट देव को, देवी देवता को, भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: you've got a big day. So you use Unstoppable Scent Boosters to give your laundry nonstop freshness. So no matter how long the day goes, you
1: can't stop this power, this walk, this pose, this strut, this look, this talk.
0: Your clothes will be so fresh you can confidently strut into that end-of-the-day meeting like a
1: boss, boss, boss, boss, boss, boss, bosses. Let's talk business in my office.
0: Add new Unstoppables beads to your wash for 24-hour nonstop freshness so you can smell unstoppable.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
12: जिसका अनुमान गलत ना हो उसे हनुमान कहते हैं लेकिन जो दुनिया को ही गलत समझो उसे शैतान कहते हैं अगर शैतान की परिभाषा पूछी जाए तो शैतान की परिभाषा क्या है शैतान की एक ही परिभाषा है वो अपने को सही समझता सबको गलत समझता और जो केवल अपने को सही दूसरों को गलत समझे वो शैतान जो सबको सही समझे सब पर करुणा करे वो भगवान लेकिन जिसका कभी अनुमान गलत ना हो वो हनुमान हनुमान जी के अर्थ का एक नाम का एक और अर्थ जो मान से परे जो मान से परे वो हनुमान हम लोगों को एक चाह है क्या लोग हमें जाने या लोग हमें देखें या लोग हमें समझें अरे हमें हम हैं ये भाव हम हैं ये भाव आदमी आता भी अब हमने बड़े लोग देखे हैं हमेशा वो लेट ही आते हैं लेट इसलिए आते हैं ताकि लोग देखें कि हम आ गए तुम देखना अच्छा वो बीच से नहीं निकलेंगे ऐसी जगह

राम जी बोले हमारा बल कहां, बल हमारा थोड़ी है, बल तो तुम्हारा है, हम थोड़ी उड़े, उड़े तो तुम हो। हनुमान जी बोले उड़े जरूर हम दिख रहे थे, पर हवाई जहाज आपने दी। अब राम जी सोच में पड़ गए, हमने कौन सी हवाई जहाज दी? बोले वाह, आप जानते थे इतने बानर भालू गए थे खोजने, अंगद दधिमुख के हरि जामवंत, पर सबको अंगूठी नहीं दी, हमको ही दी। इससे हम समझ गए कि हम अपने बल से लंका नहीं गए, आपके प्रताप के कारण, अंगूठी के बल के कारण। अच्छा अंगूठी, हनुमान जी ने अंगूठी कहां रखी? कहां रखी? मुख में। जलधि लांध गए अचरज प्रभु मुद्र का मेली मुख, तो अंगूठी कहां रखी? मुख में। अच्छा ये मुख में क्यों रखी? बगल में लगा लो अंगूठी, हाथ में रख लो, पहन लो। हनुमान जी बोले हम पहन इसलिए नहीं सकते, भगवान की तो हमारी क्षमता ही नहीं पहनने की। कई शिष्यों से ऐसे होते हैं जो गुरु की गद्दी पर देखते ही देखते बैठ जाते। नेताओं में ये ज्यादा चलता है, छोटे नेता चाहते ही है कि बड़ा नेता खिसके तो हम बैठे। अधिकारियों में भी ये होता है कि बड़ा अधिकारी जल्दी साइड होवे ताकि हम बैठे। लेकिन धन्य हनुमान जी, क्या अद्भुत मर्यादा। हनुमान जी ने मुद्रिका पहनी नहीं, रखी नहीं, कहां रखी? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांध गए अचरे। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। मुख में क्यों रखा? पूछो क्यों रखा, जोर से पूछो, ध्यान से सुनो। मुद्रिका में लिखा राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में लिखा राम और हनुमान जी संकेत देना चाहते कि राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए। मुद्रिका को मुख में रखने के पीछे ये लॉजिक है कि राम नाम को तो मुख में ही रखना चाहिए, राम ना होता तो कहीं और रख लेते, पर उसमें राम है तो राम नाम को तो मुख में ही रखना। अच्छा राम नाम को मुख में क्यों रखना चाहिए? ये भी बड़ी विचित्र बात, क्यों रखना चाहिए? पूछो क्यों, जोर से पूछो। आपके पास दो कमरे हो और दोनों में अंधेरा हो, दिया एक हो। दो कमरे हो दोनों में अंधेरा हो और दिया एक हो, इतने में मेहमान आ जाए। अब बताओ अपने कमरे में तुम दिया रखोगे तो मेहमान अंधेरे में रहेगा, और मेहमान के या कमरे में दिया रखोगे तो तुम अंधेरे में रहोगे, और यदि तुम अंधेरे में रहोगे तो कहीं सिर लगेगा कहीं हाथ। अब दोनों कमरों में उजाला हो जाए, ऐसा क्या किया जाए? क्या किया जाए? देहरी पर रख दिया जाए। किस पर रख दिया जाए? दरवाजे की देहरी पर। तो इधर भी उजाला जाएगा, उधर भी उजाला जाएगा, तुम भी अंधेरे में नहीं रहोगे, मेहमान भी अंधेरे में नहीं रहेगा। तो राम नाम है दीपक। क्या है? राम नाम है दीपक। और यदि तुम राम नाम को मुख पर रखोगे तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार। राम नाम रूपी दीपक को मुख में रखो, मुख में रखोगे तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। तो धन्य हनुमान जी, हनुमान जी ने मुद्रिका को कहां रखा? मुख में रखा। क्यों? उसमें राम लिखा और राम को तो हमेशा मुख में ही रखना चाहिए। बोले क्यों? छड़ भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली है। इसलिए राम नाम मुख में रखना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म महात्मा जतन कराते पर अंत में राम नहीं कहे आता, ऐसा संभव नहीं है। बोले क्यों? काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष ये परेशान करते तो अंत में राम नहीं कही आता, और जो राम मुख से नहीं कह पाता वो किसी काम का। और संत कहते भैया अंते यामति सागति, अंत में आपकी जैसी मति होगी गति भी वैसी ही होगी। इसलिए राम राम राम राम राम राम राम जे सुमरण करही, जो भगवान नाम का सुमरण करेंगे
तो नर बिना किसी प्रयत्न के भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने राम नाम

0: कीर्तन का संकेत देने के लिए मुद्रिका को कहां रखा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जल धिलांधे गए अचरज नाही। इसी चौपाई पर दूसरा उदाहरण सुनो। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, मुख में मुद्रिका रखकर हनुमान जी समुद्र पार भये। अच्छा, समुद्र को कहते सागर, क्या कहते? सागर। और जीवन को भी भवसागर कहते हैं। समुद्र को कहते सागर और जीवन को भी भवसागर कहते। और कितना अच्छा सूत्र हनुमान जी ने लंका आने पे दिया कि यदि मुख में राम नाम लेकर के हम उड़े तो वो सागर पार हो गए, और यदि हम जीव राम नाम मुख में रख करके चले तो भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर पार हो जाएंगे, ये हनुमान जी का संकेत है। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जल धिलांधे गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज लंका आ गए, कहां से आए? बोले राम नाम को आधार बनाकर हनुमान जी लंका आए। लेकिन हनुमान जी लंका आए तो अब लंका में कैसे आना चाहिए, जरा ये भी सुन लो। हम श्रीलंका में बैठे, यहां कैसे आना चाहिए, आप लोग यहां रहने वाले भी सुने और श्रीलंका वाले भी सुने। श्रीलंका में जितने रहते तुम्हारे काम की बात, सुनो कैसे आना चाहिए। हनुमान जी जैसे ही लंका आए तो डायरेक्ट लंका नहीं देखी, फिर क्या किया, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी और कहीं ना जाए अति दुर्ग विषेही। हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा तो किसी ने हनुमान जी से पूछा ऊपर पर्वत पर बैठकर क्या देख रहे? बोले लंका। तो किसी ने कहा हनुमान जी से लंका क्यों देख रहे हैं? बोले लंका को ऊपर से ही देखनी चाहिए, नीचे से नहीं। तो किसी ने कहा अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए देख रहा है? बोले नहीं नहीं दूर से ही, डिस्टेंस मेंटेन। क्यों? बोले यहां सोने की चमक है और सोने की चमक को यदि नजदीक से देखोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए राम जी बड़े चतुर हैं। राम भगवान राम मनुष्यों को नहीं ले आए लंका, वानरों को लाए। क्यों? क्योंकि यहां गोल्डन हाउस थे। राम जी को पता था कि वानरों की जगह यदि मनुष्यों को लाया जाएगा कहीं रावण ऑफर कर दे 1-1 गोल्डन हाउस 3 BHK गिफ्टेड 2 BHK 3 BHK गिफ्टेड 4 सब पार्टी बदल के रावण की तरफ हो जाते तो रावण बहुत रावण बुद्धिमान तो था ही, ऐसा कर सकता। इसलिए राम जी किसको लाए? वानरों को लाए। इनको गोल्डन हाउस से कोई लेने ही देना। और हनुमान जी को तो बिल्कुल ही, सबसे पहले किसको भेजा? हनुमान जी को। हनुमान जी को गोल्ड से लेने ही देना नहीं। बोले क्यों? बोले कंचन वरन विराज वो खुद गोल्डन है, इसलिए मिठाई वाला मिठाई से कम आकर्षित होता है। तो हनुमान जी को ही पहले नंबर पे भेजा। बोले क्यों? बोले हनुमान जी खुद गोल्ड है। बोले कैसे? कंचन वरन कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का खुद का रंग गोल्ड की तरह है, तो रावण की गोल्ड का क्या करेगा? तो हनुमान जी कहां कैसे आए लंका में, जरा देखो। लंका में आने का काम, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी और कहीं ना जाए अति दुर्ग विषय की। हनुमान जी ने ऊपर से चढ़कर लंका को देखा। अच्छा लंका है कैसी? अरे बोले पूछो मत, गजब की लंका है, चारों तरफ चमक रही है। अच्छा चमक धमक में फंसना नहीं चाहिए, हनुमान जी ये कह रहे हैं, चमक धमक में फंसना नहीं चाहिए। अच्छा कितना गजब का सूत्र है यहां भी, एक और पूछो क्या? जोर से पूछो
1: क्या?
0: देख रहे लंका, आए लंका में। लंका में कैसे आए हनुमान जी? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जय तय अग्न जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख वै देही हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। लंका में हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा गए कैसे? बोले जैसे ही ऊपर से लंका को देखा प्रवेश करे तो प्रवस नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा, फिर लंका में प्रवेश किया। मतलब सीधा सा उदाहरण है, सूत्र बहुत बढ़िया है कि यदि माया रूपी लंका में आना है तो मन में राम जी को रखो बाहर, अंदर मायापति को रखो बाहर माया रखो। ये संकेत है। और कितना अच्छा संकेत, श्रीलंका में रहने वाले लोग भी सुनो कान खोलकर, अंदर मायापति को बैठा लो, बाहर खूब माया रहने दो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बोलो सीताराम।

0: हनुमान जी महाराज राम जी को हृदय में रख करके लंका में प्रवेश करते। लंका में यत्र तत्र सर्वत्र श्री हनुमान जी जाते, सब जगह हनुमान जी देखते, यहां देखते वहां देखते इधर देखते उधर देखते। लेकिन आचार्य जी एक बात याद रखना, हे हनुमान भक्त ध्यान से सुनना पागलो, लंका में भी हनुमान जी माया की नगरी में स्वर्ण की नगरी में खोज किसकी कर रहे? बोलो बोलो। हाँ, लंका में भी खोज किसकी है? भक्ति की है। और कितना अच्छा सिद्धांत है। हम आज सुबह जब बैठे बैठे लिख रहे थे तो हम यही मन में सोच रहे थे लिखते लिखते कि भाई हनुमान जी लंका आए तो हनुमान जी ने जो है भक्ति की खोज की, और हम भी लंका आए पर हम तो हनुमान जी के छोटे से भक्त हैं, हम क्या खोजें। तो हमने सोचा हनुमान जी ने लंका में भक्ति को खोजा तो हम यहां भक्त को खोज ले। तो हनुमान जी का संकेत है कि लंका में भी आने पर शंका मत रखो, डंका बजाओ। किसका? राम नाम का। बोलो बोलो बोलो किसका? रावण के राज्य में रहकर रावण के सामने भी हनुमान जी महाराज झुके नहीं। हनुमान जी महाराज झुके नहीं, विनम्रता उनका गुण रहा। अच्छा, विनम्रता गुण होना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, लेकिन विनम्रता को कोई कमजोरी समझ ले ये मूर्खता है। भाई कोई हाथ जोड़े, ये हमारा भाई संस्कार है, विनम्रता हमारा गुण है, लेकिन उसको ही कोई कमजोरी समझ ले कि बड़ा कमजोर आदमी तो मूर्ख है, इधर से दिया जाएगा 3200 फेंक जाएंगे। है भाई विनम्र है, कमजोर थोड़ी है, तो विनम्र होना चाहिए, कमजोर। तो धन्य वीर बजरंग बली, लंका की खोज में भक्ति को खोजा, लंका की यात्रा में भक्ति को खोजा मेरे पागलो। ये हनुमान जी से सीखना है कि हम लंका में भी भक्ति को खोजें। तो जब भी हम संसार में रहें, जब भी आए भारत के लोग यहाँ आए तो हम यही कहेंगे, हमारी प्रार्थना है ये माइंड सेट करके आए कि हम यहाँ भक्ति और भक्त की खोज में आए। हमारे राम जी ने किया क्या? हमारे राम जी ने लंका और भारत के बीच में एक पुल बनाया। अच्छा, उसको कहते हैं राम से, कुछ लोग पूछते हैं ये राम सेतु क्या है? राम सेतु अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए कि राम सेतु क्या है, राम से, राम से, यही राम सेतु, यही राम सेतु। तो भारत से श्रीलंका के बीच में राम जी ने क्या बनाया? अच्छा, राम सेतु बना कैसे? पत्थरों से। और पत्थर एक पत्थर था क्या? अनेक पत्थर जुड़े तब सेतु बना। और कितना अच्छा संकेत है कि मनुष्य मनुष्य से जब जुड़ेगा तो मानवता का सेतु बनेगा। है, ये राम जी का संकेत है। राम सेतु का अर्थ क्या? जोड़ने का अर्थ है। तोड़ने का अर्थ राम सेतु नहीं है, जोड़ने का अर्थ है। लेकिन वो जुड़े कैसे? राम से जुड़े कैसे? राम के कारण पत्थर, अनेक पत्थर जुड़ गए, जुड़ गए तो पुल बन गया। ऐसे ही श्रीलंका में होना चाहिए। यहां बैठे हुए हम लोगों से भी कहेंगे, हमारी बात को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जब मानवता मानवता से जुड़ेगी, भारतीय संस्कृति और श्रीलंका की संस्कृति आपस में जुड़ेगी, जब भेदों को मिटाकर अभेद हो जाएंगे, जब हम लोग ऊपर उठ करके देखने की दृष्टि रखेंगे और ये भेद मिटाएंगे, तो हमें लगता त्रेता युग में राम सेतु बना था, अब इस युग में कलयुग में मानव सेतु बनाया जाए, मानवता का एक सेतु बनाया जाए। और मानवता का सेतु बनेगा। आहा, अच्छा मानवता का सेतु क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो, और जोर से पूछो। मानवता का सेतु है प्रेम का। काहे का? प्रेम का। अच्छा, व्यक्ति आज वर्तमान में, वर्तमान का आदमी है तो तुम चाहे जैसे रहो हम खुश रहे, बगल वाले की कुर्सी छुड़ा के जबरदस्ती बैठ के धक्का दे के लाइन तोड़कर उसे जल्दी चाहिए, पहले चाहिए, बगल वाला भले ही मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, चाहे जो हो जाए उससे उसे कोई लेना नहीं, उसे अपने से लेना नहीं। अच्छा, दानव मानव और देवता, इनका यदि निरूपण किया जाए, व्याख्या की जाए कि दानव मानव देवता कौन है, तो जो केवल अपने लिए सोचे वो है दानव, जो केवल अपने लिए सोचे वो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचे वो है मानव, लेकिन जो केवल दूसरों के लिए सोचे वो है देवता। तो तीनों अंदर ही है, कहां है? दानव, मानव और देवता अंदर है। अब विचार खुद ही कर लो कि आप कौन हो। हम नहीं कहेंगे वरना बुरा लगेगा। बोलो सीतारा, जोर से बोलो
1: सीतारा,
0: और जोर से बोलो
1: सीतारा।
0: तो मानवता यदि फैलाई जाएगी तो राम सेतु के बाद मानव सेतु, मानवता का सेतु बनेगा, और मानवता का सेतु बनेगा तो हम एक दूसरे के साथ हिलकर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। लेकिन उसका सिद्धांत वही है, माइंडसेट लाइफ सेट। उसके लिए भी माइंडसेट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? माइंडसेट की आवश्यकता। हनुमान जी वाला माइंडसेट चाहिए। किस वाला? जो लंका में भी

सज्जन चीना। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को समझ लिया, यही सज्जन है। विभीषण ने हनुमान जी को समझ लिया। अच्छा, सज्जन के लक्षण क्या? राम राम तेहि सुमरन कीन्हा। कब? प्रात काल।

हम बोल रहे हैं विभीषण जी, बहुत बढ़िया। सज्जन कौन है? सज्जन वो है जो कभी स्वप्न में भी दूसरों का बुरा ना चाहे, वो सज्जन। और दुर्जन कौन? जो कभी किसी का अच्छा ना चाहे, वो दुर्जन। अच्छा, हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी। हाँ हाँ, उन पे गाड़ी क्यों आ गई, उनका मकान वहां क्यों, जैसे हम ही हैं। कई लोग भारत में इसी बात में टेंशन, ले बाबा श्रीलंका पहुंच गया, श्रीलंका गाय को पहुंच गया, कुछ गए बाबा घूमता ही रहता है, प्रवचन ही देता रहता है, यही करता रहता है, वही करता है, कन्या विवाह ही कराता रहता है, कैंसर हॉस्पिटल ही बनवा, ये करता रहे। अरे भाई, तुम क्यों जले मरे जा रहे, तुम क्यों भूंगे जा रहे, तुम भी तो कुछ करो। हम श्रीलंका आए, तुम लंका आ जाओ, ज्यादा दिक्कत है, तुम लंका पहुंच जाओ पुरानी समुद्र के थ्रू। हम उड़ के आए, तुम पानी के थ्रू आ जाओ, आ तो जाओ पर। लेकिन नहीं, इसलिए व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी नहीं है, सुख से दुखी। और उसको दुख सबसे ज्यादा, अपने दुख से कम है, दूसरों के सुख से ज्यादा, इसलिए आदमी परेशान। आपसे हम यही कहेंगे, एक माइंड सेट बनाओ। पूछो क्या, जोर से पूछो। एक व्यक्ति हमें मिला, बोला जूते नहीं, तो हम कहा रो क्यों रहे, बोले जूते नहीं। हमने कहा पहन तो रखे, बोले कंपनी के नहीं। अरे हम कहा भाई क्या पागल आदमी है, तुम जूते के लिए रोते, वो भी कंपनी के, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, इतने जूते पड़ेंगे बाल उखड़ जाएंगे, एक बाल नहीं बचे। अरे बोले वो जूते नहीं, कह रहे पहनने वाले। हम पहने पहनाए मिलेंगे, तो थोड़ा सा उसे बुरा लगा। हम कहा बुरा मत मानो, चलो एक जगह, एक जगह हम ले गए, एक व्यक्ति बैठा था, उसने हमको देखा, हाथ जोड़े, आओ गुरुजी आओ आओ, मुस्कुराकर स्वागत किया, हमने भी आशीर्वाद दिया। हम कहा देखो तुम इसलिए रो रहे कि जूते नहीं है, उधर देखो पैर ही नहीं, फिर भी हंस रहे। हम लोगों की यही आदत है, अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। और सुखी रहने का यही मंत्र है, अपने बड़ों, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, यदि तुलना करनी है तो अपने छोटे से करो, छोटे से करोगे तो सुखी रहना प्रारंभ कर दोगे।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ballgame.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio, or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
6: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
9: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
5: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
11: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
5: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
12: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
13: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
13: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
9: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
16: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
17: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
5: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
5: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
19: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
5: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक कर
20: तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
7: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
21: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
22: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
23: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। टीकरी बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूल माला पहनाकर हुआ उनका स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा। बाबा भोले के भक्तों का रामन लंगर साइट पर हो रहा इंतजार, देश भर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। पीएम मोदी और जापान के पीएम आज मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 35,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। जा सकती है पीएमसीएम की कुर्सी, संविधान संशोधन विधेयक पे जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक, सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लुढ़का तापमान, कम हुआ भीषण गर्मी का असर। हरियाणा राजस्थान के लिए राहत की खबर आई सामने, अगले 2 दिन में दस्तक दे सकता है मानसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने में जुटे। मुंबई के उपनगरों में भी जोरदार बारिश, पालघर, रायगढ़ और ठाणे में हुई बारिश। मुंबई में बारिश के मौसम में हादसों से बचाव की अपील, बारिश के दौरान जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की दी जा रही है सलाह। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के डोडा और भलेसा में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील, कहा भूस्खलन वाले इलाकों में ना जाए लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के कोरागबल गुरेज में फटा बादल, नदी में आया सैलाब। बादल फटने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, नदी नाले किनारे जाने पर लगाई रोक। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को दी पवित्र यात्रा की बधाई, कहा यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार कुल 57 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की यह पवित्र यात्रा, 28 अगस्त को होगा इसका समापन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु है शामिल, उपराज्यपाल ने दी इसकी जानकारी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह हो रहा है श्रद्धालुओं का स्वागत, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा, यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित। बालटाल स्थित अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास दिखा हिमालयी भूरा भालू, खाना खोजते नजर आया भालू, लोगों ने बनाया उसका वीडियो। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे श्रद्धालु, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और आरएफआईडी कार्ड प्रक्रिया जारी। जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप, श्रद्धालु के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे का भी किया गया है इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर की है जांच, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी की जा रही है निगरानी, आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल भी की गई। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री ताकायची पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, सैन्य सम्मान के साथ किया वेलकम। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री करेंगे मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का उद्घाटन, भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी इससे मजबूती। खरखौदा प्लांट से सालाना 10 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, करीब 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रहा है अत्याधुनिक प्लांट। सौ प्रतिशत ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस होगा मारुति का यह नया प्लांट, खरखौदा संयंत्र पूरी तरीके से नवीनीकरण बिजली पर संचालित होगा। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम, एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करोड़ों की कमाई। फिल्म भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी, प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार संग एक और नई फिल्म की डील की कंफर्म। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान आया सामने, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे हैं प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन के भीतर 130 करोड़ रुपए का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फैंस की ट्रोलिंग पर खुलकर बोली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, कहा आलोचना को दिल से लगाने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लें। चीन के शांक्सी प्रांत में गर्मी से राहत के लिए इमारतों पर लगाया गया है खास मिस्टिंग सिस्टम गर्मी से निपटने का अनोखा तरीका। स्प्रिंकलर और मिस्ट के फुहारों से सड़कों का तापमान किया जा रहा है कम, जिससे लोगों को मिल रही है गर्मी से राहत। भीषण गर्मी के बीच चीन ने शहरों को ठंडा रखने के लिए हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम का की है शुरुआत। इन दिनों चर्चा में शांक्सी प्रांत में मिस्टिंग सिस्टम से इमारतों और आसपास के इलाकों को ठंडा रखने के पहल तकनीक के लोग कर रहे हैं तारीफ। चीन में स्प्रिंकलर और कूलिंग मिस्ट सिस्टम के जरिए गर्मी का असर हुआ है कम, गर्मी भगाने का स्मार्ट समाधान। हांगकांग की वापसी के 29 साल पूरे होने पर आसमान में 2026 ड्रोन ने शानदार शो किया पेश, स्पेस थीम वाली आकृतियों ने दर्शकों का जीता दिल। हंग होम न्यू वाटर फ्रंट पर 2026 ड्रोन की रोशनी से रात का आसमान जगमगा उठा, ये शो हांगकांग की एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ती ताकत का बना प्रतीक। 29वीं वर्षगांठ के जश्न में ड्रोन शो ने तकनीक और कला का अनोखा संगम पेश किया, हजारों दर्शकों ने इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। स्पेस थीम वाले ड्रोन फॉर्मेशन ने हांगकांग की तकनीकी प्रगति को दुनिया के सामने पेश किया, भविष्य की उड़ान का दिया संदेश। 2026 ड्रोन की सिंक्रोनाइज्ड उड़ान रात के आसमान को रंगों से भर दिया, जश्न में सराबोर दिखे लोग।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं

से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ
ताकि बवासीर को हमेशा

0: हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। टीकरी बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूल माला पहनाकर हुआ उनका स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा। बाबा भोले के भक्तों का राममन लंगर साइट पर हो रहा इंतजार, देशभर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री आज मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 35,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। जेल में रहने पर जा सकती है पीएम सीएम की कुर्सी, संविधान संशोधन विधेयक पे जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल।

मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की अमर कहानी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की कुछ तस्वीरें। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के अमरनाथ यात्रा साल 2026 के पहले जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बम बम भोले के जयकारों के बीच 4,822 तीर्थयात्रियों का जत्था 259 गाड़ियों में सवार होकर आज तड़के कश्मीर घाटी रवाना हुआ। सुरक्षा के लिए 670 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचकर यात्रियों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्था पर संतोष जताया और यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी दिखाया। देखिए, इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लगातार GNT पर हमने आपको दिखाए भी है और ये भी बताया कि इस बार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी पर न मार सके। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों की निगरानी के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 670 कंपनियां तैनात कर दी गई है खासतौर पर। और इस बार अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो 57 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। ये 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से शुरू होगी और 28 अगस्त को इसका समापन होगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं श्री अमरनाथ धाम की अमर कहानी। अमरनाथ की पावन गुफा अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों के बीच है। इसके बावजूद अनादि काल से ही श्रद्धालु यहाँ पर आते रहे हैं और भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप का दर्शन करते रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि अमरनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं में इतनी गहरी आस्था आखिर क्यों है। दरअसल भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इसी पवित्र गुफा को चुना था और पहलगाम के रास्ते गुफा में जाने के दौरान वो 7 पड़ावों पर रुके थे। इन 7 पड़ावों का अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक महत्व है। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम इसी गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को आपके लिए डीकोड करने जा रहे हैं।

0: कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी, और इसी घाटी में स्थित है बाबा बर्फानी का अनादिकालीन गुफा। और सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता सकरा लेकिन लंबा रास्ता, फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहां बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और श्रम साध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश सजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के सातवें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुण से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। ये गूढ़ बात यह है कि जीव ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा हुआ है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिजड़े में और बंदर मदाड़ी के बंधन में फंसे रहते हैं। माया की महिमा ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है, और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को जो अमर कथा सुनाई, उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा हुआ है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच यात्रा के जो सात पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के सात रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है।
1: तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में जो सात अहम पड़ाव पड़ते हैं, उनके गूढ़ रहस्य आखिर क्या हैं। दरअसल हर एक पड़ाव पर कुछ ना कुछ त्याग का संदेश भगवान भोले ने अपने भक्तों को दिया है। जो लोग वाकई मोक्ष प्राप्ति की साधना में जुटे हुए हैं, उन्होंने इस गूढ़ रहस्य को डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा।

0: आध्यात्मिक महत्व अत्यंत रहस्यमय और विस्मयकारी है। माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने क्यों कश्मीर घाटी के इस दुर्गम स्थान को चुना और क्यों वो माँ पार्वती के साथ पहलगाम के रास्ते सात पड़ावों से होकर पवित्र गुफा तक पहुँचे, इसकी कहानी आपके अंतर मन में जन्म जन्मांतर से संचित प्रारब्ध कर्म से मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली है, बशर्ते आप उन पड़ावों में मौजूद संकेतों को मनोयोग से समझने की कोशिश करें। ये कहानी समझने के बाद ही आप अमरनाथ यात्रा के वास्तविक लाभों के अधिकारी हो पाएंगे। दरअसल भगवान शिव इन विशिष्ट पड़ावों पर पहुंचकर संकेत रूप में कुछ चीजों का त्याग करते जाते हैं, मानो दुनिया को ये संदेश दे रहे हों कि मनुष्य जब तक संसार के इन बंधनों में फंसा रहेगा उसे अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा।
1: देखिए, अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, लेकिन उसके पहले भगवान शिव ने बहुत सारे पड़ावों को पार किया और उन पड़ावों को पार करने के बाद उन्हें अमरत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई।
0: तो समझते हैं अमरनाथ यात्रा के सातों पड़ाव के आध्यात्मिक महत्व को। जिस रास्ते भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पवित्र गुफा तक पहुँचे उसका पहला पड़ाव है पहलगाम, जो श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के पहले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी का त्याग कर दिया। यहाँ नंदी का सांकेतिक अर्थ जीवन यात्रा के दौरान सांसारिक वस्तुओं पर निर्भरता से है। अगर आपको अंतर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करना है तो सबसे पहले आपको सांसारिक वस्तुओं जैसे घर बार, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर जैसे साधनों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। इन पर निर्भरता जब तक रहेगी भगवत प्राप्ति की अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है चंदन बाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। चंदन बाड़ी में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर दिया। मस्तक भाल का मतलब है दिमाग। हमारा दिमाग अहंकार से भरा रहता है। भोग विलास की वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी अहंकार इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और दिमाग में अहंकार जब तक लेश मात्र भी शेष है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए चंदनबाड़ी में मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर भगवान ने दूसरे पड़ाव में अहंकार त्यागने का गूढ़ संदेश दिया।
1: तो अमरनाथ की यात्रा के जो ये अलग अलग पड़ाव हैं, ये दरअसल ये बताते हैं कि जीवन में सब कुछ छोड़ करके, किसी भी तरह की शुभ और अशुभ इच्छा को त्याग करके जब आप साधना के मार्ग पर चलेंगे तब आपको अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी।
0: चंदनबाड़ी से आगे की चढ़ाई चढ़ने के 4 किलोमीटर बाद आता है पिस्सू टॉप। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवासुर संग्राम में महादेव की कृपा से देवताओं ने जब असुरों को परास्त कर दिया तो राक्षसों के शवों का अंबार लग गया। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में मौजूद पिस्सू टॉप उन्हीं राक्षसों के शवों से निर्मित हुआ है। इस लिहाज से पिस्सू टॉप का संबंध मनुष्य के मन में सदैव पलने वाले मनोविकारों से है। सांसारिक साधन और अहंकार त्यागने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे विकार मन से नहीं निकलते। ये विकार मनुष्य की मोक्ष यात्रा के सबसे बड़े शत्रु हैं। पिसू टॉप में भगवान शिव ने हमारे मन में अनादिकाल से घर किए इन्हीं षड विकारों को त्यागने का संदेश दिया है।
1: मानव के जीवन की जो वासनाएं हैं वो उसे पिस्सुओं की तरह परेशान करती हैं, उसके मन की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो पिस्सू टाप में भगवान शिव ने त्याग दिया इन अनंत इच्छाओं को, इन अनंत कामनाओं को।
0: पिस्सू टॉप से आगे बढ़ने के 8 किलोमीटर बाद आता है शेषनाग। शेषनाग यानी सर्प, सांप। शेषनाग के मर्म को समझने के लिए आपको अपनी मेधा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक त्याग का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल भारत के कालजयी आध्यात्मिक ग्रंथों में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इसके लिए कुंडलिनी जागरण को सिद्ध साधन बताया गया है। मान्यता है कि कुंडलिनी हमारे शरीर के मूलाधार में सर्प रूप में स्थित है। अगर किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसके भीतर से जन्म मृत्यु का भेद मिटने लगता है, मृत्यु के बाद की दुनिया का मर्म समझ में आने लगता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद इंसान की अशुभ ही नहीं शुभ इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं।
1: और शेष नाग में जब भगवान शिव पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मुक्ति और मोक्ष को भी त्याग दिया, क्योंकि कोई भी इच्छा आपको ईश्वरत्व तक नहीं पहुंचा सकती है। और विद्वानों का कहना है कि मुक्ति और मोक्ष की कामना भी एक कामना है, उस कामना को भी त्यागना पड़ता है। यानी जब आपका मन शून्य हो जाता है, जब आप मुक्ति मोक्ष तक की कामना त्याग देते हैं, तब आपके अंदर ईश्वरत्व आता है।
0: शेषनाग से आगे बढ़ने पर 4-5 किलोमीटर बाद आता है महागुड़ पर्वत। पहलगाम से अमरनाथ के रास्ते में आने वाला महागुड़ पर्वत 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इस आध्यात्मिक यात्रा का उच्चतम शिखर है, साथ ही अत्यंत अहम पड़ाव भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का भी त्याग कर दिया। गणेश जी का त्याग कर भगवान भोले ने भगवत प्राप्ति में लगे साधकों को यह संदेश दिया कि ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार का भेद जब तक मन से नहीं मिटेगा परम प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने परिवार और बाकी जगत का भेद जब मिट जाता है तो वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन का साक्षात्कार होने लगता है। छांदोग्य उपनिषद के सूत्र सर्वम खलिदम ब्रह्म यानी कणकण में परमात्मा का वास है, मन में इसका भाव प्रकट होने लगता है। महागुड़ पर्वत से 6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आती है पंचतरणी। पंचतरणी की मनोरम प्राकृतिक छटा मन को मोहने वाली है। यहाँ 5 नदियों का मनोहारी संगम है और अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहले का आखिरी पड़ाव भी यही है। 5 नदियों के संगम पर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी का भी त्याग कर दिया। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों क्षितिजल पावक गगन समीरा से मिलकर बना है। पंच महाभूतों के त्याग का मतलब है शरीर और आत्मा के फर्क को समझ लेना। गीता में भगवान कृष्ण ने परम संदेश दिया है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अविनाशी है। जिस वक्त
2: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, and that'll be me. Maura Jones.
4: With a diamond implied, you don't let her.
3: And Daniel Caesar.
5: Have a baby with me.
3: Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: पर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: देखिए आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से आज तड़के चला तीर्थयात्रियों का जत्था पवित्र गुफा जाने के लिए कश्मीर के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। देखिए हम आपको इस वक्त तीन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं। रास्ते में जगह जगह तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। बम बम भोले के जयघोष के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना होकर चंदरपोर्ट और टीकरी बेस कैंप तक पहुंच भी चुका है। वहीं पंथा चौक पहुँचने पर भी तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रियों के जत्थे के आज दोपहर बाद पहलगाम पहुँच जाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज तड़के ही जो पहला जत्था है अमरनाथ यात्रा के लिए उसे रवाना कर दिया गया और जैसे जैसे ये जत्था आगे बढ़ रहा है उनका सम्मान किया जा रहा है और खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं और इसीलिए इस बार की अमरनाथ यात्रा काफी खास होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। टिकरी बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूल माला पहनाकर हुआ स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। बाबा भोले के भक्तों का रामबन लंगर साइट पर हो रहा है इंतजार, देश भर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री आज मारुति सुजुकी के खरखोदा प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 35,000 करोड़ का होगा निवेश, 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा इससे रोजगार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक, सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में भर गया पानी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, एमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लुढ़का तापमान, कम हुआ भीषण गर्मी का असर। हरियाणा राजस्थान के लिए राहत वाली खबर, अगले 2 दिन में दस्तक दे सकता है मानसून। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को दी पवित्र यात्रा की बधाई, कहा यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम मार्ग पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार कुल 57 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा, 28 अगस्त को होगी संपन्न। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम, एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करोड़ों की कमाई की। भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय और प्रदर्शन की जोड़ी, प्रदर्शन ने अक्षय संग एक और नई फिल्म की डील की कंफर्म। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन के भीतर 130 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। फैंस की ट्रोलिंग पर खुलकर बोली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, कहा आलोचना को दिल से लगाने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात, 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए मिलेंगी उड़ान, 15 जून से शुरू हुई थी सेवाओं की यात्रा। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से 2 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का किया ऐलान, अयोध्या काशी रामेश्वरम समेत कई तीर्थों पर जा सकेंगे भक्त। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले, 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और कार्रवाई के लिए आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी स्पेशल टास्क फोर्स, डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की घोषणा। न्यूयॉर्क में 38 फीट लंबे टी रेक्स गस का कंकाल नीलामी में रखा जाएगा, इसकी कीमत 20 से 30 मिलियन डॉलर रखी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गस अब तक मिले सबसे बड़े और सबसे पूर्ण टी रेक्स कंकालों में से एक है, इसकी लंबाई 38 फीट है और ऊंचाई है 12.5 फीट। चीन के शांक्सी प्रांत में गर्मी से राहत के लिए इमारतों पर लगाया गया है खास मिस्टिंग सिस्टम, गर्मी से निपटने का अनोखा तरीका निकाला। स्प्रिंकलर और मिस्ट की फुहारों से सड़कों का तापमान किया जा रहा कम, जिससे लोगों को मिल रही राहत। हांगकांग की वापसी के 29 साल पूरे होने पर आसमान में 2026 ड्रोन ने शानदार शो किया पेश, स्पेस थीम वाली आकृतियों ने दर्शकों का दिल जीता।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
4: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दिल्ली में आ गया है मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कहा कई दिन से प्री मॉनसून की गतिविधियां भी सक्रिय थी। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटे में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। जापान के प्रधानमंत्री ताइकाची का पीएम मोदी ने किया शानदार स्वागत, राष्ट्रपति भवन में समारोह, भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार। चीन में गर्मी को मात देने का अनूठा तरीका, शंघाई में पूरे शहर में लगाए गए स्पेशल कूलिंग सिस्टम, स्प्रिंकलर से तापमान कम करने की कोशिश की जा रही। भूत बंगला के बाद फिर से लौटेगी अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी, नवी फिल्म के लिए लॉक हुई डेट।

0: तो चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की, जिसकी एंट्री आखिरकार दिल्ली में हो गई है। और दिल्ली वाले जैसे ही आज सुबह घर से बाहर निकले, सुहाने मौसम में उनका मूड सेट कर दिया। आसमान में घने बादलों का डेरा था, हल्की हल्की बारिश थी और हवा में घुली एक खुशनुमा ठंडक का एहसास था। तो कुछ ही देर में दिल्ली और NCR के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया और बादल जमकर बरसे। गर्मी से परेशान दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक्टिव है, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं गुजरात के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। राजस्थान में भी अगले कुछ घंटों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है। तो देश भर में कैसी मॉनसून है ये आप देख ही रहे हैं अलग अलग तस्वीरें।
1: जो 30 से 31 डिग्री का तापमान होता था, आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक गया हुआ है और इसीलिए चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बेहद हरियाली खुशनुमा मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून एक्टिविटीज है। मॉनसून दरअसल पश्चिम यूपी और हरियाणा पंजाब के कुछ इलाकों तक पहुंचा हुआ है। ये जरूर कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में मॉनसून की दस्तक होगी और इसीलिए आज सुबह आपने देखा कि दिल्ली हो, NCR के कई सारे इलाके हों, चाहे गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, हर जगह बारिश हुई है। इतनी बारिश नहीं हुई कि कहीं पर जल जमा हो, लेकिन इतनी बारिश जरूर हुई है कि गर्मी से राहत मिली है, उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अब मौसम विभाग की जो संभावना है उसके मुताबिक बादलों का जो डेरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरे NCR के इलाके में, दिल्ली से लेकर के NCR के पूरे इलाकों में अब बादलों की दस्तक तो है, ये मौजूद हैं। और अब पूरे दिन यानी 2 जुलाई का जो दिन है, पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हो सकती है, तो गर्मी से तो आपको राहत मिलेगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ मानसून की दस्तक अगले 24 घंटे में अब दिल्ली समेत पूरे NCR में हो सकती है। और धीरे धीरे मानसून जो आगे बढ़ रहा है अगले 7 से 10 दिनों में वो पूरे भारत पर छा जाएगा। तो 2 जुलाई के दिन कम से कम अब ये जरूर है कि गर्मी से राहत मिली है, बारिश हो रही है, पूरे दिन इसकी संभावना जताई गई है। सुबह सुबह रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। तो मॉनसून जिसकी रफ्तार बेहद सुस्त थी, आमतौर पर 28 से 30 जून तक पहुंचने वाला मॉनसून अब 3 से 4 जुलाई के बीच दस्तक दे सकता है। प्री मॉनसून गतिविधियां दिल्ली समेत पूरे NCR में सक्रिय हो गई हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
0: तो देखिए, दिल्ली में मॉनसून की रफ्तार अब तेज हो गई है। ये आपने रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली में अब मॉनसून की एंट्री हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर मॉनसून पहले ही पहुंच चुका है। मुंबई में भी आज बारिश हुई है और अलग अलग जगह थी जहां पर काफी ज्यादा मौसम में बदलाव देखा गया, गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मनीष और धर्मेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले धर्मेंद्र के पास ले चलते हैं। धर्मेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए एक तरफ मॉनसून जो मुंबई में आया है गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, दूसरी तरफ थोड़ा ये बताइएगा जमीनी हकीकत क्या है, मॉनसून की वजह से जो ट्रैफिक रफ्तार धीमी हो जाती है, साथ ही सड़कों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है?
2: देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से भीषण गर्मी से मुंबईकर और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा परेशान थे और लोग रोजाना ही बारिश का इंतजार करते थे, 13 दिन बाद मुंबई में बारिश आई है, यानी कि इंद्र देवता 13 दिन बाद प्रसन्न हुए हैं और अब ऐसा प्रसन्न हो चुके हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। लेकिन रियलिटी और सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं मुंबई की जो गति है वो थोड़ी थमी है। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरीके से बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि आने वाले 3-4 दिनों तक बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होने वाली है। कभी रुकती है तो कभी बड़ी तेजी से आती है। अभी ये मध्यम गति से हो रही है। ये जिस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये ईस्टर्न हाईवे है और यहाँ पर लोगों का यातायात जो है कुछ देर पहले थम गया था क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति आ चुकी थी। फिर एक बार ये खुल गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये हाईवे। और देखिए किस तरीके से लोग फिर भी, मुंबई है, रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है, अपने अपने घरों से निकल रहे हैं अपने अपने मंजिलों की तरफ जाने के लिए। और धीरे धीरे भीषण गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन जो एक सच्चाई ये भी है कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो बृहन मुंबई महानगर पालिका में कल के दिन बारिश से जो कुछ घटनाएं घटी हैं वो वहां पर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें 45 जगहों पर पेड़ और उसकी टहनियां टूटकर गिरी हैं और लगभग 2-3 गाड़ियां हैं उनका एक्सीडेंट भी हुआ है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ देखने को मिली है लेकिन वाकई में जिस तरीके से इतनी तेजी से मूसलाधार बारिश हुई है, कहीं ना कहीं गति तो थम ही जाती है। मैं सिर्फ इस हाईवे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी सबवे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो ईस्टर्न को वेस्टर्न से, वेस्टर्न को हर्बर से जोड़ते हैं। मैं यहाँ अंधेरी सबवे की बात कर रहा हूँ, हर 2 घंटे पे वो बंद कर दिया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इसलिए क्योंकि वो ईस्टर्न को और वेस्टर्न को जोड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात को तो तकलीफ हो ही रही है। लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, वो भी अपने समय से देरी से चल रही है क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे रेलवे के स्टेशंस हैं जहां पर पानी भर जाया करता है। लेकिन ऐसा भी है कि रुक नहीं रही मुंबई, कुछ ना कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके उन पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अभी मुंबई की जो मेयर हैं रितु तावड़े, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस बार किया है ऐसा देखने को भी मिल रहा है, और साफ तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप घरों से बाहर निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो खुद की सुरक्षा जो है आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें अपने साथ ले चलें जिसमें रेनकोट, छतरी या अपने आप को और अपने परिवार को बचाने की जो चीज़ें होती हैं वो साथ लेकर चलना चाहिए। फिलहाल मुंबई रुक नहीं रही है, लगातार चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 3-4 दिन लगातार।
0: और एक और तस्वीर के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि लो लाइंग एरिया जो मुंबई के है ना, उन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है क्योंकि पानी सबसे ज्यादा वहीं पर भरता है। लौटूंगी धर्मेंद्र आपके पास, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दिल्ली के कौन से हिस्से में आप मौजूद हैं और यहां पर क्या हालात हैं? बारिश की वजह से लोग राहत तो महसूस कर रहे हैं लेकिन आवाजाही प्रभावित हुई है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं?
3: देखिए, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ, दिल्ली नोएडा की सीमा के आसपास हूँ। यहाँ पर भी रात भर अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा है उसके मुताबिक जो बारिश हुई है ये सिर्फ बौछार थी, अभी असली मानसून की जो दस्तक है, जो उसका रंग है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भारी बारिश हो सकती है दिल्ली में और NCR के इलाकों में। ट्रैफिक ज़रूर सुबह स्लो हुआ था, ITO का इलाका हो, चाहे मंडी हाउस का इलाका हो, CP का इलाका हो, बाराखंबा का इलाका हो, या फिर कुछ इलाका जो कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में आता है, वहाँ पर ट्रैफिक सुबह ऑफिस के वक्त स्लो हो गया था, लेकिन अभी वहाँ भी स्थिति सामान्य देखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि 2-3 दिन पहले जो टेम्परेचर दिल्ली का इस वक्त तक, हम खड़े हैं भी 12:15 हो रहा है, इस वक्त तक का जो टेम्परेचर था वो 41-42 डिग्री के आसपास हुआ करता था। फील लाइक सिचुएशन 50 डिग्री के आसपास थी। अभी जो तापमान है वो 31 डिग्री के आसपास है और मौसम बहुत सुहावना है, आप आसानी से बाहर टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सूर्य देवता जो आपके सिर पर चमका करते थे उनका प्रभाव फिलहाल कम दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन आज मौसम ऐसा ही रहने वाला है और आज के लिए बारिश का अलर्ट IMD ने जारी किया है। हालांकि 2021 के बाद ये पहली बार है कि मानसून अपने तय समय से लगभग 4-5 दिन लेट आया है, लेकिन ये लेट आने का प्रभाव कितना होगा, क्या उससे बारिश कम होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़ी जो दिक्कत थी, परेशानी थी गर्मी से लेकर, जो तपिश थी, उससे अब लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी है। लेकिन अच्छी बारिश, ज़्यादा मात्रा में बारिश अभी भी होना बाकी है, मौसम विभाग ने साफ साफ ये पहले ही कह दिया है।
0: चलिए ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहेगा, यानी कि दिल्ली में अभी गर्मी से और राहत मिलने वाली है। धर्मेंद्र, एक चीज बताइएगा, अभी जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा सड़कों पर स्थिति इतनी सही नहीं हुई है, ट्रैफिक रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है, जैसे कि मुंबई में कई जगह ऐसी है, अंधेरी सबवे ही अगर हम ले लें धर्मेंद्र, तो उसको काफी देर के लिए बंद करना पड़ा जिसकी वजह से रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, तो ऐसे कई जगह और भी हैं जहां पर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल सही बात कही है आपने, बहुत ज्यादा जो तकलीफ है इस मूसलाधार बारिश की वजह से वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को भी है। देखिए, मैं इस समय जहां खड़ा हूं वहां पर हमेशा ही ट्रैफिक पुलिस तैनात होते हैं, लेकिन अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं क्रॉस करने के लिए, उन्हें जलभराव की वजह से बंद कर दिया गया है और इस वजह से जो ट्रैफिक है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। हर कोई अपनी मंजिल पर सही समय पर पहुंचना चाहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चौक होते हैं, जो चौराहे होते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से काफ़ी तकलीफें जो हैं वो सहनी पड़ रही है, लेकिन ये प्रेशर, ये दबाव सिर्फ और सिर्फ इस रोड पर, सड़क पर चल रहे यातायात में ही नहीं है बल्कि दूसरी भी कई जगहों पर हैं। न केवल अंधेरी सबवे बल्कि हिंद माता चौक जो है, इसके अलावा सैन रेलवे स्टेशन, घाटकोपर रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, ऐसे तमाम लगभग 7 से 8 जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी जल जमाव हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका और उनकी जो मेयर है रितु तावड़े, जिस तरीके से उन्होंने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और ये चीज़ें देखने को भी मिल रही है कि जल जमाव तो एक आधे घंटे की बारिश में ही हो जाता है लेकिन तुरंत ही 1 से 1.5 घंटे में पंपों द्वारा उन सारे पानी को बाहर निकाल कर हटा दिया जाता है और फिर से एक बार यातायात जो है शुरू हो जा रही है। ये बहुत अच्छी इस बार हम कह सकते हैं काबिले तारीफ है। बृहन मुंबई नगर पालिका की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इसके अलावा मुंबई पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी और बेस्ट सेवा जो यहाँ पर लाल बसें चलती हैं वो भी आप तस्वीरों में देखें, लगातार यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए
0: बारिश की वजह से धर्मेंद्र लोगों को राहत तो मिली है लेकिन जाहिर सी बात है कि जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां कर रही है। धर्मेंद्र, आपका और मनीष का दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और देखिए दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मॉनसून ने यहां पर एंट्री कर ली है।
4: बिल्कुल शगुफ्ता, और जल्द ही हरियाणा और राजस्थान में भी मॉनसून पहुंचने वाला है। देखिए

0: ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून का सफर हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा भी कुछ ही घंटों में बादलों से ढक जाएगा। 48 घंटे से भी कम देर में राजस्थान में मॉनसून मन भर बरसेगा। फिलहाल उत्तर के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून टफ की मेहरबानी बनी हुई है।
1: और तो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे हम मानसून ट्रफ कहते हैं जो जब पूरा इंडिया कवर हो जाता है, तो अभी उसको सीजनल ट्रफ बोलते हैं। इन जनरल सीजनल ट्रफ एक बना हुआ है पंजाब से लेके ब्यो बंगाल तक, तो उसके क्या होता है कि नीचे तो वेस्टर्लीज होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज आती हैं, तो वो एक मानसूनल फ्लो है, तो वो बना हुआ है। उसका वर्टिकल एक्सटेंशन भी है 1 किलोमीटर तक, 0.9 किलोमीटर तक है। तो इट्स बीन पूरा का पूरा मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण आज भी ज़्यादातर हिस्से हमने कवर कर लिए। पूरा हिमालय कवर हो चुका है, पंजाब के कुछ हिस्से कवर हो गए, हरियाणा के कवर हो गए। तो आने वाले दिनों की अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो आने वाले 2 दिनों में हमारा अनुमान है जो पंजाब के ज़्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे, और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज़्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है, और साउथ ईस्ट गुजरात, साउथ ईस्ट राजस्थान भी कवर होने का अनुमान है।
0: ये जयपुर का आसमान है जहाँ छाए बादलों ने राजस्थान में मानसून के आने की मुनादी कर दी है, लेकिन पूरी तरह मानसून के छाने का इंतजार यहाँ अभी भी सबको है। मानसून पहले ही राजस्थान में 8 दिन लेट है, लेकिन अब बदला माहौल बता रहा है कि राहत के बादल ज्यादा दूर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में राजस्थान में मानसून एंट्री कर जाएगा।
2: राजस्थान में इस बार मानसून 8 दिन की देरी के बाद अगले 24 से 48 घंटों के बीच में एंटर कर चुका होगा, और ये जो मानसून है ये 13 साल बाद तीसरी बार जुलाई के महीने में एंटर करेगा, और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें ये मानसून कोटा, बारा और उदयपुर संभाग से एंटर करेगा, जिसकी वजह से वहां पे भारी बारिश हो सकती है। वहीं ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ये खत्म होते होते मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से आने वाले 3 से 4 दिन जगह जगह पे भारी बारिश के अलर्ट हैं, और साथ ही साथ में अंधड़ के भी अलर्ट दिए जा रहे हैं।
0: देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो कोंकण, गोवा और गुजरात के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

0: एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगी, उसके लिए हमारा रेड अलर्ट है। और जो साउथ वेस्ट एमपी के रीजन है वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा 2 दिन, उसके बाद सब्सिक्वेंट 1-2 दिन वहाँ भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। और बाकी हिस्सों में जितना हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट 5-6 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
1: मुंबई की बात करें तो यहाँ मानसून ने देर से आने की भरपाई करीब करीब कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरा हफ्ता इसी तरह ठीक ठाक बारिश होती रहेगी। मुंबई में जून के महीने में बारिश 50% कम हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के बारिश ने 6% का बचा कोटा पूरा कर दिया है। हालांकि जहां जहां मूसलाधार बारिश का अनुमान है वहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा के बारे में।

0: चलिए अब पवित्र अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसके लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। घाटी में भोलेनाथ के जयकारों के बीच में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया। हर हर महादेव और बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, इन्हीं गगनभेदी जयकारों के साथ शुरू हो गई है करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की सबसे पवित्र यात्रा। अमरनाथ की पावन गुफा की तरफ श्रद्धालुओं का पहला जत्था पूरे जोश और उल्लास के साथ रवाना हो चुका है। किसी के कंधे पर तिरंगा है तो किसी के हाथ में त्रिशूल आपको नजर आएगा। हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अटूट आस साफ दिखाई दे रही है। 57 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी कोई भी ढील नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा, हाईटेक निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है। आस्था, उत्साह और सुरक्षा तीनों के संग शुरू हो चुकी है बाबा बर्फानी के दरबार की दिव्य यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रामबन जिले के चंद्रकोट यात्री निवास पहुंच गया है, जहां पर जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने बम बम भोले के जय घोष के बीच श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। यात्रियों को गले में माला भी पहनाई और मुंह भी मीठा करवाया। तो देखिए, हर हर महादेव और बम बम भोले, इन्हीं गूंजते हुए जयकारों के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आस्था का ये कारवां जम्मू से आखिरकार आज रवाना हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होने से पहले भगवती नगर बेस कैंप में भक्तों का उत्साह कैसे नजर आया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील जी।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में यात्री निवास भवन के बाहर, और जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा है और कुछ श्रद्धालु यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कुछ श्रद्धालु डमरू बजा रहे हैं, कई श्रद्धालुओं के हाथ में त्रिशूल है। हम यहाँ पर सीधा श्रद्धालुओं से बात करते हैं।
2: मेरा नाम विजय कुमार, टाटा नगर झारखंड से आया हूँ।
1: कितनी प्रसन्नता की
2: और प्रशंसा और उमंग जितनी है वो कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में एक ही आशा है, एक ही मनसा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन जितना जल्दी हो सके कर सके। जी
1: एक बार भगवान भोलेनाथ का कोई भजन गाइए।

0: Mambo!
1: Baba Bhalenath ki jai! Baba Barhani ki jai!
2: तो अमरनाथ यात्रा में युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। इनका जोश देखते ही बनता है। इनसे भक्तों ने जमकर बाबा बर्फानी के जयकारे भी लगाए।
3: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जो पहला जत्था है, इनमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है। श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। इस यात्रा को लेकर देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है, और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और चेहरे पर इनके मुस्कान देखिए, प्रसन्नता की अनुभूति देखिए कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
4: दीपिका खंडेलवाल।
3: कहाँ के रहने वाले?
4: अलवर, राजस्थान।
3: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
4: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए, और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
3: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
4: मैं पहली बार आ रही हूँ।
3: देखते हैं कि जो महिलाएं हैं पारंपरिक अपने परिधान में आई, हम देख सकते हैं कि पूरे सजे धजे से आप हैं यात्रा के लिए जा रहे हैं। चेहरे पर खिली खिली मुस्कान है, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर?
5: यात्रा को लेकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ और बाबा ने बुलाया मुझे।
3: पहली बार यात्रा के लिए
5: आई हूँ।
3: तो पहले जत्थे में ही नंबर आ गया?
5: हाँ, पहले जत्थे में।
3: क्या भाव है मन में?
5: मन में है एक्साइटमेंट है भाई। हाँ यहाँ है।
3: आप में से कोई भजन गा सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का कोई भजन गा सकते हैं? जी आप बताइए आपका नाम?
6: जी किरण राठौड़ है मेरा नाम।
3: अच्छा जी, कहाँ से आप?
6: मैं जयपुर से हूँ।
3: अच्छा, क्या भाव है मन में?
6: मन में बस ये है कि थोड़ी उम्मीदें हैं, उत्साह है, और उन्हें एक नजर देखने की इच्छा है।
3: जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
6: सबसे पहले तो ये होता है कि निरोगी सुख काया होता है, कि सबसे पहले कि सभी को निरोग और सुखी रखे। दूसरी चीज ये कि जो इच्छाएं हैं, हम जिस इच्छाओं को लेकर जा रहे हैं वो सभी की इच्छाएं पूरी करें।
7: मन में बहुत श्रद्धा है बाबा के लिए, बहुत टाइम से बाबा से मिलना था, और
3: आखिरकार बुलावा।
7: हाँ आज अब बुलावा आ गया। पहली बार है, बहुत एक्साइटमेंट है बाबा से मिलने का।
8: सर भाव तो बाबा के लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
3: देख रहा हूँ आप काफी भावुक भी हो रहे हैं।
8: हाँ सर, बस बहुत मन था आने का। मैं तो बाबा को थैंक्स बोलने के लिए आ रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा। बाबा ने बिना इतना कुछ
3: मांगे ही मुरादें पूरी कर।
8: बस
7: मेरा

0: तेरे।
1: पिछली बार भी गए थे आप यात्रा?
2: मैं पिछली बार 8-9 साल।
1: क्या अनुभव रहा?
2: अनुभव ये रहा कि पिछली बार जब मैंने देखा तो मैं सोचा था मुझे दोबारा आना है, लेकिन मेरा गैप बहुत लंबा आया। अब सुन ली बाबा ने, अब आ गया,
1: बुलावा आ गया
2: बिल्कुल। और इंडिया का स्वर्ग इसलिए मैं देखना चाहता हूँ हर साल। अब आऊंगा कितनी बार मुझे नहीं पता।
1: तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे उनसे? हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन क्या मांगेंगे?
2: ये नहीं बताऊंगा,
1: ये नहीं बताएंगे।
2: ये बाबा
0: मांगे, इतना कुछ दे दिया,
1: मांगे
0: कि मन की बात सुन लेते हैं।
1: ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, श्रद्धालु जो देश के अलग अलग भागों से आए हैं, ये जो श्रद्धालुओं का समूह है, ये राजस्थान से आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं जो हैं पारंपरिक परिधान में हैं, सजे धजे आए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहे। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सभी श्रद्धालु जो है काफी व्याकुल है। तो यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है और श्रद्धालु जो है दोपहर के बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और कल ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू होगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से भी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।
3: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिल्मी फ्राइडे पर एक्शन का धमाका।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: दिल्ली में मानसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने पुष्टि की, कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें। चमोली में मानसूनी सीजन में किसी भी तरह की आपदा से निपटने की तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने की मॉक ड्रिल। टिहरी बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूल माला पहनाकर हुआ स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा।

0: बाबा भोले के भक्तों का राम बन लंगर साइट पर हो रहा इंतजार। देश भर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। पीएम मोदी और जापान के पीएम आज
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। अब समय है फिल्मी फ्राइडे की हलचल जानने का, क्योंकि कल फ्राइडे है और एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन फिल्में और वेब सीरीज आपके मनोरंजन के लिए तैयार है। और देखिए कल एक्शन से भरपूर आलिया के अल्फा सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मुकाबला हुमा कुरैशी की बेबी डू और डाई डू से भी होगा। इसके अलावा ओटीटी पर अरशद वारसी कॉमेडी और साइबर क्राइम का डबल डोज लेकर भी आ रहे हैं।
2: हाय बॉय,
3: ये कोई टाइम है घर आने का?
4: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
5: इंस्पेक्टर पेड्रो गोंसालेस, मेरे को ना मारपीट भाग दौड़ खून खराबा ये सब क्राइम की जब खुशबू आती है तब मजा आता
6: है। हफ्ते भर की थकान मिटाने और मूड फ्रेश करने के लिए इस वीकेंड कुछ धमाकेदार देखने का प्लान है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस शुक्रवार यानी 3 जुलाई को एंटरटेनमेंट का एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल डोज आपको मिलने वाला है।
7: पैसा पैसा 15 मिनट फेम का गेम, सब लेम है लेम, स्लो ए ट्रेन फासले नहीं पड़ती है, हसल की बुकिंग इन सब ने भी कर दी है, पर फिर भी स्टोरी अपनी तर दी है।
6: सिनेमा घरों से लेकर आपके फोन की स्क्रीन तक इस शुक्रवार ऐसी फिल्म और सीरीज आ रही हैं जो आपको कर देंगे एकदम तरोताजा। सबसे पहले बात करेंगे आलिया और शर्वरी स्टारर अल्फा की।
8: अब बात करें
6: एक्शन और रोमांस से भरपूर इस स्पाई यूनिवर्स में आपको एक नया अवतार देखने को मिलेगा।
2: एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था।
6: 3 जुलाई को फिल्म अल्फा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोमांस और इमोशन से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब आलिया स्क्रीन पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाती नजर आएंगी। करीब 100 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट्स हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी सीट से चिपक जाएंगे।
9: उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: लेकिन थिएटर्स में मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्योंकि आलिया को कंपनी और टक्कर देने के लिए ओटीटी की महारानी यानी हुमा कुरैशी भी आ रही है। 3 जुलाई को ही हुमा की अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ चंकी पांडे का मजेदार अंदाज, सिकंदर खेर, सीमा पावा और विद्या मालवड़े की दमदार एक्टिंग भी देखने को मिलेगी।
10: नाम बच्ची?
11: अरे मैडम वो डमशरा जो इंग्लिश
10: बेबी, अगला स्टेशन डेस्टिनेशन।
6: लेकिन अगर आप इस वीकेंड घर के सोफे से नहीं उठना चाहते तो फिक्र मत कीजिए, ओटीटी पर भी ब्लॉकबस्टर तैयारी है, क्योंकि इस शुक्रवार हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है मच अवेटेड साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो।
12: ट्रांसफर है साइबर सेल में सर।
13: ये अपने स्कूल में क्या सिखाया था? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या? नहीं तो फिर ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है? किस ने बनाया कीबोर्ड?
6: जिसमें अरशद वारसी की दमदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग के साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी की क्रिएटिविटी का तड़का भी है।
14: मोबाइल टावर हैक किया 15 मिनट में?
15: अरे सर 10 मिनट का काम था, वो आपके पुलिस स्टेशन का वाईफाई ना।
6: इस साइबर क्राइम कॉमेडी में अरशद के साथ राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी भी मौजूद हैं। साथ ही विक्रांत मैसी भी फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए आ रहे हैं।
16: जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा।
17: बैक टू क्राइम ब्रांच।
16: आई लव इट।
18: मेरे पास है, कब तक अरेंज होगा कैश?
16: 23.7 लाख जमा हो गया है।
6: इस फिल्म के जरिए राजकुमार हिरानी OTT पर डेब्यू कर रहे हैं।
3: अरे मैं क्या ट्रक लेके आऊंगा और रैंसम कलेक्ट करने को? What are you saying, man?
6: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
17: आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्वड है इनके किडनैपिंग में। Maybe he's still watching us.
0: और कल देखिए आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की अल्फा रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने किरदार के लिए की गई जबरदस्त तैयारियों की झलक दिखाई। कैसा है आलिया का ये एक्शन अवतार, कैसे इस कठिन रोल के लिए आलिया ने खुद को तैयार किया है, देखिए आलिया के एक्शन अवतार की ये इनसाइड स्टोरी।
18: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
19: से तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो।
8: अब बात करो।
20: जब किरदार चैलेंजिंग हो तो उसके साथ न्याय करने के लिए एक्टर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं।
19: मरना है? नहीं ना, तुम मार दे।
20: कुछ ऐसा ही एफर्ट आलिया भट्ट ने शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म अल्फा के लिए किया है। अब तक आए ट्रेलर और टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। आलिया का ये एक्शन अवतार उनके अब तक पर्दे पर निभाए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग, बेहद खूंखार और घातक होने वाला है।
19: रोक लो तो बात कर लो।
20: जाहिर सी बात है, जब किरदार इतना चैलेंजिंग हो तो आलिया को इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ी होगी। आलिया ने अल्फा की रिलीज से जस्ट पहले एक वीडियो पोस्ट कर अपनी मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई है। वीडियो में आलिया भट्ट फैंस को उस ट्रेनिंग की झलक दिखा रही हैं, जिसने उन्हें अपने करियर के सबसे मुश्किल रोल में ढालने में मदद की, और इसका काफी हद तक श्रेय जाता है हॉलीवुड के मशहूर एक्शन और स्टंट एक्सपर्ट जेसन नोवियेलो को, जिन्होंने आलिया को ब्लैक बेल्ट लेवल की ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही आलिया के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरू शाही ने अल्फा की शूटिंग शुरू होने से पहले लगातार 4 महीनों तक आलिया की फिजिकल स्ट्रेंथ, कोर और एथलेटिक स्टेमिना बढ़ाने पर काम किया। आलिया ने स्टाइलिश और पावर पैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के लिए मार्शल आर्ट्स सीखी, हथियारों को चलाने और उन्हें पकड़ने का सही और पेशेवर तरीका सीखा। आलिया ने वायर वर्क यानी कि हवा में स्टंट करने के लिए खूब अभ्यास किया और तेजी से मूव करने के लिए फुटवर्क पर हफ्तों तक काम किया। फिल्म में करीब 5 से 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, जिन्हें बिना थके करने के लिए आलिया को अपने स्टेमिना को चरम पर ले जाना था। इसके लिए आलिया ने फंक्शनल और एथलेटिक ट्रेनिंग ली, स्टेमिना और कोर स्ट्रेंथ के लिए बैटल रोप्स, रोइंग मशीन और बॉक्स जंप्स का खूब अभ्यास किया। स्ट्रेंथ और वेट लिफ्टिंग के लिए केटल बेल स्विंग्स, हैवी वेट स्क्वाट्स और टायर फुटेज ड्रिल्स किए। बेहद कठिन सीसी स्क्वाट्स के तहत आलिया ने घुटनों के कंट्रोल, मोबिलिटी और थाई स्ट्रेंथ पर खूब काम किया। इन एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि शरीर को अत्यधिक फुर्तीला और मजबूत बनाना था। सूत्रों की माने तो फिल्म के मुश्किल और हैरतअंगेज एक्शन सीन को पर्दे पर पूरी तरह असल रूप देने के लिए आलिया और शर्वरी ने दिन रात एक करके बेहद कड़ी ट्रेनिंग पूरी की, जो दर्शकों को स्क्रीन पर साफ दिखाई देगी। एक्शन डायरेक्टर क्रेग मैकरे के मुताबिक आलिया और शर्वरी हर दिन शरीर पर नील और दर्द के साथ घर लौटती थीं, लेकिन अगले दिन फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ आ जाती थीं। दोनों खुद से और ज्यादा रिहर्सल की मांग करती थीं। आलिया और शर्वरी की मेहनत दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर साफ दिखाई देगी। करीब 2 घंटे 20 मिनट की इस हाई ऑक्टेन फिल्म को सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। अल्फा कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर अब एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय और प्रियदर्शन एक नए प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने वाले हैं। इससे पहले दोनों की ये जोड़ी हाल ही में रिलीज हुई भूत बंगला में काम भी कर चुकी है। और देखिए अब एक बार फिर से नई फिल्म ने फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है। इस फिल्म में क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
21: जब बात हो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और कॉमेडी के उस्ताद डायरेक्टर प्रियदर्शन की, तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल होना तो तय है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ये सिर्फ एक एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी नहीं बल्कि ये एंटरटेनमेंट की गारंटी है। इस जोड़ी ने सालों से हमें हंसा हंसा कर लोटपोट किया है, लेकिन अब एक बार फिर डायरेक्टर और लीड एक्टर की ये जोड़ी वापस आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय और प्रियदर्शन एक बिल्कुल नई फिल्म के लिए फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि आपको ह्यूमर और सस्पेंस का एक जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिलेगा। इस नई फिल्म का स्क्रीन प्ले रोहन शंकर डेवलप कर रहे हैं, जिन्होंने भूत बंगला में भी अपने शानदार काम से दिल जीता था, जबकि इसे प्रोड्यूस करने की कमान टिप्स ने संभाली है। सबसे बड़ी खबर ये भी है कि फिल्म इसी साल दिसंबर से फ्लोर पर जाने वाली है। इसी साल जब ये दोनों भूत बंगला लेकर आए तो दर्शकों ने थिएटर्स में जमकर सीटियां बजाई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। बाद में खबर ये भी आई कि ये सुपरहिट जोड़ी हेरा फेरी 3 में भी साथ दिखेगी, लेकिन जब प्रियदर्शन ने उस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया तो फैंस काफी निराश हुए। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ये खबर सामने आई कि अक्षय और प्रियदर्शन एक बार फिर साथ आ रहे हैं तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अक्षय और प्रियदर्शन जब भी साथ आते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं बनती, एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार होता है। अब सस्पेंस और कॉमेडी के इस नए कॉकटेल का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए अब बात फीफा वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। मैक्सिको सिटी में मैक्सिकन फैंस ने अपनी टीम की जीत का जबरदस्त जश्न मनाया। मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर 40 साल में पहली बार वर्ल्ड कप के लास्ट 16 में पहुंची, तो जाहिर सी बात है कि फैंस के लिए पल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। राउंड ऑफ 32 में मिली ये जीत 1986 में अपने घरेलू मैदान पर बुल्गारिया को हराने के बाद वर्ल्ड कप के नॉट आउट स्टेज में मैक्सिको की पहली जीत थी। चलिए अब आपको वाशिंगटन डीसी में यूएस की जीत का जश्न दिखाते हैं, जहां पर टीम यूएस ने बोस्निया और हर्जगोविनिया पर 2-0 से जीत हासिल कर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। और देखिए 82वें मिनट में मलिक टिलमैन के फ्री किक गोल ने यूएस टीम को बढ़त दिलाई और जीत पक्की कर दी। 2002 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स की ये नॉकआउट राउंड में पहली जीत थी, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि 45वें मिनट में गोल करने वाले फॉलरिन बोलोगुन को 64वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया था, तो जाहिर सी बात है इस रोमांचक जीत का फैंस ने खूब मजा लिया और जमकर जश्न भी मनाया। यूएस 6 जुलाई को सिएटल में बेल्जियम के खिलाफ भी खेलेगा। और चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अनोखी स्टार की झलक आपको दिखाते हैं। ये 2 साल की बतख है जो इंटरनेट पर सनसनी बन गई है। मैक्सिको की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के दौरान मर्लिन नाम की ये बतख चर्चा में आई। सोशल मीडिया पर ये इस कदर छाई कि ये टूर्नामेंट की पहली अनऑफिशियल मैस्कट भी बन गई है। इस जश्न के दौरान मैक्सिको सिटी में मैक्सिकन राष्ट्रीय टीम की जर्सी और मोजे पहने हुए मर्लिन की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई और उसने सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज भी बटोर लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां पर विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने सिर्फ अपनी जीत से ही नहीं बल्कि अपनी मजेदार मजाक से भी सबका दिल जीत लिया है। जी हां, 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सेंटर कोर्ट में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दरअसल जब उनके प्रतिद्वंदी वॉशरूम ब्रेक पर गए तभी जोकोविच ने एक बॉल गर्ल से अपनी टी शर्ट के पीछे लगा टैग हटाने को कहा। टैग हटते ही जोकोविच ने मजाक में ऐसी एक्टिंग की कि मानो बॉल गर्ल ने गलती से उनकी गर्दन काट दी हो। एक पल के लिए बॉल गर्ल घबरा गई, लेकिन अगले ही पल जोकोविच हंस पड़े और इशारे से बता दिया कि ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद पूरे सेंटर कोर्ट पर ठहाके गूंज उठे। और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: चलिए एक अच्छी खबर सिक्किम से आपको बता दें, यहाँ पर गोपालकों को सम्मानित किया गया। सिक्किम में पूरे उत्साह के साथ कल छठा सिक्किम गौपालक दिवस मनाया गया। राज्य में 1 जुलाई का दिन किसानों और गौपालकों के सम्मान में समर्पित किया गया है। सिक्किम के नामची टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों और डेयरी किसानों के योगदान को भी याद किया गया। 20 अप्रैल 2020 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य गौपालक समुदाय के उस महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना है, जिसकी राज्य में पोषण सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका है। इस मौके पर सर्वाधिक दूध आपूर्ति करने वाले डेयरी किसान को प्रतिष्ठित मिल्क मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को ट्रॉफी या नगद राशि देते हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार ने दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने और डेयरी सेक्टर को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी जारी की। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
25: और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
2: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
7: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
7: From the first pitch of the season to the stretch run.
9: And that's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
23: तो कुछ आज का आईना होगी, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
25: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
25: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
25: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
25: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
25: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। चमोली में मॉनसूनी सीजन ने किसी भी तरह की आपदा से निपटने की तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने किया मॉक ड्रिल। टीकरी बेस कैंप पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूलमाला पहनाकर हुआ स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा। बाबा भोले के भक्तों का रामबन लंगर साइट पर हो रहा इंतजार, देशभर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। पीएम मोदी और जापान के पीएम आज मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का करेंगे उद्घाटन, $35,000 करोड़ का होगा निवेश, 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक, सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लुढ़का तापमान, कम हुआ भीषण गर्मी का असर। हरियाणा राजस्थान के लिए राहत की खबर, अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने में जुटे। मुंबई के उपनगरों में भी जोरदार बारिश, पालघर रायगढ़ और ठाणे में हुई बारिश। मुंबई में बारिश के मौसम में हादसों से बचाव की अपील, बारिश के दौरान जरूरी काम होने पर घरों से निकलने और कमजोर इमारतों से दूर रहने की सलाह। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के डोडा और भलेसा में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में पानी भरा। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, कहा भूस्खलन वाले इलाके में न जाएं लोग। जम्मू कश्मीर के बांदेपुरा के कोराकबल गुरेज में फटा बादल, नदी में आया सैलाब। बादल फटने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, नदी नाले किनारे जाने पर लगाई रोक। गुजरात के जूनागढ़ में हुई जोरदार बारिश से अंडरब्रिज में फंसी कार, फायर ब्रिगेड ने किया कार ड्राइवर का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बारिश के कारण अंडरपास में फंसे यात्रियों में भरी बस से भरी फंस, क्रेन के मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, जिला प्रशासन ने शुरू किया सड़क की मरम्मत का काम। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और SDRF हाई अलर्ट पर, चलाया जा रहा है निगरानी और जागरूकता अभियान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बीच पहाड़ों पर ठंड का एहसास। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के अर्जी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को दी पवित्र यात्रा की बधाई। कहा यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था नवयुग सुरंग पार कर पहुंचा काजीगुंड। प्रशासन ने भव्य स्वागत किया। कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार कुल 57 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा। 28 अगस्त को होगी संपन्न। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। उपराज्यपाल ने जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह हो रहा है श्रद्धालुओं का स्वागत। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा। यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित। बालटाल से अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास दिखा हिमाली भूरा भालू। खाना खोजते नजर आया भालू, लोगों ने बनाया वीडियो। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे श्रद्धालु। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया जारी। जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप। श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे का भी इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर की जांच। CCTV और ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है निगरानी। आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल भी की गई। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। पहाड़ों में मॉनसून ने दी दस्तक। पहाड़ों में बढ़ती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहाना। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। बारिश के बाद प्रशासन भी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने की दे रहा है सलाह। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। पहली बारिश में बद्रीनाथ मार्ग बालकोटी में बंद होने से यात्रियों की संख्या में गिरावट। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश बरकरार। जयकारों से गुंजायमान बाबा केदार का धाम। अब तक 13,80,000 से अधिक यात्री कर चुके बाबा केदार के दर्शन। फिलहाल बाबा केदार के धाम में बारिश में भी दर्शन के लिए यात्रियों की लगी हुई हलाएं। मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा का किया जा रहा है संचालन। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जाता है। चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। हाईवे बंद होने से तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा लंबे जाम का सामना। सड़क मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, सैन्य सम्मान के साथ वेलकम। भारत जापान के जॉइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10,00,000 करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री करेंगे मारुति सुजुकी खरकोदा प्लांट का उद्घाटन। भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को नई मजबूती। खरकोदा प्लांट से सालाना 10,00,000 वाहनों की उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। करीब $35,000 करोड़ के निवेश से तैयार हो रहा है अत्याधुनिक प्लांट। 100% ग्रीन एनर्जी और AI टेक्निक से लैस होगा मारुति का नया प्लांट। खरकोदा संयंत्र पूरी तरह नवीनीकरण बिजली पर संचालित होगा। नौरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं का सौगात। 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों को मिलेगी नई उड़ान। 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से दो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का उद्घाटन ऐलान किया। अयोध्या काशी रामेश्वरम समेत कई तीर्थों पर जा सकेंगे भक्त। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले। 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और कार्रवाई के लिए आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी स्पेशल टास्क फोर्स। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की घोषणा। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा का रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम। एडवांस बुकिंग से फिल्म ने की करोड़ों की कमाई। भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी। प्रियदर्शन ने अक्षय संग एक नई फिल्म की डील की कन्फर्म। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले। वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन के भीतर 130 करोड़ का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फैंस की ट्रोलिंग पर खुलकर बोली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर। कहा, आलोचना को दिल से लगाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लें। भारत इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश से हुआ प्रभावित, नहीं निकल पाया कोई नतीजा। इंग्लैंड में चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 179 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में बनाए 59 रन। शिवम दुबे ने 21 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका। अब 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा दूसरा मैच। चीन के शांक्सी प्रांत में गर्मी से राहत के लिए इमारतों पर लगाया गया खास मिस्टिंग सिस्टम, गर्मी से निपटने का अनोखा तरीका। स्प्रिंकलर और मिस्ट की फुहारों से सड़कों का तापमान किया जा रहा है कम, जिससे लोगों को मिल रही है राहत। भीषण गर्मी के बीच चीन के शहरों को ठंडा रखने के लिए हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम का शुरू किया गया इस्तेमाल। इन दिनों चर्चा में है शांक्सी प्रांत में मिस्टिंग सिस्टम से इमारतों और आसपास के इलाकों को ठंडा रखने की पहल। तकनीक से लोग ले रहे हैं तारीफ। चीन में स्प्रिंकलर और कूलिंग में सिस्टम के जरिए गर्मी का असर हुआ कम, गर्मी भगाने का स्मार्ट समाधान। हांगकांग की वापसी के 29 साल पूरे होने पर आसमान में 2024 ड्रोन ने शानदार शो किया पेश। स्पेस थीम वाली आकृतियों ने दर्शकों का जीता दिल। हंग होम न्यू वाटर फ्रंट पर 2024 ड्रोन की रोशनी से रात का आसमान जगमगा उठा। ये शो हांगकांग की एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ती ताकत का बना प्रतीक। 29वीं वर्षगांठ के जश्न में ड्रोन शो ने तकनीक और कला का अनोखा संगम दिखाया। हजारों दर्शकों ने अद्भुत नजारे का आनंद लिया। स्पेस थीम वाले ड्रोन फॉर्मेशन ने हांगकांग की तकनीकी प्रगति को दुनिया के सामने पेश किया, भविष्य की उड़ान का संदेश दिया। 2024 ड्रोन की सिंक्रोनाइज्ड उड़ान रात के आसमान को रंगों से भर दिया। जश्न में सराबोर दिखे लोग। न्यूयॉर्क समेत पूर्वी अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव। महसूस होने वाला तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। गर्मी से बचाव के लिए शहर में कूलिंग सेंटर खोले गए। मुफ्त पानी, सनस्क्रीन और स्विमिंग पूल के समय बढ़ाए गए। भीषण गर्मी के बीच बिना एसी वाले ट्रक में काम करना बेहद मुश्किल, ट्रक ड्राइवर्स ने बयां किया अपना दर्द। न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बढ़ाया मदद का हाथ। जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त ठंडे पानी की बोतलें उपलब्ध कराने का फैसला किया। 4 जुलाई वीकेंड तक अलर्ट जारी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर नजर रखने की अपील की। न्यूयॉर्क में 38 फीट लंबे टी-रेक्स गस का कंकाल नीलामी में रखा जाएगा। इसकी कीमत 20 से 30 मिलियन डॉलर तक आकी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक गस अब तक मिले सबसे बड़े और सबसे पूर्ण टीरेक्स कंकालों में से एक है। इसकी लंबाई 38 फीट और ऊंचाई 12.5 फीट है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: Into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
5: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा, ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को जिसे चलने फिरने में दिक्कत है ठेले पर बैठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें।

0: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूलमाला पहनाकर हुआ स्वागत, रूट पर भारी सुरक्षा। बाबा भोले के भक्तों का रामबन लंगर साइट पर हो रहा है इंतजार, देशभर से पहुंचे लंगर सेवादारों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार किए तरह तरह के पकवान। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की पीएम आज मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 35,000 करोड़ का होगा निवेश, 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: जिनके घर किताबों भरी अलमारियां होती है ना, उनसे रईस और कोई नहीं होता। वैसे बात तो सच है, तो आज खोलेंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब, लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो क्या कुछ हो रहा है सीरियल्स की कहानियों में आज, कहाँ है रियलिटी शोज में हलचल, किसने की है वीकेंड पर पार्टी और किस सितारे से की है हमने एक प्यारी सी मुलाकात, ये सब और बहुत कुछ है हमारे शो सास बहू और बेटियां में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
3: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, राधिका के गृह प्रवेश में शुरू होगा तमाशा, एक तरफ घर वाले तो दूसरी तरफ वीर और राधिका।
4: इस लड़की की वजह से आज इतना बड़ा अपशगुन होने वाला था।
3: अपराजिता होगी लापता, रक्षित का गुस्सा ललित पर फूटेगा। संपन्न होगा अभीरा और अरमान का विवाह, आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। अनुपमा में आएगा खुशियों का मौसम, दिखेगा डांस का टशन। सीरियल्स की दादियों पर आएगी मुसीबत, गिर पड़ेंगी नाहर और प्रथम की दादियाँ। आईपीएस ऑफिसर बन ईशा पहुँचेगी, सूरज को देखकर लगेगा जोर का झटका।
5: आप लोग मुझे लड़की बनाने का सोच रहे हो?
3: आ गई बागा की नई गर्लफ्रेंड, बाबरी को होगी जलन।
6: लड़की के साथ नारियल पानी पी रहा है।
3: और उनकी मम्मी दीप्ति संग होगा खाने का खजाना, गोवा फूड फेस्टिवल का दोनों लेंगी मजा, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: एक किताब से वफादार दोस्त और कोई नहीं होता, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। वैसे राध्या और प्रथम, आप दोनों की दोस्ती भी तो है पक्की, अब वो अलग बात है कि कभी कभी आप दोनों के बीच हो जाता है लड़ाई झगड़ा या थोड़ी बहुत नोक झोंक, कभी कभी ईगो भी बीच में आ जाती है और छोटी सी लड़ाई यूं ही बड़ी बन जाती है, लेकिन जरूरी है कि आप हमेशा रहें एक दूसरे के साथ और करें एक दूसरे पर विश्वास। तो चलिए लेकर चलते हैं हम सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
3: मुश्किल में फंसेगी राध्या, राध्या के लिए परेशान प्रथम।
4: 11 बज गए 11, लेकिन ये महारानी जी का अभी तक कुछ पता नहीं।
3: दादी संग हादसा,
4: अरे अरे मर गए।
3: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज प्रथम को आ रहा है गुस्सा, क्योंकि राध्या उसे बिना बताए ही घर से बाहर चली गई है, वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे में प्रथम बार बार राध्या को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राध्या का कॉल लग नहीं रहा। ऐसे में प्रथम को डाउट हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दादी वो मानने को तैयार नहीं है।

0: लेकिन ये महारानी कुछ तुझे फोन करने तक की जरूरत नहीं समझी, पति की अवहेलना करके फोन तक नहीं उठा
1: रही।
0: अरे वो अपनी मम्मी की किताब और अपना पर्स लटका कर की गई है बाहर, वो क्या मुसीबत होगी?
2: प्रथम को डाउट हो गया है कि राध्या मुश्किल में है। ऐसे में वो राध्या को ढूंढने के लिए निकलने लगता है कि तभी दादी अपना खेल शुरू कर देती है और गिरने का ड्रामा करती है, जिसके चलते प्रथम को वापस आना पड़ता है और तो और सभी घर वाले दादी के इस हाल को लेकर परेशान होने लगते हैं। अब प्रथम राध्या को ढूंढने के लिए वहाँ ना जा पाए, इसीलिए दादी ने ये खेल खेला है। इतना ही नहीं, दादी तो प्रथम के साथ भारी बरसात में भी पहुँच गई है उस किचन के खिलाड़ी प्रतियोगिता के सेट के बाहर, ताकि वो कैसे भी करके प्रथम को अंदर जाने से रोक सके। और वहीं राध्या वो भी पहुंच गई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि एक पल के लिए प्रथम को लगता है कि ये उसकी राध्या है, वो आगे बढ़ता भी है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी दादी आकर प्रथम को रोक लेती है और उसे बहाना कर वहां से ले जाती है। लेकिन राध्या उसने हार नहीं मानी, तभी तो वो सिक्योरिटी गार्ड से विनती कर रही है कि उसे अंदर जाने दे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और तो और उसे अगले साल आने के लिए कहा। ऐसे में राध्या परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतना समय जो नहीं है। तभी तो देखिए कैसे शटडाउन होते वक्त राध्या ने मौका ढूंढ ही लिया अंदर जाने का। अब देखना होगा क्या प्रथम को ये बात पता चल पाएगी कि राध्या किचन के खिलाड़ी प्रतियोगिता के कमरे में कैद हो गई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: वैसे कई मिस्ट्रीज और थ्रिलर्स कहानियों के लेखक इस तरह लिखते हैं ना कि हमारा मन करता है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कहानी करो खत्म और पहुंच जाओ क्लाइमैक्स तक। वैसे आपको एक बात बताऊं, क्लाइमैक्स की तरह एक्साइटिंग है हमारी अगली खबर भी। तो चलिए हम नहीं करेंगे आपके पेट में दर्द, सीधा लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
1: आप लोग मुझे लड़की बनाने का सोच रहे हो? आप ये रोल कर सकते हैं।
2: आई बावरी की सौतन,
3: दूसरी लड़की के साथ नारियल पानी पी रहा है।
4: I love you
3: बोल रही है।
5: I love you too।
2: बाघा का नया प्यार,
6: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
2: टप्पू बना टीनू,
6: हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की।
2: सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ गया है कहानी में नया मोड़, जहां पर बागा बावरी से दूर जाना चाहता है। इसीलिए वो देखिए कैसे इस गार्डन में आशिकी लड़ा रहा है टीनू संग। वैसे आपको बता दे कि ये टीनू कोई और नहीं बल्कि टप्पू ही है। जी हाँ, जो बन गया है लड़की। लड़की का भेष बदल कर वो बाघा संग झूठे प्यार का नाटक कर रहा है, ताकि बावरी को ये लगे कि बाघा किसी और से प्यार करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टप्पू का ये अंदाज, जहाँ सलवार सूट पहनकर, विग लगाकर, मेकअप कर टप्पू का तो रंग ढंग ही बदल गया है।
4: बागू, I love you
3: बोल रही है।
5: I love you too।
2: तो भाई ये टीनू तो ले आई है बागा और बावरी की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, क्योंकि टप्पू उर्फ टीनू के आने से मच गया है बवाल। तो आइए इन्हीं से जानते हैं ये नई स्टोरी और इनके लुक के बारे में।
7: प्यार का जो फूल खिल रहा था इतने टाइम से बागा बावरी की लाइफ में, उसमें अचानक टीनू नाम की एक लड़की आ गई है, जो कि हमारे टप्पू सेठ जी ने बागा को हेल्प करने के लिए, उस मोमेंट को हेल्प करने के लिए एंड विद अ गुड फेथ वो लड़की बना है। तो हाँ, फिलहाल तो टीनू नाम का कांटा बागा बावरी की लव लाइफ में आ गया है, जो बागा को नहीं लेकिन बावरी को बहुत ज़ोरों से चुभा है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जैसे आपने देखा टेलीकास्ट में कि बावरी ने बागा के साथ फाइनली इतने बागा के अटेम्प्ट्स के बाद ब्रेकअप कर लिया है।
8: तो है तो टीनू ही है ऑफ कोर्स, बट आइडिया और एग्जीक्यूशन सारा बागा भाई के थ्रू ही आया। एक्चुअल रियल नेम तुषा था, तो तुषा का टीनू इन्होंने बनाया, और जिस तरह से किरदार किया हमने और जो लोगों ने पसंद किया, उसके लिए तो मैं दिल से थैंक यू कहना ही चाहता हूँ। प्लस मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसकी जो भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया, इसमें पूरी टीम की मेहनत थी। जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर, तो वो कंटिन्यूसली सेट पे थे। तो और मुझे तब पता चला कि फीमेल आर्टिस्ट को कितना मुश्किल होता है गर्मी में धूप में शूट करना। ओह माय गॉड, हर दो मिनट बाद मेरे बाल इधर से वो हो रहे थे, इधर से हो रहे थे। तो फोकस भी करना है आपको, लाइंस भी याद रखनी है आपको, कैरेक्टर भी प्ले करना है आपको, बालों का भी ध्यान रखना है आपके, पसीना भी, मतलब बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। तो ऑल फीमेल आर्टिस्ट सलूट है आप लोगों को, कैसे आप करते हो, हमारा सॉर्टेड रहता है। हम लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। हाँ, प्लस उसमें बाकी जैसे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन बहुत कर रहे थे, जैसे कुछ भी लाइन हो तो ये एक जोक मार रहे हैं, फिर हम कुछ मार रहे, तो इसमें हंसी आ रही है, इसको रखते तो हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं इस पे लोग हंसेंगे। तो बहुत मेहनत कर रहे थे हम उस टाइम पे। प्लस हमारे धर्मपाल सर, उनके बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजेशन थे, तो बहुत मज़ा आया था हमें ये सब करने में।
2: वैसे लगता है बागा का ये प्लान काम भी कर रहा है, क्योंकि बावरी को हो रही है जलन। लेकिन क्या बागा और बावरी टीनू की वजह से अलग हो जाएंगे, या फिर टीनू का पर्दाफाश हो जाएगा, ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन्हें ये किरदार निभाने में कितना मजा आ रहा है, चलिए जानते हैं।
8: After 3 years I played something else apart from Tapu, तो मेरे लिए तो बहुत ही नई अपॉर्चुनिटी थी और चैलेंज भी था। बट ठीक है, बट जैसे जैसे मुझे पता चला स्क्रिप्ट आई, तो मैं समझ गया था इसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही क्रेजी आर्टिस्ट के साथ काम करते सब। तो पता है इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए मैंने खुद को प्रिपेयर किया था कि मैं अपने आप को एक मैकेनिकली रेडी नहीं करता हूँ कि मैं ये है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा है तो मैं ऐसा ही चलूँगा, ये तो मैं ऐसे ही देखूँगा, क्योंकि ऑन स्पॉट बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं मेरे कैरेक्टर में। क्योंकि बेसिकली मुझे खुलना था कि मैं कुछ भी करूँ क्योंकि किसको क्या ही पता है चलेगा कि मैं प्ले कर रहा हूँ। बट फिर जैसे जैसे किया मुझे ये पता कि इसको ऐसा कर उसको वैसा कर, तो वो बहुत अच्छा दिखा स्क्रीन पे और मैं खुद अमेज्ड हो गया। पहले मैं खुद ऐसा शाय करता, मैं देखूँ ये सीन अपना, मैं अगर नहीं देखता हूँ पहले देखता हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। और जब लोगों ने जेन्युइनली तारीफ करना शुरू किया, तन्मय भाई ने बोला सबसे पहले हमारे एडिटर जो हमारे कृणाल भाई है उन्होंने आके बताया था सेट पे कि आप दोनों का सीन बहुत अच्छा है, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया था मेरा कि अब देखूंगा सीन कैसा है। और जेन्युइनली वो बहुत अच्छा सीन आया था।
2: तो आप सब भी हो जाइए तैयार क्योंकि भागा बावरी और वो की स्टोरी में कई और गोलमाल होने बाकी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

एक अच्छी पुस्तक तो हजार दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। क्या ऐसा ही रिश्ता बन गया है यहाँ पर हमारी किशोरी और लाला का? क्या बन जाएंगे ये अब अच्छे दोस्त, और क्या ये दोस्ती टर्न आउट हो जाएगी प्यार में? कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानियों में और कुछ ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में भी। तो चलिए फिर खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब, लेकर चलते हैं आपको सीधा पतिया नाड़ी के सेट पर।

0: मीना और किशोरी के प्यार का मरहम। कैसे जीना सीखा मैंने, धीरे धीरे बढ़ती रिश्ते में नजदीकियाँ।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना।
0: लाला और किशोरी को देख मंजू को हुई जलन। दंगल टीवी के सीरियल पति अनाड़ी में आज तो लाला बहुत ही समझदारी का काम कर रहे हैं। भाई किशोरी के हाथ में चोट लग गई है, ऐसे में आज लाला बन गए हैं किशोरी के डॉक्टर। जरा देखिए कैसे खुद अपने हाथों से किशोरी के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं और तो और उसे समझा भी रहे हैं कि कैसे उसे धारदार चीजों से दूर रहना चाहिए। ये देख किशोरी हो रही है इमोशनल और वहीं दूर खड़ी मंजू देख देख कर जल भुन रही है।

0: सीखा कभी।
1: इसको कुछ ना कुछ होते रहता है, मैं पांचवी बार पट्टी बांध रहा हूँ इसको, ये अपना ध्यान ही नहीं रखती है। और लाला इसको देख के परेशान हो जाता है, वो तुरंत आके पट्टी बांध लग जाता है कि कुछ भी काम हो तो मुझे बता दो। तो एक्चुअल में हुआ ये कि लाला यहाँ पे सो रहा था, आशीष की एंट्री हो चुकी है शो के अंदर वापस से, एंड उसके मन के अंदर कुछ खुराफाती आइडिया आए कि लाला को परेशान किया जाए। उस परेशानी की वजह से लाला तो परेशान नहीं हुआ, लेकिन लाली परेशान हो गई, तो उसके हाथ में कुछ चोट आ गई लाला को बचाने में।
2: कट गया मेरा हाथ।
3: भाई लाला और किशोरी की दोस्ती तो रंग ला रही है, ऐसे में लाला और किशोरी का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुद अपने हाथों से वो किशोरी को खाना खिला रहे हैं, और किशोरी भी बड़े ही प्यार से लाला को अपने हाथों से खाना खिला रही है। इतना ही नहीं, आज तो लाला ने किशोरी को दे दिया है लाला प्रॉमिस भी।

0: मांगा इनाम पा सकती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। इसमें लिख के कहा, देखो इसमें साइन भी है।
1: जैसे भगवान ने कहा तो सारी विश पूरी करेंगे तथास्तु, वैसे लाला ने बोला है कि सारी विश पूरी करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाली उसमें उस जो प्रॉमिस बॉन्ड है उसको कब यूज़ करती है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है, कि वो ऐसा है कि अगर उसने लाली ने उस पर लिख दिया तो लाला को वो पूरा करना ही पड़ेगा, तो उसका वो फ़ायदा कैसे उठाती है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट एक ट्रैक आएगा जिसमें उसको लिखना ही पड़ेगा उसमें, तो उसके लिए आपको देखना।
2: बात तो सही है,
1: बात तो सही है
3: भाई। दिन ब दिन लाला किशोरी को इतने करीब आता देख मंजू चिढ़ रही है। वो कोशिश कर रही है दोनों को दूर करने की, लेकिन किस्मत दोनों को करीब ला रही है। इतना ही नहीं, अब तो किस्मत ने एक और खेल खेला है, क्योंकि किशोरी की जिंदगी में उसका अतीत यानी कि आशीष आ गया है। खैर, किशोरी डरी हुई है और चाहती है कि वो आशीष का सच सभी घर वालों के सामने ले आए। ऐसे में देखिए कैसे वो अपनी सासू माँ जशोदा के पास जाती है सच बताने के लिए। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि घर आ जाती है जशोदा की दोस्त, वो भी रोते हुए।
1: उसको डर है कि क्योंकि अगर उसने बता दिया कभी तो क्या समाज या फिर हमारी जो फैमिली है वो एक्सेप्ट करेगी उसको, कि बॉयफ्रेंड था उसका और उसका आशीष के साथ जो रिलेशन था। तो कहीं ना कहीं वो डर भी रही है कि कहीं वो बता देगी तो लाला ही कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं उसको छोड़ ना दें। तो वो उस चीज़ से घबरा रही है जिसका फ़ायदा आशीष उठा रहा है, एंड आशीष उसी चीज़ को यूज़ करके उसको धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं बता दूंगा। तो वो देखने में आपको बड़ा मजा आएगा।
3: भाई जसोदा की दोस्त का किस्सा सुनकर सभी घर वाले बातें बनाने लगते हैं, और किशोरी वो तो खुली आंखों से सपना देखने लगती है कि उसने घर वालों को सच बता दिया है, और घर वाले उस पर नाराज हो रहे हैं, और सासू माँ जशोदा वो तो किशोरी से अब नफरत सी करने लगी है।
1: उसका एक ड्रीम सीक्वेंस आता है कि उसने बता दिया है एंड लाला ने उसको सपोर्ट नहीं करा है। लाला ने बोला कि घर से बाहर निकल जाओ, कट्टी। देन वो फ्लैशबैक खत्म होता है एंड उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक सपना था, अगर वो बता देगी तो ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए वो बता नहीं रही।
3: खैर, ये तो एक सपना है, लेकिन ये सपना जल्द ही हकीकत में बदलेगा ऐसा किशोरी को लग रहा है, क्योंकि वो आशीष का खुलासा सभी घर वालों के सामने इसीलिए करना चाहती है क्योंकि आशीष का रिश्ता गुनगुन से तय हो गया है। अब देखना होगा क्या लाला किशोरी की दिल की बात को समझेगा और किशोरी का साथ देगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: किताबें और सच्चे दोस्त तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। नाहर और रूही, क्या आप दोनों समझ रहे हैं मेरा ये इशारा? देखिए, अब बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गई ये दूरियां, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सारा कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाना चाहिए और आप दोनों को आ जाना चाहिए फॉर एवर एक दूसरे के पास, क्योंकि हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आप इस तरह हो जाते हैं एक दूसरे से अलग। तो क्या कुछ कह रही है मन सुंदर की ये कहानी, उम्मीद तो कर रहे हैं यहाँ पर हो गया हो सब कुछ सुंदर। लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास।
5: दादी का नन्ही बच्ची पर अत्याचार।
6: क्या
5: फिर फिसल कर गिरी दादी। शुरू हुआ नया तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज दादी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने उनके घर पर आई हैं। ऐसे में दादी तो काफी खुश है। तभी रुहान और रुचिता बॉल से घर में खेल खेल रहे होते हैं कि रुहान की बॉल दादी को लग जाती है, लेकिन दादी इस बात को हंसी में टाल देती है और सबको इंट्रोड्यूस कराती है कि ये है रुहान, उनका पोता। तो वही जब वो पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, तो वो कह देती है कि ये नौकर की बच्ची है। भाई दादी यहीं तक नहीं रुकी। पहले तो उसने रुचिता को नौकर की बच्ची कह दिया और उसके बाद देखिए कैसे उससे इन सब के लिए पानी और नाश्ता मंगवाया। बेचारी रुचिता इतना भारी सामान अकेले ही लेकर आ रही है और उसके हाथों से ट्रे गिर जाती है, जिस पर दादी और भी ज्यादा भड़क जाती है और देखिए कैसे वो रुचिता से ही साफ सफाई करने को कह रही है। बेचारी बच्ची चुपचाप दादी की सारी बातें सुन रही है।

काम करना है तो ये सब कुछ तो सीखना पड़ेगा ना अभी।

0: लेकिन देखिए कैसे सफाई करते वक्त खुद दादी का ही पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। ऐसे में दादी को लग गई है चोट। तभी वहाँ पर रूही और नाहर भी पहुँच जाते हैं। ऐसे में दादी सारी बातें भी छुपा देती है कि उसने बच्ची के साथ कैसा व्यवहार किया था।
1: साफ करो, पूरा गीला है, पानी है, सब करो।

0: सब होने के बावजूद भी देखिए कैसे रुचिता दादी के लिए मरहम लेकर आई है। लेकिन दादी को तो रुचिता फूटी आंख नहीं भाती। भाई अब जब दादी का सच रूही को पता चलेगा तो क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की किताब खोल रहा है आप आपका फेवरेट सितारा, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये प्यारी सी मुलाकात। इन्होंने तो खोल दिए हैं हमारे लिए जिंदगी के पन्ने, क्योंकि हमने जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। अब बताइए कौन है ये, मैं नहीं बताऊंगी आपको, सीधा लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

0: हवा के खाने का मजा उठाती औरा और उनकी माँ दीप्ति।
1: मौसम में भीगी है कुछ कोशिश होने लगी, देखो ये बारिश।
0: दिखा माँ बेटी का फूड लव। शुरू हुई खास दावत।

0: अनुपमा, बैरिस्टर बाबू और कई ऐसे सीरियल्स में नजर आ चुकी औरा भटनागर इन दिनों अपनी पढ़ाई पर खासा ध्यान दे रही है, लेकिन इन्होंने पढ़ाई से छोटा सा ब्रेक ले लिया है और वो पहुंच गई है यहाँ पर। भाई अगर आप सोच रहे हैं कि औरा उनकी मम्मी के साथ गोवा पहुंच गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो पहुंच गई है गोवन फूड फेस्टिवल में जो हो रहा है फेयरफील्ड बाय मैरियट में। यहाँ पर है फ्लेवर्स ऑफ गोवा और इसी गोवन फूड को एंजॉय करने औरा अपनी मम्मी दीप्ति संग यहाँ पहुँची है और यहाँ तो देखिए फुल गोवा वाइब है।
1: डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी,
0: चाहे फिर वो सॉन्ग्स हो,
1: दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी,
0: यहाँ का खाना हो, इन दोनों को तो लग रहा है कि ये सीधा गोवा ही पहुँच गई है। खैर, मुंबई में गोवा का मजा लेना है तो गोवा फूड फेस्टिवल में आना है फेयरफील्ड बाय मैरियट के, जो औरा उनकी मम्मी संग यहाँ पहुँची है। तो चलिए देखते हैं आज इस गोवा वाइब और गोवा के फूड को वो कितना एंजॉय करती है। तो करते हैं शुरुआत इस मस्ती भरे और खाने के खजाने से भरे इस डे आउट की।
2: हाय गाइस, आई एम औरा।
3: हाय, आई एम दीप्ति।
2: तो आज मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ गोवा में। नहीं ऐसा नहीं है, हम गोवा में नहीं है, हम आए हैं मैडो मैडो बाय फेयरफील्ड मैरियट। तो वी आर इन फ्लेवर्स ऑफ गोवा। तो आज हम करेंगे ट्राई फूड, उनका फूड फेस्टिवल है आज,
3: गोवा का फूड फेस्टिवल।
2: yes.
3: और हम बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग यहाँ लेने के लिए आए हैं मुंबई में
2: जो मुझे देख के बहुत लग रहा है कि हम गोवा में ही हैं। इट्स सो प्रिटी, द डेकोरेशन इज सो प्रिटी। सो चलिए अब हम खाना भी देख लेते हैं कैसा है। हमें तो बहुत पसंद है।
3: हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती है, हम गोवा भाग जाते हैं। ड्राइव करनी हो तो हम गोवा भाग जाते हैं। मतलब हमें गोवा इतना पसंद है और वहाँ पर हमने 3-4 स्पॉट्स बना रखे हैं जहाँ हमें जाना ही होता है, और आइसोलेटेड बीचेस हम देखते हैं और वहाँ मस्ती करते हैं फुल।
2: बहुत मजा आता है हमें गोवा में।
3: कैंडल इन बीच एक हमारा फेवरेट है, और एक लाकाबाना रिजॉर्ट, इट्स वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, वो हम लोग के फेवरेट प्लेस है। हम वहाँ 2 times जा चुके हैं।
2: हम उसके अलावा कहीं और जाते नहीं बिकॉज इट्स सो प्रिटी और वहाँ पे इतना अच्छा रहता है।
3: हम ऐसी जगह ज्यादा फाइंड आउट करते हैं जहाँ लोग कम हो, तो हम आइसोलेटेड बीचेस पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ हमें बहुत कोजी फील होता है।
2: यस, यहाँ पे चिल वाइब्स भी हैं, गोवा वाइब्स, इट्स सो प्रिटी, ऑल द डेकोरेशन।

0: तो भाई औरा और उनकी मम्मी तो पहले से ही गोवा की फैन है। जब भी इन्हें वेकेशन का मौका मिलता है ये गोवा पहुंच जाती है और यहाँ आकर आज तो इनका दिन ही बन गया। गोवा में ना होते हुए भी गोवा की वाइब, भाई ऐसा होना नामुमकिन है लेकिन यहाँ हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये कितने एक्साइटेड है।
1: फॉर द गोवा वाइब वी आर रेडी, लाइफ इज बेटर इन गोवा। यस

0: तो भाई चलिए शुरू करते हैं ये दावत और देखते हैं कि यहाँ गोवा के खाने की क्या कुछ वैरायटीज है।
1: तो अब हम अंदर आ चुके हैं और हमारे पास इतने सारे काउंटर्स हैं, अभी हम लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कहाँ पे जाए पहले।
2: और वी आर वेजिटेरियन तो हम लोग वेज सेक्शन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है आज।
1: सैलेड तो हम कम ही खाते हैं।
2: ऑयली
1: मतलब हमारा जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। देखिए इतना हेल्दी फूड लिया है औरा ने, देखो ऐसे कभी कभी कभी ले लेना चाहिए।
2: चलो चिक्स ले लेते हैं।
1: सो दिस इज चिकपी करी,
2: मसूर दाल के लिए तो बहुत सही है। उधर से आपने छोटी प्लेट ली और
1: दिस इज मसूर की दाल, गोवन मसूर की दाल एंड चावल। ये तो एपिक मतलब क्या बोलते हैं, घर का खाना जैसा फीलिंग हो रही है।
2: Nice.
1: And cauliflower fritters.

0: और क्या क्या वॉफल्स, लाइव काउंटर. यहाँ क्या बन रहा है? वेज में क्या आपके पास?
1: वेज में मैं यम है.

0: देखो ऑयल के बिना कुछ चीज बनती नहीं है. This is the way we do it. This is the way we roll. Ladies, we lose it. Gentlemen out of control. Jimmy Kahn. कार तो कैसे बन रहा है ये?
1: इसके अंदर अपना बूटी रहता है.
2: तो ये गोवा का स्पेशल है क्या?
0: अच्छा, तो हमें गोवा में भी ट्राई करना चाहिए था ये, जो हम नहीं कर पाए. उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं. सो मम्मी मुझे कह रही थी पापड़ खा रहे हो तेल में, अब देखो ये भी तो बन रहा है.
2: बिना तेल के तो बनता नहीं है.
0: नहीं बनता. वाओ, गर्मा गर्म
2: ग्रीन चटनी.
3: तो भाई गोवा के अलग अलग जायकों से प्लेट तो भर चुकी है, अब बारी इन सभी डिशेस को टेस्ट करने की.
0: सो गाइस, अब हम खाना तो ले आए हैं, अब हमें खा के टेस्ट भी तो करना पड़ेगा. तो चलिए टेस्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग. वही तो, ये तो पीस पुलाव है, मसूर की दाल है, ये यम. ओह अच्छा, और ये क्या है? दिस इज स्पेशल ऑफ गोवा. एंड देन व्हाट इज दिस? कॉलीफ्लावर फ्रिटर्स. एंड दिस इज पनीर कटलेट्स. देन दिस इज चिकपी करी. एंड दिस इज टोमेटो सूप एंड पापड़. पापड़ तो हम हमेशा ही खाते हैं. तेरी आशिकी करो दी. सूप तो मुझे बहुत पसंद आता है. ये सूप इतना टेस्टी बना है.
2: पुलाव और ये चिकपीस, पापड़, टमाटो सूप हमने खाया है. ये मैं, हाँ, ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं और ये स्पेशल है गोवा का. ये नहीं पता था, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पता करेंगे. ये है जिमी कन बोला ना. नाइस. ये स्नैक की तरह खा सकते हैं.
3: तो भाई गोवा का ये जायकेदार खाना खाकर तो और उनकी मम्मी दीप्ति का दिल खुश हो गया. लेकिन अभी भी गोवा वाइब बाकी है, क्योंकि यहाँ आ गए हैं गोवा स्टाइल में ये गिटारिस्ट, जो बजा रहे हैं गिटार, गा रहे हैं गाना. वैसे इसी के साथ औरा ने बताया कि इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा गिटार बजाती है. तो यहाँ शुरू हो गया म्यूजिकल सेशन.
2: हम लोग इस समय अपनी फरमाइश का एक सॉन्ग इनको बता रहे हैं, और आप लोग क्या गाना बजाना पसंद करेंगे वो बताइए.
4: Spanish, Portuguese, English, Italian. What do you like?
2: Anything different? हमारी ऑडियंस वहाँ जो बैठी है वो हिंदी वाली है, तो हिंदी सॉन्ग. Only one. ये प्यार का नगमा, this one चलेगा. हाँ हाँ.

0: Naeem was acting. The nails impressed me a lot.
1: Okay, but good. Good voice also.
2: तो भाई म्यूजिक है, गाना है और ढेर सारा टैलेंट है, तो ऐसे में मम्मी और बेटी का एक डांस तो बनता ही है।

0: वैसे इसी के साथ दोनों ने कुछ बातें भी शेयर की और साथ ही औरा ने भी दिखाया अपना सिंगिंग टैलेंट, वो भी एकदम अनोखे स्टाइल में।
1: मतलब ऐसा फील हुआ जैसे हम गोवा में हैं और गिटार हाथ में आते ही तो और लग रहा है, वो बात अलग है, मैं थोड़ा प्रेस नहीं कर पा रही हूँ, नेल्स लगे, अदरवाइज मैंने बहुत मजे किए, एंजॉय किया।
2: मुझे तो बहुत पसंद आता है, मुझे एक्चुअली द वे दे वर प्लेइंग द म्यूजिक, द सेकंड म्यूजिक विद द कॉन्कनी स्टाइल, इट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड द वे दे वर प्लेइंग गिटार, अरे मज़ा आ जाता है। और मम्मा वैसे भी गिटारिस्ट हैं, ये सरप्राइज हो गया। तो मम्मा, हमारे पास भी गिटार है घर पे, मैं उसके साथ 10 मिनट तक करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, नहीं तो मम्मा बजाती हैं, और मम्मा कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा बजाती हैं, लाइक थी, एंड अब तो प्रैक्टिस करते करते छूटी गई, बट हाँ
1: कुछ ना कुछ ये सिंगिंग करती है, छोटी वाली भी कुछ ना कुछ करती है।
2: हाँ, उसको हमने छोटू वाला गिटार उसको यूकेलेली दे रखा है, तो वो भी बजाती है थोड़ा बहुत, एंड मैंने भी थोड़े बहुत गाने निकाल लेती हूँ, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं होता।
1: और एक वो वाला सुना दो,
2: कौन सा,
1: जब कोई बात भी कर जाए उसका इंग्लिश।
2: अरे यार, तो
1: इसका इंग्लिश वर्जन है जो और सुनाई।
2: तो एक्चुअली पूरी स्टोरी क्या है, जब कोई बात बिगड़ जाए वॉज ओरिजिनली अ फोक सॉन्ग दैट वॉज रिलीज इन 60s इन इंग्लिश, सो इट वॉज बाई पीटर पॉल एंड मैरी कॉल्ड 500 माइल्स, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। मेरा गला खराब है।

यू. तो ये था गाना एंड आई लव ओल्ड सॉन्ग्स. तो मैंने ऐसे ही सुनते सुनते ये डिस्कवर किया एंड आई वाज लाइक यार ये तो बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है जब कोई बात बिगड़ जाए से. तो मैंने कहा यार दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: मेन कोर्स तो खा लिया, अब बारी डेजर्ट्स की। और यहाँ पर है गोवा स्टाइल में कई सारी स्वीट डिशेस जिन्हें औरा और दीप्ति टेस्ट करने वाली है। भाई आज तो डाइटिंग को बाय बाय कहकर सारी डिशेस टेस्ट होंगी और उनका मजा भी उठाया जाएगा।
1: और दिस वन इज कोकोनट मालावी, ये कुछ स्पेशल होगा कोकोनट का। मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेकर आती हूँ, वेट।

0: चॉकलेट पुडिंग ले लो मजा। शॉकिंग रेगुलर आइसक्रीम
1: बहुत पसंद है।
0: हमारे घर में चीटा चीटी सब मिलेंगे।
1: पापा कोरल मैं सब हमें खीर चाहिए ही चाहिए होती है।
0: खीर हमेशा मेरे घर में फ्रिज के अंदर मिलेगी, रसमलाई फ्रीजर के अंदर मिलेगी जो अमूल की आती है।
1: आइसक्रीम अभी हम लोग को हमें कोल्ड हो गया आइसक्रीम से, अभी रिकवर हुए हैं हम।

0: मैं खाने की इतनी शौकीन हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं देख सकती डाइट पे और स्पेशली मीठे की। हाँ, मीठा तो चाहिए ही चाहिए होता है, और फ्रूट्स मेरे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सिर्फ बीच में ऑड वन आउट लग रहे हैं
1: फ्रूट्स
0: ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिया है कि भाई कुछ हेल्दी जाना चाहिए।
2: तो देखा आपने, औरा और दीप्ति ने दिल खोलकर गोवा फूड फेस्टिवल को एंजॉय किया। तो आइए उनसे जानते हैं उनका ये एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ औरा की पढ़ाई और शूटिंग दोनों वो कैसे मैनेज कर रही हैं।
0: इतनी अच्छी वाइब्स थी यहाँ पे कि हमारा नाश्ता बंद ही नहीं हो रहा है।
1: गोवा वाला माहौल बनाया हुआ है चारों तरफ ऐसा, उसका खाना और
0: द गिटार्स एंड गाने इतने अच्छे एंड ऑल। भाई आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वहां पे सारे लैंग्वेजेस के गाने वो गा रहे थे।
1: उसने भी ना गोवा वाली टी-शर्ट्स और शर्ट्स ऐसे पहना हुआ है, तो द वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है, मजा आ रहा है। बहुत कम टाइम मिल पाता है आपस में और लगता है हम साथ हैं पर साथ में होते नहीं है, तो जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं तब हम लोग कहीं साथ में एंजॉय कर पाते हैं। और ये मैडम ट्यूशन में बिजी रहती हैं। अभी प्रोजेक्ट हमने, अभी हमारे पास बहुत अच्छी तेलुगु मूवी आई थी औरा के लिए।
0: हाँ
1: वो हम लोग काफ़ी सीरियस थे उसके लिए, लेकिन वही लगा एंड में कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, औरा के बोर्ड्स हैं तो 10th कंप्लीट करें उसके बाद। दौड़ी है पढ़ाई बेचारी की।
0: मम्मी तो वैसे ही पहले प्रेशर की 10th है। अब मेरा खुद का प्रेशर कि भाई 10th है, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे एग्जाम्स का। मतलब इतनी तो मुझे खुशी नहीं होगी जितना लोगों को खुशी होगी मेरे मार्क्स आएंगे।
1: बेटा पास हो जाना बस।
0: वही तो मम्मी सब यही बोली जा रही है। तो भाई बहुत प्रेशर है, मेरी ट्यूशन टीचर के साथ भी प्रेशर है कि बेटा अच्छे मार्क्स ला।
1: अच्छा कुछ माहौल होता है ना 10th 12th बोर्ड, हम लोग इतना बड़ा वो बना देते हैं, लेकिन मैं इस जनरेशन को देख रही हूँ इन्हें टेंशन ही नहीं है। क्या हुआ यार, जैसे 9th के एग्जाम में से 10th के हो जाएंगे।
0: वैसे हाँ, मतलब मेरा भी यही था कि भाई कोई बात नहीं, पर सब लोग रिलेटिव सब ऐसे है कि बेटा मार्क्स कैसे आएंगे तुम्हारे। मैंने कहा बस ये लोग
1: कहते हैं चिल मम्मी चिल, हो जाएगा प्लीज, आप ज्यादा हाइपर मत।
0: नहीं क्योंकि क्या होता है सब लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, फिर मेरा होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करूँगी मैं, तो पहले से ही प्रेशर में आ रखी हूँ मैं।
1: अच्छी चल रही है पढ़ाई
0: भाई, 2 साल से यही हो रहा है।
1: बाकी मार्क्स बताएंगे सबको और आप लोगों को तो वैसे ही पता लग जाएगा।
0: हम लोग इसी चक्कर में रह रहे हैं कि अभी हम प्रोजेक्ट्स लें या फिर ट्यूशन या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर बोर्ड्स,
1: इसलिए पढ़ाई के बीच में औरा को टाइम नहीं लग रहा था कहाँ ले जाएं, इसलिए हमने कहा ये ऐसी गोवा वाली जगह पे ले चलते हैं जहाँ वाइब्स आ जाएं और औरा को 2 घंटे का एक फ्रेश हो जाए, अच्छा सा टाइम बीत जाए।
0: मेरा आधा दिमाग वही पड़ा हुआ है, पर यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी कि थोड़ा सा मेरी टेंशन गई। जब गाने बजे, गाना तो मेरे लिए बहुत सही होता है चीज, तो मेरे
1: म्यूजिक
0: तो
1: लवर बहुत,
0: या, मैं बहुत हाँ कोरल भी बहुत बड़ी म्यूजिक लवर है, सो यस। तो हमें तो बहुत मजा आया यहाँ पे,
1: और आप लोग गोवा की वाइब्स लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं मुंबई में, तो प्लीज यहाँ पर आइए,
0: यहाँ पे आइए, और यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी है एंड द वाइब्स आर सो गुड, यू कैन सी दिस इज सो प्रेटी। यहाँ पे फोटो सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोगों को फोटो खिंचवानी है एंड द बोट एंड ऑल, सो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो इसके लिए बहुत सही है।
1: सेशन भी करेंगे
0: हाँ तो यस गुड वाइब्स एंड बाय, थैंक यू।
2: तो भाई माँ बेटी ने तो दिल खोल कर एंजॉय किया, और अगर आपको भी मुंबई में गोवा का मजा उठाना है तो आ जाइए फेयरफील्ड बाय मैरियट, जहाँ है फ्लेवर्स ऑफ गोवा यानी कि गोवन फूड फेस्टिवल। अब वक्त हो चला है और उनकी मम्मी दीप्ति को बाय बाय कहने का। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: नाउ जस्ट इमेजिन, आप कर रहे थे अपनी फेवरेट किताब के ऑनलाइन आने का इंतजार, वो आ गई ऑनलाइन, हाउ रॉकिंग, वो भी 50% ऑफ पर, ओ माय गॉड। लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करने गए वैसे ही होगी वो आउट ऑफ स्टॉक, ओ माय गॉड, हो गया ना शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास, ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। कई खबरें आ रही हैं कि रियलिटी शो अलायंस में गौरव खन्ना नजर आ सकते हैं बतौर कंटेस्टेंट। वही हाल ही में उनकी वाइफ आकांक्षा लॉकअप सीजन 2 में नजर आ रही हैं, जिन्होंने उस सीजन में किया है अपने और गौरव संग डिवोर्स का खुलासा। ऐसे में अब ये खबरें कि गौरव खन्ना अलायंस में आएंगे, क्या बवाल मचाएगा ये देखना होगा। इसी के साथ देख लीजिए अलायंस का नया प्रोमो जहां खेल शुरू हो चुका है।
4: वंश को हम सपोर्ट करेंगे सब लोग।
5: आई सपोर्ट वंश।
4: व्हाई यू वांट टू स्पॉइल बिकॉज़ ऑफ वंश? मैं सबसे वर्ड ले रहा हूं वंश को कॉल करने।
5: इतना ज्यादा?
4: जब कोई बदतमीजी करता है बच्चों को सबक सिखाना पड़ता है।
6: ढेर सारी बातें और पॉइंट ऑफ व्यू।
2: लॉकअप का नया प्रोमो सामने आया है जहां पर खास मेहमान बनकर आ गई हैं कंगना रनौत, और अब कंगना कंटेस्टेंट्स की क्लास लेने वाली है जहां वो उन्हें कई सारी बातें बताएंगी, उनकी खामियां गिराने वाली है। साथ होंगे फारा और रितेश भी, यानी कि कंटेस्टेंट जरा बच के।
7: आज जजमेंट डे है।
6: हर्षद, आप लॉकअप में इनविजिबल का टैग लेकर आए थे, लेकिन ये हफ्ते इनविजिबल तो तू बिल्कुल नहीं रहा।
7: इंटरनेट ने आपको एक नाम भी दिया है, पूकी चोपड़ा।
4: पूकी
6: पूकी क्यूटी क्यूटी पूकी।
8: धीरज, तुम खुद को शाहरुख खान बोल रहे हो, तुमने तो शाहरुख खान का मतलब एस भी नहीं है यार। तुम्हें मेन कैरेक्टर एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी। साइड में साइडलाइन होते जा रहे हो बिल्कुल ही। राम जी, गेम को सीरियसली नहीं लेना था, और अगर आपको लगता है कि यू आर टू बिग फॉर दिस जेल तो फिर आप आए क्यों अपनी ये फूहड़पन दिखाने के लिए?
4: जब वो वक्त आएगा, आई विल ओन माई ट्रूथ एज वेल और बेटर देन एनीबॉडी हियर।
8: डोंट डिफेंड योरसेल्फ इफ यू वांट टू इंप्रूव।
7: इस गेम में आपके सीक्रेट्स, आपके तीन बड़े सच, आपकी लाइफलाइंस। आकांक्षा, आपको पता है आपकी कितनी लाइफलाइंस बची हुई है?
9: दो।
7: सुनाई नहीं दे रहे?
9: दो।
7: मैं आपको बताता हूं, आपकी सिर्फ एक लाइफलाइन बची हुई है, दो लाइफलाइंस खर्च हो चुके हैं। आपको पता नहीं कैसे? चलो मैं दिखाता हूं आपको।
2: इसी के साथ श्रेया देखिए कैसे सबकी पोल पट्टी खोले जा रही है और सभी के बारे में कर रही है बातें, जिस वजह से हो रही है काफी कॉन्ट्रोवर्सीज।
10: करियर इज डेड। शिवांगी का पिछला शो फ्लॉप था,
11: शोज बंद भी।
10: हर्षद को कोई काम नहीं दे रहा बाहर।
11: नहीं दे रहा।
10: एरोगेंट है वो बाहर। दैट्स व्हाई ही इज नॉट मैरिड, बिकॉज़ नो वुमन वुड मैरी अ गाय लाइक
11: हिम। तेरी किसके साथ निभेगी ये बता दे।
2: आ गई है नई शहर, यानी कि भाविका। देख लीजिए शहर का नया प्रोमो जहां माहिद और शहर का आमना सामना होगा, क्योंकि अब बदल गया है शहर का अंदाज।
12: हमारी अम्मी की मौत आपके वजह से हुई। आप गुनहगार हैं माहिद।
13: कातिल हैं।
12: खूनी हैं।
13: कातिल हैं आप।
14: ये गूंजती आवाज हमारे लिए सजा बन चुकी है।
15: माहिद, खुद को यूं सजा मत दो।
16: डॉक्टर, एक पेशेंट को आपकी जरूरत है।
17: शहर नहीं, डॉक्टर शहर कौशल वेग।
18: तू क्या कर रही है? मेरा भी घर है।
19: ये मेरा घर है राही, और तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। क्या
2: सीरियल अनुपमा में आने वाला है कहानी में नया ट्विस्ट, जहां प्रेम राही को घर से बाहर निकाल देगा। ऐसे में अनुपमा राही का सहारा बनने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसी के साथ अनुपमा अब अपनी नई पहचान बनाएंगी खुद का घर लेकर।
20: औरत का कोई अगर नहीं होता है मम्मी।
21: इतने सालों से माँ की छत को अपना समझा, ससुराल की दहलीज को अपना समझा, और अपना घर तो बना ही नहीं, पर अब भी देर रही हुई है। मैं अपनी मेहनत से, अपने हुनर से अपने लिए एक आशियाना बनाऊंगी, एक आशियाना बनाऊंगी।
2: मुंबई में इन दिनों काफी बारिश हो रही है, ऐसे में अशनूर कौर ने ये वीडियो शेयर कर बताया है कि कैसे उनके घर में पानी भर गया है।

0: खबरों की माने तो गौतम सिंह विग नजर आएंगे ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट के नए शो में बतौर लीड, जो कि स्टार प्लस पर आएगा, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
1: साक्षात देवी का रूप लग रही हो तुम।
0: जगधात्री का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर जगधात्री लेगी रौद्र रूप और करेगी दुश्मनों का संहार।
1: के बाद ये मुहूर्त आया है, थोड़ा फील तो लेने दीजिए।
2: बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल एजेंट जेडी, अगर तू अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिली तेरी बहन विधवा हो जाएगी।
1: राज तेरे पापों का भी अंत होगा,
3: तेरे पापों का भी अंत होगा।
1: ऐसी मौत दूंगी मैं तुझे मूसा कि तेरी आत्मा भी मेरा नाम कभी नहीं भूल पाएगी। जगधात्री तेरा पाल।
4: तो क्या कह रही है यहाँ पर राज भूमिका राधिका वीर लक्ष्मी श्रीनिवास की ये कहानी, क्या यहाँ पर खुलेगी हमारे लिए एंटरटेनमेंट की किताब? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको लक्ष्मी निवास के सेट पर। वैसे कहानी का लेखक इसमें लेकर ही आता है ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि हम सब इस कहानी से बंधे रहते हैं। जैसे ही कहानी होती है थोड़ी भी सीधी सादी, वैसे ही आ जाता है यहाँ पर कोई ना कोई नया ड्रामा। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आप सबको लक्ष्मी निवास के सेट पर।
0: राधिका और वीर का गृह प्रवेश। गृह प्रवेश से पहले शुरू हुआ तमाशा।
5: इस लड़की की वजह से आज इतना बड़ा अपशगुन होने वाला था।
0: शगुन में लगा अपशगुन। टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वीर और राधिका की शादी तो हो गई, लेकिन तमाशे अभी खत्म नहीं हुए हैं। भाई बड़ी मुश्किलों से तो वीर और राधिका की शादी हुई थी कि गृह प्रवेश में फिर एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। असल में वीर के तीनों दोस्तों ने राधिका के गृह प्रवेश के लिए सारी तैयारियां कर दी है और देखिए कैसे ये लोग तैयार हैं इनका घर में स्वागत करने के लिए। लेकिन इससे पहले राधिका कलश पैर से गिराकर घर में एंट्री लेती। सामने खड़ा है वीर का पूरा परिवार और नलिनी यानी कि राधिका की सासू माँ तो गृह प्रवेश के बिल्कुल खिलाफ है और उसने ये गृह प्रवेश रोक भी दिया।
5: रुक जाओ। खबरदार, इस घर में एक कदम भी रखा।
0: असल में नलिनी और बाकी के घर वाले नहीं चाहते कि राधिका के साथ उसकी बच्ची निया भी इस घर में आए और इसी के खिलाफ पूरा घर है। तो एक तरफ है वीर, राधिका और निया। ऐसे में शुरू हो चुकी है बहसबाजी, जहां निया और राधिका के लिए अपने पूरे परिवार से वीर लड़ रहा है। ऐसे में पूरा परिवार वीर को तो नहीं बल्कि राधिका पर ही इल्जाम लगा रहा है और उसे खरी खोटी सुना रहा है।
6: मम्मी आप जानती हैं, हमारा हर फैसला सही और गलत के आधार पे होता है, रिश्तों के आधार पे नहीं।
5: इस लड़की की वजह से आज इतना बड़ा अपशगुन होने वाला था। तुमने देखा ना, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी वीर। देखो वीर, शादी तुमने अपनी मर्जी से की है, लेकिन इन सब में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और तुम भी कान खोलकर सुन लो राधिका, ये लड़की मेरे घर में एक कदम नहीं रखेगी।
6: मम्मी आप क्या कह रही? अरे निया एक बच्ची है, और बच्ची के बारे में जैसा बातें, अरे बोलना तो

0: सुनो, ये हमारा घर है, कोई अनाथ आ जाना है, लड़की नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, बस।
1: एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, हम अपना वचन निभाएंगे।
2: चलिए राधिका जी।
3: तो भाई इन सब झमेले में वीर ने फैसला लिया कि वो इस घर में आएगा ही नहीं, बल्कि राधिका और निया को लेकर कहीं और चला जाएगा। और असली तमाशा तो अब शुरू होगा, जहां पर अपने बेटे वीर को रोकने के लिए नलिनी यानी कि वीर की माँ देखिए कैसे दहलीज पर लेट गई है। ऐसे में अब वीर मजबूर है कि वो राधिका और निया को चुने या अपनी माँ और पूरे परिवार को।
0: वीर! है और ना ही ये परिवार हमारी बराबरी का है, उसके बावजूद भी दिल पर पत्थर रखकर इस लड़की के कुंडली दोष को मैंने स्वीकार किया है। लेकिन अब इस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। तो ये तुम्हारा खून है और ना ही तुम्हारी पत्नी का, अपने उनके रिश्तों का इस तरीके से मजाक बनाकर रख दिया है। राधिका ने तो उस लड़की को जन्म भी नहीं दिया। वीर, मैंने तुम्हें अपनी कोख से पैदा किया है, तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ का दिल दुखाओगे, अपनी माँ से लड़ोगे तो?
1: खून के अलावा भी रिश्ते होते हैं मम्मी, और वो होते हैं दिल के रिश्ते, और वो खून से भी ऊपर होते हैं।
0: इतने ऊपर कि उनके लिए तुम खून के रिश्तों का मजाक बनाओगे इस तरह से? प्लीज उठ जाइए।
2: अरे घर के अंदर जाके बात करते हैं ना, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा इस प्रॉब्लम का।
0: मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी।
4: कोई एक्चुअली भूल समझ लिया है। वो तो है ही है, भूल तो है ही है मेरी तरफ से, क्योंकि नलिनी को लगता है कि जो भी वीर कर रहा है इस वक्त वो एक्चुअली में गलती करी है उसने राधिका से शादी करके, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी मैच की नहीं है, उम्र में बड़ी है, कुंडली में दोष है, ऑलरेडी एक बच्ची की माँ है, शादी दो दो बार टूट चुकी है। तो कहीं ना कहीं एज़ यूजुअल जैसे कि नलिनी शुरू से ही बोलती आ रही है कि उसके लिए राधिका सही लड़की नहीं है। और आज जो हम शूट कर रहे हैं उसमें हम गृह प्रवेश दिखा रहे हैं। अब गृह प्रवेश जब किया जाता है तो बहू का स्वागत दिल से पूरे घर वाले जो है लड़के वाले वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लड़के वाले खुश नहीं हैं, नलिनी तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो और ऑन टॉप ऑफ इट वीर ने निया के साथ राधिका को एक्सेप्ट किया है। वो कहीं ना कहीं उसको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है कि मैं राधिका और निया को कभी अलग नहीं करूंगा, जो बात से नलिनी बिल्कुल अनजान है।
3: भाई ये तमाशा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में राधिका ने इस तमाशे पर ब्रेक लगाने के लिए एक फैसला लिया। उसने जैसे तैसे वीर को भी समझा लिया कि फिलहाल वो निया को अपने मायके भेज रही है, पहले वो खुद अपने ससुराल में एडजस्ट करेगी और फिर जब सब ठीक रहा तो निया को भी बुला लेगी। ऐसे में वीर भी राधिका की बात को मान गया है।
1: एक बात बता रहे हैं आप लोग को, हम निया के बिना अंदर नहीं जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। चलिए अपसेट, अरे अपसेट ही सेट करते हैं सबको, देखते हैं कौन रोकता है, चलिए ना। राधिका जी, आप हमारे परिवार वालों को नहीं जानती, सबके सब एक नंबर की टेढ़ी खीर है, और आप उनके दबाव पे अपना फैसला मत बदलिए, आपको पूरा अधिकार है अपनी बिटिया के साथ जीवन बिताने का। अरे देखते हैं कौन रोकता है, हम चले ना साथ में भाई।

0: यानी कि राधिका के गृह प्रवेश से पहले हो गई निया की विदाई। लेकिन इस बात को भी नलिनी ने राधिका की चाल ही समझा और फिर एक बार उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया।
1: मान गए तुम्हें राधिका, क्या चाल चली है तुम्हें? सबके सामने निया को भेजने के लिए तुम मान भी गए और अंदर ही अंदर तुमने वीर को इस बात के लिए राजी भी कर दिया कि 15 दिन के बाद तुम उसे इस घर में वापस ले आओगी। ऐसे जिस लड़की ने शादी से पहले ही

0: वाले पति को उसी के परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया हो, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो माँ और बेटे के बीच में आए वो औरत जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती।
1: थीम तो ड्रामा है, कलर पिंक है।
2: कौन सा पिंक है ये?
1: अरे ये मैं इतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ लाइट पिंक सा लग रहा है। सो अमेजिंग सीक्वेंस, बहुत मजा आया करने में, बहुत सारा ड्रामा, पर कुशल मंगल सब कुछ रहा और शादी अच्छे से निपट गई। सो ओवर टू यू राधिका।
2: आप बोलिए।
1: ओवर टू मी अगेन। सो तो शादी बहुत अच्छी रही, लंबा ड्रामा था, निया का खोना, माही की चालें, वीर का दोनों जगह बैलेंस करना, फिर गृह प्रवेश और फिर निया का वापस जाना। सो काफ़ी हैवी सीक्वेंसेस हैं, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से शूट हुआ है, आपको देखने में उतना ही मजा आएगा।
2: लोगों की शादियों में अक्सर विदाई इज द पॉइंट जहाँ पे यू नो रोना धोना होता है, ये तो पूरी शादी में, मतलब
1: पूरी शादी में सब रोए।
3: हाँ। भाई सारा तमाशा तो खत्म हुआ। इसके बाद वीर के दोस्तों ने किया राधिका का गृह प्रवेश। भाई राधिका अपने ससुराल में तो आ गई है, लेकिन ये ससुराल गेंदा फूल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राधिका और वीर को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

0: खैर ये तो रही सीन की बात, लेकिन बिहाइंड द सीन इनकी मस्ती भी चल रही है और ये सीन के बारे में भी बता रहे हैं।
1: हो गया गृह प्रवेश, हो गया, मम्मी लेट गई, सारी चीजें हो गई, उनकी शर्तें मानी गई और वहाँ पे देखिए ऐसा गृह प्रवेश होता है, तोड़ा ताड़ी चालू हो गई है, मम्मी ने सामान फेंकना शुरू कर दिया है और मम्मी हमारी मेथड एक्टर है तो अभी रोल नहीं हुआ, स्टिल शी इज गेटिंग टू हर कैरेक्टर। सो गृह प्रवेश हो गया है एंड गृह प्रवेश हो गया है फाइनली, अब आगे का बहुत सारा ड्रामा है कैसे वीर फैमिली और राधिका जी दोनों को बैलेंस करता है और दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन का ब्रिज बनाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द जर्नी ऑफ वीर और राधिका कैसे मैच्योरली सब कुछ हैंडल करती हैं, वो राधिका जी की जर्नी रहेगी।
2: This astral is not a Genda pool for me, yeah. But my husband is Genda pool for me that way. हाँ, वीर इज स्पूकी, राइट। देखा खुद की खुशी पे एकदम स्माइल आती है इनके चेहरे पे। तो मिया चली गई है, लेकिन ठीक है, राधिका को उसके पेरेंट्स ने समझाया। क्या है? राधिका को उसके पेरेंट्स ने समझाया है कि छोके वो आ जाएगी, तो मान गई है, उसको भी समझ में आ रहा है शायद मिया के लिए क्या ठीक है। तो पहले वो टॉर्चर झेलेगी जोहान हाउस का, फिर बोलेगी अपनी बेटी को बुलाएगी कि तू भी से बाद में।
1: सीरियसली इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन कि एकदम से इतने कैओटिक माहौल में निया को लाना सही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उसकी लाइफ बहुत कैओटिक रही है। सो अभी राधिका जी पहले इस घर को समझेंगी, माहौल को समझेंगी, जब ये सारी चीजें कूल डाउन हो जाएंगी तब निया का आगमन होगा।
0: तो भाई हो जाइए तैयार राधिका और वीर के शादी के बाद ये नई मुश्किलें देखने के लिए जो राधिका के ससुराल वाले ही उसके लिए खड़ी करने वाले हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ईशा और सूरज की कहानी के भी पन्ने पलटेंगे और शायद अब कहानी में हो जाएगा सब कुछ ठीक, शायद अब यहाँ पर परेशानियां कम हो जाएंगी और हो सकता है जल्द ही आए हमारे पास यहाँ से कोई ना कोई गुड न्यूज जिसका हम सबको है बेसब्री से इंतजार। तो चलिए लेकर चलते हैं हम सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: IPS बनकर लौटी ईशा

0: खुशी से झूमा सूरज। ईशा का शानदार स्वागत। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज दादा भाई यानी कि सूरज के शागिर्द नए आईपीएस ऑफिसर को पकड़कर दादा भाई के सामने ले आते हैं, और जैसे ही आईपीएस ऑफिसर के सिर से कंबल हटता है तो सामने ईशा होती है, जो अचानक गिरने ही वाली होती है कि सूरज उसे संभाल लेता है। ऐसे में ईशा अपने आप को भी संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती हैं, तो वो सूरज का ये अंदाज देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले कि ईशा सूरज से कुछ सवाल करती, बजने लगते हैं ढोल नगाड़े और ईशा के स्वागत में झूमने लगता है सूरज, वो भी खुशी के मारे।
1: ईशा भाभी घर पे वापस आ रही है।
2: जो भी जिसकी भी पोस्टिंग इंदौर शहर में होती है तो सबसे पहले दादा भाई उससे मिलने जाते हैं या दादा भाई के दरबार में वो खुद आता है, ये रूल बना है। तो कोई आईपीएस ऑफिसर आने वाला रहता है जिसका आइडिया नहीं रहता है एंड किसकी पोस्टिंग हुई है इसका डिटेल सूरज के पास नहीं रहता है, इन शॉर्ट दादा भाई के पास नहीं रहता है। बंटी टेंशन में रहता है और बंटी अपने फंडस को बोलता है, मतलब कि जो नए आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं जो भी हो उसको उठा के लेकर आना। तो सूरज को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि ईशा जी है, क्योंकि ईशा जी ने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि मेरी पोस्टिंग हुई कहाँ है, वो सरप्राइज रखा है उन्होंने। और सूरज को लगता है जो भी आईपीएस ऑफिसर है उसको उठा के पकड़ के लेकर आ, और जैसे ही यहाँ पे आता है, और उसके पहले एक छोटा सा ऐसा दिखाया गया कि सूरज को कानो कान खबर लग जाती है कि ईशा जी की पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, तो उसे सब पहले से ही पता रहता है, वो प्री प्लान करके बैठा रहता है सारी चीज़ें, क्योंकि ऑडियंस का दरबार भी नहीं हिलना चाहिए और ईशा जी आ रही हैं वो भी नहीं हटना चाहिए। ईशा जी आ जाती है तो यहाँ पे वो अपना मतलब कि सब छुपाने लगता है कि आई एम नॉट दादा भाई, इट्स जस्ट सरप्राइज तुम्हारे लिए था, एंड कैसा लगा मेरा सरप्राइज, ये वो बातें बनाने लगता है। अब मुद्दा ये है कि सूरज कितने दिनों तक इन बातों के बीच में छुपा रहेगा।
3: ईशा को कुछ नहीं पता है कि वहाँ घर में अब कोई नहीं है, सब यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, आईएएस नहीं रहा सूरज, दादा भाई अलग चालू है, तो मुझे उठा लिया गया, किडनैप हो गई मैं और सीधा ले गए दादा भाई के पास। तो मैं ईशा वही कि कहाँ कहाँ ले जा रहे हो, एंड देखती है कि ये सब क्या है सूरज और ये सेटअप और इतने सारे लोग दादा भाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे सब कवर कर लेते हैं चीज़ें कि सूरज भी कि ये आपके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज का प्लान है, तो अभी कोई बाहर नहीं आने देता बात।
0: भाई ईशा आईपीएस ऑफिसर बनकर लौटी है, ऐसे में सूरज बहुत खुश है और तो और घर के बाकी लोग भी ईशा का आरती से स्वागत कर रहे हैं। ये देख ईशा वाकई सरप्राइज है, क्योंकि ईशा तो खुद परिवार को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसका स्वागत इस तरह से हो रहा है वो खुद ही सरप्राइज हो गई है, और सबसे ज्यादा सरप्राइज तो वो सूरज के इस लुक को लेकर हो रही है।
4: अब दादा भाई को दादा भाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
5: कुछ नहीं ईशा जी, शरारत कर रही है, सरप्राइज का हिस्सा था।
2: यहाँ पे शपथ ली है ईशा जी की वो कानून के दायरे में रहकर सारा काम करेंगे, और सूरज ने एक शपथ लिया है कि वो कानून के दायरे से बाहर निकल के ही काम करेगा, अब कानून को कभी वो पूछेगा भी नहीं। तो अब मजा यही आएगा जब एक कानून के दायरे में रहकर काम करने वाली और कानून के दायरे से बाहर जबरदस्ती जाने वाला बंदा, वो कितना मजा आएगा ये, या दीवार भी कह से काइंड ऑफ थिंग। तो अब मजा आएगा बिकॉज एक तरफ तो ये भी है और दूसरी तरफ प्यार भी है, तीसरी तरफ दोनों पति पत्नी भी हैं,
3: मुझे पर्सनली प्राप्ति को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा यू नो ऐसे मुझे वर्दी बहुत फैसिनेटिंग लगता था, वर्दी वाली चीज़ें बहुत एडमायर करती थी, तो और वेरी फर्स्ट टाइम मुझे वर्दी पहनने मिली, तो यू नो वो सचमुच ऐसा होता है कि पहन कर ना अलग वो कॉन्फिडेंस, अलग वो फर्मनेस आ जाती है कि या मैं एक लेवल पर आ गई हूँ, तो वैसा ही फील हो रहा है। एंड ईशा को भी कैरेक्टर में अब वैसा ही रहना है, थोड़ा थोड़ा सा लाइक IPS बन गई है, थोड़ी मेच्योरिटी ऑफकोर्स आ गई, एक साल हमारा शो लीप ले चुका है, तो यहाँ आगे यही सारी चीज़ें होती है, सबका सपना पूरा हुआ है, बहुत खुश है, ईशा एंटर करती है, तो प्राप्ति भी ऑफकोर्स ईशा के लुक को लेके खुश है।
0: फिलहाल तो पिछले एक साल से घर में जो भी घटनाएं घटी हैं उससे ईशा अनजान है, वो तो इस बात से भी अनजान है कि सूरज IAS छोड़ चुका है और अब वो दादा भाई यानी कि गुंडा बन गया है। हालांकि सूरज ने ईशा के सामने ये सच आने से रोक लिया है, लेकिन ईशा उसे कहीं ना कहीं डाउट हो गया है, इसीलिए तो उसने सभी के सामने सूरज को दे दिया है अल्टीमेटम।
3: वो भी वार्न करती है कि दोबारा ये गुंडे वाले प्रैंक मत करना मेरे साथ, तुम IAS बन चुके हो और तो उसी में रहो, ये गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें मेरे सामने मत करना, और दादा भाई वाले वर्ड्स भी मैं सुनना नहीं चाहूँगी। तो ईशा वो वार्न कर देती है, तभी कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज वो सब चाहते हैं कि ईशा नई नई IPS बन कर आई है तो उसकी खुशियाँ ना छीने, इसलिए सब चुप है। आरव नहीं रहा ये भी ईशा को नहीं पता है, पापा जी कोमा में ये भी नहीं पता है, तो बहुत कुछ नहीं पता। एक साल में स्टोरी बदल गई, ईशा भी ऑडियंस के साथ है, ऑडियंस के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है।
2: पिछले 8-9 महीने 10 महीने से दिखाया गया शो में कि ये यही सारी चीजें कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि इसके राइट हैंड बंटी है एंड खुशबू भाभी एंड काव्या, ये दोनों भी मेरे साथ है, बिकॉज खुशबू भाभी को दिखाया गया वो लॉयर है, तो वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें कर रहे हैं। अब इसमें जो पूरन भाई है एंड ताई माँ है और मोनिका भाभी है, ये अपोज हो गए हैं सूरज के काफ़ी, क्योंकि इनका यही कहना है कि गलत रास्ते पे तू फिर से क्यों आया। लेकिन सूरज अब इंसाफ दिलाता है लोगों को, चाहे वो सही तरीके से हो या चाहे गलत तरीके से, लेकिन इंसाफ जरूर दिलाता है।
0: फिलहाल तो सूरज ने सिचुएशन संभाल ली है और उसका दिल बहुत खुश है, क्योंकि ईशा IPS वर्दी में उसके सामने जो खड़ी है, इसीलिए वो जी भर के अपनी ईशा को देख रहा है। इतना ही नहीं, वो तो ईशा को सैल्यूट भी कर रहा है, ये देख ईशा भी बहुत खुश है।
6: जय हिंद,
3: जय हिंद। हमारे कितने सारे फैंस लेकर ये तो 100% तुम बहुत अच्छे।
0: फिलहाल तो मोहल्ले वाले सूरज के वाकई फैन हैं, लेकिन सूरज दादा भाई बन चुका है, इस बात से ईशा कब तक अनजान रहेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: इन पुस्तकों का हमारे जीवन में यही महत्व है जैसा सूर्य का पृथ्वी के लिए, बात तो सही है। वैसे ऐसा ही साथ है यहाँ पर अपराजिता और रक्षित का भी, दोनों हैं एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे और दोनों हैं एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी। वो क्या है ना, कभी कभी दो लोग जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही है ये जोड़ी। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
0: ललित पर फूटा रक्षित का गुस्सा, लापता अपराजिता के लिए परेशान घर वाले, जांच पड़ताल में ललित की मां ने लगाया ब्रेक, प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता हो गई है लापता, जिसके चलते परेशान रक्षित अपराजिता के परिवार वालों को लेकर गया है ललित के घर के बाहर ढूंढने अपराजिता को, क्योंकि रक्षित को डाउट है कि कहीं ललित ने अपराजिता के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है। लेकिन वहां पहुंचते ही ललित के घर के दरवाजे पर ताला लगा देख रक्षित और अपराजिता के घर वाले परेशान हो जाते हैं।
8: ललित का ही हाथ है और मुझे उस आदमी पर अब तक भरोसा नहीं।
9: बिल्कुल, मुझे भी। चलो
8: चले, चले।
0: भाई रक्षित और अपराजिता के घर वाले पुलिस को लेकर ललित के घर के बाहर भी आ जाते हैं और ऐसे में एक हवलदार पत्थर उठाकर ललित का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर पहुँच जाता है ललित भी और सभी के सामने चीखने चिल्लाने लगता है। बस फिर क्या, ये देख रक्षित से रुका नहीं जाता और वो पकड़ लेता है ललित का कॉलर और पूछने लगता है अपराजिता के बारे में।
6: मेरी बीवी है, उससे क्या करूँ मैं? उसके घर गया था, उसे लेने के लिए। हमारी मैरिज काउंसलिंग चल रही है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। फोन नहीं कर रहा, मुझे हुआ क्या है?
8: जैसा कि ये दिमाग में इसके कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसने फिर से कुछ किया है जिसका शक इस पे लोगों को हो रहा है, तो उस शक को यकीन में बदलने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं एंड उनको लगता है कि ये काम इसी ने किया है, तो दैट्स वाई दे आर हियर एंड दे आर टेलिंग मी टू ओपन द गेट, जिसको मैं यू नो एकदम प्लेनली डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। तो दैट्स वाई सारे यहाँ पे जमा हुए हैं, गैदर हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये इंसान जो है ठीक नहीं है, हमेशा यही करता है, तो इसने ही किया होगा ये कांड भी।
0: अब रक्षित को तो पता है कि ललित क्या कर सकता है, इसीलिए पुलिस भी रक्षित का भरोसा कर रही है और ललित को पुलिस गिरफ्तार करके ले ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर आ जाती है मोहल्ले की एक औरत जिसने ललित को कारनामे करते हुए देख लिया है। भाई उस औरत की बात सुनकर रक्षित को पूरा यकीन हो जाता है कि अपराजिता ललित के घर के अंदर कैद है। बस फिर क्या, पुलिस के कहने पर हवलदार वो ताला तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है ललित की माँ और वो न सिर्फ पुलिस को रोकती है बल्कि उनसे वारंट भी मांगने लगती है।
9: बिना वारंट के तलाशी नहीं ली जा सकती, दिखाओ वारंट का है, दिखाओ पहले।
10: वारंट भी दिखाएंगे, हवालात भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चलो यहाँ से।
9: अरे क्या कर रही हो, छोड़ो।
6: और तू बोलेगा ताला तोड़ू?
8: मेरी माँ वो माँ बेटे का तो यही है कि एक शेर एक सवा शेर है और एक दूसरे को बचाने के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे, तो यहाँ पे भी उसे कहने के लगा यार मेरा बेटा अकेले फंस रहा है, तो वो पहुँच जाती है। अब इंसान अपने अपने कानून छाँटता है कि यार वारंट दिखाओ, वारंट कहाँ तुम्हारे पास, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो, निकालो वारंट, तुम ऐसे कैसे हमारे घर में घुस सकते हो। व्हेन ललित इज कॉर्नर्ड बाय यू नो ऑल दिस पीपल, सो तब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक, वारंट सब कुछ है, तो हट यहाँ से। तो फिर उसको मजबूरन खोलना ही पड़ता है कि चलो यार अब इतना बोल रहे हैं तो भाई अब कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, बिकॉज सामने पुलिस भी खड़ी है, यू नो अगर पुलिस नहीं होती तो शायद ये कुछ ना कुछ बहाना मार के यहाँ से निकल लेता है या कुछ बोल देता है।
0: खैर पुलिस के आगे तो किसी की नहीं चलेगी, अब ऐसे में पुलिस ललित के कमरे में जाएगी और अपराजिता को ढूंढने की कोशिश करेगी। खैर अपराजिता के नाम मिलने पर रक्षित बेहद परेशान है और वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अपराजिता जा कहाँ सकती है। इसी बीच आ जाती है रक्षित की माँ भी, जिन्होंने देख लिया है ललित का लाइव वीडियो जिसमें वो रक्षित पर ही किडनैपिंग का इल्जाम लगा रहा है। ऐसे में रक्षित की माँ बेहद परेशान है।
11: ये काम रक्षित भारद्वाज का ही है, उसने मेरी बीवी को किडनैप किया है। जब मैंने किडनैपिंग के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मुझे जेल में बंद करवा दिया। अपनी बीवी की किडनैपिंग के आरोप में मेरी अम्मा कहती है कि पैसे की ताकत बहुत होती है और मैं गरीब, इसलिए आप लोग मेरी वानर सेना बनी, इस राक्षस से मेरी सीता को छुड़वाइए, मेरी बीवी को वापस लाने में मेरी हेल्प कीजिए।
0: अब ललित ने अपराजिता को कहाँ छिपाया है ये तो सिर्फ ललित को पता है, लेकिन देखना होगा क्या ललित रक्षित को जेल भेजने में कामयाब हो पाएगा?
12: इस वक्त हम उस जगह से लाइव हैं जहां अपराजिता शर्मा को आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद से वो गायब हो गई हैं।
0: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
12: इस केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, एमपी पुलिस ने इस मामले में अभी अभी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये कोई और नहीं बल्कि इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन रक्षित भारद्वाज है।
7: ये जो मिस्टीरियस कहानियां होती है ना, थ्रिलर्स, ये तो होते हैं बहुत ही रॉकिंग, लेकिन कभी कभी इन कहानियों का क्लाइमैक्स वो तो ऐसा हो जाता है कि खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, तो बस हो जाता है हम सबके लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है। हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: मन्नत और डॉक्टर आरंभी का महासंगम एपिसोड होगा जहां पर कई सारे ट्विस्ट आएंगे।
13: पिछली बार तो तेरी किस्मत तेरी मौत के बीच में आ गई थी विक्रांत, लेकिन इस बार नहीं।
14: मैं धैर्य का सच सबके सामने लेकर आऊंगी और विक्रांत की याददाश्त वापस लाके रहूंगी।
15: मेरे विहान को पूल में गिराकर उसकी जान खतरे में डालने का प्लान तुम्हारा था ना अवंतिका, अब भुगतना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम्हारे लवर बॉय डॉक्टर विश्वास टंडन को भी।
0: पर जल्द शुरू होने वाला है नया शो कैसी तेरी दिल लगी, देख लीजिए इसकी झलक।
16: प्यार और जंग में सब जायज है,
17: मेरे दिल से खेलना भी जायज है। छूटा प्यार जताया क्यों, जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों। कैसी तेरी दिल लगी।
0: कलर्स टीवी लेकर आ रहा है नया शो 108 बेस हॉस्पिटल पूरी। ऐसे में इसकी कास्ट का हिस्सा हो सकती है यंग बंगाली एक्ट्रेस आयोशी तालुकदार।

शनाया कपूर ने ज्वाइन कर ली है कास्ट जोम्बी रेडी 2 की, जो कि तेजा सजा के अपोजिट नजर आएंगी, यानी कि शनाया कर रही है साउथ फिल्म में डेब्यू।

किताबों के बिना कोई भी कमरा बिना आत्मा के शरीर जैसा है। वैसे ऐसा ही होता है जब अभीरा और हनुमान भी हो जाते हैं एक दूसरे से अलग, फिर तो हमारे लिए नहीं आता है शो में एंटरटेनमेंट, फिर तो आते हैं कहानी में सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट। इसलिए तो अभीरा और हनुमान हम देखना चाहते हैं आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ। तो क्या कुछ हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस कहानी में आज चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ। अरमान अभीरा का पुनर्विवाह, फिर से जुड़ा सात जन्मों का बंधन, अभीरा की खुशियों को लगा ग्रहण, जिंदगी और मौत से जूझेगा अरमान। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली आज पूरा परिवार अरमान अभीरा के पुनर्विवाह में एक साथ आ गया है। अरमान अभीरा बहुत खुश है, पूरा परिवार भी बहुत खुश है, और सबसे ज्यादा खुश है अरमान अभीरा की बेटियां। जरा देखिए कैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर शादी की सारी रस्में अदा कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा, मायरा और बाकी घर वालों के दिल में सिर्फ एक ही डर है कि कहीं वो अरमान को खो ना दे। लेकिन इस डर को दूर करते हुए अरमान अभीरा का हाथ थामे सात फेरे ले रहा है

0: अब देखना होगा कि अरमान की जान कैसे बचेगी और कैसे अभीरा अपना हौसला बढ़ाएगी।
1: नहीं तो सर्जरी में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो खत्म होने वाला है और हमारे पास कोई बैकअप नहीं है।
2: ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आती हूँ।
3: ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब तो वक्त आ गया है एंटरटेनमेंट की इस किताब को बंद करने का, लेकिन एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज का सिलसिला आपके लिए कभी नहीं होगा खत्म। अब मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
1: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
0: Smartless.
2: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
0: Marketplace.
3: The big three on the program today, or, you know, the big three of the
0: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
11: भारत और जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, AI डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। दिल्ली में मानसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें। चमोली में मॉनसूनी सीजन में किसी भी तरह की आपदा से निपटने की तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने की मॉक ड्रिल। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, अभी तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। टिकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों को भव्य स्वागत किया गया, पहनाई गई फूलमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन, रूट पर भारी सुरक्षा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई, बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को दी पवित्र यात्रा की बधाई, कहा यह आस्था और आत्म खोज की यात्रा है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था नवयुग सुरंग पार कर पहुंचा काजीकुंड, तो वहीं प्रशासन ने किया भव्य स्वागत, कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार कुल 57 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा, 28 अगस्त को होगी संपन्न। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल, उपराज्यपाल ने जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह हो रहा श्रद्धालुओं का स्वागत, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर ले रहे तैयारियों का जायजा। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा, यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित। बालटाल में स्थित अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास दिखा हिमालयी भूरा भालू, खाना खोजते हुए नजर आया भालू, लोगों ने बनाया वीडियो। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया जारी। जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप, श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे के भी इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जांच की, CCTV और ड्रोन कैमरों से भी की जा रही है निगरानी, आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल भी की गई। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। बारिश के बाद कांगड़ा की वादियां हुई और भी हसीन, सुहाने मौसम का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। खूबसूरत वादियों ने बढ़ाया आकर्षण, सुहाने मौसम को देखते हुए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। लगातार बारिश के कारण मुस्तैद हुआ प्रशासन, निर्माण स्थलों से मलबा हटाने के लिए एनएचएआई की विशेष टीमें तैनात। सुहाने मौसम के साथ सतर्कता का संदेश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम अलर्ट मानने की अपील की। मॉनसून के बीच सुरक्षा पहली प्राथमिकता, संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रशासन की लगातार पैनी नजर। पहाड़ों में मॉनसून ने दी दस्तक, पहाड़ों में बढ़ती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहावना, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी, लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। बारिश के बाद प्रशासन भी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की दे रहा है सलाह, मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। पहली ही बारिश में बद्रीनाथ मार्ग गुलाबकोटी में बंद होने से यात्रियों की संख्या में आई गिरावट, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। केदारनाथ धाम में हो रही है लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश बरकरार, जयकारों से गूंजमान बाबा केदारनाथ का धाम। अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। फिलहाल बाबा केदार के धाम में बारिश में भी दर्शनों के लिए यात्रियों की लगी हुई है लाइन। मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा का किया जा रहा है संचालन, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जाता है। चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। हाईवे बंद होने से तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का सामना, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक, सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश। दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, एएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लुढ़का तापमान, कम हुआ भीषण गर्मी का असर। हरियाणा राजस्थान के लिए राहत की खबर, अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मॉनसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने में जुटे। मुंबई के उपनगरों में भी जोरदार बारिश, पालघर, रायगढ़ और ठाणे में हुई बारिश। मुंबई में बारिश के मौसम में हादसों से बचाव की अपील, बारिश के दौरान जरूरी काम होने पर घरों से निकलने और कमजोर इमारतों से दूर रहने की सलाह। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई गई संभावना। जम्मू कश्मीर के डोडा और भलेसा में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील, कहा भूस्खलन वाले इलाके में ना जाएं लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के कोरा गबल गुरेज में फटा बादल, नदी में आया सैलाब। बादल फटने के बाद प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, नदी नाले किनारे जाने पर लगाई रोक। गुजरात के जूनागढ़ में हुई जोरदार बारिश में अंडर ब्रिज में फंसी कार, फायर ब्रिगेड ने किया कार ड्राइवर का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बारिश के कारण अंडरपास फंसे यात्रियों की भरी बस, तो वहीं क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, जिला प्रशासन ने शुरू किया सड़क की मरम्मत का काम। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर चलाया जा रहा है निगरानी और जागरूकता अभियान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बीच पहाड़ों पर ठंड का एहसास।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
12: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
13: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
12: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये

0: समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव।

0: मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। दिल्ली में मॉनसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस से भरी गर्मी से राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें। चमोली में मॉनसूनी सीजन में किसी भी तरह की आपदा से निपटने की तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने किया मॉक ड्रिल। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, अभी तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। टिकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, पहनाई गई फूलमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन, रूट पर भारी सुरक्षा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए बस आने वाले हैं बाबा बर्फानी। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, कल से हो रही है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। तो आज बखान करेंगे भोले के धाम अमरनाथ की महिमा का। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप नहीं बनता है। अमरनाथ की कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां।

अद्भुत है वो हिमलिंग, अलौकिक है बाबा बर्फानी। सनातनी आस्था की ये कथा है सदियों पुरानी। एक बार फिर बोल बम के नारों से गूंज उठेगी घाटी, श्रद्धालुओं का जत्था स्पर्श करेगा वो पावन माटी, क्योंकि आरंभ होने जा रही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा, जो शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ मानी गई है। ये तस्वीर हाल ही की है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB के अध्यक्ष मनोज सिन्हा

0: कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलेगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। यात्रा की अवधि कुल 57 दिनों की होगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों की बस यही तमन्ना होती है कि उन्हें बस किसी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। चलिए अब आपको अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट के बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए दो रूट हैं। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट, दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रूट है। यहाँ से पवित्र गुफा तक पहुँचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। इस मार्ग पर चढ़ाई धीरे धीरे होती है, जिससे श्रद्धालुओं का शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल हो जाता है। साथ ही रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट अपेक्षाकृत छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफी सीधी, खड़ी और कठिन मानी जाती है। यह रूट बुजुर्ग बच्चों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया।
1: धार्मिक दृष्टि से ये गुफा युगों पुरानी है, वहीं शिव पार्वती कथा से भी जुड़ी मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका प्रमाण जो है वो मध्यकालीन से अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालय भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा प्राचीन है। ये गुफा जो है लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर ये जो गुफा स्थित है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, साथ ही यात्रा को शारीरिक रूप से कठिन भी बनाती है, लेकिन अनुभव को और भी विशेष बना देती है।
0: इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग के साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भावों से भर उठता है।
2: अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
1: रास्ते में भगवान शिव ने अपने साथ जितने भी उनके साथ प्रतीक चल रहे थे उन सभी का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, वहीं चंद्रमा को चंदनबाड़ी के पास छोड़ा, नाग को शेषनाग क्षेत्र में और गणेश जी को महागुणस के पास छोड़ा। इसके बाद वो माता पार्वती के साथ गुफा में पहुंचे। एक प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि गुफा में कथा सुनते समय 2 कबूतर इस रहस्य को सुन लेते हैं और वो अमर हो जाते हैं। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का दिखना श्रद्धालुओं को इस कथा को जोड़ कर देते हैं।
0: अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव माँ पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदनबाड़ी में उतारा, बाकी दूसरे पिस्कुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं।
1: जब भगवान ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाने के लिए गुफा चुनी थी, तो उन्होंने सभी प्रतीकों का त्याग किया था। इनमें चंद्रमा भी शामिल थे, जिसे उन्होंने यात्रा के दौरान छोड़ दिया था। और कथाओं के अनुसार चंदन बाड़ी या आगे के मार्ग में इसका तैयार हुआ था। इसलिए शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा और अमरनाथ यात्रा दोनों को जोड़कर देखा जाता है।
0: भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना होता है। भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है, लेकिन रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, राह में मुश्किलें कितनी भी आ जाए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता। आगे हम आपको बताएंगे अमरनाथ से जुड़ी कथा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: जीवन की हर बाधा हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वही श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा से जुड़े हुए हैं।
0: बोले बम की जयकारों से गूंज उठे की वादी।
4: सच्चे दरबार की जय।
0: भक्तों को दर्शन देंगे बाबा बर्फानी। आस्था का सबसे अद्भुत अलौकिक सफर माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। इसे आप कैलाशपति का वादी में स्थापित हिमलिंग या हिमधाम कह सकते हैं, जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही अपने आप प्रकट होता है और फिर अपने आप ही इसका लोप हो जाता है।
1: अमरनाथ गुफा में दिखाई देने वाला बर्फानी बाबा कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग माना जाता है। और ये कैसे बनता है? ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है। गुफा के बाहर बहुत ठंड होती है और गुफा के भीतर ऊपर से जो पानी टपकता है, जो बर्फ पिघलती है, उसी की सर्दी तापमान के कारण ये पानी जो है जमकर बर्फ में बदल जाता है और धीरे धीरे उसी जगह बर्फ का एक शिवलिंग जैसा आकार बन जाता है।
0: मान्यता है कि महर्षि भगु ने अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा की थी। अमरनाथ की गुफा में ही भगवान शिव हिमलिंग के स्वरूप में दर्शन क्यों देते हैं, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है।
1: अमरनाथ गुफा की यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा जो है भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी है। प्राकृतिक रूप से स्वयं भू बर्फ का शिवलिंग बनता है और यहाँ पर धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर तप का रहस्य सुनाया था, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा।
0: अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि यही वो तीर्थ है जहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। कथा है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। मान्यता है कि कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव के कहानी सुनाने के दौरान लगातार गुटर गुटर की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही है। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहां कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है।
1: कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि में जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद अमरत्व का क्या रहस्य है। तब भगवान शिव ने उन्हें अमरता का रहस्य बताने का निर्णय लिया, लेकिन ये ज्ञान सभी के लिए नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक एकांत स्थान चुना, वो थी अमरनाथ गुफा।
0: माना जाता है कि इस दिव्य गुफा में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बहुत ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन करके चित आनंद की प्राप्ति करते हैं।
3: बाबा के करिश्मे का ही असर है कि हर साल उमड़ता है भक्तों का रेला। अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव के पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमयी है इस पवित्र गुफा की खोज। मान्यता है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ही खोजा गया था। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी।
0: बाबा अमरनाथ की गुफा, जहां से जुड़ी है अमरत्व की कथा। एक ऐसी गुफा जो साधक को सांसारिक मोह से मुक्त रहने की सीख देती है। माना जाता है कि जो भी अमरनाथ की गुफा में जाकर प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग के दर्शन कर लेता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है, जिसकी कथा महर्षि कश्यप और महर्षि मृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है, एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया, जिससे वहां एक बड़ी झील बन गई। कथा कहती है कि जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। मान्यता है कि उस समय ऋषि मृगु हिमालय की यात्रा पर निकले हुए थे। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि मृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। कहते हैं, अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक दिव्य अनुभूति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, आइए जानते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग सी आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ की इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है। चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने इस गुफा की खोज की थी। उस गडरिये का नाम बूटा मलिक था।
1: जितने भी श्रद्धालु हैं वो ये बताते हैं कि एक मुख्य बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है जिसे हम बर्फानी बाबा के नाम से जानते हैं और उसके साथ दो छोटे छोटे बर्फ की संरचनाएं भी बनती हैं, इन्हें कई लोग भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक स्वरूप मानते हैं।
0: आस्था, भक्ति और शिव की शक्ति को साथ लिए भक्तों का जत्था महादेव की स्तुति के लिए उमड़ पड़ा है। ओम नमः शिवाय के जयकारों से वादी गुंजायमान हो रही है। भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। दुर्गम पथरीले रास्ते भी बाबा के दर्शन की आस में सुगम लगने लगते हैं। तो आप भी दीदार कीजिए बाबा अमरनाथ शिवलिंग के, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

और अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसकी एंट्री आखिरकार दिल्ली में हो गई है। दिल्ली वाले जैसे ही आज सुबह घर से बाहर निकले, सुहाने मौसम ने उनका मूड सेट कर दिया। आसमान में घने बादलों का ढेरा लगा हुआ था, हल्की बारिश की फुहारें थी और हवा में खुली एक खुशनुमा ठंडक। कुछ ही देर में दिल्ली और NCR के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। बदरा जमकर बरसे और गर्मी से परेशान दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक्टिव है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं गुजरात के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। राजस्थान में भी अगले कुछ घंटों में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं देश भर में कैसी है मॉनसून की चाल, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली NCR में मॉनसून ने एंट्री ले ली है और जल्द ही हरियाणा और राजस्थान में भी मॉनसून पहुंचने वाला है।

0: ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून का सफर हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तर प्रदेश का बाकी हिस्सा भी कुछ ही घंटों में बादलों से ढक जाएगा। 48 घंटे से भी कम देर में राजस्थान में मानसून मन भर बरसेगा। फिलहाल उत्तर के ज्यादातर हिस्सों में मानसून टफ की मेहरबानी बनी हुई है।
1: और तो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे हम मानसून टफ कहते हैं जो जब पूरा इंडिया कवर हो जाता है, तो अभी उसको सीजनल टफ बोलते हैं। इन जनरल सीजनल टफ एक बना हुआ है पंजाब से लेके ब्यो बंगाल तक। तो उसके क्या होता है कि नीचे तो वेस्टर्लीज होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज आती हैं, तो वो एक मानसूनल फ्लो है। तो वो बना हुआ है, उसका वर्टिकल एक्सटेंशन भी है, 1 किलोमीटर तक, 0.9 किलोमीटर तक है। तो इट्स बीन पूरा का पूरा मॉइस्चर्स आ रहा है, जिसके कारण आज भी ज़्यादातर हिस्से हमने कवर कर लिए। पूरा हिमालय कवर हो चुका है, पंजाब के कुछ हिस्से कवर हो गए, हरियाणा के कवर हो गए। तो आने वाले दिनों की अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो आने वाले 2 दिनों में हमारा अनुमान है जो पंजाब के ज़्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे, और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज़्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है, और साउथ ईस्ट गुजरात, साउथ ईस्ट राजस्थान भी कवर होने का अनुमान है।
0: ये जयपुर का आसमान है जहाँ छाए बादलों ने राजस्थान में मानसून के आने की मुनादी कर दी है, लेकिन पूरी तरह मानसून के छाने का इंतजार यहाँ अभी भी सबको है। मानसून पहले ही राजस्थान में 8 दिन लेट है, लेकिन अब बदला बदला माहौल बता रहा है कि राहत के बादल ज्यादा दूर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में राजस्थान में मानसून एंट्री कर जाएगा।
2: राजस्थान में इस बार मानसून 8 दिन की देरी के बाद अगले 24 से 48 घंटों के बीच में एंटर कर चुका होगा, और ये जो मानसून है ये 13 साल बाद तीसरी बार जुलाई के महीने में एंटर करेगा। और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें ये मानसून कोटा, बारा और उदयपुर संभाग से एंटर करेगा, जिसकी वजह से वहां पे भारी बारिश हो सकती है। वहीं ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ये खत्म होते होते मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से आने वाले 3 से 4 दिन जगह जगह पे भारी बारिश के अलर्ट हैं, और साथ ही साथ में अंधड़ के भी अलर्ट दिए जा रहे हैं।
0: देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो कोंकण, गोवा और गुजरात के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है।
1: आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा 5 दिनों का अनुमान है कोंकण, गोवा, साउथ गुजरात, वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगी, उसके लिए हमारा रेड अलर्ट है। और जो साउथ वेस्ट एमपी के रीजन है वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा 2 दिन, उसके बाद सब्सिक्वेंट 1-2 दिन वहाँ भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। और बाकी हिस्सों में जितना हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट 5-6 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है।
0: मुंबई की बात करें तो यहाँ मानसून ने देर से आने की भरपाई करीब करीब कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरा हफ्ता इसी तरह ठीक ठाक बारिश होती रहेगी। मुंबई में जून के महीने में बारिश 50% कम हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के बारिश ने 6% का बचा कोटा पूरा कर दिया है। हालांकि जहां जहां मूसलाधार बारिश का अनुमान है वहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
4: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने, लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा। ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को, जिसे चलने फिरने में दिक्कत है, ठेले पर बिठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा, लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना, पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, AI और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। राजधानी दिल्ली में मॉनसून का इंतजार खत्म हुआ, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के कोस्टल एरियाज में हाई टाइड का अलर्ट, 14 फीट ऊंची लहरें उठने की संभावना। मॉनसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। टिकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच फूलमाला से स्वागत, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा इंतजाम।

0: अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसीलिए गुड न्यूज टुडे के साथ आप भी चलिए अमरनाथ। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, नमस्कार। देश के हर हिस्से में आस्था की बयार बह रही है। वो पल, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका बाबा बर्फानी के दर्शकों भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। अमरनाथ यात्रा का जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। औपचारिक शुरुआत शुक्रवार से होगी, तो आज हम जानेंगे अमरनाथ धाम के महत्व के बारे में। महातीर्थ का पूरा सार क्या है वो आपको बताएंगे और शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन कैसे किया गया भी बताएंगे। शिव शक्ति के उस प्रसंग पर भी चर्चा करेंगे जिसका संबंध इस पवित्र गुफा से है। उस अमर कथा की बात होगी जो खुद महादेव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को सुनाई थी। साथ ही साथ इस महातीर्थ से जुड़े भक्तों के विश्वास, आस्था और जज्बे का नजारा भी दिखाएंगे जो अगले 57 दिनों तक घाटी में बाबा बर्फानी की भक्ति की अलख जगाएगा। यानी जहां गूंजी शिव की अमर वाणी, जहां होती है मोक्ष की प्राप्ति। समझिए तीर्थों के तीर्थ का सार, बाबा बर्फानी के धाम, आस्था अपरंपार। हमारे साथ देश के कथावाचक, जाने माने कथावाचक ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यात्रा मार्ग पर मौजूद हमारे सहयोगी भी आपको वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो घाटी में भोलेनाथ के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। हर हर महादेव, बम बम भोले बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज हर और सुनाई दे रही है। करोड़ों शिव भक्त आस्था के इस मार्ग पर चल पड़े हैं। अमरनाथ की पावन गुफा की ओर श्रद्धालुओं का पहला जत्था पूरे जोश और उत्साह के साथ रवाना हुआ। किसी के कंधे पर तिरंगा है तो किसी के हाथ में त्रिशूल है, तो हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अटूट आस साफ दिखाई दे रही है। 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उधर सुरक्षा के मोर्चे पर भी कोई ढील नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। हाईटेक निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है। आस्था, उत्साह और सुरक्षा तीनों के संग शुरू हो चुकी है बाबा बर्फानी की यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार लगभग खत्म हो रहा है। जम्मू के भगवती बेस कैंप से जत्था रवाना हुआ। हालांकि 3 जुलाई से इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। ये तीर्थ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। इसका समापन 28 अगस्त को होगा। बालटाल पहलगाम रूट से ये यात्रा होगी और इससे पहले 29 जून को पवित्र गुफा में पहली पूजा की गई थी। अमरनाथ हमारी भक्ति, तपस्या और शिव कृपा का महातीर्थ है। यहाँ शिव ने अमर कथा का उपदेश दिया था और यहीं शिवजी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। लेकिन कहा जाता है कि कहानी सुनते वक्त माता पार्वती को नींद आ गई और इसी दौरान गुफा में मौजूद कबूतरों ने चुपके से अमर कथा सुन ली थी। कथा सुनने से कबूतरों को अमरत्व की प्राप्ति हुई। तो भगवान शिव का पावन धाम अमरनाथ है, प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा है। यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। आज सुबह विधिवत पूजा के बाद तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। जाहिर है कि भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग कितने सालों से आ रहे हैं और आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं?
2: ये बाबा भोले की जो यात्रा है इसमें सालों की काउंटिंग नहीं है। पता नहीं कितने सालों से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम है यहाँ पे खड़ी हुई है और सब मतलब एक बार जो आ गया तो भोले बाबा का हो जाता है। और सुविधा की बात करें, J&K पुलिस आर्मी वाले जो है मतलब तय दिल से सेवा कर रहे हैं। किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और भोले बाबा का दरबार है, हमें आना है तो आना है।
3: यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अभी रहा है, आईडी कार्ड के लिए आए हैं। बस कैसे हमें मिल जाए ताकि हम कल मॉर्निंग अपनी चढ़ाई स्टार्ट करें।
4: पहली बार आए हैं और जिनके साथ आए उनका 29वां जत्था है ये बाबा के, और अपने पिता के घर आए हैं। हरी

0: नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पिछले 23 साल से मैं इस अपावन यात्रा पे आ रहा हूँ और जैसे जैसे मार्च का महीना शुरू होता है सभी शिव भक्तों में एक उमंग की लहर दौड़ जाती है कि हमारे अपने बाबा से हमें अपने पापा से मिलने का मौका मिलता है।
1: तो अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी ऑपरेशन सेवा के तहत 3-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी और इसके तहत सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के करीब 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट बालटाल कैंप से।
2: तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम?
3: देखिए यहाँ सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25 हजार के लोग यहाँ रह सकते हैं
2: जी। जिसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
3: देखिए जितने भी पैरामिलिट्री जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहाँ आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का ये होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है, हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है और जेएनके पुलिस के साथ सीआरपीएफ पूरा सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: वहीं सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम भी बालटाल बेस कैंप पर एक्टिव है ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह के लिए कोई दिक्कत ना हो, खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए। पिछले साल श्रद्धालु के लिए ये सुविधा शुरू की गई थी और इस बार भी सीआरपीएफ का महिला दस्ता पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए वहां पर तैनात। कैंपर एक्टिव है ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए। पिछले साल श्रद्धालु के लिए ये सुविधा शुरू की गई थी और इस बार भी सीआरपीएफ का महिला दस्ता पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए वहां पर तैनात है।
2: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं?
4: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
2: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती है, तो उनको कैसे आप बताती हैं?
5: सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहाँ बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर इनको तैनात किया गया है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कितने सालों से यात्रा कर रही हैं और अब इस तरीके की व्यवस्था सीआरपीएफ के द्वारा दी जा रही?
6: देखो, इनके बिना तो यात्रा सफल ही नहीं है। अगर ये लोग हैं तो हम यात्रा कर पा रही है, लेडीज खासकर, और जेंट्स तो मतलब ये तो 37 इयर्स से रेगुलर आ रहे हैं और इनके बिना यात्रा सफल नहीं है। इमोशनली भी, फिजिकली भी हर तरीके का सपोर्ट करती है। जब जब हमने इनको अप्रोच कराया तब तब इन लोगों ने हमें बहुत हेल्प।
1: तो जीएनटी के साथ चलो अमरनाथ, हमारे सहयोगी लगातार अमरनाथ यात्रा की पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं क्योंकि वो भी साथ ही साथ यात्रा कर रहा है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं। जितेंद्र भारत सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल ये कि आप कहाँ हैं, कितना उत्साह है, क्योंकि आपके पीछे की एक तस्वीर मैं यहाँ पर देख रहे हूँ, शायद भक्त आपके साथ मौजूद है, जोश कितना है भक्तों में, सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं बताइए।
7: देखिए नवजोत, मैं इस वक्त बालटाल जो बेस कैंप है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो तैयार किया है, इसके अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है, उसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उत्साहित हैं, हाथों में डमरू लेकर के यहाँ पर बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि जो लंगर लगाए गए हैं, यहाँ जय भोले की इस तरीके की तस्वीरें, भगवान भोले की और माँ पार्वती की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरीके से पूरा ये जो इलाका है वो लंगरों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो भी बाबा बर्फानी का भक्त आता है उसको यहाँ पर खाने पीने की फ्री में सुविधा है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। यहाँ आप जयकारा देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग लगा रहे हैं।
8: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बोल जयकारा वीर बजरंगी, बोल अमरनाथ बर्फानी की।
7: आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है और लोग यहाँ से जो ये ऊंची पहाड़ी आप सामने की तरफ देख रहे हैं, यहीं से एक रास्ता आगे की तरफ डोमेल है, डोमेल से पूरा करीब 14 किलोमीटर का रास्ता है, लोग खच्चर से पैदल जाते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, पिछले साल से इस तरीके की सुविधा को बंद किया गया है, लोग खच्चर से और घोड़े से यहां से जाते हैं। और ये पूरा रास्ता जो है काफी कठिन है, जो बालटाल का रास्ता मानते हैं, लेकिन बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो इसी तरीके से यहां पर मौजूद रहते हैं, काफी इनके अंदर खुशी है और इसी खुशी के चलते लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं और कोई भी दिक्कत इनको नहीं होती है। जहां तक सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से करीब 670 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां लगाई गई हैं और अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो बालटाल रूट हो या इसके अलावा बालटाल की पूरी सिक्योरिटी की बात हो, उसको भी लगाया गया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके की बुक्स भी बांट रहे हैं, कॉपियां हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका, यानी कि यहाँ पूरे जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं उन लोगों को ये लोग वितरित करते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि लोग इसमें 108 बार से ज्यादा जो है अपने नाम शिव जी के नाम लिखते हैं और उस नाम के साथ ही उनकी भक्ति में और ज्यादा ओतप्रोत होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनसे जानते हैं कि कब से इसकी शुरुआत आपने की?
9: नमस्ते, जय भोले की। मैं विपुल गर्ग, नीलम पेपर एजेंसी। नीलम कॉपीज आती हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया, सन 64 से हम माल बनाकर पूरे भारत में बच्चों के उद्धार के लिए बेच रहे हैं। ये भोले बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद से हमने ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका बनाई है। इसमें एक खाने में ओम नमः शिवाय लिखा जाएगा और ये पूरी एक माला बन जाती है। 108 मन के लिखने के बाद पूरे एक पेज पे एक माला और पूरी कॉपी में 108 माला पूरी हो जाती है हमारी।
7: बिल्कुल, तो 108 बार भगवान शिव का नाम लिखने के साथ ही लोगों को इस तरीके से लगता है कि वो लोग यहाँ पर आकर के अमरत्व की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि बाबा अमरनाथ के दर्शन करने का सिलसिला जो है बालटाल बेस कैंप से शुरू होता है और कल सुबह इसकी शुरुआत होगी। तो इसी तरीके से लोग जयकारा लगा रहे हैं।
1: बिल्कुल, चलिए जितेंद्र आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार इस यात्रा में भक्तों के साथ ही साथ चल रहे हैं और यात्रा के पल पल का अपडेट लगातार आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, यानी कि गुड न्यूज टुडे पर भी आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हर जगह की तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ इस वक्त आचार्य बद्रीशी महाराज भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम कथाएं हैं, बहुत कुछ है, किस तरीके से कहा जाता है कि अमृत की प्राप्ति अगर आपको करनी तो यहां पर दर्शन करने चाहिए। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, ग्रह गोचर के हिसाब से समय ऐसा है, भक्तों का पहला जत्था आज सुबह हरी झंडी के साथ ही रवाना हो चुका है, कल भक्त दर्शन करेंगे वहां पर?
10: देखिए सबसे पहले एक बात नवजोत जी, बिल्कुल कहा जाना चाहिए और श्रीराम चरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि भगवान शंकर जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा कि इच्छित फल बिनसिउ और आधे और लाइन जोग यज्ञ जब साधे। भगवान शंकर की आराधना से हमको मन के अनुसार जो फल की प्राप्ति है वो फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। फिर भी अगर इस टाइम में ग्रह गोचर की परिस्थिति नवजोत जी बात करूं तो मुझे लगता है बहुत शानदार परिस्थिति है। एक्चुअल में अगर भक्ति करने का कोई एक्चुअल समय है तो ये समय है जब हम भक्ति करें और उस भक्ति का जो हमें फल प्राप्त करना है वो हमें इस समय प्राप्त होता है। खैर मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से धन्यवाद करूं कि शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है कि अमरनाथ का दर्शन कर पाए, वहां जाकर के वहां अपनी यात्रा को कर पाए, दर्शन कर पाए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जीएनटी देखते हैं और आपके माध्यम से हर जगह की जानकारी, हर जगह का जो दर्शन है वो हमें प्राप्त होता है। और जब भक्ति की चर्चा होती है तो मैंने बार बार कहा है कि दरस परस मज्जन अरुपाना ये कहा जाता है सरद जी के बारे में। लेकिन श्रवण करना, दर्शन करना ये भक्ति का एक सूत्र है। जो नौ प्रकार की भक्ति है उसमें दर्शन और श्रवण ये एक बहुत सुंदर भक्ति कहा जाता है। आपके माध्यम से हम लोग उन तीर्थकों का दर्शन कर पाते हैं जिससे अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। अब अगर मैं दोबारा फिर ग्रह की परिस्थिति पर आऊं तो इस समय शुक्र, बृहस्पति और बुध, मैं बार बार कह रहा हूं ये संयोग बार बार नहीं बनता है जीवन के अंतर्गत। जब देव गुरु बृहस्पति जो धर्म के सबसे प्रबल कारक प्लैनेट हैं, जो वास्तविकता में जिनको भाग्य उदय कराने वाला प्लैनेट कहा जाता है, उस समय काल पुरुष के चौथे भाव के अंतर्गत उच्चस्थ होकर के बैठे हो, फिर जिनको लक्ष्मी कहा जाता है, स्वयं भगवान स्वयं शुक्र वो उनके साथ जाकर के गोचर कर रहे हो, और जिनको ग्रहों में सरस्वती कहा जाता है बुध वो आकर के एक साथ गोचर कर रहे हो, तो एक समय अगर जीव सरस्वती और लक्ष्मी का योग बन जाए, ऐसा योग ज्योतिष में जनरली नहीं बनता है। हंस नामक जो सबसे बेहतरीन योग ज्योतिष के अंतर्गत कहा जाता है, इस समय बृहस्पति के केंद्र में गोचर करने से वो बना हुआ है, तो इस समय की भक्ति निश्चित रूप से हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और क्योंकि आपके माध्यम से एटलीस्ट हम अगर नहीं भी जा पा रहा है, कोई अपने घर पर नहीं जा पा रहा है वहां, तो अपने घर पर बैठ करके दर्शन कर रहा है, दर्शन करते हुए इन चर्चाओं को श्रवण करते हुए और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें तो मुझे लगता है कामना पूर्ण होगी। जी नवजोत,
1: इसीलिए तो राज मिश्रा जी हम लगातार कह रहे हैं कि जीएनटी के संग चलिए अमरनाथ, क्योंकि हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है यहां तक पहुंचने का। लेकिन गुड न्यूज टुडे एक माध्यम बना है ताकि वो लोग जो दर्शन करना चाहते हैं अमरनाथ के, बाबा बर्फानी की गुफा के, वो हमारे इस चैनल के माध्यम से कर भी सकते हैं। और आप तमाम लोग जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वो वहां की कथा भी हमें साथ ही साथ सुना ही रहे हैं। अब देशपुरी महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो भगवान शिव के कई ज्योतिर्लिंग हैं, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है। अमरनाथ की कथा के बारे में चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को साथ ही साथ सुनाइए, क्योंकि एक तरफ भक्तों का उत्साह यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो स्थान जहाँ पर लोग पहुंचना चाहते हैं दर्शन करने के लिए।
11: जी जी, देखिए ऐसे तो हम जानते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग है जिनकी अपनी एक अद्भुत और अद्वितीय महिमा है पूरे विश्व में। लेकिन जब हम अमरनाथ की बात करते हैं तो अमरनाथ एक ऐसा अप्रतिम अद्वितीय ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग नहीं एक शिवलिंग है जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। यहाँ आस्था, प्रकृति और विज्ञान, इन तीनों का समन्वय है। इन तीनों के समन्वय को देख करके, इस रहस्यमय स्थिति को देख करके हर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ वैज्ञानिक शोध करने के बाद भी ये तय नहीं कर पाए कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा विज्ञान छिपा है कि इस प्रकार का यह प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। क्योंकि खनिजीय अगर वहाँ जल ऊपर से टपक रहा है और उससे शिवलिंग की आकृति बन रही है, तो इस प्रकार तो अनेकों गुफाओं में जल टपकता है लेकिन वहाँ बर्फ की आकृति नहीं बनती, वहाँ पत्थर की आकृति बनती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ वो यह है कि वर्तमान समय में इस आपाधापी के जीवन में, इस बहुत ही व्यस्ततम जीवन में व्यक्ति कहीं ना कहीं शांति की किरण खोजता है, तो उस शांति की किरण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस तपस्थली पर पहुंचता है जहां परमात्मा शिव स्वयं तपस्या करते हैं। और इस गुफा में हजारों हजार वर्ष तक भगवान शिव ने तपस्या की और उस तपस्या के बाद फिर पार्वती जी को जो उपदेश दिया है, जो तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, तो अब आप सोचिए कि वहां की जो एनर्जी, जिसे हम एक प्रकार से कहें तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो उसका लेवल कितना हाई है, कितने हाई लेवल की वह ऊर्जा है जिसको प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति एक क्षण के लिए उस सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है। लोग वहां जाते हैं और बड़ी याचना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा गया है कि इस शिवलिंग का जो दर्शन करता है उसको काशी से 10 गुना फल प्राप्त होता है और प्रयागराज से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि काशी विश्वनाथ के कोई व्यक्ति 10 बार जाकर के दर्शन करे, वहां जो पुण्य प्राप्त होगा वह एक बार अगर यहाँ दर्शन कर लेता है तो उसको अमरनाथ में दर्शन करने से वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर कोई संगम पर जाकर के 100 बार गोटे लगाए, वहां जो पुण्य मिलेगा वो यहाँ एक बार जाने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे 1000 बार नैमिषारण्य में जाए और वहां जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक बार में ही यहाँ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही अद्भुत स्थान है, भगवान की तपस्थली है। पार्वती जी को यहाँ उपदेश दिया है भगवान शिव ने। अगर आप कथा कहें तो मैं आपको सुना दूं, अगर आपके पास समय हो।
1: बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप कथा सुनाएं, लेकिन उससे पहले जरा हमारे दो और खास मेहमान हैं, एक बार उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मैं अवधेशपुरी जी आपसे कथा भी सुनूंगी। भद्रवीर जी महाराज भी हमारे साथ हैं। भद्रवीर जी, कथा की ही बात जब होती है तो हम आपसे सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात अवधेशपुरी महाराज जी कह रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ जाके दर्शन करते हैं, जो इस हिम शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उन्हें कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और शायद ये, अगर मैं गलत

0: यात्रा पर हमारे भक्त लोग आज प्रस्थान कर रहे हैं, और उसी दिन आपने हम लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से अमरनाथ धाम में पहुंचा दिया। ये इस चैनल की GNT की बहुत बड़ी विशेषता है। जब भी कोई पर्व आता है, कोई विशेष भगवत चर्चा होती है, तब उस धार्मिक घटनाक्रम को GNT जरूर हम लोगों के बीच में लेकर के और हमको उससे जोड़ता है। तो इस चैनल के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारे यहाँ संतों की जब कृपा हो जाती है तो संतों के बाद फिर भगवान की भी कृपा होती है, क्योंकि इस कथा से जुड़े हुए हैं श्री नारद जी महाराज। जब नारद जी महाराज पहुंचते हैं माता पार्वती के पास और माता पार्वती को उकसाते हैं कुछ सांसारिक लोगों की कथा सुना करके कि संसार में ऐसे इस तरह के लोग होते हैं, पत्नियों के साथ धोखा देते हैं, एक इसने दिया एक उसने दिया। पार्वती थोड़ी रुचि से सुन रही थी, तो नारद जी को लगा कि इनको शायद इन कथाओं में रुचि हो रही है। तो अचानक उन्होंने पूछ लिया, माँ कहीं भोले बाबा इसी तरह से आपसे तो कोई कपट नहीं करते। बस इस बात को लेकर के पार्वती जी थोड़ी रुष्ट हो गई। बोले नारद ये बात तुमने कैसे कही? नहीं नहीं नहीं माँ, मैंने यूं ही कही। बोले नहीं, तुम इतने सामान्य बुद्धि के अज्ञानी व्यक्तित्व नहीं हो, इतने बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो, सही सही बताओ ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? तो ये संत तो कोई ना कोई नई कथा रचने वाले थे। इन्होंने कहा, माँ क्या फिर आपको पता है कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किनके मुंड है? पार्वती ने कहा, ये चर्चा तो आज तक नहीं हुई। बस नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए और भोले बाबा आए। उन्होंने दूर नारद जी को देखा भी, पर उन्हें लगा कि बहुत दूर है, क्या आवाज दूं? लेकिन यहाँ आकर पार्वती ने भोले बाबा को देखते ही मुंह घुमा लिया। तो भोले बाबा को कुछ हुआ कि कुछ गड़बड़ किया है कि नारद जी ने? फिर वो सामने इस दिशा में आए, उन्होंने फिर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। फिर वो आए, फिर पार्वती जी पूर्व दिशा में आ गई। बोले बाबा ने कहा, देवी बात क्या हुई? बोले नहीं। देवी जब तक बोलेंगी नहीं संवाद नहीं होगा, तब तक भला समाधान कैसे होगा? जब बार बार उन्होंने कहा तो नहीं बताने पर बोले बाबा, बोले लगता है नारद जी को ही आग लगा गए। पार्वती जी बोली, आग नहीं लगा गए, मेरी आंख खोल गए। अरे वो क्या? बोले आपने मुझसे कपट किया है। बोले देवी मेरी याददाश्त में तो कपट नहीं किया, लेकिन अगर कोई संत बता रहे हैं तो हम उसे सुधारेंगे। निंदक नीरे राखिए आंगन गुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आप बताइए, हम उस कमी को दूर करेंगे। बोले क्या आपने मुझे कभी बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किनके मुंड है?
1: जी।
0: तो भोले बाबा ने प्रति प्रश्न किया कि आपने कभी पूछा? उन्होंने कहा, भगवान पूछा तो नहीं, आज बता दो। तो उन्होंने कहा, पार्वती मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ, जितने प्रेमी आज तक इस संसार को छोड़कर काल कवलित हुए, इसमें कुछ तो उन प्रेमियों के मुंडों की माला है। और जब जब आप शरीर त्याग करके जाती हैं प्रेम बस, मैंने आपके मुंडों को अपनी माला में परो रखा है। पार्वती जी और ज्यादा गुस्सा हुई। इसका मतलब नारद जी ने बताया वो थोड़ा मोड़ा कपट था, आप तो महाकपटी निकले। बोले बाबा, बोले अब क्या बात हो गई? बोले भगवान इसका मतलब आपने कोई मुझसे छिपा कर ऐसी दवा खाई है, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा प्रयोग किया है कि आप अमर बने हुए हैं, मैं बार बार जन्मती मरती हूँ। उन्होंने कहा, देवी मेरे पास कुछ नहीं है, केवल भगवान की अमर कथा। तो बोले क्या मैं उसका उसकी पात्र नहीं हूँ? बोले आप तो पा रहे हैं, पर और कोई जीव से ना सुके ना सुन सके, इसलिए मैं निर्जन वन में चलता हूँ। और तब निर्जन वन में इस गुफा में आकर के उन्होंने पार्वती जी को अमर कथा जब सुनाई, जिन जिन ने जैसे आप बता रही है कि कबूतरों ने सुनाई, किंवदंती है हमारे द्वारा भागवत में आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा को सुना, तो तब से ये जगह अद्भुत हो गई है। हमारे यहाँ कहा जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरा नहीं बल्कि उजाले की ओर चलो, ऐसे ही और मृत्योर मा अमृतम गमय, तो ये अमृतत्व की ओर जाने की गुफा है। और मैं भोले बाबा को अमरनाथ भगवान को आज
1: महाराज जी मैं लौटूंगी आपके पास। संजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, तुरंत लौटती हूँ, सीधा आप ही के पास आएंगे और इसी से जुड़ी एक कथा हम आपसे भी सुनेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, तो गुड न्यूज टुडे के साथ आप भी चलिए अमरनाथ यात्रा पर।

0: तो गुड न्यूज टुडे के साथ चलिए अमरनाथ और अमरनाथ यात्रा की पल पल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे कथाएं भी सुन रहे हैं मेरे सेव की, लगातार वहां से अपडेट भी हमें दे रहे हैं कि भक्तों का उत्साह कितना है, शासन प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम वहां पर किए हैं, सुरक्षा किस तरीके से वहां पर है, कैसे हाईटेक सुरक्षा भक्तों के लिए वहां पर की गई है। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, पहला सवाल तो यही मेरा कि क्या आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ यात्रा करने का, अगर हाँ तो पहले तो वही एक्सपीरियंस हमें बताइए, और दूसरा ये कि हालांकि यात्रा बहुत कठिन है लेकिन बहुत अहम यात्रा इसको माना भी जाता है।
1: जी मुझे बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं दो बार जो है अमरनाथ यात्रा पर गया हूँ और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही है, क्योंकि इस यात्रा में कहते हैं कि जब भी आप कोई भी यात्रा करते हैं पूरे मन और श्रद्धा से तो आपके मन में एक अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आप सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है जो अमरनाथ पहुंच भी नहीं पाए, परंतु क्या है कि ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। जब मैं गया तो वहां पर ना तो कोई बारिश हुई ना कुछ हुआ और मैं आराम से बिल्कुल अच्छे से दर्शन करके आया, और मेरे को जो हेलीकॉप्टर के मार्ग से मैं गया था, उस वक्त हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल पास ही उतारता था, तो उस जगह पे मैं पहुंचा और बिल्कुल साक्षात भगवान के दर्शन करे। और मैंने जो आप कह रहे हैं कि जो कबूतर वाली घटना है, मैंने कबूतर भी जो है अपनी आंखों से देखे और ऊपर से जो है जल की बारिश भी हुई, अमृतत्व की बारिश भी हुई। और कहा जाता है कि भगवान की जो शिला है जब आप ध्यान से साक्षात देखते हैं तो भगवान जो शिव का जो स्वरूप है आपके मन अंतर मन में ही जो है बस जाता है। और वो यात्रा जो है हेलीकॉप्टर मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे पहले उतार देता है, वहां से जब आप जाते हैं तो वो जो यात्रा होती है उस बड़े आनंद की होती है। उस जगह पर जाकर के आपका तन मन जो है सब कुछ शांत हो जाता है, आप एकाग्रचित हो जाते हैं। तो जब तक आपके मन में जैसे भगवान शिव एकांत में रहते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप उस तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है, अमृत तत्व में चली जाती है। तो मैं जब गया तो मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और पहुंचने के पश्चात जब मैं वापस भी आया तो बड़ी अच्छी अनुभूति भी हुई और मन में काफी शांति हुई। और मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग नहीं गए हैं उनको अवश्य एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस, कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग तो आप सब लोग कर रहे हैं, परंतु अमरनाथ की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आपके जीवन में देता है। और कहते हैं जैसे भगवान शिव ने जब कहते हैं जठा अग्नि को प्रज्वलित कर करके और सभी को जो है कहते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी सबको जो है एक जगह पर रोक दिया, और भगवान शिव ने जो है तब ये कथा जो है पार्वती जी को सुनाई। और कहा जाता है कि पहलगांव में पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को छोड़ दिया और शेषनाग को जो है शेषनाग में छोड़ दिया, इस प्रकार से पंचतरणी में पंच तत्वों को छोड़ दिया। तो भगवान शिव जो है सबको छोड़ करके और माँ पार्वती को जो है कथा सुना रहे हैं, और जब कहते हैं सभी के लिए उन्होंने सोचा था कि कोई ना सुन पाए, परंतु कबूतरों ने सुन ली और आज भी वो कबूतर वहां पर मौजूद है, सफेद रूप में, बिल्कुल श्वेत कबूतर है।
0: संजय जी मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कहते हैं लोग कि वहां पर अभी भी वो दोनों श्वेत कबूतर मौजूद हैं, क्या वाकई क्या आपने उनको देखा? अगर हैं तो इसका मतलब तो प्रभु साक्षात उनमें विराजमान है।
1: बिल्कुल साक्षात है प्रभु और मैंने अपनी आंखों से ही देखा। बिल्कुल जब ऊपर से आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एकदम से कबूतर जब बाहर की तरफ आते हैं तो जल की वर्षा, अमृतत्व की वर्षा जो है होती है, और आपके मेरे को आभास हुआ, मेरे ऊपर जल भी गिरा। तो क्या है कि भगवान की कोई अनुकंपा होती है तभी आप पहुंचते हैं। तो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे काफी मानसिक शांति भी हुई, आते वक्त भी बड़ा
0: वही बात है, बिल्कुल वही बात है संजय जी, जो सच्चे मन से वहां पर जाएगा यकीनन उसको सीधा प्रभु के दर्शन होंगे। राजमिश्रा जी आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का?
2: देखिए मुझे अभी तक प्रभु की कृपा नहीं हुई है,
0: तो इस बार आप कर लीजिए, इतने पूजा पाठ के बाद इस बार कहिए कि प्रभु इस बार आपको दर्शन करना चाहते हैं।
2: मैं ये जरूर सोचता हूँ, शायद वो तैयार हो रहा है जिस कारण से हम GNT पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो अगर परमात्मा ने यह सौभाग्य दिया है कि हम बैठ करके GNT के माध्यम से उनके दर्शन कर पा रहे हैं और उस पर चर्चा कर पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ही है कि ये परमात्मा कहीं ना कहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो दर्शन से पहले के जो पूरे संयोग बनते हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और वो बुलाएंगे। लेकिन मैं एक बार सत्य कहता हूं, कोई ऐसे ही नहीं जा पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि जो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, या जो लोग इस टाइम पर अपने घरों में भी टेलीविजन लगा करके और इस समय इस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, तो वास्तविकता में वो शिव का एक संदेश ही है, वो शिव की एक कृपा ही है जो शिव उस दर्शन को कराना चाहते हैं, जो शिव अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं। अमरनाथ के बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, सच्चाई है कि ये वो जगह है जहां पर जहां से वास्तविकता में धर्म की उत्पत्ति हुई है। आज हम भागवत कथा के माध्यम से ये कहा जाता है कि यदि 7 दिन भागवत की कथा को श्रवण कर लिया जाए तो जो हमारे पितर हैं 7 पीढ़ी पहले के, 7 पीढ़ी माता पक्ष के और 7 पीढ़ी आने वाली 21 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये कथा कहाँ पर हुई, ये अमरत्व की अमर कथा श्रीमद् भागवत को कहा जाता है, और वो अमर कथा की चर्चा कहाँ पर हुई, ये वही स्थान था जहां पर इस अमर कथा की चर्चा हुई। बहुत सुंदर, जब हम शिव जी के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जीवन साथी के बीच में, पति और पत्नी के बीच में सदैव चर्चा होनी चाहिए और सुंदर चर्चा होनी चाहिए और एक दूसरे को सुना जाना चाहिए, एक दूसरे को कहा जाना चाहिए। वो किसी ने एक शब्द कहा था कि अगर लगाव है तो शिकायतें हैं, लगाव है तो शिकायतें हैं, वरना इस दुनिया में देखता है किसको कौन, लगाव है तो शिकायतें हैं वरना तू कौन और मैं कौन, कुछ ऐसे करके एक शायरी थी। तो पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा सुनने और कहने का जो समय है होना चाहिए, वो भगवान शंकर और माता पार्वती ने दिखाया है। भगवान शंकर यही वो स्थान है जहां 7 दिन तक माता पार्वती जो प्रश्न करती हैं उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वहीं पर जो सुख जो जिसकी तोते की हम बात करते हैं वो वहां पर होते हैं, और यहीं से सुखदेव जी की जो प्रादुर्भाव सुखदेव जी का होता है, यहीं से उनका प्रादुर्भाव होता है जो राधा रानी के परम प्रिय शिष्य होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से फिर पूरे संसार के अंदर जो भागवत भागा है वो विस्तार होता है। तो बहुत सुंदर है जी। नौ
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अवधेशपुरी जी महाराज, आपसे अब एक कथा सुनना चाहेंगे।
3: कथा तो मूल रूप से दोनों पूर्व वक्ताओं ने उस पर प्रकाश डाला ही है, और मैं इसके अब थोड़ा और एक आगे आपको बता दूं।
0: हाँ।
3: कि परमात्मा शिव पार्वती जी को कथा सुनाते, ठीक है, उसका सारांश मैं बता दूं कि पार्वती जी को कथा सुनाने से पहले, उस स्थान पर जाने से पहले भगवान शिव ने उनके नजदीक जो चीजें थी, जैसे नंदी था उनके पास में, तो नंदी को सबसे पहले छोड़ा। अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कहाँ छोड़ा, ठीक है, एक एक करके उन्होंने सब चीजों को छोड़ा है। तो जैसे ही पहलगाम में नंदी को छोड़ा तो उसके बाद में आगे बढ़े तो अनंतनाग में नागों को भी छोड़ दिया, गणेश जी को भी छोड़ दिया, चंद्रमा को भी छोड़ दिया, हैं, इवन चंदन तक को वहां उतार के रख दिया, बताते हैं ऐसी ऐसी कथाएं हैं। आखिर इसका आशय क्या है, ये सब लोगों को जान लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कथा तो आखिर प्रतीकात्मक होती है, किसी प्रतीक को प्रदर्शित करती है, प्रतीक का जो रहस्य है जो हमारे जीवन में बहुत ही काम का होता है वो हमको समझ लेना चाहिए, वो यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा दिव्य स्थल प्राप्त हो जाए, जैसे कि जिस स्थल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे दिव्य स्थल पर जाने से पहले व्यक्ति के ऊपर के जितने भी आवरण हैं, ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, उन सब को छोड़ करके उसको आत्मस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति आत्मस्थ नहीं होगा तब तक वह उस परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। अमर कथा सुना रहे हैं, अमर कथा क्या है, ये जो अमरत्व है, अमर तत्व है, अमर तत्व क्या है, परमात्म तत्व ही अमर तत्व है। तो जब परमात्म तत्व ही अमर तत्व है तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारी मनः स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारी एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, हम कितने आत्मस्थ होने चाहिए, वह भगवान शिव ने वहां पार्वती जी के और अन्य जो उनके साथ थे उन सबके द्वारा बताया है कि सबको पहले छोड़ो तब आप अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो आपका संबंध आपकी आत्मा से होगा, तब आपको पता चलेगा कि अयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसको समझने के लिए तत्त्वमसि, ये जो वेदों के महावाक्य हैं इनको समझने के लिए ऐसे स्थान की जरूरत पड़ती है, तो वह पवित्र स्थल, वह पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थल मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो अमरनाथ में है। तो अमरनाथ पर इसलिए अधिकांशतः लोग आना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि वहाँ ऊपरी जो जो भी आप वैभव देखते हैं, वहाँ जो भी आपको प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा हमको चाहिए कि हम वहाँ थोड़े से आत्मस्थ हों और थोड़े से अपने आप को जानें, क्योंकि जब हम अपने आप को जानते हैं यानी आत्मा को जानते हैं तभी हम परमात्मा से मिल पाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थ में सबसे महत्वपूर्ण जो मोक्ष वाली स्थिति है वो बिना इस परमात्म ज्ञान के नहीं हो सकती, और परमात्म ज्ञान को बिना जाने कोई अमरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अमर होने के लिए इस अमर ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को जानना जरूरी है, और भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी आत्म तत्व का बोध उस स्थल पर कराया है, तो वह स्थल आत्म तत्व का बोध कराने वाला स्थल है। दुर्भाग्य जरूर रहा कि 14वीं शताब्दी के बाद करीब 300 वर्ष तक ये अमरनाथ की जो यात्रा थी ये बाधित रही, लोग नहीं जा पाए, लेकिन फिर एक अच्छा समय आया, यात्रा प्रारंभ हुई और फिर अब आज हम देख रहे हैं कि वहाँ कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। और ये सही बात है कि आप चैनल के माध्यम से घर घर ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि हर आदमी जो वहाँ जा भी नहीं पाया है वो अभी उसको ऐसा महसूस होता है, वो फील करता है कि हम अमरनाथ में।
0: बिल्कुल, हम खुद यहाँ बैठकर, हाँ बिल्कुल, हम खुद अवधेशपुरी जी महाराज हम खुद यहाँ बैठकर एहसास करते हैं इस बात का कि हम भी साथ ही साथ भक्तों के चल रहे हैं। अब अवधेश जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी, और कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, अमरनाथ के साथ जुड़ी हुई है?
4: मुख्य मान्यता तो हमारे स्वामी श्री अवधेशपुरी जी महाराज ने जो स्पष्ट की है, काश कोई उसको समझ पावे। हमारी यात्रा माने इस जीते जी अपने जीवन में अपने आप को अमर मान लेना, क्योंकि अमर आत्मा है, आत्मा कभी नष्ट होती नहीं। और भोले बाबा का यह जो दिव्य स्वरूप है द्वादश ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो साकार स्वरूप है और भोले बाबा का जो निराकार स्वरूप है, वह निराकार में जिस साकार ज्योति स्वरूप का दर्शन कराते हैं और वही आत्मा का दर्शन है। देखो श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है तो श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, जैसे राजा परीक्षित के ऊपर मृत्यु का साया छाया हुआ था, लेकिन राजा परीक्षित चाहते थे कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उस मुक्ति की प्राप्ति का साधन उनको वही अमर कथा मिली सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो क्या राजा परीक्षित मरे नहीं? राजा परीक्षित मरे, मरता प्रत्येक प्राणी है जो भी जन्म लेकर आया है, और वह मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा, लेकिन वो मृत्यु के रहस्य को जान जाता है कि वस्तुतः ये जो मृत्यु है ये एक पड़ाव है। हमारे जीवन की यात्रा जो बहुत लंबी यात्रा है उसमें एक पड़ाव है ये जीवन, अनेक जीवनों को जीते जीते हम एक उदात्त स्वरूप में जाते हैं, उस शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस शिव तत्व को ही अमर तत्व माना गया है, जिससे कि हम जीवन मृत्यु के रहस्य को जानकर उससे निर्भय हो जाते हैं, और निर्भय हो जाना ही अमरत्व को प्राप्त होना है। तो जब ये जीव यहाँ से अमरनाथ की यात्रा पर जाता है, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया, हमारे स्वामी जी ने भी बताया कि धीरे धीरे शिव जी ने अपने सभी चिन्हों को छोड़ा, तो चिन्हों को छोड़ा नहीं, चिन्ह अपने आप छूट गए, ये छोड़े नहीं जाते, ये तो स्वतः जब यात्रा पे हम चलते हैं अपने आप ये जो भी है, जैसे विभीषण जी ने कहा कि और कछु प्रथम वासना रही लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। पहले वासना की कीचड़ थी, पहले वासना के कुछ चिन्ह थे, पहले हमारी वासना के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न स्वरूप हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन जब से हम आपकी भक्ति सरिता में प्रेम नदी में गोता लगाना हमने शुरू किया तो धीरे धीरे वासना की कीचड़ धुलती चली गई, और हम स्वयं जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई, उन भगवान के शिव तत्व को पा करके और हम भी शिव तत्व में लीन हो जाते हैं। जैसा कि माता सती के विषय में आता है, सद्या प्रज्ज्वाल समाधि जागरीना, कि उनके शरीर से कोई ज्वाला निकली या कोई धुआं निकला, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने आत्म तत्व को शिव तत्व में लीन कर लिया था। बस यही यात्रा अमरनाथ यात्रा है। जय भोले बाबा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, संजय जी आपने अपना अनुभव बताया, जरा हमारे दर्शकों को या फिर वो भक्त जो इस वक्त अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुए हैं, वहां व्यवस्थाएं भी काफी कुछ बदल दिया गया है, वो लगातार हम अपडेट दे ही रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर, लेकिन आप क्या बताना चाहेंगे उन भक्तों को जो अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
1: जी, सबसे पहले आत्म तत्वम सोधियामी नमः स्वाहा, अपने आप को पहचानो, आत्मा को पहचानो। सबसे पहले जो है अपने शरीर को जो है बिल्कुल लाइट कर दो, और जो योग यात्रा पर जाना चाहते हैं सबसे पहले शिव तत्वम सोदयामी नमासा नमा अमृत तत्वम सोदयामी नमा स्वाहा, तो अपने मन को जो है आत्मा को शिव में लीन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आप यात्रा के लिए प्रारंभ करते हैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि सबसे कम जो है सामान यात्रा में होना चाहिए, आपका बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और यात्रा जब प्रारंभ करें तो कोशिश यही करें कि बिल्कुल आप अपना जो भी बूट वगैरह गम बूट लेकर के वहां पर जाएं और बिल्कुल आराम से चलें, क्योंकि जल्दबाजी चलने से सांस फूल जाती है वहां पर। और आप कपूर जो है जरूर अपने साथ रख करके लेके जाएं, और जल की व्यवस्था जरूर रखें, वहां जल होता है परंतु थोड़ा बहुत जल अपने पास भी अवश्य लेकर के जाएं। और यात्रा पर बिल्कुल धीरे चलें, जो पैदल यात्री हैं, जो घोड़े पर जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पहले कुछ महीने जो है जरूर सैर जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहे। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अगर अस्वस्थ व्यक्ति है अगर वहां जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो इसलिए जो है यात्रा जरूर करें, और पूरी श्रद्धा और मन और विश्वास, क्योंकि जो शिव तत्व है वो सबसे बड़ा तत्व है, और मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर घर से प्रारंभ करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें
0: चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक कार्य जो हमेशा आप जब भी यात्रा प्रारंभ करें तो करना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा जी, चलते चलते
2: मुझे लगता है कि जब भी यात्रा प्रारंभ करना चाहिए तो भगवान शंकर से सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जाने और अनजाने में जो भी मुझसे भूल इस जन्म या पूर्व जन्म में उसे माफ करके हमें अपनी शरणागति प्रदान करें, हम यात्रा कर पाएं ऐसी कृपा प्रदान करें। अपने आप को देवाधिदेव को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी यात्रा है। जब तक समर्पण, बद्री जी ने बहुत सुंदर कहा था कि सोई जाने देह जनाई और जानत तुम्हें तुम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
5: You love podcasts. You never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: जिक्र एक ऐसी खबर का और ऐसी तस्वीर का जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। न्यूयॉर्क में दो स्टंटबाजों ने वहां की एक मशहूर 1,500 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत पर बिना किसी सुरक्षा गियर के अवैध रूप से चढ़ाई कर ली। शांति का संदेश देने वाला एक बैनर लहराया और फिर प्यार का इजहार किया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फिलहाल इन दोनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया और बेहद खतरनाक बिजली वाले एंटीना पर किए गए इस स्टंट की जांच कर रही है।
10: कहते हैं मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, और अब तो मौत के मुहाने पर आशिकी के इस वीडियो को देखकर लोग कहीं ये ना कहने लगे इजहारे मोहब्बत की भी कोई सीमा नहीं। न्यूयॉर्क सिटी की 1,454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर बुधवार दोपहर कुछ ऐसा ही हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। दो स्टंटबाजों ने न सिर्फ इस गगनचुंबे इमारत के बैंड ट्रांसमिशन टावर पर बिना किसी सेफ्टी गियर के चढ़ाई की, बल्कि वहां हवा में लटकते हुए अंगूठी पहनाकर एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया। हुआ ये कि दोपहर के वक्त जब आम पर्यटक इमारत के ऑब्जर्वेशन डेक से शहर का नजारा ले रहे थे, तभी काले कपड़ों और मास्क में दो लोग सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन टावर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए। टावर की पतली एंटीना पर बेहद जोखिम भरे तरीके से खड़े होकर इस जोड़े ने काले कपड़े का एक बड़ा सा बैनर लहराया। इस बैनर पर लिखा था, जब प्यार की ताकत ताकत के प्यार पर हावी हो जाएगी तब दुनिया शांति को जानेगी। ये दोनों स्टंटबाज करीब 30 मिनट तक एंटीना पर रहे और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दोनों टावर पर ही नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरे, जहां लड़के ने लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और लड़की ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। सोशल मीडिया पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये दोनों स्टंटबाज दुनिया के मशहूर रूफ टॉपर्स एंजेला निकोलाओ और वान्या बीरकुस है। इससे पहले दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कुआलालंपुर की मर्डेका 118 पर भी दोनों अवैध चढ़ाई कर चुके हैं। इनकी जिंदगी पर 2024 में नेटफ्लिक्स पर स्काई वॉकर्स अ लव स्टोरी नाम की मशहूर डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। इस इमारत की देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों को जब इन स्टंटबाजों की हरकत का पता चला तो उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर ऑब्जर्वेशन डेक को तुरंत खाली कराया। आसपास की सड़कों को बंद किया गया और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेलीकॉप्टर ने आसमान से निगरानी की। अब न्यूयॉर्क पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि स्टंटबाज प्रतिबंधित एरिया में कैसे घुसे। जांच के बाद दोनों पर ट्रेस पासिंग और लापरवाही से जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
11: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देख कर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने, लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा। ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को, जिसे चलने फिरने में दिक्कत है, ठेले पर बैठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा, लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना, पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूँ नवजोत संधवा। देखिए आज समोसे और चाय इसलिए आ गए हैं क्योंकि आज सुबह सुबह बारिश की फुहारें पड़ी है ना,
3: शाम को कहाँ गई।
2: श्योर कि आप सबने शुरुआत हुई है ना, कहीं समोसे निके निके आ गए,
3: मिनी समोसा विद चाय, मतलब हमने प्री मॉनसून को एंजॉय करना शुरू कर।
4: हालांकि मैं आपको बताऊं, दिल्ली में आने के बाद, खास करके नोएडा में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ सेक्टर वाइज बारिश होती है, जैसे हमारे सेक्टर में बारिश नहीं हुई
3: ऐसे चंडीगढ़ में भी होती है सेक्टर वाइज। आप एक एरिया से भीगे हुए जाएंगे नेक्स्ट एरिया में लोग आपको देख रहे हो कहाँ से आयो तुम।
5: लेकिन दिल्ली में मध्य प्रदेश जैसी बारिश कहाँ होती है, दिल्ली में मॉनसून को मॉनसून होता है,
2: मध्य प्रदेश में तो पहले आ जाता है। ये चेहरों की खुशी में चाय की प्याली, प्लेट में समोसा, ये बता रहे कि वाकई दिल्ली का मौसम बहुत ही खुशमा बहुत खूबसूरत हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ आज देखिए भक्ति भाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, बाबा अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें तो बेहद खूबसूरत, श्रद्धा भाव के साथ यात्रा शुरू हो चुकी है, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आपको हम अमरनाथ यात्रा के साथ साथ लिए चलेंगे।
4: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। तो जैसा अब आपने देखा शगुफ्ता ने भी कप ले लिया है, हालांकि ये बहुत कम चाय पीते हैं, बहुत जो इनको पसंद आती है वही पीते हैं, और आज की चाय लॉन्ग एंड इलायची वाली।
3: श्वेता ने इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि आई एम टेलिंग यू कि प्लीज चाय पियो, यू शुड हैव।
2: मेरे को गाना याद आ गया, तू लॉन्ग में वाला इलायची।
4: तो देखिए परफेक्ट चाय है, मौसम है, लेकिन इसके अलावा आपको हम बता दें कि चूंकि मौसम ही ऐसा है तो मानसूनी बारिश की भी बात करेंगे, और मानसूनी सीजन में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर क्या है ताजा अपडेट, साथ ही भगवान बद्री विशाल के दरबार में क्या बना है रिकॉर्ड, इसकी भी आगे हम तफसील से जानकारी आपको देंगे।
3: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देखिए भले ही देरी हुई लेकिन मानसूनी फुहारें आखिरकार दिल्ली में पड़ गई हैं, वहीं मुंबई में बद्रा कैसे बरस रहे हैं इसकी भी कुल तस्वीरें आई हैं वो दिखाएंगे, साथ ही देश में मानसून कहां तक पहुंच चुका है, आगे किन राज्यों की अब बारी है इसका अपडेट आपको देंगे।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए मानसून का इंतजार सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो दिल्ली एनसीआर वालों को, उसके बारे में बात होगी, और साथ ही मैं देखिए कल रिलीज होने जा रही है फिल्म अल्फा, जिसके लिए आलिया भट्ट ने कैसे की जोरदार एक्शन की तैयारी, तो देखिए आलिया के हाई ऑक्टेन एक्शन की भी इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुई कई समझौते, AI और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। राजधानी दिल्ली में मानसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के कोस्टल एरियाज में हाई टाइड का अलर्ट, 14 फीट ऊंची लहरें उठने की संभावना। मॉनसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। टीकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच फूलमाला से स्वागत, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा इंतजाम।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत आज हम बाबा बर्फानी के शुभ दर्शन और उससे जुड़ी खबरों के साथ करते हैं। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद वो समय, वो पल, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार भोले के भक्तों का था। आपको बता दें कि हर साल आयोजित होने वाली पवित्र यात्रा का बस शुभारंभ होने को है। अपार आस्था से लबरेज श्रद्धालुओं की अमरनाथ जाने के लिए पैदल यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए बालटाल में यात्रियों का पहला जत्था जो है वो पहुंच चुका है। सुबह से आप लोग तस्वीरें सरगम और आप शगुफ्ता दिखा ही रही होंगी कि कितनी तैयारी है और लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है श्रद्धालुओं में।
1: मैं पता है इस चीज को देखकर काफी हैरान होती हूँ कि मैंने ये सवाल भी किया था अपने रिपोर्टर से कि हर उम्र वर्ग का इंसान वहां पर पहुंचा है, बच्चों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, यंगस्टर से लेकर। मुझे नहीं पता ये कौन सी आस्था है जो उनको पुश करती है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन उनके लिए इससे ऊपर कुछ नजर नहीं आता डिस्पाइट की वहां पर चुनौतियां कितनी और जबकि वेदर को लेकर।
0: बिल्कुल, और जबकि शगुफ्ता भी आप ये भी देखेंगे कि अब वो एज जो कहते हैं ना, एज नो बार, अब वो चीज हो गई है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग ही जा रहे हैं। आप यंगस्टर्स देखिए, हर जगह जा रहे हैं।
1: अच्छा, आपने से कौन गया है?
0: नहीं, अमरनाथ तो मैं नहीं जा पाई,
2: कोई नहीं जा पाया है। सुबह से ही विजुअल जो आ रहे हैं देख रहे हैं, और आप मानेंगे नहीं, एक तो काफी बुजुर्ग लग रहे थे, हालांकि मुझे लगता है कुछ एज लिमिट भी है। वो बता रहे कि हर साल हम तो आते हैं चाहे सारे काम छूट जाए, लेकिन बाबा के दर्शन करना हम नहीं भूलते हैं। तो आप जैसे बता रहे थे मौसम की दुश्वारियां हैं, जैसा भी मौसम हो, लेकिन आस्था कम नहीं हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में
3: बिल्कुल, लेकिन वही आपने मौसम की दुश्वारियां की बात की, मैं यहाँ पर दो और चीजें ऐड ऑन कर दूं। सुरक्षा पहली बात, जो इस बार पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है कि मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसके साथ साथ रास्ता बहुत कठिन है। बावजूद इसके उत्साह कैसा है देखिए जरा।
4: घाटी में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी जैसे ऊर्जा से भरपूर इन जयकारों के साथ करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की सबसे पवित्र यात्रा बस शुरू होने को ही है। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को पैदल शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे उत्साही श्रद्धालुओं की ये तस्वीर आस्था के कई भाव को समेटे हुए है। जहां किसी के कंधे पर तिरंगा, किसी के हाथ में त्रिशूल, लेकिन हर चेहरा बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए नजर आ रहा है।
5: जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, बोले की फौज, बोले की फौज।
4: अमरनाथ यात्रियों की ये खेप जब रामबन जिले के चंद्रकोट यात्री निवास पहुंची, तो स्थानीय प्रशासनिक अमले और स्थानीय लोगों ने मिलकर बम बम भोले के जय घोष के बीच इन श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। यात्रियों को गले में माला पहनाई, मुंह मीठा भी करवाया। यही नहीं, श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा के साथ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस ट्रांजिट कैंप में RFID रजिस्ट्रेशन, लंगर ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा के भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अब सभी को उस शुभ पल का इंतजार है जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होगा। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के कितने मुकम्मल इंतजाम हैं। श्रीनगर में बनाया गया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसकी एक मिसाल है, जहां अत्याधुनिक तरीके से पूरी यात्रा पर पैनी निगाह रखी जाएगी। फिलहाल तो पैदल यात्रा शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे आनंदित ऊर्जा से भरे इन श्रद्धालुओं का पहला जत्था तैयार है बाबा के दरबार तक पहुँचने के लिए।
6: लाइनों में जो लोग यहां पर लगे हुए हैं, इनको तत्काल यहां पर अपना पास रजिस्ट्रेशन बनवाना है, और उसके लिए ये लोग यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इस पूरा इलाके की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है, और यहां पर टेंट सिटी पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहां पर रुक सकते हैं, और उसके बाद यहां से ये सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे। ये मेन कैंप है, बालटाल का कैंप है, यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
4: 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिनकी अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा आस्था, उत्साह और सुरक्षा के साथ शुरू हो गई है। अब कश्मीर घाटी से बाबा के इन भक्तों का पहला जत्था तैयार है आस्था के सफर पर निकलने के लिए, क्योंकि कल बालटाल और पहलगाम बेस कैंपों से ही बाबा बर्फानी के दिव्य दरबार के लिए ये तमाम श्रद्धालु रवाना होंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और बालटाल कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और जैसा कि हम कह रहे हैं कि गुड न्यूज टुडे के साथ आप भी चलिए अमरनाथ यात्रा पर, वो इसलिए क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार अमरनाथ यात्रा पर ही और वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलेंगे सीधा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, दिखाइए जरा भक्तों का उत्साह कितना है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की है और कितने अलग इंतजाम इस बार या कहें कि खास इंतजाम इस बार भक्तों के लिए किए गए हैं वहां।
6: बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे के जो दर्शक हैं वो सीधे तस्वीरें बालटाल से देख सकते हैं और उनको पूरी यात्रा जो होगी पवित्र अमरनाथ गुफा की वो हमारे साथ देख सकते हैं। कल सुबह यहां से जब शुरुआत होगी पहले जत्थे के साथ यात्रा, तो गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक जो हैं वो इस यात्रा को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बालटाल बेस कैंप की सुरक्षा किस तरीके से की गई है और इसके लिए इंतजाम किस तरीके के हैं, यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं डीआईजी सुधीर कुमार जी, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है, जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, सुविधाएं बेहतर दी गई हैं, लेकिन कुछ लोग आरएफआईडी और इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल, क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से रखा जा रहा है?
7: देखिए, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जेएनके पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी इन प्रॉपर प्लेस पे है, लेकिन मैं दर्शकों को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनको असुविधा ना हो, इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन का ना आए और कट ऑफ टाइम जो समय समय पर निर्धारित किया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
6: रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है वो बेस कैंप तक न पहुंचे, क्योंकि यहां ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, रहने की असुविधा हो सकती है, क्योंकि 15,000 से 20,000 तक लोग यहां पर एक साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा जो बालटाल से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है वहां पर किस तरीके की सुविधाएं?
7: बालटाल से जो ऊपर रास्ता जाता है आपको हर जगह मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी पर अन्य पैरामिलिट्री उस पर तैनात है, लंगर है, इमरजेंसी में कुछ लोगों को कहीं कहीं रहने का व्यवस्था है जो टेंट में रह सकते हैं। यात्रा के विषय में, जो यहाँ के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के प्रयास में यहाँ आते हैं उन्हीं को परेशानी होती है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन इमरजेंसी के लिए रखा गया है, बहुत मतलब कि सोच समझ के कंटीजेंसी के रूप में रखा गया है। तो यात्रियों से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना रजिस्ट्रेशन का ना आए यहाँ।
0: बिल्कुल, ये बहुत
6: तो
0: अहम बात है
6: नोडल ऑफिसर।
0: बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत अहम बात है, आप किसी भी इस तरह की धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो बार बार अपील की जाती है सरकार की तरफ से, और हम लोग भी जैसे आप बता रहे हैं हम भी बताते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर ना पहुंचे, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी। आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र, ये बताइए जहां पर आप इस वक्त मौजूद है यहीं से यानी बालटाल से कल पहली जो यात्रा है चढ़ाई की यात्रा, पैदल यात्रा, वो शुरू होनी है, तो जरा वहां पर शायद श्रद्धालु भी कुछ है, जरा उनसे भी बात करिए, कितना उत्साह, कितना उमंग, जोश उनके अंदर है ये बताएं। और साथ ही साथ ये बताइए मुझे, चूंकि यहां से पैदल यात्रा शुरू होगी, किस तरह की ये चढ़ाई है, क्योंकि केदारनाथ या बद्रीनाथ हम जानते हैं लेकिन अमरनाथ के लिए आपसे जानना चाहूंगी ये चढ़ाई कैसी है और आप अपने साथ क्या क्या लेकर के जाए, पिट्ठू बैग अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है, बताएं।
6: बिल्कुल, चढ़ाई की अगर बात करें तो पवित्र अमरनाथ गुफा की जो यहाँ बालटाल से आगे डोमेल पड़ता है वहां से शुरुआत होती है, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इनको देख करके आप खुद ही अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी इस पूरे एरिया में होता है, क्योंकि हाइट के हिसाब से देखा जाए तो 14,000 फीट के आसपास इन पहाड़ों की ऊंचाई है और इसके सीधे पीछे पवित्र अमरनाथ गुफा है। बालटाल से अगर देखा जाए, अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो बहुत ही कम है, लेकिन पैदल पैदल जो लोग जाते हैं बालटाल वाले रास्ते से उनको करीब 14 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस बार हेलीकॉप्टर की सुविधाएं नहीं दी गई हैं, सिर्फ जो अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले यात्री हैं वो पैदल जा सकते हैं या फिर खच्चर के जरिए जा सकते हैं या पालकी से जा सकते हैं। तो उसके लिए बकायदे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से रेट तय किए गए हैं, किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। ये इसमें से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 साल से 32 साल से जो है लगातार जो अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। आप कितने सालों से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि आप कितना बदलाव दिख रहा है, रास्ता कैसा है?
8: मैं 37 साल से यात्रा कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 87 में आया था, उसके बाद 90 से रेगुलर आ रहा हूँ। तो यात्रा के में तो बहुत बदलाव आया है, जब से ये हमारी फोर्सेस लगी हैं तब से तो बहुत बदलाव आया है। पहले आर्मी होती थी, अब तो फोर्सेस CRPF ITBP सब होती हैं, तो कोई सुविधा में कोई कमी नहीं है। तो अगर आप कोई मतलब हिम्मत किसकी कम होगी वो आए, नहीं तो हिम्मत सब आ सकते हैं।
6: शिव जी की स्तुति में अभी आप कुछ सुना रहे थे, गुनगुनाइए कुछ गुड न्यूज टुडे के साथ।
8: शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, भवसागर में

0: महादेव शिव शंभ हर हर महादेव शिव शंभ। वह शंकर भगवान की जय।
1: बिल्कुल जितेंद्र, जितेंद्र एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, इसमें जोड़ना चाहूंगी कि वेदर के बारे में एक बार जरा मौसम के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि सुबह और दिन के और रात के तापमान में कितना अंतर है।
2: तो वो बहुत है, हर चीज में उन्होंने हेल्प करी है।
3: बिल्कुल, तो यहाँ पर मौसम की अगर बात करें तो मौसम अभी इस समय धूप खिली हुई है। सुबह सुबह जब यहाँ पर बालटाल बेस कैंप पहुंचे हुए थे तो मौसम यहाँ का काफी खराब था, बारिश हो रही थी। यहाँ मौसम किसी भी समय बदल सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कहते हैं कि मौसम जो है पल भर में बदलता है, और पल भर में यहाँ पर बारिश तेजी से शुरू हो जाती है। अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन कल किस तरीके का मौसम का अनुमान रहेगा वो IMD की तरफ से कहा गया कि मौसम पहाड़ी इलाकों में या ऊंचाई वाले इलाकों में वैसे ही खराब हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन लगातार बनी हुई है इन तमाम इलाकों में। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम के हिसाब से ही जो बालटाल से डोमेल रास्ता जाता है वहां से आगे तभी छोड़ा जाता है जब मौसम ऊपर क्लियर रहता है, किसी भी तरीके से लैंडस्लाइड की संभावना नहीं रहती है। ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो यहां टीमें लगाई गई हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम, CRPF ने भी अपनी टीम लगा रखी है, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं पहाड़ों पर लगे हुए, तो उनको सतर्क भी कर दिया जाता है कि किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो लोग यहां पर यात्रा करने के लिए आते हैं।
1: जी जितेंद्र, और साफ तौर पर हम देख रहे थे कि मौसम की दुश्वारियां तो रहती ही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो आस्था है उसमें बिल्कुल भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है हमें। उसके साथ ही जो लगातार रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं जितेंद्र, तो ये बताया जा रहा है कि इस बार RFID टैग्स दिए जा रहे हैं यात्रियों को, ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। अगर उनको किसी मुसीबत का सामना वो लोग कर रहे हैं तो जरूरत का सामान उन तक पहुंचाया जा सके, उन तक पहुंचा जा सके। तो पिछले सालों से इस बार वो कौन सी चीजें हैं जो कि अलग है, और इस बार की अमरनाथ यात्रा को क्यों इतना खास कहा जा रहा है?
3: देखिए, पिछले सालों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा का जो समय है वो भी काफी लंबा इस बार मिल रहा है। 3 जुलाई से कल से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त तक चलेगा, रक्षाबंधन तक। करीब 57 दिनों का पूरा समय मिल रहा है, और इस बार सिक्योरिटी को लेकर के खास तरीके से इंतजाम, जिस तरीके के थ्रेट रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग यहां पर आएंगे उनका RFID कार्ड जरूर बना होना चाहिए। अगर RFID कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको डोमेल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि QR कोड आधारित लोगों के पहचान भी दिए गए हैं, कि कोई भी जो यहां पर अमरनाथ यात्रा करने वाला श्रद्धालु आता है वो अपने मोबाइल से स्कैन करके ये पता कर सकता है कि किस व्यक्ति के साथ वो ऊपर जा रहे हैं। जो खच्चर वाले लोग हैं या पालकी वाले या फिर पिट्ठू जो लेकर के जाते हैं उनके सबके QR कोड आधारित पहचान दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। और माउंटेन रेस्क्यू टीम खास तरीके से वहां पर लगाई गई है, क्योंकि ऊपर का जो इलाका है हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन से लैस जो माउंटेन रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद रहती है और किसी को दिक्कत नहीं होती है। एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि पहाड़ी इलाका जो यहां पर है इसकी ऊंचाई देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि यहां का मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, और हाइट पर जब लोग जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और ऐसे में उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वही एक सबसे बड़ा सहारा होता है, उसकी व्यवस्था जो है माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है उसके द्वारा किया गया है।
4: वो चाहे पैरा बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन जितेंद्र चूंकि बार बार ये बात इसका जिक्र कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मैं सिर्फ अपने अनुभव से एक चीज लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, साथ में टीम तो आपकी जा रही है, लेकिन आप पर्सनल अपने यूज के लिए भी अपने पिट्ठू बैग में आपका अपना ऑक्सीजन कैन आता है, आप उसे ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। उसके लिए यह होगा कि आपको किसी का इंतजार नहीं करना होगा, आपको जैसी ही जरूरत होगी आप फौरन खुद से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लाइफ सेविंग हो सकता है। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।
5: तो जम्मू से बालटाल तक जाने वाले रास्ते में श्रद्धालुओं के बीच भक्ति का माहौल कैसा बना हुआ है, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर ये लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट।
6: श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ निकल रहे हैं। मन में इनकी काफी प्रसन्नता है, बम बम बोले और जय हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु जा रहे हैं कश्मीर घाटी। जी आप बताइए आपका नाम।
7: आशुतोष सेठ।
6: मन में कितनी प्रसन्नता है?
7: बहुत ज्यादा। बहुत
6: नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जी आप कहाँ के रहने वाले?
7: राजस्थान।
6: मन में कितनी प्रसन्नता का भाव?
7: बहुत अच्छा, चार साल हो गए बाबा वर्मा ने किया था।
6: प्रतिभा प्रतिवर्ष आते हैं?
7: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
6: बोलो बाबा काशी विश्वनाथ के। हम लोग लखनऊ से आए और देखिए जोश, दो दिन से सोए नहीं है दर्शन करके। श्रद्धालु कश्मीर घाटी जा रहे हैं, बालटल मार्ग की तरफ भी जा रहे हैं और पहलगाम मार्ग की तरफ भी जा रहे हैं। इस समय भी श्रद्धालु कुछ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी बताइए।
8: मेरा नाम है विशाल, मैं हूँ बीकानेर से, बहुत एक्साइटेड।
6: कहाँ जा रहे हैं? कौन से बालटल से जा रहे हैं?
8: पहलगाम से
6: बाबा पारंपरिक मार्ग से ही जाएंगे।
8: यस,
6: एक बार जय घोष कर दीजिए।
8: जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय बाबा बर्फानी,
7: हर हर महादेव,
6: हर हर महादेव, बम बम
9: बोले,
6: बम बम बोले।
1: तो बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर जहां अपार आस्था उमड़ी हुई है, तो वहीं सिक्योरिटी भी एकदम चाक चौबंद है। जम्मू के यात्री निवास स्थान से लेकर कई बेस कैंप तक कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, चलिए आपको दिखाते हैं।
6: सुरक्षा के कदम इस बार यात्रा के लिए उठाए गए हैं। अगर हम देखें तो 670 कंपनियां जो हैं तैनात की जा रही हैं इस यात्रा के लिए, इस वर्ष के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की, और ज्यादातर जो जिम्मा है वो केंद्रीय सशस्त्र बलों पर ही होगा इस यात्रा की सुरक्षा के लिए। और भारतीय सेना के शूरवीर उच्च चोटियों पर जो है तैनात रहेंगे यात्रा मार्ग के आसपास, और जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात है बेस कैंप्स के आसपास और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी। समय भी अगर आप देखें यहां जो यात्री निवास भवन के बाहर जो ये पार्किंग एरिया है जहां से बसें कश्मीर घाटी की तरफ जा रही है, यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात है, केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी भी यहां पर तैनात है, और साथ ही में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहां पर है, क्योंकि ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाना है, एक एक करके गाड़ियों को भेजना है। तो पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी व्यापकता के साथ यहां पर जो है प्रबंध किए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, और साथ ही में सुरक्षा के कदम इसलिए कड़े किए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। आला अधिकारी भी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, केंद्रीय सशस्त्र बल हो, कड़ी सुरक्षा में जो है श्रद्धालु यहां से जा रहे हैं एक एक करके, और पूरी तरह से पूरी व्यापकता के साथ यहां पर जो है श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था है। ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, और पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है भारी संख्या में तैनात है। जहां तक जम्मू के बेस कैंप की बात है, इस समय भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात है, यहां जो अधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद है, और केंद्रीय सशस्त्र बल भी जो है यहां पर मौजूद है। और इस बार 670 जो कंपनियां हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों की, वो तैनात की गई है यात्रा के लिए।
10: उधर देखिए, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ में आस्था का समंदर उमड़ रहा है, दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें यहां पर लग रही हैं।
11: आपको बता दें, माना जा रहा है कि अब मॉनसून के सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी। इस बीच मॉनसून और बारिश को देखते हुए 5 जुलाई तक केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है।
12: पहाड़ चुप हैं, आसमानों में बादल का पहरा है, जाने कब बरस जाए, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। यहाँ यात्रा पूरे शबाब पर है, मंदिर में रौनक है, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। कोई अपनी बारी के इंतजार में है, तो कोई प्रभु के गुणगान में डूबा हुआ है। मंदिर प्रांगण में खुले आसमान के नीचे आयोजित भजन संध्या में भक्ति रस की धारा बह रही है, हर कोई उसमें डूबा हुआ है। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के प्रेम में मगन हैं। बद्रीनाथ धाम को भू वैकुंठ और मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु के इस पावन धाम में इस बार बद्री विशाल के भक्तों ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ऐसा पहली बार है जब मानसून से पहले 14 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। हर रोज करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल यानी साल 2025 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा में करीब 17.5 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन इस बार जून में ही 14 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। माना जा रहा है कि मॉनसून के दौरान यात्रा में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन मॉनसून के बाद तीसरे चरण में फिर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।
9: समय भले ही मानसून आने वाला है, बारिश अभी बरसी नहीं है, लेकिन मानसून से पहले 14 लाख श्रद्धालु और अभी भी लगातार 15,000 से 20,000 रोजाना श्रद्धालु बद्री विशाल के दर पे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं, तो ये एक नया रिकॉर्ड इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक के जो जितने भी यात्रा पिछले वर्षों में जो भी यात्रा हुई है उसमें कभी भी मई और जून के महीने में 12 और 15 लाख 14 लाख तक श्रद्धालु कभी भी नहीं पहुंचे थे। ये पहली बार है जब जून खत्म होने के साथ जुलाई शुरू होने पर बद्रीनाथ धाम में 14 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं।
12: उधर केदारनाथ धाम में मॉनसून ने औपचारिक रूप से दस्तक दे दी है और धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ने भी लगी है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इस बार केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाओं को अनुमति मिली थी।
13: प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी 5 जुलाई तक इसमें रोक लगी हुई है और इसमें अभी मानसून के दृष्टिगत इसको रोका गया है और ये रोक आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है और इसमें जो भी डी

0: मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में ही शुरू हो गई थी। जून के मध्य में मानसून ने औपचारिक रूप से दस्तक दे दी और अब जुलाई की शुरुआत तक मानसून पूरे इलाके में पूरी तरह सक्रिय हो गया है और प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनियों के बीच हाई अलर्ट भी जारी किया है।
1: केदारनाथ धाम में मौसम लगातार खराब है, आए दिन यहाँ बारिश हो रही है। अब बारिश के साथ ही यहाँ पर घना कोहरा छा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन संभव नहीं है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मानसून सीजन के दृष्टिगत केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली 8 हेली सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद मौसम साफ होने पर यह हेली सेवाएं दोबारा संचालित होंगी।
0: केदारनाथ धाम की यात्रा अभी जारी है, लेकिन मानसून की बारिश ने श्रद्धालुओं की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए श्रद्धालुओं को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दिल्ली पहुंचे मॉनसून ने दी गर्मी और उमस से राहत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। राजधानी दिल्ली में मानसून का इंतजार हुआ खत्म, मौसम विभाग ने की पुष्टि, कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मानसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। टिकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में फूल माला से स्वागत, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा इंतजाम।

0: शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर कर लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है। आखिरकार राजधानी दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी। बेशक कुछ दिन ज्यादा लगे लेकिन मॉनसून की मेहरबानी हो गई। बट आई थिंक वी आर नॉट सेटिस्फाइड ना अभी इस बारिश से।
1: सेटिस्फाइड वी आर नॉट हैप्पी। नोएडा का तो आएगा
2: अभी तो हमने देखा भी नहीं है। भाई मैंने कहा ना सेक्टर्स में हमने बारिश देखी।
3: ये तो ट्रेलर भी नहीं था तो टीजर भी मैं तो कुछ
1: भी नहीं टीजर भी नहीं आया अभी तो रील भी नहीं बनी अभी रील भी नहीं बनी।
0: तो मौसम विभाग ने कहा है कि प्री मॉनसून की बारिश है इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए मॉनसून वाली बारिश आएगी। तो यानी कि अब आसमान में बादलों का राज होगा और तेज हवा के झोंके लगातार मिलते रहेंगे।
3: तो जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे तो मेरा मॉनसून आएगा। दिल्ली NCR वाले यही कह रहे हैं। और देखिए इसी के साथ गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत भी मिल गई है। और ऐसे में ये जानना भी काफी जरूरी है कि आखिर देश में मॉनसून अब कहां तक पहुंच चुका है। साथ ही ये भी कि दिल्ली में कितनी बदलेगी बारिश की तस्वीर और आगे किन राज्यों की बारी है।
4: देर आए दुरुस्त आए ये कहावत दिल्ली के मौसम पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। बारिश और उमस से भरे लंबे इम्तिहान के बाद आखिरकार मॉनसून ने राजधानी दिल्ली में दस्तक दे ही दी। मौसम विभाग के अनुसार 2021 के बाद ये पहला मौका है जब मॉनसून जुलाई के महीने में दिल्ली पहुंचा।
5: लंबा इंतजार लेकिन आखिरकार लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली NCR में मॉनसून ने 5 दिन देरी के बाद से ही दस्तक दे दी है। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली और तापमान की अगर बात करें तो तापमान में भी कमी जो है वो देखी गई है। मौसम विभाग का पहले से अनुमान था कि जल्द ही दिल्ली NCR में भी मॉनसून जो है वो दस्तक देने वाला है। हालांकि 27 जून की तारीख थी लेकिन 5 दिन बाद यानी आज 2 जुलाई को जो है मॉनसून दस्तक दिया है और उसके बाद का जो नजारा है वो वाकई में लोगों को राहत दे रहा है। सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि मौसम अभी साफ नजर आ रहा है लेकिन गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। तापमान में कमी आई है लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। लगातार हवाएं चलेगी बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तापमान में गिरावट जो है वो भी देखी जाएगी। तो सामान्य से तापमान काफी कम रहेंगे और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और मॉनसून जो है वो धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान में अभी कुछ हिस्सों में मॉनसून जो है दस्तक नहीं दिया है लेकिन आने वाले दिनों में भी वहां पर भी दस्तक दे देगा जिसके बाद पूरे भारत में मॉनसूनी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहने वाला है।
4: पिछले 2 दिनों से आसमान लगातार इशारे कर रहा था। कहीं तेज बौछारें थी तो कहीं गरजते बादल भी थे मगर इंतजार मौसम विभाग की आधिकारिक मोहर लगने का था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। यूं तो दिल्ली NCR में कई दिन से बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा था। ऐसे में मौसम विभाग ने भी पुष्टि कर दी है कि जो हलचल प्री मॉनसून के तौर पर देखी जा रही थी अब वो पूरी तरह मॉनसून में तब्दील हो चुकी है।
6: 7 दिनों के दौरान यानी 1 सप्ताह के दौरान जो जनरल क्लाउडी स्काई कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी पूरे सप्ताह कंटिन्यू रह सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान जो है वर्षा गति थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिनों के दौरान जिसको देखते हुए येलो अलर्ट भी इशू किया गया है क्योंकि हवा गति थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी साथ में हो सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ्तार रह सकती है। तो फिलहाल इस सप्ताह में तापमान जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे कल भी हम देखें 24 घंटे के दौरान तो अधिकतम तापमान है उसमें करीब करीब 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखी गई थी। तो अगले 24 घंटे में अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की और गिरावट हो सकती है उसके बाद यथास्थिति बनी जा सकती है।
4: हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन बारिश होगी। मॉनसून असल में एक वेदर प्रोसेस है जो अब दिल्ली NCR के ऊपर भी सक्रिय हो चुका है। दिल्ली में मॉनसून की एंट्री के साथ उत्तर भारत के मौसम की तस्वीर बदलने लगी है। तपती सड़कों की जगह भीगी सड़कें दिखेंगी। गर्म हवाओं की जगह ठंडी फुहारें महसूस होंगी। पारे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगने की उम्मीद है। मॉनसून केरल महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचा है। इस बार मॉनसून ने अपनी रफ्तार से देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है और बारिश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए वैसे तो दिल्ली वालों को इंतजार है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन मुंबई में बारिश खूब हो रही है, बदरा खूब बरस रहे हैं, यहाँ मानसून झूम के बरस रहा है और गर्मी से परेशान लोग अब इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही नहीं, मुंबई में आज हाई टाइड भी आया, समंदर किनारे बड़ी तादाद में लोग नजारा देखने के लिए पहुंचे, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि मानसूनी फुहारों का मजा जरूर लीजिए, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए।

0: आसमान में बादलों का डेरा है, हवाओं का रुख बदला हुआ है और बारिश ने गर्मी और उमस को छूमंतर कर दिया है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब मानसून की मेहरबानी हुई है तो जमकर बादल बरसने लगे। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से मुंबई के तमाम इलाके भीगे हुए हैं। इस बारिश ने मुंबई के लोगों को गर्मी और उमस से राहत की सौगात दी है। मौसम के इस बदले अंदाज से मुंबई के लोगों को एक बार फिर मौसम का मजा लेने का मौका मिल रहा है।
1: बरसात का जो मौसम है वो तो अगले एक डेढ़ दो महीने तक यूं ही बरसात होती रहेगी, लेकिन अगर समस्या ना हो तो मुंबई वासी इस मौसम को पूरा तरीके से एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए, तेज बरसात नहीं होने से जो अंधेरी सबवे जो सबसे पहले मुंबई में भर जाता है, अभी इसमें आवाजाही चल रही है। और इसी तरीके से हालांकि सड़क पे हाईवे पे भी हमने देखा ट्रैफिक थोड़ा स्लो है, क्योंकि बरसात तो हो रही है इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लोग अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
0: मुंबई में मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश इसलिए भी जरूरी है ताकि यहाँ पानी की सप्लाई करने वाले जलाशय भर जाएं और पीने के पानी की किल्लत ना हो। आपको बता दें कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल सुबह से 24 घंटे के अंदर मुंबई के शहरी इलाकों से लेकर पूर्वी और पश्चिमी उपनगरीय इलाकों में 134 से 164 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं जुहू एयरपोर्ट और सांता क्रूज इलाकों में तो 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कोलाबा, सायन, विद्या विहार, चेंबूर में 158 से 164 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि भाईकाला, बांद्रा और विक्रोली इलाकों में बारिश का आंकड़ा 161 से लेकर 192 मिलीमीटर तक दर्ज किया गया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मुंबई में बारिश में कुछ कमी भी आई, जिससे आवागमन की मुश्किलें दूर हो गई।
1: तकरीबन जो बरसात का जो मौसम है वो तो अगले एक डेढ़ दो महीने तक यूं ही बरसात होती रहेगी, लेकिन अगर समस्या ना हो तो मुंबई वासी इस मौसम को पूरा तरीके से एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए, तेज बरसात नहीं होने से जो अंधेरी सबवे जो सबसे पहले मुंबई में भर जाता है, अभी इसमें आवाजाही चल रही है। और इसी तरीके से हालांकि सड़क पे हाईवे पे भी हमने देखा ट्रैफिक थोड़ा स्लो है, क्योंकि बरसात तो हो रही है इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लोग अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
0: वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आज 2:45 बजे दिन में मुंबई से सटे अरब सागर में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया था, लिहाजा मरीन ड्राइव पर तमाम लोग समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों के नज़ारे देखने के लिए जमा दिखे।
1: मौसम अच्छा है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा रिलीफ, आप सब देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखा दूं इतनी भारी तादाद में दरअसल लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं समुद्र किनारे। हाई टाइड में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको इनफैक्ट पुलिस के जो अधिकारी, अगर आप देखें वो येलो सूट में जगह जगह पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच के बोल रहे हैं लोगों को समुद्र किनारे से हटने के लिए, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं। आप देख लीजिए काफी सारे लोग, खासतौर से रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर है, और कोशिश इनकी यही है लोगों को समुद्र किनारे से हटने के लिए, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं। आप देख लीजिए काफी सारे लोग, खासतौर से रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर है, और कोशिश इनकी यही है कि सबसे ज्यादा ड्रामेटिक वीडियोस के साथ वो अपने वीडियोस बना लें।
0: कुछ ऐसा ही नजारा बांद्रा बैंड स्टैंड पर भी दिखा।
2: इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड इलाके पे है, मुंबई में हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। वहाँ जहाँ पर 3 दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, आज 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। ट्रेनें सेंट्रल रेलवे पे स्लो चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह से बारिश होने का अंदाजा मुंबई में दिया गया।
0: मुंबई में मानसून की तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं शहर के रफ्तार पर भी कुछ हद तक ब्रेक लगा दिया। हालांकि बारिश की बौछारों के बीच तापमान में गिरावट और उमस में कमी आने से लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, तो मुंबईकरों को सफर में खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। धर्मेंद्र दुबे, विद्या और मुस्तफा शेख के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: वही आम का सीजन चल रहा है और सबके फेवरेट होते हैं आम। कई किस्मों के आम मार्केट में मिल भी जाते हैं और उसके लिए आपको कई फलों की दुकानों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं अगर आपको आपका फेवरेट आम चाहिए तो। लेकिन सोचिए कि अगर तमाम वैरायटीज आपको एक ही जगह मिल जाए
4: तो सोचिए मीठे और रसीले आमों की एक खुशबू सी और पार्क में आपको महसूस होगी, क्योंकि यहाँ चल रहा है मैंगो फेस्टिवल जिसे बंगाल सरकार ने आयोजित किया है। इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसमें आप आएंगे तो आपको अलग अलग किस्म के आमों को चखने का, उन्हें खरीदने का मौका मिलेगा।
5: आमों की रसीली मिठास और उनकी भीनी भीनी खुशबू जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। मीठे और रसीले आमों की ये खुशबू इन दिनों दिल्ली के चितरंजन पार्क में बिखरी है, जहां पश्चिम बंगाल के खास और रसीले आमों का मेला लगा है। यहां मालदा से लेकर लंगड़ा और बंगापल्ली आम तक इस मैंगो फेस्टिवल में मौजूद हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल मैंगो फेस्टिवल और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया है।
6: वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया कराया गया है और यहाँ पर 12 प्रकार के पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले आमों के वैरायटीज प्रदर्शित किए गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अमरपाली नाम से आपका ये ब्रांड है और इसमें आम रखा गया है, अमरपाली नाम से है। फिर ये मालदा लंगरा नाम करके, लंगरा नाम से आपका ये आम है, उसकी भी ये यहाँ पर रखा गया है। पहली बार चितरंजन पार्क में ये आयोजन हो रहा है, इससे पहले दिल्ली के जनपथ में होता था। चूंकि चितरंजन पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल से आने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो रहा है और उनका रिस्पॉन्स काफी मिल रहा है।
5: इस मेले में कदम रखते ही आपको बंगाल के बागानों की ताजगी का एहसास होगा। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 अलग अलग किस्मों के मशहूर बंगाली आम मौजूद हैं। हिमसागर से लेकर लंगड़ा, लक्ष्मण भोग और फाजली जैसे खास आमों की महक से पूरा मेला ही गुलजार है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच भी रहे हैं और अपनी मनपसंद आमों की खूब खरीदारी कर रहे हैं।
7: देखिए, मैंगो फेस्टिवल में इसलिए आया हूँ, पर्टिकुलरली सारी मैंगो जो है पश्चिम बंगाल से आया है, मैं भी पश्चिम बंगाल की है, बचपन मेरा उधर ही बीता, हर मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है मेरा घर, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो मालदा का जो फजली है, ये फजली है देखने, कोई इसमें देखने में कोई खुशबू आता नहीं लेकिन खाने में ना अजीब से अलग सेपरेट खुशबू आता है।
5: आमों की मिठास के साथ साथ मेले में बंगाल के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबार से जुड़े बेहतरीन आइटम्स भी दिल्ली वालों का मन मोह ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मैंगो मेले में खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने मेले का मुआयना किया और बंगाल के स्वादिष्ट आमों का खूब लुत्फ भी उठाया। तो अगर आप भी आमों के शौकीन हैं और अपने आम के जायके में कुछ खास मिठास घोलना चाहते हैं तो पहुंच जाइए दिल्ली के सीआर पार्क, जहां 5 जुलाई तक बंगाल के आमों की ये खुशबू कुछ इसी तरह बिखरी रहेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे कल फिल्मी फ्राइडे में कौन कौन सी फिल्में मचाने वाली है धमाल।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: देखिए कल बहुत इंटरेस्टिंग डे है, एक तो फ्राई डे है, फ्राई ये होता है हम लोगों का, लेकिन आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की अल्फा रिलीज होगी। उससे पहले आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने किरदार के लिए जबरदस्त तैयारी जो की है उसकी एक झलक दिखाई है। तो कैसा है आलिया का ये एक्शन अवतार और कैसे इस कठिन रोल के लिए आलिया ने खुद को तैयार किया, तैयारी की, देखिए आलिया के एक्शन अवतार की ये इनसाइड स्टोरी।
12: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
13: से तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो।
12: अब बात कर।
14: जब किरदार चैलेंजिंग हो तो उसके साथ न्याय करने के लिए एक्टर को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं।
13: मरना है? नहीं ना, तुम मार दे।
14: कुछ ऐसा ही एफर्ट आलिया भट्ट ने शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म अल्फा के लिए किया है। अब तक आए ट्रेलर और टीजर से साफ है कि अल्फा में आलिया जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। आलिया का ये एक्शन अवतार उनके अब तक पर्दे पर निभाए सभी किरदारों से बिल्कुल अलग, बेहद बुखार और घातक होने वाला है।
13: रोक लो तो बात कर लो।
14: जाहिर सी बात है जब किरदार इतना चैलेंजिंग हो तो आलिया को इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ी होगी। आलिया ने अल्फा की रिलीज से जस्ट पहले एक वीडियो पोस्ट कर अपनी मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई है। वीडियो में आलिया भट्ट फैंस को उस ट्रेनिंग की झलक दिखा रही हैं, जिसने उन्हें अपने करियर के सबसे मुश्किल रोल में ढालने में मदद की और इसका काफी हद तक श्रेय जाता है हॉलीवुड के मशहूर एक्शन और स्टंट एक्सपर्ट जेसन नोवियेलो को, जिन्होंने आलिया को ब्लैक बेल्ट लेवल की ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही आलिया के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरू शाही ने अल्फा की शूटिंग शुरू होने से पहले लगातार 4 महीनों तक आलिया की फिजिकल स्ट्रेंथ, कोर और एथलेटिक स्टेमिना बढ़ाने पर काम किया। आलिया ने स्टाइलिश और पावर पैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट्स के लिए मार्शल आर्ट्स सीखी, हथियारों को चलाने और उन्हें पकड़ने का सही और पेशेवर तरीका सीखा। आलिया ने वायर वर्क यानी कि हवा में स्टंट करने के लिए खूब अभ्यास किया और तेजी से मूव करने के लिए फुटवर्क पर हफ्तों तक काम किया। फिल्म में करीब 5 से 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, जिन्हें बिना थके करने के लिए आलिया को अपने स्टेमिना को चरम पर ले जाना था। इसके लिए आलिया ने फंक्शनल और एथलेटिक ट्रेनिंग ली, स्टेमिना और कोर स्ट्रेंथ के लिए बैटल रोप्स, रोइंग मशीन और बॉक्स जंप्स का खूब अभ्यास किया। स्ट्रेंथ और वेट लिफ्टिंग के लिए केटल बेल स्विंग्स, हैवी वेट स्क्वाट्स और टायर फुटेज ड्रिल्स किए। बेहद कठिन सीसी स्क्वाट्स के तहत आलिया ने घुटनों के कंट्रोल, मोबिलिटी और थाई स्ट्रेंथ पर खूब काम किया। इन एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि शरीर को अत्यधिक फुर्तीला और मजबूत बनाना था। सूत्रों की माने तो फिल्म के मुश्किल और हैरतअंगेज एक्शन सीन को पर्दे पर पूरी तरह असल रूप देने के लिए आलिया और शर्वरी ने दिन रात एक करके बेहद कड़ी ट्रेनिंग पूरी की, जो दर्शकों को स्क्रीन पर साफ दिखाई देगी। एक्शन डायरेक्टर क्रेग मैकरे के मुताबिक आलिया और शर्वरी हर दिन शरीर पर नील और दर्द के साथ घर लौटती थी, लेकिन अगले दिन फिर से दोगुनी ऊर्जा के साथ आ जाती थी। दोनों खुद से और ज्यादा रिहर्सल की मांग करती थी। आलिया और शर्वरी की मेहनत दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर साफ दिखाई देगी। करीब 2 घंटे 20 मिनट की इस हाई ऑक्टेन फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। अल्फा कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: देखिए क्रिकेट के मैदान पर अब शाहरुख खान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि दुनिया की किसी भी क्रिकेट फ्रेंचाइजी ने अब तक नहीं बनाया। नाइट राइडर्स ग्रुप ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही नाइट राइडर्स दुनिया का पहला ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन गया है जिसके पास अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसे सपने के सच होने जैसा पल बताया।
15: शाहरुख ने कहा कि यह स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन परिवारों और पूरी कम्युनिटी को जोड़ने का केंद्र बनेगा। शाहरुख ने उम्मीद जताई है कि लॉस एंजल्स में क्रिकेट का नया घर बनेगा और आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों और फैंस को प्रेरित करेगा। नाइट राइडर्स ग्रुप के तहत फिलहाल IPL कैरेबियन प्रीमियर लीग UAE की ILT20 और अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में 4 फ्रेंचाइजीज खेल रही हैं और इसी के साथ नाइट राइडर्स ने अपने ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड की पहचान को और मजबूत बना दिया है।
16: community, togetherness, and of course, entertainment. So here's to Los Angeles and the journey ahead. Thank you, everybody, and lots of love.
4: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला फिलहाल जारी है।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री वाला टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। और देखिए, हाल ये है कि ठंड से बचने के जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने के जुगाड़ बढ़ा रहा है,
2: और इसीलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। चलिए आपको दिखाते हैं यूरोप में पड़ रही प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ा है।

0: गर्मी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पसीने चीन की इन फैक्ट्रियों में काम करने वालों के छूट रहे हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से चीन में बने इन एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। अभी यूरोप के केवल 20% घरों में एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने बाकी 80% लोगों को भी एसी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक कंपनी में कर्मचारी देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए न दीवार तोड़नी पड़ती है और न ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यूरोप में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। यूरोप में जिस तरह गर्मी का कहर बरपा है, उसने मौसम को लेकर यूरोप की सोच बदल डाली है। यहाँ के जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर लगाना जरूरी नहीं माना जाता था, वहाँ अब एसी और कूलिंग फैन के लिए मारामारी मची हुई है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पोर्टेबल एयर कंडीशनर और कूलिंग फैन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। स्टोर मैनेजर का कहना है कि हर ग्राहक एसी या पंखा खरीदना चाहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ रही है। दरअसल यूरोप की ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और उनमें स्प्लिट एसी लगाना आसान नहीं है। किराए के घरों में मकान मालिक की मंजूरी के साथ साथ यहाँ सख्त बिल्डिंग नियम और ऊंची लागत भी स्प्लिट एसी के लिए मुफीद नहीं है। ऐसे में पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिलहाल सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। एसी को लेकर यूरोप में जिस तरह की बेचैनी है, उसने एक बार फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चिंताओं को नए सिरे से सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर शाम 5 बजे मिलेंगे चाय पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाती है। Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
1: भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, AI और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। मॉनसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। टीकरी बेस कैंप पर अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच फूल माला से स्वागत, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर कर लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में आपका स्वागत है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। कल यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले जीएनटी भी निकल पड़ा है अमरनाथ यात्रा पर। आज आप जीएनटी के कैमरा की नजर से अमरनाथ यात्रा के हर पड़ाव की तस्वीर देखेंगे। अगले 2 दिनों तक गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ आप भी दिव्य अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अपने अपने शहर और घर से ही जीएनटी के साथ बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन भी आप करेंगे।

0: बम
1: भोले,
0: बम बम
1: भोले,
0: जय करा वीर बजरंगे, भोले की फौज।
2: अमरीशम महादेवम गत्वा दृष्टा च शंकरम मुच्यते सर्व पापेभ्यो रुद्रलोके महीयते। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में अमरेश्वर तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है और उसी खंड के श्लोक का अर्थ है, जो भक्त अमरेश्वर महादेव यानी अमरनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंततः रुद्रलोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यहीं पर सुनाया था। नीलमत पुराण जैसे दूसरे प्राचीन ग्रंथों में भी अमरनाथ की महिमा का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। हिंदू धर्म में अनंत महिमा है इस महातीर्थ की, जहां साक्षात देवादिदेव महादेव अमरनाथ रूप में निवास करते हैं और हर साल अपने बर्फानी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यही है वो पावन जगह जिसे दुनिया अमरनाथ धाम नाम से जानती है। अमरनाथ महातीर्थ से जुड़ी इसी मान्यता के चलते हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त आस्था और चमत्कार के इस दुर्गम पथ पर चलकर बाबा बर्फानी के दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन करने पहुंचते हैं। अब की बार जब तब संकल्प और शिव भक्ति के इस पावन पथ पर गुड न्यूज टुडे भी निकला है। इस बार GNT के साथ आप घर बैठे दिव्य अमरनाथ यात्रा में शामिल होंगे। पूरे यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपको दिखाते हुए GNT बाबा बर्फानी की गुफा तक इस यात्रा को पूरा करेगा और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करवाएगा। आस्था की इस अनंत यात्रा में शामिल होने के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: हृदय में हिलोरे लेता आस्था का सागर, आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस और जुबान पर देवादिदेव महादेव का नाम। आस्था का ये सफर जारी हो चुका है और शुरू हो चुका है। मन में महादेव से मिलन की लौ जलाए भक्तों के कदम आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले आज दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई। पहली तस्वीर आई जम्मू से, श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से आज सुबह करीब 4:30 बजे बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ये अद्भुत दृश्य था, शिवमय माहौल था, भोलेनाथ के जयकारों की गूंज हर तरफ थी। किसी के कंधे पर तिरंगा था तो किसी के हाथ में त्रिशूल नजर आया। हर चेहरे पर इस अद्भुत यात्रा में शामिल हो पाने का उल्लास छलक रहा था। जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ, उधर बालटाल बेस कैंप में हजारों यात्री पहुंच चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। बालटाल कैंप से चंद घंटों में गुफा की तरफ यात्रियों की रवानगी शुरू हो जाएगी और गुड न्यूज टुडे भी बालटाल कैंप से ही आपको अमरनाथ यात्रा पर लेकर चलेगा। यात्रा की शुरुआत से पहले हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने बालटाल कैंप में यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजामों का जायजा लिया।

0: மகாமாரம் சிவம் சங்கரம் சம்பு மீசான மீடே.
1: भोले की फौज करेगी मौज और अमरनाथ यात्रा मार्ग पर वाकई मौज ही कर रही है भोलेनाथ की ये मतवाली फौज. खुशी इतनी कि मन में न समाए और भला समाए भी कैसे. इंतजार की घड़ियां यहां आकर खत्म हो गई हैं. साल भर जिन बाबा बर्फानी के दर्शन की राह देखी अब उन्हीं बाबा तक पहुंचने वाली राह जो खुल गई है. ये अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मौजूद बालटाल बेस कैंप की तस्वीरें हैं जहां भक्तों का उत्साह आसमान छू रहा है.
2: मैं इस वक्त बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूं और यहां पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहां पर पहुंचा हुआ है वो किस तरीके से यहां पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं. तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहां पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहां पर नारे लगा रहे हैं. लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहां पर पहुंचे. देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहां से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए सीधे यहां पर पहुंच रहे हैं.
1: आस्था और उल्लास में डूबे माहौल में यहां उमंग की अलग ही लहर नजर आ रही है.
3: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले.
1: बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की दूरी महज 14 किलोमीटर है. हजारों भक्त यहां पहुंच चुके हैं और सिलसिला अभी भी जारी है. गुरुवार की रात यात्री यहीं रुकेंगे और शुक्रवार की सुबह यहां से अमरनाथ गुफा की ओर रवाना होंगे.
2: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं. लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे. सुरक्षा की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर लगाई गई है. पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ और इसके साथ साथ यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है. लाइनों में जो लोग यहां पर लगे हुए हैं इनको तत्काल यहां पर अपना पास रजिस्ट्रेशन बनवाना है और उसके लिए ये लोग यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इस पूरा इलाके की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है और यहां पर टेंट सिटी पूरी तरीके से तैयार किया गया है जिसमें 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहां पर रुक सकते हैं और उसके बाद यहां से ये सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे. ये मेन कैंप है, बालटाल का कैंप है. यहां से लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं.
1: हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं. जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू की जाती है. इसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है. अब की बार भी यहां हजारों श्रद्धालुओं के रुकने के लिए विशाल टेंट सिटी बनाई गई है.
2: तस्वीरों में आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कितनी बड़ी टेंट सिटी यहां पर तैयार की गई है. आप देखिए यहां से सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो आगे रास्ता डोमेल की तरफ जाता है पूरा यहां से लेकर के वहां तक पूरा एक बड़ा भव्य टेंट सिटी तैयार किया गया है. अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तमाम लोगों की तरफ से ये व्यवस्था दी गई है कि जो यहां पर बाबा बर्फानी के श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो इसलिए यहां ठहरने की उचित व्यवस्था यहां पर की गई है. आप पूरा सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा इस घाटी में एक शहर जैसा बसा हुआ है जहां पर 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। किसी भी तरीके से अगर कोई बीमार होता है, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जो इलाके हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यही रास्ता जो है वो सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाता है, जहां से लोग या तो पैदल यात्रा करते हैं या खच्चर के जरिए यहां से यात्रा करते हैं। क्योंकि इस बार भी हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर नहीं दी गई है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं है। जिनके RFID बने हुए हैं, जो उनके पास बने हुए हैं, वही लोग इस पूरे इलाके में आकर के यात्रा कर सकते हैं।
1: टेंट सिटी के अलावा कैंप में श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले ट्रस्ट और सेवादारों ने जगह जगह लंगर लगाए हैं। यूं तो पूरे यात्रा मार्ग पर भक्तों के लिए जगह जगह लंगर और खाने पीने के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर ये तैयारियां हजारों श्रद्धालुओं के हिसाब से बड़े पैमाने पर की जाती है। हजारों यात्रियों के हिसाब से ठहरने और खाने का इंतजाम किया जाता है, इसके साथ ही जरूरी दवाओं और मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है। अब की बार बालटाल बेस कैंप पर करंट रजिस्ट्रेशन और टोकन अकाउंट भी लगाया गया है। यात्रा की शुरुआत भले ही 3 तारीख की सुबह से होनी है, लेकिन बालटाल बेस कैंप में भोलेनाथ की भक्ति निर्बाध चल रही है। भक्तों के लिए बालटाल बेस कैंप में महादेव का मंदिर भी बनाया गया है।
2: मैं इस वक्त बालटाल में मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि भगवान भोले की प्रतिमा लगा करके यहां जो लंगर बने हुए हैं, यहां इस तरीके की सेवाएं दी जा रही हैं। यहां डमरू हाथ में लेकर के लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से आकर के लोग ऐसे ही यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। इस तरीके की तैयारियां बालटाल के बेस कैंप में, जहां पर लंगर और इसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई है, इसके साथ साथ मंदिर भी यहां पर बनाए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो वहीं भगवान नंदी को भी यहां पर पंडाल के अंदर सजाया गया है, जो कि ये खास तरीके से व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो बाबा के भक्त हैं उनको यहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत न हो।
1: अब इंतजार है तो सुबह के सूरज निकलने का, जब ये भक्त झूमते गाते बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बालटाल बेस कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं, बालटाल हो या पहलगाम। बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्ग, टेंटों और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं। सुरक्षा के साथ ही यात्रियों की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। CRPF ने अपनी महिला कमांडोज को मिलकर एक मे आई हेल्प यू टीम बनाई है। ये टीम बेस कैंप्स में यात्रियों की हर संभव मदद कर रही है।
2: बालटाल कैंप में CRPF की मे आई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो CRPF की महिला कमांडोज हैं, वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं, उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
5: मे आई हेल्प यू एक टीम है, जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
2: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती, तो उनको कैसे आप बताते
5: हैं? सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है, उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू, ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं, उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है, तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कितने सालों से यात्रा कर रही हैं और अब इस तरीके की व्यवस्था सीआरपीएफ के द्वारा दी जा रही है?
6: देखो, इनके बिना तो यात्रा सफल ही नहीं है। अगर ये लोग हैं तो हम यात्रा कर पा रही हैं, लेडीज खासकर, और जेंट्स तो मतलब ये तो 37 इयर्स से रेगुलर आ रहे हैं और इनके बिना यात्रा सफल नहीं है। इमोशनली भी, फिजिकली भी ये हर तरीके का सपोर्ट करती है। जब जब हमने इनको अप्रोच कराया तब तब इन लोगों ने हमें बहुत हेल्प की है, तो इनके बगैर यात्रा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है।
2: बिल्कुल, मे आई हेल्प यू, ये टीम लगाई गई है सीआरपीएफ की। आप लोग बालटाल बेस कैंप में हैं, यहाँ से यात्रा ऊपर के लिए होगी, किस तरीके से ये लोग हेल्प कर रहे हैं?
7: देखिए सर, ये बहुत ही इनका हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा है। जो लास्ट ईयर इनकी टीम बनी है उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है, नहीं तो इनके बिना हम लोगों को आरएएफ कार्ड बनवाना, यात्रा में हमारे लिए जो भी अरेंजमेंट करना, ये सब इतनी ऊंचाई पे आके हमारे लिए इतना अरेंजमेंट करना बहुत ही कठिन काम है। इस कठिन काम को सिर्फ जो हमारी फोर्सेज हैं और सीआरपीएफ, मेनली सीआरपीएफ ही हमारे लिए ही सारा ये अरेंजमेंट कर रही है, सच में। और मतलब लोग
8: नहीं, हर यात्री को, जो आम यात्री, गरीब लोग भी आता है, उसमें भी सीआरपीएफ में सब लोग भागकर इतना हेल्प करते हैं कि हम लोग मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब इनके बिना यहाँ यात्रा हो ही नहीं सकती।
2: सीआरपीएफ जो है यहाँ पर 2400 घंटे तैनात है बालटाल बेस कैंप में, और ये महिलाओं की खास टीम जो कि लोगों की मदद कर रही है। इन लोगों ने यहां पर मे आई हेल्प यू की टीम जो पूरी तरीके से है इसको बनाया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जब भी महिलाएं यहां पर पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करती हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में ये महिला कमांडो जो सीआरपीएफ की हैं वो खास तौर से तैयार की गई हैं, और ये लोग इन इलाकों में रह करके लोगों की बड़े स्तर पर इस वक्त मदद कर रही हैं। खास इनका यही है कि यहां ये लोग जहां पर मौजूद हो वहां से किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए पूरी तैयारी सीआरपीएफ की टीम के द्वारा किया गया है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
4: यात्रा से पहले जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह जब पहला जत्था रवाना हुआ तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक था। इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पर रात से भी श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। यात्रा के पहले जत्थे में शामिल सभी भक्त उत्साह से भरे हुए थे। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल शिवमय था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए इस जत्थे में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग भी शामिल थे।
9: बम बम भोले का ये जयकारा अमरनाथ की महिमा का बखान। भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं और बाबा बर्फानी के प्रति अपार श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन की बात है जब जम्मू से रवाना हुए इनमें से कई भक्त अमरनाथ गुफा जाकर पवित्र दर्शन करेंगे। उस पावन और दिव्य दर्शन के लिए भक्तों का यह पहला जत्था आगे बढ़ चुका है। शिव के धाम की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, डमरू बज चुके हैं। वो पल अब बेहद करीब है जब इन श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होगी।
10: मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति
11: और प्रसन्नता और उमंग जितनी है वो कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में एक ही आशा है, एक ही मनसा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन जितना जल्दी हो सके कर सके। जी
10: एक बार भगवान भोलेनाथ का कोई भजन गाइए।

0: जम्मू के कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इन श्रद्धालुओं का उत्साह उत्सव में बदला हुआ नजर आ रहा है।
1: आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और चेहरे पर इनके मुस्कान देखिए, प्रसन्नता की अनुभूति देखिए कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
2: दीपिका खंडेलवाल।
1: कहाँ के रहने वाले?
2: अलवर राजस्थान।
1: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
2: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
1: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
2: मैं पहली बार आ रही हूँ।
1: तो कितनी उत्सुकता है मन में?
2: बहुत ज्यादा उत्सुकता है और सबको आना चाहिए।
1: अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब आप भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ को?
2: मेरे पास तो बहुत चीजें मांगने को, मैं सब चीज बता दूंगी भोले बाबा को, फिर वो पूरी कर देंगे।
0: भोले भंडारी पर भक्तों का कुछ ऐसा ही विश्वास है

0: तमाम दुखों को हरने की और संकट का नाश करने वाले बाबा बर्फानी की शक्ति ऐसी कि कोई भक्त निराश नहीं होता।
1: सर भाव तो बाबा के लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
2: देख रहा हूँ आप काफी भावुक भी हो रहे हैं।
1: हाँ सर, बस बहुत मन था आने का। मैं तो बाबा को थैंक्स बोलने के लिए रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा। बाबा ने बिना इतना कुछ
2: मांगे ही मुरादें पूरी करा।
0: इसी आस्था के साथ काफिला आज जम्मू से पवित्र सफर पर निकल पड़ा।
3: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम
0: बम बम बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा जम्मू गूंज उठा।

0: जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से पहले जत्थे की रवानगी हुई। उपराज्यपाल ने सुबह पहले पूजा अर्चना की, फिर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया।
1: का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु पहुंचे हैं इस यात्रा के लिए। यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है और कल से ये यात्रा जो है विधिवत तौर पर दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। यहाँ पर देखिए आप कि उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और यही भाव है मन में कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके।
0: इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को लेकर तैयारियों पर संतुष्टि जताई। जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप पहुंचेंगे। सभी तीर्थयात्री रात में उन बेस कैंपों पर ही रुकेंगे, फिर तड़के अमरनाथ के लिए उनकी पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
2: श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बनता है। बम बम भोले की गूंज के साथ जहां से बसें जो हैं वो श्रीनगर की ओर रवाना हुई हैं, बालटाल के रास्ते ये सारे लोग जो हैं बाबा अमरनाथ जी के

0: यात्रा में
1: और यात्रियों को सुविधा
0: पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश इस यात्रा से जाता है और वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।
2: अमरनाथ के लिए जम्मू से आज पहला जत्था रवाना हुआ और कल से पवित्र दर्शन शुरू हो जाएंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो आप भी तैयार हो जाइए इस यात्रा के हर रंग को, क्योंकि जीएनटी आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे हैं भक्त। बाबा के दर्शन करने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मॉनसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारियां। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते। एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: कल बड़े पर्दे पर छाएगा सुपरस्टार्स का जलवा। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा हो रही है रिलीज। आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ और बॉबी देओल जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी हुई यह फिल्म एडवांस बुकिंग भी हो गई शुरू। ओटीटी की महारानी हुमा कुरैशी भी अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार। बेबी के किरदार में नजर आएंगी हुमा कुरैशी, एक दिव्यांग हिट वुमन के किरदार निभा रही हैं। अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू का एक और गाना अल्फा क्यू रिलीज। अर्जुन अय्यर की मधुर आवाज सुनाई दी। फिल्म नागबंधन भी पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। साउथ के ऑडियंस के लिए फिल्म फ्राइडे को लेकर आ रही है महेश बाबू के प्रोडक्शन से बनी हुई फिल्म राव बहादुर। ओटीटी पर भी मिलेगा एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज। प्रीतम एंड पेड्रो के साथ ओटीटी पर प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने के लिए तैयार है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। गोवा के पुलिस ऑफिसर पेड्रो के इर्द गिर्द घूमती है इस थ्रिलर सीरीज की फिल्म। सोनी लिप पर रिलीज होगी मलयालम की पहली म्यूजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म करक्कम। सनी देओल की बहुचर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 पर बॉबी देओल का भावुक पोस्टर, लिखा आप सबसे बेहतरीन हैं भैया। अपकमिंग फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का टीजर हुआ जारी। प्यार, धोखा और खौफनाक रहस्यों से भरपूर नजर आ रही है फिल्म। मराठी फिल्म शाबाशा का दमदार टीजर हुआ आउट। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव के जीवन पर आधारित है फिल्म। मच अवेटेड पंजाबी फिल्म दस्तार का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज। पंजाब के गौरव, साहस, बलिदान और पहचान की कहानी बयां करती है। कपिल शर्मा नीतू सिंह स्टारर दादी की शादी ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार, मेकर्स ने की रिलीज डेट की घोषणा। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का किया उद्घाटन, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम किया समर्पित। केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा, जो एक सपना था वो आज हकीकत बन गया। कैलिफोर्निया के पोमोना में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का पारंपरिक पूजा पाठ के साथ अनावरण किया गया। पूजा में केकेआर समूह के सीईओ वैंकी मैसूर भी शामिल हुए। ग्राउंड का इस्तेमाल मेजर लीग क्रिकेट और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में होगा। आईसीसी चेयरपर्सन जय शाह ने शाहरुख खान को बधाई दी। शाहरुख ने इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए जय शाह संजू गुप्ता का शुक्रिया किया। टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बन गए अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने 785 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के। भारत के लिए 100 छक्के लगाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए अभिषेक शर्मा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में बनाई अपनी जगह। इंग्लैंड के खिलाफ मैच 20 गेंदों में 50 पूरी करके इंग्लैंड में सबसे तेज टी20 50 लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए अभिषेक। इंग्लैंड में जाकर टी20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर। उन्होंने खेली 68 रनों की तूफानी पारी। इंग्लैंड के मैदान पर टी20 में किसी भारतीय कप्तान की पहली बड़ी पारी। श्रेयस ने इस प्रदर्शन के साथ तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। कोहली ने 2018 में कार्डिफ के मैदान पर बनाए थे 47 रन। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा। दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। पहला टेस्ट गोल में 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा, वहीं पर दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए अहम यह सीरीज। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में फिलहाल पांचवें पायदान पर है भारत। विंबलडन के तीसरे दौरे में पहुंचे नोवाक जोकोविच ग्रीस के स्टेफानोस को महज 98 मिनट में सीधे सेटों में हराया। टूर्नामेंट के अगले यानी तीसरे दौर में फ्रांस के 25वें सीड आर्थर से होगा नोवाक का मुकाबला। बाबा बर्फान की पवित्र यात्रा को पैदल शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे उत्साही श्रद्धालु। कल से होगी पवित्र यात्रा का औपचारिक शुरुआत। बालटाल बेस कैंप पहुंचने से पहले रामबन में अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों ने तीर्थयात्रियों के लिए लगाया लंगर। भक्तों की हर सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। शादीपुरा ट्रांजिट कैंप पर भी अमरनाथ यात्रियों का फूलमाला से स्वागत किया गया। यात्रा मार्ग पर भी भारी सुरक्षा। भक्तों की अगुवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर रहे मौजूद। यात्रा के सुरक्षित शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से सुखद होने की शुभकामनाएं दी। आज तौड़ के सुबह जम्मू से एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था। कहा यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। उपराज्यपाल ने जानकारी दी। यात्रा का पहला जत्था कहा यह आस्था और आत्मखोज की यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। उपराज्यपाल ने जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से पहुंचे जम्मू कश्मीर श्रद्धालु। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड जारी। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडोस की तैनाती, मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। इस बार कुल 57 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फान की पवित्र यात्रा। 28 अगस्त को होगी संपन्न। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भी भक्तों का जोश है बरकरार। जयकारों से गुंजामान हो रहा है परिसर। अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। फिलहाल बाबा केदार के धाम में बारिश में भी दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यात्री। मौसम विभाग के एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा का किया जा रहा है संचालित। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। चमोली जनपद में देर रात से हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। हाईवे बंद होने से तीर्थ यात्रियों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का इंतजार, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। पहाड़ों में मानसून ने दस्तक दी, पहाड़ों में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हो गया ठंडा सुहाना, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़। रुद्रप्रयाग में उफान पर, अलकनंदा नदी लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर। बारिश के बाद प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सलाह लगातार दे रहा है, मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी की अलर्ट। पहली बारिश में बद्रीनाथ मार्ग का गुलाब कोटी में बंद होने से यात्रियों की संख्या में गिरावट। बारिश के बाद कांगड़ा की वादियां हुई और भी हसीन, सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे लोग। खूबसूरत वादियों ने बढ़ाया आकर्षण, सुहाने मौसम को देखते हुए पर्यटकों की बढ़ी संख्या। लगातार बारिश के कारण मुस्तैद हुआ प्रशासन, निर्माण स्थलों से मलबा हटाने के लिए NHAI की विशेष टीम तैनात। सुहाने मौसम के साथ सतर्कता का संदेश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम अलर्ट की अपील करने की। मानसून के बीच सुरक्षा पहली प्राथमिकता, संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रशासन की लगातार पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के डोडा और भलेसा में जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में भर गया पानी। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की, कहा भूस्खलन वाले इलाकों में न जाएं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के कोरापल गुरेस में फट गया बादल, नदी में आया सैलाब। बादल फटने के बाद प्रशासन ने जारी कर दिया अलर्ट, नदी नाले किनारे जाने पर लगाई रोक। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भर गई पवई झील, झील के किनारे मछली पकड़ते नजर आए लोग। झील के किनारे गिरता हुआ झरना हिल स्टेशन की दिलारा याद, झील में बने हाउस बोर्ड बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। नागपुर में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी से मिली राहत। दिल्ली NCR में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश से मिल गई गर्मी से राहत, लुढ़का तापमान। हरियाणा राजस्थान के लिए राहत की खबर, अगले दो दिन में दस्तक दे सकता है मानसून। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही है भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के बोटाद जिले में हुई जबरदस्त बारिश, मानसून की दस्तक देने के साथ गिर गया तापमान। गुजरात में अगले एक हफ्ते के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, आने वाले हफ्ते में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के शहर में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान। भुवनेश्वर में हुई जबरदस्त बारिश, गर्मी से राहत पाने के लिए मौसम सुहाना। हुबली में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा, जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर जापानीज प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, भारत और जापान ने अपना पहला रक्षा सह विकास समझौता किया। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर जताई सहमति, इंडो पैसिफिक विजन के लिए तकनीकी साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बताया छोटी बहन, जवाब में ताकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी को भाई कहा। इंडिया जापान बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुजुकी की दो तिहाई कारें भारत में बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जापान की मदद से देश में लगेंगे 1000 फर्टिलाइजर कारखाने। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान स्कीम के 10 साल बढ़ाने के करेंगे ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, प्रदेश में लगातार 7वें वर्ष भी बिजली की दरों में नहीं की कोई बढ़ोतरी। भारतीय नौसेना का एक और बड़ी उपलब्धि, युद्धपोत INS त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। उधम सिंह नगर में आपदाओं से निपटने को लेकर प्रशासन की मॉक ड्रिल, 5 लोगों के रैम और रेस्क्यू में एक बहती हुई कार के साथ साथ आपदा से संबंधित किए गए अभ्यास। चीन के शांक्सी प्रांत में गर्मी से राहत पाने के लिए इमारतों पर लगाया गया है खास मिस्टिंग सिस्टम। स्प्रिंकलर्स और इसकी फुहारों से सड़कों का तापमान किया जा रहा है कम, जिससे लोगों को मिल रही है राहत। भीषण गर्मी के बीच चीन ने शहर को ठंडा रखने के लिए हाईटेक मिस्टिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी है। इन दोनों चर्चा में शांसी प्रांत में मिस्टिंग सिस्टम्स की इमारतें और आसपास के इलाकों को ठंडा करने की पहल। चीन में स्प्रिंकलर्स और कूलिंग मिस्ट सिस्टम के जरिए गर्मी का असर हुआ कम, गर्मी भगाने के लिए स्मार्ट समाधान। हांगकांग की वापसी के 29 साल पूरे होने के मौके पर आसमान में 2026 ड्रोन ने शानदार शो पेश किया, स्पेस थीम वाली आकृतियों ने दर्शाया जीत का दिल। हंग होम न्यू वाटर फ्रंट पर 2026 ड्रोन की रोशनी से रात का आसमान जगमगाया। 29वीं वर्षगांठ में जश्न में ड्रोन शो ने तकनीक और कला का अनोखा संगम पेश किया। स्पेस थीम वाले ड्रोन फॉर्मेशन ने हांगकांग की तकनीकी प्रगति को दुनिया के सामने पेश किया, भविष्य की उड़ान का संदेश दिया। 2026 ड्रोन की सिंक्रोनाइज्ड उड़ान रात के आसमान को रंगों से पूरी तरीके से भरती हुई नजर आई। न्यूयॉर्क समेत पूर्वी अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव महसूस होने वाला, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी से बचाव करने के लिए शहर में कूलिंग सेंटर खोले गए, मुफ्त पानी, सनस्क्रीन और स्विमिंग पूल के समय बढ़ाए। भीषण गर्मी के बीच बिना एसी वाले ट्रकों में काम करना हो गया बहुत मुश्किल, ट्रक ड्राइवर्स ने बयां किया अपना दर्द। न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बढ़ाया मदद का हाथ, जरूरत लोगों के लिए ठंडे पानी की बोतल्स उपलब्ध करा रहे। 4 जुलाई वीकेंड तक अलर्ट जारी कर दिया गया, स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने की अपील की। न्यूयॉर्क में 38 फीट लंबी टी रैक्स गज का कंकाल नीलामी के लिए रखा जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक गज अब तक मिले सबसे बड़ी और सबसे पूर्ण टी रैक्स कंकालों में से एक है। टीरेक्स का ये कंकाल 2021 से 2023 के बीच साउथ डकोटा में खोजा गया। इसका नाम जमीन के मालिक गैरी गस के डिंकिंग के सम्मान में रखा गया। इस टीरेक्स कंकाल के खरीदार को उसकी प्रतिकृतियां बनाने के कॉपीराइट भी मिलेंगे। सोटबीज की गीक वीक 2026 नीलामी में टी रैक्स गस सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: एमपी में बिजली के तार से टकराया ताजिया, रतलाम में मुहर्रम जुलूस हादसे का पूरा सच, बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी, दुनिया का सबसे छोटा मास्टर शेफ, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: ठीक है, बुलेटिन में इस वक्त उछला है फिल्मी फ्राइडे की हलचल जान लेने का। तो देखिए, कल एक नहीं बल्कि 3 फिल्में और वेब सीरीज आपके एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हैं। कल एक्शन से भरपूर आलिया की अल्फा सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, जिसका मुकाबला हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई 2 से सीधे होने जा रहा है। इसके अलावा ओटीटी पर अरशद वारसी की कॉमेडी और साइबर क्राइम का डबल डोज लेकर भी आ रहे हैं।
8: Hi boy.
9: ये कोई टाइम है घर आने का?
10: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
11: इंस्पेक्टर पेड्रो गोंसालेस, मेरे को ना मारपीट, भागदौड़, खून खराबा,
8: ये सब क्राइम की जब खुशबू आती है तब मजा आता है।
9: हफ्ते भर की थकान मिटाने और मूड फ्रेश करने के लिए इस वीकेंड कुछ धमाकेदार देखने का प्लान है, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस शुक्रवार यानी 3 जुलाई को एंटरटेनमेंट का एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल डोज आपको मिलने वाला है।
11: पैसा पैसा 15 मिनट फेम का गेम, सब लेम है लेम। स्लोए ट्रेन फास्ट लेनी पड़ती है, हसल की बुकिंग इन सब ने भी कर दी है, पर फिर भी स्टोरी अपनी तर दी है।
9: सिनेमा घरों से लेकर आपके फोन की स्क्रीन तक इस शुक्रवार ऐसी फिल्म और सीरीज आ रही हैं जो आपको कर देंगे एकदम तरोताजा। सबसे पहले बात करेंगे आलिया और शर्वरी स्टारर अल्फा की।
12: अब बात करें
9: एक्शन और रोमांस से भरपूर इस स्पाई यूनिवर्स में आपको एक नया अवतार देखने को मिलेगा।
13: एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था।
9: 3 जुलाई को फिल्म अल्फा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोमांस और इमोशन से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब आलिया स्क्रीन पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाती नजर आएंगी। करीब 100 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन और रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट्स हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी सीट से चिपक जाएंगे।
14: उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
9: लेकिन थिएटर्स में मुकाबला टक्कर का होने वाला है, क्योंकि आलिया को कंपनी और टक्कर देने के लिए OTT की महारानी यानी हुमा कुरैशी भी आ रही हैं। 3 जुलाई को ही हुमा की अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ चंकी पांडे का मजेदार अंदाज, सिकंदर खेर, सीमा पावा और विद्या मालवड़े की दमदार एक्टिंग भी देखने को मिलेगी।
15: नाम बच्ची?
16: अरे मैडम वो डमशरा जो इंग्लिश
15: बेबी, अगला स्टेशन डेस्टिनेशन।
9: लेकिन अगर आप इस वीकेंड घर के सोफे से नहीं उठना चाहते तो फिक्र मत कीजिए, OTT पर भी ब्लॉकबस्टर तैयारी है, क्योंकि इस शुक्रवार हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है मच अवेटेड साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो।
17: ट्रांसफर है साइबर सेल में सर।
16: ये अपने स्कूल में क्या सिखाया था? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या? नहीं तो फिर ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है? किस ने बनाया कीबोर्ड?
9: जिसमें अरशद वारसी की दमदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग के साथ ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी की क्रिएटिविटी का तड़का भी है।
18: मोबाइल टावर हैक किया 15 मिनट में?
19: अरे सर 10 मिनट का काम था, वो आपके पुलिस स्टेशन का वाईफाई ना।
9: इस साइबर क्राइम कॉमेडी में अरशद के साथ राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी भी मौजूद हैं। साथ ही विक्रांत मैसी भी फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए आ रहे हैं।
20: जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा।
21: Back to crime branch.
20: I love it.
22: मेरे पास है, कब तक अरेंज होगा कैश?
20: 23.7 लाख जमा हो गया है।
9: इस फिल्म के जरिए राजकुमार हिरानी OTT पर डेब्यू कर रहे हैं।
23: अरे मैं क्या ट्रक लेके आऊंगा और रैंसम कलेक्ट करने को? What are you saying, man?
9: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
24: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
25: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
26: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु, बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालय रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील। मॉनसूनी सीजन के दौरान चमोली में आपदा से निपटने की पूरी तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने की मॉक ड्रिल, सभी इंतजामों को परखा।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, जो है श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। इस पवित्र यात्रा के लिए आज सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया और इसी से जुड़ी है हमारी आज की पहली गुड न्यूज। चलो अमरनाथ, पूरी होगी मुराद। आज कुल 4,882 श्रद्धालु 259 बसों में सवार होकर अमरनाथ गुफा की ओर निकले। ये तमाम श्रद्धालु दो मार्गों पहलगाम और बालटाल के रास्ते यात्रा करेंगे। पहले जत्थे में गए इन श्रद्धालुओं को सुरक्षा के अभेद्य घेरे में यात्रा पर ले जाया गया है।
2: खत्म हुआ इंतजार, भक्त चले बाबा बर्फानी के द्वार। इसी खुशी में कोई त्रिशूल और डमरू लेकर झूमने लगा, कोई बाबा बर्फानी की जय जयकार करने लगा और कोई भजनों के जरिए श्री अमरनाथ जी की महिमा गाने लगा। आस्था और भक्ति से भरपूर ये तस्वीरें जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आई हैं, जहां से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए आज रवाना किया गया। इन तीर्थ यात्रियों को रवाना करने से पहले परंपरा के मुताबिक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा सम्पन्न होते ही शुभ मुहूर्त में जैसे ही मनोज सिन्हा ने झंडा दिखाकर तीर्थ यात्रियों से भरी बसों को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया, पूरा भगवती नगर बेस कैंप जयकारों से गूंज उठा।
3: यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर घाटी की तरफ रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके भगवती नगर बेस कैंप से निकल रही है यहाँ जम्मू से, और दोपहर के बाद ये श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। कल ये यात्रा जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, शुभ घड़ी आ गई। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। कल से ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी। उससे पहले यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। हम एक बस में इस समय खड़े हैं, ये बस जो है कश्मीर घाटी जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु इस बस में बैठे हुए हैं, इनका उत्साह जो है देखते ही बनता है, खासा उत्साह देखा जा सकता है।
4: इतना सौभाग्य मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि एक नई जिंदगी मिल गई है, और जो पहले दिन का दर्शन करता हूँ तो आज मेरे को अलग ही फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब बाबा की गुफा देखता हूँ, कब बाबा के चरणों में गिरता हूँ। मैं एक ही कहूंगा कि इरादे हजार बनते हैं और हजार टूट जाते हैं, अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बर्फानी बुलाते हैं।
2: इस पहले जत्थे में कुल 4,882 श्रद्धालु 559 गाड़ियों में सवार होकर अमरनाथ गुफा की ओर निकले, जो दो मार्गों पहलगाम और बालटाल के रास्ते से यात्रा करेंगे। जम्मू से निकले ये तीर्थ यात्री कड़ी सुरक्षा में तय रूट पर जब आगे बढ़े तो उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी एक तस्वीर उधमपुर से जबकि दूसरी तस्वीर रामबन से आई है। इन दो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अमरनाथ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कहीं फूलों की माला और चुनरी भेंट कर स्वागत हुआ तो कहीं ढोल नगाड़ों, फूलों की बारिश और आरती उतार कर इनका स्वागत किया गया।
5: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे।

0: गया है।
1: श्रद्धालु हर साल बेसब्री से बाबा अमरनाथ की इस यात्रा का इंतजार करते हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल की यात्रा के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की संख्या के पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अमरनाथ यात्रा के बाद बात देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की। अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग चारधाम की यात्रा कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तीर्थयात्रियों की ये संख्या बता रही है कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। और यही है आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज। चारधाम पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। इस साल सबसे ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के धाम पहुंचे हैं, जहां अब तक 14 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केदारनाथ धाम है, जहां अभी तक 13 लाख 80 हजार से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। यह हाल तब है जबकि 19 अप्रैल से लेकर अब तक कई बार मौसम का बिगड़ा मिजाज तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले चुका है।

0: चारधाम यात्रा में आस्था का सबसे बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। बारिश हो या फिर तेज धूप, श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक भक्तों की भरमार है। हालांकि शुरुआती दिनों की तुलना में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन यात्रा अब भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी आस्था का अंदाजा इस साल के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। 19 अप्रैल से अब तक बद्रीनाथ धाम में 14 लाख यात्री पहुँचे और केदारनाथ में 13,68,170, गंगोत्री में 6,72,681, यमुनोत्री में 6,26,813 और चारधाम यात्रा में कुल 42,23,647 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
1: बद्रीनाथ धाम में अब 14 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में 1,70,000 के करीब श्रद्धालु अब तक मत्था टेक चुके हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो यात्रा का सैलाब रहा वो महासैलाब के रूप में देखा जा रहा है।
0: जाहिर है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद देश विदेश से श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में मॉनसून के चलते आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है, लेकिन भक्तों का चारधाम यात्रा पहुँचने का सिलसिला जारी रहने वाला है। वैसे मॉनसून के वक्त आस्था, विश्वास और प्राकृतिक खूबसूरती का एक अलग ही संगम यहां देखने को मिलता है। मॉनसून के मौसम में केदारनाथ धाम की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। बादलों की चादर, हरी भरी पहाड़ियां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। जुलाई की शुरुआत तक पूरे केदारनाथ क्षेत्र में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। हालांकि इस खूबसूरती के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
2: अलर्ट आता है, हाई अलर्ट आता है कि बहुत कम समय में बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट या येलो अलर्ट आता है, उसके आधार पर यात्रियों को रोका जा रहा है और ये उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट है, ऐसी परिस्थिति में लोग जगह जगह खुद भी रुक जाते हैं बारिश को देख करके और प्रशासन भी उनके रुकने की व्यवस्था करता है। तो ये कहीं ना कहीं यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जाता है।
0: यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और राहत टीमें तैनात की गई है, जबकि श्रद्धालुओं से मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही यात्रा करने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। चमोली से कमल नैन्सी लोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दिल्ली वालों का मॉनसून का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। राजधानी में मॉनसून की दस्तक के साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया है। सुबह हल्की बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यही है आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज। दिल्ली में मॉनसून आया झूम के। देखिए, बारिश ने राजधानी का मिजाज सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

0: राजधानी में सुबह की शुरुआत घने बादलों से हुई और देखते ही देखते राजधानी का मौसम पूरी तरह बदल गया। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो कहीं तेज बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी। कई दिनों से 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा तापमान अचानक नीचे आ गया और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया, क्योंकि दस्तक थी मानसून की, जिसका इंतजार पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा था।
1: दिल्ली NCR में मानसून ने 5 दिन देरी के बाद से ही दस्तक दे दी है। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली और तापमान की अगर बात करें तो तापमान में भी कमी जो है वो देखी गई है। मौसम विभाग का पहले से अनुमान था कि जल्द ही दिल्ली NCR में भी मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है। हालांकि 27 जून की तारीख थी, लेकिन 5 दिन बाद यानी आज 2 जुलाई को जो है मानसून दस्तक दिया है और उसके बाद का जो नजारा है वो वाकई में लोगों को राहत दे रहा है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पूरी तरह दिल्ली NCR में सक्रिय हो चुका है। साल 2021 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जुलाई महीने में राजधानी पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों का दौर जारी रह सकता है।
2: पूर्वानुमान के बारे में दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली, तो अगले 7 दिनों के दौरान यानी 1 सप्ताह के दौरान जो जनरल क्लाउडी स्काई कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी पूरे सप्ताह कंटिन्यू रह सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान जो है वर्षा गति थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिनों के दौरान, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट भी इशू किया गया है।
0: मानसून की पहली बारिश और ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। पार्कों, बाजारों और सड़कों पर लोग सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए। लंबे इंतजार के बाद आए इस मॉनसून ने न सिर्फ तापमान गिराया बल्कि राजधानी का पूरा मिजाज भी खुशनुमा बना दिया।
3: वेस्ट बंगाल मालदा से आए हैं। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है। अभी बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, मौसम बहुत खुश मिजाज है। हम आके बहुत हैप्पी हुए हैं इस बार।
4: वेदर आज का बहुत अच्छा है, जिसमें इस मौसम से घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पसीना नहीं निकलेगा।
0: वैसे मानसून देश भर में दक्षिण पश्चिम समेत ज्यादातर सभी इलाकों में लगभग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई राज्यों में अच्छी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरों पर भी उम्मीद की मुस्कान लौट आई है। बाकी मौसम विभाग के मुताबिक जिन कुछ इलाकों में मानसून की दस्तक अभी बाकी है, वहां भी 5 से 6 जुलाई तक मानसून पहुंचने की पूरी संभावना है। इसके बाद लगभग पूरा देश मानसून की चपेट में होगा और कई राज्यों में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है।
2: राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान है उसके कुछ क्षेत्रों को कवर कर चुका है। अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में कंडीशंस फेवरेबल होंगी और जो हरियाणा पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश का बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसमें भी जो कंडीशन फेवरेबल हो सकती है आगे बढ़ने के। राजस्थान में और साथ साथ गुजरात का जो क्षेत्र बचा हुआ क्षेत्र है, इसमें भी धीरे धीरे मानसून के आगे बढ़ने की एडवांसमेंट की जो कंडीशन है अगले 2 से 3 दिन में फेवरेबल बनती हुई दिख रही है।
0: जाहिर है मानसून अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और जल्द ही पूरा देश मानसून की फुहारों से सराबोर होगा, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी, किसानों को राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुआई को भी रफ्तार मिलेगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर पाइनएप्पल फेस्टिवल के बाद मैंगो मेला लगा हुआ है। ये मैंगो मेला दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में चल रहा है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आयोजित किया गया है। इसलिए इस मेले में खास तौर पर बंगाल से संबंध रखने वाले 12 किस्म के आमों को रखा गया है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है मैंगो मेला में 12 आमों का स्वाद। देखिए, वैसे तो अभी आम का सीजन चल रहा है और आपको चारों तरफ कई तरह के आम मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बंगाल के रसीले और खुशबूदार आमों का स्वाद लेना चाहते हैं तो चितरंजन पार्क इलाका वो जगह है जहां पर हिमसागर, लंगड़ा, आम्रपाली, मालदा, फजली, कृष्णभोग, लखनभोग, अमित भोग समेत कई आम की वैरायटी आपको एक साथ मिल जाएगी। आपको बता दें कि चितरंजन पार्क को मिनी बंगाल भी कहा जाता है, जहां पर बंगाली कम्युनिटी के लोग काफी संख्या में रहते हैं जो इस मैंगो मेला में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये मैंगो मेला 5 जुलाई तक चलेगा।
5: कहते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती, सही बात है। यहाँ भी देखिए एक लंगड़ा आम रखा हुआ है, इसका नाम भी लिखा है लंगड़ा, लेकिन हर लंगड़ा आम का स्वाद भी एक जैसा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती। ऐसा इन भाई साहब का कहना है जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं फजली, लंगड़ा, आम्रपाली तीनों आम लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि यूपी में और दिल्ली एनसीआर में आप जिस तरह के लंगड़ा खाते हैं, इनके इस लंगड़ा आम का स्वाद उससे बिल्कुल अलग है। ठीक बात है?
6: हाँ ठीक है, अलग अलग ही है। मेरा मिट्टी जो है अलादा और टेस्ट अला भी है।
5: क्या अंतर होगा? देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है।
6: नहीं, देख से ऐसे है तो क्या है, टेस्ट भी अलग होता है, ये फ्लेवर भी अलग होता है।
5: इस मैंगो फेस्टिवल में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के आम तो मिलने वाले हैं ही, लेकिन कई अनोखे और बहुत कीमती आम भी आपको यहाँ मिलेंगे। आप देखिए, ये सिर्फ एक आम है जो कि इस तरह से पैकेट में पैक होकर आया है, बहुत ही नज़ाकत के साथ इसको आप लोगों ने पैक किया है। और एक आम की कीमत 2500 रुपये है। नाम है इनका मियाज़ाकी।
7: एक्चुअली ये जापान का वैरायटी है, ये वेस्ट बंगाल से जो रीला माला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो प्रोड्यूस करता है। और मेरा जो बांकुड़ा का जो रेड मिट्टी का बोलते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ।
5: कि मार्केट में जो आम मिल रहा है, जो आप खा रहे हैं यहाँ मौजूद, एक एक आम का स्वाद उस मार्केट वाले आम से स्वाद से बिल्कुल अलग है। तो अब ज़रूर यहाँ पर आइए और ट्राई करिए, लेकर भी जाइए, क्योंकि ये स्वाद बार बार तो दिल्ली एनसीआर में मिलने वाला है नहीं।
1: कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत छत्तीसगढ़ के धमतरी में रहने वाले छात्र सत्यांशु दीप ने सच कर दिखाया है। अपनी शारीरिक अक्षमताओं और तानों को पीछे छोड़ते हुए सत्यांशु का चयन स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है और इसी से जुड़ी है आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज। धमतरी का लाल फुटबॉल में करेगा कमाल। सत्यांशु 12 से 16 जुलाई तक स्वीडन में आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेलों के प्रति सत्यांशु की दीवानगी अद्भुत है। उसे क्रिकेट, बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है। बताया जाता है कि वो 10 से अधिक राज्यों में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया ट्रॉफी 2026 के लिए चयन होने के बाद से घर में सभी बेहद खुश हैं। वहीं धमतरी के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सत्यांशु को बधाई दी और उनकी इस कामयाबी की सराहना भी की।
8: अभी फुटबॉल के लिए चयन हुआ है स्वीडन में, वो अभी जाएगा और आगे बढ़ेगा, ये विश्वास है। आरंभिक शिक्षा तो प्राथमिक शाला जालमपुर से हुई है, लेकिन जब फिफ्थ तक पहुंचा तब हमको पता चला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर बताए हमें तो हमने सार्थक स्कूल में लाए इसको। वो पांच, ये तो सार्थक स्कूल के बाद ही, आने के बाद ही हमको पता चला कि इसमें वो गुण है। चिढ़ाते थे इसको कि बोल नहीं सकता, गूंगा है ऐसे करके बोलते थे वहाँ से। और जब इसका मैं प्रैक्टिस भी करवाती थी तो मुझे वही बोलते थे कि दोनों माँ बेटे पागल हो गए हैं जो ऐसे बच्चे को क्या क्या सिखा रहे हैं, ये कहाँ सीख पाएगा, हमारे जैसे कैसे खेल पाएगा।
9: उनको पूरा टीम को बधाई और पूरा सार्थक स्कूल की टीम को बधाई। सत्यार और पर्सनली भी बहुत अच्छा काम करें और इस पिछले धमतरी के लिए और छत्तीसगढ़ और देश के लिए नाम रोशन।
1: और आज के दौर में मेकर्स फिल्मों की प्रमोशन के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन नीब करौली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश के मेकर्स ने इसके प्रमोशन के लिए अनोखा रास्ता चुना है। ये रास्ता है आध्यात्मिक प्रमोशन का। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है फिल्म प्रमोशन के लिए भंडारा। जी हाँ, पहली बार आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन आपको बता दें ये फिल्म विशाल चतुर्वेदी की किताब डिवाइन डिटॉयर से प्रेरित बताई जा रही है। विशाल चतुर्वेदी ने ही इसे लिखा है और निर्देशित किया है। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने पारंपरिक फिल्म मार्केटिंग के बजाय भक्ति का रास्ता चुना और देश भर में कम्युनिटी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून में न सिर्फ भंडारे का आयोजन हुआ बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्ति भाव के साथ किया गया।
10: हमारी कोशिश रही है नीम करौली बाबा जी के ऊपर पिक्चर बनाने की और इसके अंदर हम लोग जो हैं जगह जगह पे इकट्ठे होके भंडारे कर रहे हैं। बाबा जी की जवानी का है और इसके पीछे जो है हम सब लोगों ने प्रण लिया कि कोई भी ऐसी कोई काम नहीं करेगा जो बाबा जी को हमको लगे कि साफ नहीं है। सब लोग पवित्र हुए, सब लोगों ने रोज पेज राम राम के पेज लिखे, रामचरितमानस पढ़ी, पूरी श्रद्धा के साथ ये फिल्म बनाई गई है। बाबा जी जो थे उनके यहाँ एक सदा लंगर खुला रहता था और हम लोगों ने भी यही सोचा कि सबसे बड़ी तरीका जो हमका हमारा श्रद्धा का होगा उनकी तरफ वो है कि हम जगह जगह पे लंगर लगाएं, जगह जगह पे भंडारे करें। और ये एक हमको बड़ा ऊपर से लगा कि बाबा जी का ही ये हुक्म है, तो इस तरीके से हम लोगों ने शहर शहर में ये किए, भंडारे किए हैं हमने। ये एक छोटी सी कोशिश देहरादून में के लिए।
1: और अब आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर सात समंदर पार न्यूयॉर्क से आई है, जहां की सबसे प्रतिष्ठित 1454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर एक दिन पहले कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। हुआ कुछ यूं कि दो सरफरे स्टंटबाजों ने न सिर्फ इस गगनचुंबी इमारत के बैन ट्रांसमिशन टावर पर बिना किसी सेफ्टी गियर के चढ़ाई की, बल्कि वहां हवा में लटकते हुए अंगूठी पहनाकर एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज भी किया। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है। 1500 फीट ऊंची इमारत पर इजहारे मोहब्बत। आपको बता दें कि इस हैरत अंगेज स्टंट को अंजाम देने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि दुनिया के मशहूर रूफ टॉपर्स एंजेला निकोलाओ और इवान कुज़नेत्सोव हैं, जो कि पहले भी इस तरह का स्टंट कर चुके हैं जो कि रोंगटे खड़े कर दे। लेकिन इस बार इन्हें ये स्टंट करना महंगा पड़ गया, क्योंकि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ से कहा गया है कि इस घटना से इमारत में मौजूद लोगों या फिर विजिटर्स की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऑब्जर्वेशन डेक शादी के प्रपोजल के लिए एक सुरक्षित और खास जगह देती है, लेकिन इस तरह के स्टंट की इजाजत नहीं देती। वहीं इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। कुछ लोग इनके साहस और रोमांटिक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
12: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी

0: बिजली के तार से टकराया ताजिया। रतलाम में मुहर्रम जुलूस हादसे का पूरा सच। बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी। दुनिया का सबसे छोटा मास्टर शेफ। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Right field, and it will...
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: कल से पवित्र अमरनाथ गुफा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाला और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंप में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार।

0: नवजोत संधावा, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ऐसे में यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो ऐसी आज दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे इस वीडियो की पड़ताल करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। क्या है इस वायरल दावे और वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
0: सोशल मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम का हालिया वीडियो बताते हुए लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम के हतनारा गांव में 25 जून की रात को मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब 2 दर्जन को वेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। वीडियो में एक ताजिया बिजली की तार से टकराता नजर भी आ रहा है जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक काफी बड़ा सा ताजिया देखने को मिला, मतलब ये कि वायरल वीडियो मुहर्रम जुलूस का ही है। इसके बाद हमें वीडियो में नजर आ रहे एक ट्रैक्टर के नंबर प्लेट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे जूम करके ध्यान से देखा तो इस पर यूपी का नंबर प्लेट था। ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि ताजे के बिजली के तार से टकराने के बाद हुए हादसे का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं हादसे के पुराने वीडियो को कोई नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजिए के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहां फैले करंट की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और यूट्यूब चैनल पर मिला। यहां इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजिए में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजिए के बिजली की तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज स्टूडियो।
2: बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
3: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार, एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए। डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो करीब 22 सेकंड का है, जिसमें नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग घुस आए, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बलौठी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेरे हुए है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने लाना जरूरी था, तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा कई चीजें देखने को मिली जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्कैमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पटना हाई स्कूल के गर्दनी बाग इलाके में ये घटना हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक YouTube अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। यूट्यूब वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामिक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे वायरल दुनिया की वायरल खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
5: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or... You know, the big three of them.
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
2: Good news today is really good. It's in this, right? That's the news that I'm
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों पर आपने उन बच्चों को जरूर देखा होगा जो स्कूल जाने की उम्र में अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, वे सड़क पर खड़े होकर मेहनत से दो रोटी कमाने का काम करते हैं। हाल में ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे अपने पूरे शरीर पर गोल्डन पेंट लगाकर सड़क किनारे लिविंग स्टैचू बनकर खड़े हैं। वे अपने इसी हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे सिर से लेकर पैर तक गोल्डन कलर के पेंट में रंगे हुए हैं। तेज धूप होने के बावजूद भी वे बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहते हैं ताकि राह चलते लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते दिख रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। बच्चों की मेहनत और उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह दोनों बच्चों को पास के KFC रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बच्चों के सामने खाना आता है, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। महिला के इस छोटे से प्यार भरे कदम ने दोनों बच्चों को भावुक कर दिया और महिला की इस दरिया दिली ने वहाँ मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग कलाकार का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाने वाले इस कलाकार का हुनर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिना कुछ बोले सिर्फ ब्रश और रंगों के सहारे वे ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बड़े ही धैर्य और लगन से पेंटिंग बना रहे हैं। उनके आसपास कई खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई हैं, जो उनकी बेहतरीन कला का परिचय देती हैं। राह चलते लोग भी रुककर उनकी कला को निहारते नजर आ रहे हैं। अमूमन भारतीय बच्चों को अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में बात करते देखना आम बात है, लेकिन जब केरलम की एक 14 साल की बच्ची फराटेदार कोरियन भाषा बोलने लगे तो हैरान होना लाजमी है। इस बच्ची की प्रतिभा को देखकर खुद एक कोरियाई कंटेंट क्रिएटर भी हक्का बक्का रह गई। यह वीडियो कोरियन कंटेंट क्रिएटर मिक्यूंग सॉन्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में अमीना जिस आत्मविश्वास के साथ कोरियन बोल रही है, उसने मिक्यूंग को भी दंग कर दिया। अमीना सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि शानदार अंग्रेजी भी बोलती है।
8: ये मैं आज एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी है गोलू कुमार की।
7: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक बच्चे की बोर्ड की आंसर शीट वायरल हो रही है, जिसमें उसने पेपर चेक करने वाले टीचर को घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने एग्जाम में पास करने के लिए शायराना अंदाज में लिखा, कॉपी मेरी पहुँच गयी है गुरु के द्वार, 33 नंबर दे के इसे लगा दो पार।
8: अरे भाई साहब, मेरी बग्घी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा।
7: बच्चे की ये कॉपी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल हो रही आंसर शीट किसी गोलू कुमार नाम के स्टूडेंट की है।
8: शॉट पे हेडशॉट थे मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे।
7: हैरत अंगेज बात यह है कि कॉपी में सवाल से जुड़े एक भी जवाब नहीं लिखे हैं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ पास करा देने की गुहार लगी है। ये गुहार भी कोई आम शब्दों में नहीं बल्कि मजेदार शायराना अंदाज में लगाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने आगे टीचर से पेज पलटने का अनुरोध किया है। अगले पेज के बीच प्लीज प्लीज प्लीज लिखा हुआ था, साथ ही 500-500 के नोट दिख रहे थे।
8: अबे भाई, ये कितना क्या रख दिया है ये बंदे ने, 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया क्या ये बजरंग बली के नाम का, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
7: जब टीचर ने नोटों की गिनती की तो वो कुल 2100 निकले।
8: पैसा रख दिया यहाँ पर, बताओ यार क्या करे इस बच्चे का।
7: जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वृंदावन से जुड़े खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक विदेशी महिला अपने भारतीय पति और अपने सहेलियों के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों, मुस्कुराते चेहरों और भक्ति से भरे माहौल ने इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय बना दिया है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। जापान के एक चिड़ियाघर से वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चिड़ियाघर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही थी। लेकिन बाड़े में बंद असली शेरों के रिएक्शन ने इस ड्रिल को एक बेहद मजेदार कॉमेडी शो में बदल दिया। वीडियो में जापानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए शेर के भागने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को शेर की पोशाक पहनाकर भागे हुए शेर की भूमिका दी गई थी। ये वीडियो ऑनलाइन शेयर होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि इसके वायरल होने का कारण मॉक ड्रिल कम और बाड़े में बैठे असली शेरों के विचित्र प्रतिक्रियाएं थी, जो इस पूरे नाटक को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही नकली शेर ने भागने और खतरे का नाटक किया, बाड़े में मौजूद असली शेर भारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए और इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, वहीं कुछ ने शेरों के नजरिए से मजेदार बातें लिखी। प्रकृति कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। जिस टाइगर की गिनती जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में होती है, उसके सामने जब एक भालू तनकर खड़ा हुआ तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहीं भालू भी पूरी आक्रामकता के साथ उससे भिड़ा हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई इस मुठभेड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत टाइगर की चेस के साथ होती है, लेकिन यहाँ भालू डर कर भागने के बजाय टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके जीत की नींव वहीं पड़ जाती है, क्योंकि जो डर के सामने डरा नहीं, उसे आधी सक्सेस वहीं मिल जाती है। वैसे भालू टाइगर से डरा हुआ जरूर होता है, लेकिन उसने भागने के बजाय समस्या का सामना करना चुना होता है। ऐसे में टाइगर जब जंगल में उसके ठीक सामने बैठकर इत्मीनान करने लगता है, तब वह भी रुका हुआ होता है। मगर धीरे धीरे जब वह गौर करता है कि अब टाइगर आराम से बैठा हुआ है, तो आखिर में भालू भाग जाता है और वीडियो खत्म हो जाती है। इन दिनों एक गोरिला का वीडियो इंटरनेट पर अलग ही वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में गोरिला का ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो कोई इंसान किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हो। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो जापान के एक चिड़ियाघर का है, जहां कियोमासा नाम का 13 वर्षीय नर गोरिला अपने साथी के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ। बहस खत्म होने के बाद कियोमासा सीधे पिंजरे में बनी सीढ़ियों पर जाकर अकेला बैठ गया। इसके बाद उसका जो व्यवहार कैमरे में कैद हुआ, उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में कियोमासा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वे अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर दूर कहीं देखता रहता है, कभी सिर खुजलाता है तो कभी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे वह किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
9: क्या पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है? क्या पीला पुखराज धारण करने से पेट की समस्याएं हो सकती हैं? क्या पीला पुखराज पहनने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है? क्या है पीले पुखराज की विशेषता और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कुछ ही घंटों में दर्शन देने वाले हैं बाबा बर्फानी, आस्था के सबसे बड़े मार्ग पर निकल पड़े शिव भक्त। दिल्ली में बंगाल की मिठास का मजा, दिल्ली में बंगाल के आम का जायका लीजिए, और कोटा को अब स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी, कोटा बनेगा खिलाड़ी फैक्ट्री। शुरुआत हेडलाइंस के साथ,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु, बेस कैंपों में बाबा बर्फानी की जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी, पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, AI और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर कर लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: तो अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आपको बाबा बर्फानी के ही दर्शन करवाते हैं, क्योंकि पावन धाम की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। हर श्रद्धालु के चेहरे पर बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिलने की खुशी छलक रही थी। श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दो मार्गों पहलगाम और बालटाल से यात्रा करेंगे। उधर बालटाल बेस कैंप में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों शिव भक्त पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। कल सुबह बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंपों से श्रद्धालुओं की पवित्र गुफा की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही बाबा बर्फानी के दिव्य दरबार तक पहुंचने का 57 दिनों का पावन आध्यात्मिक सफर भी शुरू हो जाएगा।
16: महादेव बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, हाथों में त्रिशूल, कंधों पर आस्था, होठों पर शिव का नाम और दिल में बस एक ही अरमान, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। जम्मू से आज पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया। इस तरह लाखों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा सफर शुरू हो चुका है।
17: जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, बोले की फौज।
18: ये बाबा भोले की जो यात्रा है इसमें सालों की काउंटिंग नहीं है, पता नहीं कितने सालों से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम है यहाँ पे खड़ी हुई है और सब मतलब एक बार जो आ गया तो भोले बाबा का हो जाता है।
19: पिछले 23 साल से मैं इस पावन यात्रा पे आ रहा हूँ और जैसे जैसे मार्च का महीना शुरू होता है सभी शिव भक्तों में एक उमंग की लहर दौड़ जाती है कि हमारे अपने बाबा से, हमें अपने पापा से मिलने का मौका मिलता है।
16: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थयात्रियों को रवाना करने से पहले परंपरा के अनुसार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होते ही शुभ मुहूर्त में जैसे ही मनोज सिन्हा ने झंडा दिखाकर तीर्थयात्रियों से भरी बसों को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया, पूरा भगवती नगर बेस कैंप जयकारों से गूंज उठा।
20: यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर घाटी की तरफ रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके भगवती नगर बेस कैंप से निकल रही है यहाँ जम्मू से। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, शुभ घड़ी आ गई। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। कल से ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी। उससे पहले यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। हम एक बस में इस समय खड़े हैं, ये बस जो है कश्मीर घाटी जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु इस बस में बैठे हुए हैं इनका उत्साह जो है देखते ही बनता है, खासा उत्साह देखा जा सकता है।
16: भोले के भक्तों में गजब का उत्साह है, कहीं हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं डमरू की धुन पर श्रद्धालु झूम रहे हैं तो किसी के हाथ में त्रिशूल है, वहीं किसी की जुबान पर शिव भजन। हर चेहरा यही कह रहा है चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। पहले जत्थे में 4,800 से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो 259 वाहनों में सवार होकर अमरनाथ धाम के लिए निकले हैं। ये श्रद्धालु दो रास्ते पहलगाम और बालटाल से बाबा बर्फानी के पावन दरबार तक पहुंचेंगे। आज श्रद्धालुओं का जत्था रास्ते में जहां जहां पहुंचा उनका भव्य स्वागत हुआ। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं आरती उतारी गई, तो कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच शिव भक्तों का अभिनंदन किया गया।
21: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे।
16: बालटाल बेस कैंप में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां RFID रजिस्ट्रेशन, लंगर, ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर पाए।
21: लाइनों में जो लोग यहां पर लगे हुए हैं इनको तत्काल यहां पर अपना पास रजिस्ट्रेशन बनवाना है और उसके लिए ये लोग यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इस पूरा इलाके की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है और यहां पर टेंट सिटी पूरी तरीके से तैयार किया गया है जिसमें 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहां पर रुक सकते हैं और उसके बाद यहां से ये सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे। ये मेन कैंप है, बालटाल का कैंप है, यहां से लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
16: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए श्रीनगर में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जहां से पूरी यात्रा पर 2400 घंटे निगरानी रखी जाएगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की 670 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। ऑपरेशन शिवा के तहत सुरक्षा का ऐसा मजबूत घेरा बनाया गया है जिससे श्रद्धालु निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
21: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मेआई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
0: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
16: पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहलगाम मार्ग जो करीब 46 किलोमीटर लंबा है, प्रकृति की अद्भुत छटा के बीच 3 से 4 दिन में ये मार्ग पूरा होता है। वहीं बालटाल मार्ग छोटा है, ये सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए टट्टू या पालकी का भी इंतजाम है। कल से बालटाल और पहलगाम बेस कैंपों से श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा शुरू होगी। इस वर्ष अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बालटाल के बेस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए लंगर के साथ साथ मंदिर भी बनाया गया है। उम्मीद है कि इस बार 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने का नाम नहीं, ये विश्वास, समर्पण, धैर्य और शिव से जुड़ने की आध्यात्मिक यात्रा है। मान्यता है कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था और इसी दिव्य स्थान पर प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग बाबा बर्फानी के साक्षात स्वरूप के रूप में पूजनीय है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और बालटाल कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली में बंगाल की मिठास की। बंगाल में होने वाले 12 किस्म के आमों का मजा आजकल दिल्ली में ही आप ले सकते हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में बंगाल मैंगो मेला चल रहा है और इस मेले के लिए करीब 24,000 किलो आम बंगाल से दिल्ली लाए गए हैं जिसमें आम्रपाली, लंगड़ा, फजली, मियाकाजी, मियाजाकी, हिमसागर, लक्ष्मी भोग और जैस्मीन जैसे आमों के जायके लेने का मौका मिल रहा है। दिल्ली की गर्मी में बंगाल के रसीले आमों का आनंद आप भी लीजिए।
4: दिल्ली की गर्मी और बंगाल के आमों की मिठास। चितरंजन पार्क यानी सीआर पार्क में आयोजित ये मैंगो मेला पश्चिम बंगाल की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है जिसमें आम की मिठास भी शामिल है। गर्मियों के मौसम में फलों के राजा आम हर किसी को पसंद आता है और दिल्ली की भीषण गर्मी में अलग अलग तरह के आमों का मीठा, रसीला और अनोखा स्वाद एक अलग अनुभव और सुकून देता है। बंगाल में कई प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जो अपने स्वाद, सुगंध और बनावट के लिए मशहूर हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी अनूठी महक और शहद जैसी मिठास। दिल्ली के इस मैंगो मेले में बंगाल की मिट्टी में पैदा होने वाले 12 किस्म के आम दे रहे हैं जिनमें हिमसागर, लंगड़ा, आम्रपाली, मालदा, फजली, कृष्ण भोग, लखन भोग, अवैध भोग, मियाजाकी और जैस्मीन जैसे रसीले आम मेला घूमने आ रहे लोगों की नजर में सबसे ज्यादा चढ़े हुए हैं। सभी का स्वाद अनोखा है, यही वजह है कि दिल्ली के इस मैंगो मेले में करीब 24,000 किलो आम लाए गए हैं ताकि आम के शौकीनों के लिए कोई कसर बाकी न रह जाए। बंगाल से आए आमों में शामिल फजली को बंगाल में आम का राजा भी कहते हैं।
5: एक फजली आम का वजन 900 ग्राम से 1 किलो तक हो सकता है। वहीं मलिका आम भी बड़े साइज का होता है जिसका वजन 600 ग्राम से भी ज्यादा होता है।
6: हर आम की अपनी एक पहचान होती है और कुछ आम के पहचान के साथ साथ उनका नाम बड़ा खास होता है। यहाँ आप देखिए, ये जो आम लगा हुआ है इसका नाम है मलिका, मालदा मैंगो इसे बोलते हैं, और नाम इनका आपने देख ही लिया है और जैसा नाम वैसे ही दर्शन भी है। देखिए मलिका की हम बात कर रहे हैं और इत्तेफाक से हमारी किस्मत ऐसी है कि वह कटा हुआ आ भी गया है। अगर हम भी टेस्ट कर सकते हैं क्या मैम? ओके, तो ये देखिए मलिका, छोटा छोटा छोटा छोटा, ये देखिए ये मलिका हमें मिल गई है। रंग इनका आप देख रहे हैं कि और डार्क येलो है।
22: ज्यादा मीठा लगेगा, एक दो दिन रहेगा तो ज्यादा मीठा लगेगा,
6: ज्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, ये सही बात कह रहे थे कि जो अंतर है वो फ्लेवर का है, स्वाद का है। और हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में खा रहे हैं कि लंगड़ा है, दशहरा है, देसी है, सफेदा है, उससे इसका टेस्ट मलिका का काफ़ी अलग है। खट्टा मीठा आम है लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत अलग है। अब शब्दों में कैसे बताऊं, आप खुद ही आओ और घूम जाओ।
5: लंगड़ा आम वाराणसी का मूल आम है लेकिन बंगाल की मिट्टी में होने वाले लंगड़ा आम का स्वाद और साइज इससे दिल्ली एनसीआर में मिलने वाले आम से अलग बना देता है।
6: कहते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती, सही बात है। यहाँ भी देखिए एक लंगड़ा आम रखा हुआ है, इसका नाम भी लिखा है लंगड़ा, लेकिन हर लंगड़ा आम का स्वाद भी एक जैसा नहीं होता।
23: हाँ ठीक है, अलग अलग ही है। मेरा मिट्टी जो है अलग था और टेस्ट अलग भी है।
6: क्या अंतर होगा? देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है।
23: नहीं, देखते ऐसे है तो क्या है, टेस्ट भी अलग होता है, ये फ्लेवर भी अलग होता है।
5: पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय आम हिमसागर, जो अपनी भरपूर मिठास और चिकने गूदे के लिए माना जाता है, ये मुख्य रूप से मई और जून के महीनों में मिलता है। ऐसे में हिमसागर आम का सीजन अब लगभग खत्म होने वाला है। यही वजह है कि आमों के इस मेले में भी इसकी तादाद अब बेहद कम है, फिर भी खास स्वाद और खुशबू की वजह से ये लोगों की पसंदीदा आम में शामिल है। वहीं हिमसागर की तुलना में मिश्रकांता आम स्वाद में कम मीठा है लेकिन खुशबू बिल्कुल अलग और अनोखी है।
6: देखिए कुछ आम ऐसे हैं इस मैंगो फेस्टिवल में जिनकी लाइफ अब खत्म होने वाली है इस सीजन की, लेकिन अभी भी वो वहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये हिमसागर है और हिमसागर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता है, बंगाल का आम है। और जो इसे यहाँ लेकर आए हैं वो भी बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं कि ये थोड़ा इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि इसका सीजन खत्म हो गया। और ये क्या है? मिस्त्र कांता, जैसा लग रहा है किसी इंसान का नाम हो।
24: हाँ वैसा ही है।
6: नाम कैसे पड़ा इसका? मिस्त्री से मिस्त्र आया है क्या?
24: नहीं, ये मीठा ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा खट्टा मीठा आम है।
6: ये कौन सा है?
24: ये हिमसागर है।
6: ये हिमसागर है। ऐसा कुछ नहीं खाया कभी, ना दिल्ली एनसीआर में ना यूपी में, ये तो नहीं खाया। बहुत अलग टेस्ट है इसका।
24: इसका अलग ही टेस्ट है।
6: देखिए मिस्टर कांता कट रहे हो, कह रहे खट्टा मीठा।
24: हाँ ये थोड़ा खट्टा मीठा,
6: जूसी बहुत है सारे आम।
24: जूस बहुत है।
6: अब यहाँ कोई भी आम काटेंगे ना तो वो इतना रसीला आपको दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि जो हम दिल्ली एनसीआर में कोई भी आम काटते हैं थोड़ा ड्राई होता है वो अंदर से, लेकिन इसमें हर आम में आप चाहे जो आम काट लीजिए हर आम में जूसी वो बहुत होगा।
5: मियाज़ाकी जापान का मूल आम है लेकिन हाल के वर्षों में बंगाल की मिट्टी में भी रेड गोल्ड के नाम से पहचाने जाने वाले सबसे महंगे आम की खेती हो रही है। एक आम की कीमत 2500 रुपए है। यही वजह है कि एक एक आम को बेहद नजाकत के साथ पैक करके रखा गया है।
6: ये मियाज़ाकी महोदय इतने महंगे क्यों हैं?
25: एक्चुअली ये जापान का वैरायटी है, ये वेस्ट बंगाल से जो रीला वाला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वो प्रोड्यूस करता है। और मेरा जो बांकुड़ा का जो रेड मिट्टी का बोलते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, तो इसलिए वेस्ट बंगाल से मेगा प्रोडक्ट है।
5: दिल्ली में बंगाल के मशहूर आमों का लुत्फ लेने के लिए हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरह के स्वाद के कायल भी हो रहे हैं।
26: दिल्ली में चलता क्या है? दशहरी आम चलता है, चौंसा चलता है,
3: अब यहाँ पे ये वैरायटी आम आ गया, सब लगभग देख भी रहे, एक सफ़ेद आम जो होता है जो लगभग खाते भी नहीं इतना बढ़िया, उसका जूस के मतलब ये करता है, बट इसका आम का बहुत बढ़िया है।
5: इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिल्ली के चितरंजन पार्क में मैंगो मेले का आयोजन किया गया है जो 5 जुलाई तक रहेगा। इससे पहले जनपद पर आमों के मेले का आयोजन होता था। दरअसल चितरंजन पार्क में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसकी वजह से इस मेले को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और अपने पसंदीदा आमों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: शिक्षा की नगरी कोटा अब देश के नक्शे पर एक बड़े स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभरने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी को करोड़ों रुपए की आधुनिक खेल सुविधाओं की बड़ी सौगात दी है। ओम बिरला ने सिर्फ खिलाड़ियों को नई सौगात ही नहीं दी, बल्कि खुद बास्केटबॉल कोर्ट पर उतरकर खेल के प्रति अपना जुड़ाव भी दिखाया।
7: इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाओ प्लीज।

0: लोकसभा की कार्यवाही को सधे हुए अंदाज में संचालित करते स्पीकर ओम बिरला की ऐसी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन जब वही ओम बिरला खेल के मैदान में उतरते हैं तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। राजस्थान के कोटा में 63 साल के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बास्केटबॉल कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ हाथ आजमाते नजर आए। सबसे दिलचस्प पल तब आया जब उन्होंने पहली ही कोशिश में गेंद को सीधे बास्केट में डाल दिया। उनका सटीक निशाना देख स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मौका था अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकसित नई खेल सुविधाओं के लोकार्पण का। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद ओम बिरला खुद बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचे और खिलाड़ियों के साथ कुछ देर खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। ओम बिरला का लक्ष्य कोटा बूंदी को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। इसी दिशा में श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4,42,00,000 रुपए की लागत से विकसित आधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। नई खेल सुविधाओं के तहत 100 मीटर का सिंथेटिक वर्किंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल खिलाड़ियों और आम नागरिकों को समर्पित किए गए। इसके साथ ही कोटा बूंदी को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की बड़ी योजना पर भी काम चल रहा है। योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से जेके पवेलियन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद कोटा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं की मेजबानी का रास्ता खुलेगा। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में वरिष्ठ नागरिकों, वर्कर्स और जॉगर्स के लिए अलग सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया गया है। इससे खिलाड़ियों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में अभ्यास करने की सुविधा मिलेगी। वहीं आम लोग भी फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। खेल सुविधाओं का विस्तार सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है। इटावा, सुल्तानपुर, लाखेरी और रामगंज मंडी सहित कई इलाकों में नए खेल परिसर और सुविधाएं तैयार की जा रही है, ताकि गांव की प्रतिभाओं को भी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: क्या पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है? क्या पीला पुखराज धारण करने से पेट की समस्याएं हो सकती हैं? क्या पीला पुखराज पहनने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है? क्या है पीले पुखराज की विशेषता और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio,
7: how they looked after game one.
8: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
9: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
8: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों को मजबूत करने के लिए, ग्रहों से लाभ लेने के लिए हम रत्न पहनते भी हैं और रत्न पहनाते भी हैं। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के रत्न के बारे में जिसका नाम है पीला पुखराज। क्या मान्यताएं हैं इसकी, इसको पहनने के लाभ क्या हैं, किनको पहनना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 11:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति।

0: मिट्टी क्या है? सूर्य देव विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं पीले पुखराज के बारे में। तो पीला पुखराज है क्या और इसकी विशेषता क्या है? देखिए, नव ग्रहों के नव रत्न बताए गए हैं। पीला पुखराज बृहस्पति का मुख्य रत्न है। ये बृहस्पति को मजबूत करने के लिए धारण किया जाता है। जब आप पुखराज पहनते हैं तो आप ये समझ लें कि इसका प्रभाव काफी तेज होता है और लंबे समय तक बना रहता है। सामान्यतः पीला पुखराज सोने में या पीतल में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण किया जाता है। जितना महान और शक्तिशाली बृहस्पति है उसके उतनी महानता और शक्ति के गुण का एक हिस्सा पीले पुखराज में होता है। इसीलिए बिना सलाह के पुखराज बिल्कुल धारण ना करें। आपने बिना सोचे समझे अगर पुखराज पहना तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, आपको गंभीर बीमारियां दे सकता है। पीले पुखराज पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको किसी ज्योतिषी ने सलाह दी पीला पुखराज पहनने के लिए, और पीला पुखराज आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो क्या क्या फायदे होंगे? पीला पुखराज अगर आपको सूट करे, आपने पहना है, तो ये मन को निश्चिंत और पवित्र कर देता है। ये मन में आने वाले बुरे विचारों को दूर करता है, जिनके मन में नकारात्मक या कुत्सित विचार आते हैं उनको समाप्त करता है। पीला पुखराज अगर आपको सूट करे तो इसको धारण करने से वाणी प्रभावशाली होती है और मंत्र शक्ति की प्राप्ति होती है। पीला पुखराज पहनने पर अगर सूट करे तो आम तौर पर इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, और पीला पुखराज पहनने पर अगर सूटेबल है तो आपका व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावशाली हो जाता है। आपका मन बड़ा चंचल है, पूजा पाठ में नहीं लगता, आप गहरा ध्यान नहीं कर पाते, तो पीला पुखराज पहनिए, ये आध्यात्मिक मामलों में बहुत लाभ देता है। पीला पुखराज अगर फायदा करे तो दो फायदे निश्चित रूप से होते हैं। मन की पवित्रता और शुद्धता बनती है, और ध्यान में, पूजा उपासना में मन केंद्रित हो जाता है। पीले पुखराज पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए पीला पुखराज पहनना शुभ होता है और किनको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न राशि नहीं, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में पुखराज पहनना शुभ होता है। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न में पुखराज पहनना बहुत ही नकारात्मक है। मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में विशेष दशाओं में पुखराज पहना जा सकता है। केवल लग्न के आधार पर पुखराज डिसाइड मत करिए। व्यक्ति का करियर, उसका प्रोफेशन, उसका स्वभाव भी देखना जरूरी है। जो लोग धर्म, आध्यात्म, शिक्षा या वाणी के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए पीला पुखराज पहनना सामान्यतः लाभकारी होता है। महिलाओं के वैवाहिक जीवन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल और प्रभाव होता है बृहस्पति का, तो महिलाएं अगर सलाह लेकर पीला पुखराज पहने तो महिलाओं को विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। देखिए, अगर आप पीला पुखराज पहनेंगे और आपको नुकसान करेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा, लिवर आपका फैटी होगा, और अगर राहु का योग आ गया, राहु का प्रभाव आ गया, तो शरीर में गांठें भी पैदा होंगी। तो जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनका फैटी लीवर है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट की या आंतों की दिक्कत है, वो बहुत सोच समझकर, बहुत सलाह लेकर पीला पुखराज पहने, क्योंकि पेट की बीमारियों से अगर आप ग्रस्त हैं और आपने पीला पुखराज पहना तो आपकी बीमारियां हो सकता है भयंकर रूप ले लें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की पीले पुखराज के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने पूजा घर में देवी देवताओं के बहुत सारे चित्र और बहुत सारी मूर्तियां ना रखें। ज्यादा चित्र और मूर्तियां रखने से पूजा में भटकाव पैदा होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करिएगा या बताशा अर्पित कर दीजिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: जो बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देख कर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा, ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को जिसे चलने फिरने में दिक्कत है ठेले पर बिठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इस।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त। बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी, पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर कर लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा चार धाम यात्रा में बारिश के बीच आस्था की भी है।
5: चारधाम यात्रा में भगवान बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। दर्शन पूजन के साथ ही भजन संध्या के कार्यक्रम में वो पूरे भक्ति भाव से झूमते नजर आते हैं। इस साल की चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या केदारनाथ धाम की संख्या को पार कर चुकी है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश के बावजूद भक्त बरसाती पहनकर या छाता ओढ़कर बद्री विशाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से अब पहले की अपेक्षा भक्तों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। मॉनसून के सीजन को देखते हुए प्रशासन भी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दे रहा है। चारधाम यात्रा में बारिश के बीच भी आस्थावान दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह के समय हो रही बारिश में भी भक्त बरसाती पहनकर और छाता से अपना बचाव करते हुए बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते रहे। इस सीजन में बाबा केदार के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 13,80,000 से अधिक हो चुकी है। हालांकि मॉनसून के सीजन को देखते हुए यात्रियों की संख्या में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन बाबा केदार के जयकारों से ये दरबार लगातार गूंज रहा है। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदार घाटी में बारिश को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के आधार पर श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए रोका भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद श्रद्धालु धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जनपद की हैं, जहां आपदा के समय राहत और बचाव एजेंसियों के जवान फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। मॉनसून के सीजन को देखते हुए दरअसल ये उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा है। इसके जरिए आपदा की स्थिति में तैयारियों को परखा गया है। इस मॉक ड्रिल के तहत बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और सुरंग हादसे जैसी अलग अलग काल्पनिक आपदाओं का परिदृश्य तैयार किया गया। इस दौरान ज्योतिर्मठ के लामबगढ़ में भारी मलबे से पुल के क्षतिग्रस्त होने, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलडोजर गिरने से यातायात ठप होने जैसी स्थिति में राहत और बचाव के अभ्यास को दिखाया गया। चमोली में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर मॉनसून के सीजन को लेकर तैयारियों को परखा गया। यूपी के प्रयागराज में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल के खुलने पर शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। छुट्टियों के बाद बुधवार को परिषदीय विद्यालयों में एक बार फिर से घंटी बजने लगी। स्कूल के खुलने पर बच्चों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। स्कूलों के खुलने के साथ ही एनरोलमेंट ड्राइव और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और स्कूल चलो अभियान के साथ बच्चों की वापसी हुई। इस खास मौके के लिए स्कूलों में शानदार सजावट भी नजर आई, साथ ही बच्चों के स्वागत के साथ उनके बीच पढ़ाई लिखाई की सामग्री भी बांटी गई। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधारोपण भी किया गया।
1: और अब बात करते हैं मॉनसून की। दिल्ली एनसीआर के लोगों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राजधानी में मॉनसून की दस्तक के साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया है। कई दिनों तक उमस और चिपचिपी गर्मी झेलने के बाद सुबह हल्की बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। हालांकि मुंबई में यही बारिश आफत बनकर बरसी, जबकि उत्तराखंड में बारिश के बीच चारधाम यात्रा जारी है।

0: मानसूनी बादलों की आवाजाही से पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिन क्षेत्रों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, वहां भी प्री मानसून की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून अब उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है और गुड न्यूज ये कि मानसून ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है और पिछले 4-5 दिनों से जिस उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, उससे आज सुबह बारिश के फुहारों से राहत मिल गई है।
1: लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली NCR में मानसून ने 5 दिन देरी के बाद से ही दस्तक दे दी है। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली और तापमान की अगर बात करें तो तापमान में भी कमी जो है वो देखी गई है। मौसम विभाग का पहले से अनुमान था कि जल्द ही दिल्ली NCR में भी मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है। हालांकि 27 जून की तारीख थी, लेकिन 5 दिन बाद यानी आज 2 जुलाई को जो है मानसून दस्तक दिया और उसके बाद का जो नजारा है वो वाकई में लोगों को राहत दे रहा है। सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि मौसम अभी साफ नजर आ रहा है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। कहां से आए आप ये बताइए?
2: हम वेस्ट बंगाल मालदा से आए हैं।
1: अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए, वहां पर भी बारिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है?
2: दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है। अभी बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, मौसम बहुत खुश मिजाज है।
3: इस मौसम से घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पसीना नहीं निकलेगा, घूमने में फील अच्छा लगेगा।
0: दिल्ली NCR में बादलों का जमावड़ा देखने को मिला और इसके बाद मौसम विभाग ने भी पुष्टि कर दी कि अब तक जो हलचल प्री मानसून के तौर पर देखी जा रही थी वो अब पूरी तरह मानसून है। दिल्ली में मानसून इस बार अपनी तय तारीख से 5 दिन देरी से पहुंचा है। सामान्य तौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस साल ये 2 जुलाई को पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो साल 2021 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जुलाई महीने में दिल्ली पहुंचा है।
4: देखिए, ये जो मॉनसून का है बारिश, ये भी इसके जो एसोसिएटेड वेदर पैरामीटर्स हैं, फीचर्स होते हैं, उसके अनुसार वर्षा देखने को मिलती है। अभी फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई हैं जिसकी वजह से वर्षा गतिविधि अच्छी देखने को मिल रही है। आगे कैसा इसका वॉल्यूशन होगा उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें भारतवर्ष के लिए, तो एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी और उसके आसपास का जो उत्तरी उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित है, जिसकी वजह से पूरी भारत में वर्षा गतिविधि बढ़ रही है। साथ साथ में जो फेवरेबल कंडीशंस जैसे जो हमारा पश्चिमी भारत तटीय क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर वर्षा गतिविधि बढ़ रही है। जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर वर्षा गतिविधि अच्छी रहने की संभावना है इस सप्ताह के दौरान।
0: फिलहाल राहत की बात ये कि आज सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और बारिश की वजह से लोगों को उमस से भी राहत मिली है। हालांकि अनुमान यही है कि इस बार मानसून के दौरान कुल बारिश सामान्य से कम रह सकती है।
4: देखिए, अभी हमारा अगर आगे के अनुमान के बारे में बात करें, पूर्व अनुमान के बारे में दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली, तो अगले 7 दिनों के दौरान यानी एक सप्ताह के दौरान जो जनरल क्लाउडी स्काई कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी पूरे सप्ताह कंटिन्यू रह सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान जो है वर्षा गति थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिनों के दौरान, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट भी इशू किया गया है।
0: दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हुए ये मानसून केरलम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए अब दिल्ली पहुंचा है। इसके बाद ये उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। 3 दिन की देरी से केरलम से शुरू हुआ मानसून अब देश के 90% से ज्यादा हिस्से को कवर कर चुका है। बारिश की ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब मानसून की मेहरबानी हुई है तो जमकर बादल बरसने लगे। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से मुंबई के तमाम इलाके भीगे हुए हैं। इस बारिश ने मुंबई के लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत जो दी है। मौसम के इस बदले मिजाज से मुंबई के लोगों को एक बार फिर मौसम का लुत्फ उठाने का मौका भी मिला है।
5: मैं इस समय मौजूद हूं पवई झील के दूसरे किनारे पर, जहां की तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये झरना है और बहुत ज्यादा फेमस है पवई लेक के नाम से। यहाँ पर वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन आज की जो तस्वीर है मुझे नहीं लगता है कि यहाँ परमिशन मिली होगी कि लोग भीतर की भी तरफ जाएं। आप देखें कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है इस समय ये पवई लेक, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पवई झील का ये दूसरी तरफ का किनारा है और ऊपर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांध है, और उस बांध पर आप देखें छोटे छोटे बोट रखे हुए हैं, छोटी छोटी स्टॉले लगाई गई हैं जहां पर पवई झील कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं मछली पकड़ने का। फिशिंग यहां पर चल रही है और बहुत ही सुंदर नजारा उनकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो भी बहुत ही शानदार रहा है। तो ये पवई झील से सटा एक किनारा है। जैसे ही बारिश जो बहुत अभी समय मूसलाधार बरस रही है उसकी गति धीमी होगी, वैसे ही गिरने वाला जो झरना है उसकी भी गति धीमी होगी और पानी थोड़े कम स्पीड से यहाँ पर बहेगा, तब लोग यहाँ भीतर जाने लोगों को दिया जाएगा।
0: मुंबई में मॉनसून की तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मुंबई में बारिश में कुछ कमी भी आई जिससे आवागमन फिर से बहाल हो गया है। मुंबई में हो रही बारिश से उपजे हालात की वानगी वहां से सामने आई ये तस्वीरें और वीडियो बता रही है।
6: अब तकरीबन जो बरसात का जो मौसम है वो तो अगले एक डेढ़ दो महीने तक यूं ही बरसात होती रहेगी, लेकिन अगर समस्या ना हो तो मुंबई वासी इस मौसम को पूरा तरीके से एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज़ बरसात नहीं होने से जो अंधेरी सबवे जो सबसे पहले मुंबई में भर जाता है अभी इसमें आवाजाही चल रही है। और इसी तरीके से हालांकि सड़क पे हाईवे पे भी हमने देखा ट्रैफिक थोड़ा स्लो है क्योंकि बरसात तो हो रही है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लोग अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
0: वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी दिन में मुंबई से सटे अरब सागर में हाई टाइड का भी अलर्ट दिया है, लिहाजा मरीन ड्राइव पर तमाम लोग समंदर में उठ रही ऊंची लहरों के नजारे देखने के लिए जमा दिखे।
6: मौसम अच्छा है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा रिलीफ, आप सब देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखा दूं इतनी भारी तादाद में दरअसल लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं समुद्र किनारे। हाई टाइड में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको इनफैक्ट पुलिस के जो अधिकारी अगर आप देखें वो येलो सूट में जगह जगह पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच के बोल रहे हैं लोगों को समुद्र किनारे से हटने के लिए, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं आप देख लीजिए। काफी सारे लोग खासतौर से रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर है और कोशिश इनकी यही है कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक वीडियोस के साथ वो अपने वीडियोस बना लें।
0: मरीन ड्राइव ही नहीं कुछ ऐसा ही नज़ारा बांद्रा बैंड स्टैंड पर भी दिखा।
7: इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड इलाके पे है, मुंबई में हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। वहाँ जहाँ पर तीन दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है आज 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। ट्रेनें सेंट्रल रेलवे पर स्लो चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह से बारिश होने का अंदाजा मुंबई में दिया गया।
0: मुंबई और दिल्ली ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और श्रद्धालु इसी बारिश के बीच बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ में बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। कुल मिलाकर मौसम का जो मिजाज अभी देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए अनुमान तो यही है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम की ये मेहरबानी बनी रहेगी और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना फिर से करना नहीं पड़ेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख, धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: कर्नाटक में मॉनसून के आने की खुशी में मनाया गया कारा हुन्नीमी बैलगाड़ी महोत्सव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: भारत और जापान के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच हुई 16वीं भारतीय जापान सालाना शिखर वार्ता केवल कूटनीतिक बैठक नहीं रही बल्कि इससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा मिली। सबसे बड़ा ऐलान रक्षा क्षेत्र से आया जहां भारत और जापान ने पहली बार रक्षा उपकरणों के सह विकास पर समझौता किया। इसके अलावा AI, सेमीकंडक्टर, आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया। दोनों देशों के बीच AI, डिफेंस, निवेश, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सहयोग समेत 5 बड़े समझौते हुए हैं। जापान ने अगले 10 सालों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी 4 जुलाई को जोधपुर दौरे के दौरान उड़े देश का आम नागरिक योजना को 10 साल तक और बढ़ाने का बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस विस्तार के साथ छोटे शहरों और आम जनता के लिए रीजनल हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर और हवाई यात्रा को और भी सस्ता बनाने के उद्देश्य को 2037 तक जारी रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे और इसी मंच से इस योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य में लगातार सातवें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साल 2026-27 के लिए बिजली दरें पिछले साल के समान ही रखी गई हैं। सरकार का ये फैसला आम उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे उद्योगों और कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर दिन के समय चार्जिंग करने पर 20% की छूट भी देने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के हावेरी के करजागी गांव में कारा हुन्नी में बैलगाड़ी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्तरी कर्नाटक में मॉनसून के आने और खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू होने की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें किसानों ने अपने बैलों और मवेशियों को नहला धुला कर फूलों, रंगों और पोशाकों से सजा कर इनकी विशेष पूजा की। इस दौरान सजी धजी बैलगाड़ियों और बैलों का भव्य जुलूस निकाला गया।
8: अब बात बाबा बर्फानी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। आज कुल 4,822 श्रद्धालु 259 वाहनों में सवार होकर अमरनाथ गुफा की ओर निकले। ये श्रद्धालु दो मार्गों पहलगाम और बालटाल के रास्ते यात्रा करेंगे। वही इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

0: बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। कोई खुशी से डमरू बजा रहा है तो कोई त्रिशूल लेकर बाबा के द्वार की तरफ चल पड़ा है। कोई बाबा बर्फानी की जय जयकार कर रहा है तो कोई भजनों के जरिए श्री अमरनाथ जी की महिमा गा रहा है।
1: हर हर महादेव, हर हर महादेव,
2: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
0: भागीरथी सलिल सांद्र जटा कलापम, शीतांशुकांते रमणीय विशाल भालम, कर्पूर दुग्ध हिम हंस निभम स्वतोजम, नित्यम भजाम्यमर नाथ महम दयालुम। जिनकी जटाएं गंगा के जल से आपूरित हैं, जिनका विशाल मस्तक चंद्रमा की कांति के समान मनोहर है, जो कपूर दूध और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले और स्वयंभू हैं, उन दयालु बाबा अमरनाथ को मैं निरंतर भजता हूँ।
3: जहाँ पे साक्षात भगवान शिव लिंग के रूप में वहाँ पे शिवलिंग के रूप में वहाँ पे दर्शन देते हैं, और जिस स्थान के प्रति आस्था और श्रद्धा पूरे देश दुनिया में है, श्रद्धालु आज यहाँ पे भगवती नगर के इस पावन स्थान से अभी रवाना हुए हैं, हम इनकी सफल और सुखद यात्रा की कामना करते हैं।
0: भक्ति और आस्था की ये तस्वीर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आई है, जहां से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए आज रवाना हुआ। इन तीर्थ यात्रियों को रवाना करने से पहले परंपरा के अनुसार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। और पूजा संपन्न होने के बाद उपराज्यपाल ने झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों से भरी बसों को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया।
4: ने यात्रियों के पहले जत्थे को कश्मीर घाटी की तरफ रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके भगवती नगर बेस कैंप से निकल रही है यहाँ जम्मू से, और दोपहर के बाद ये श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे। कल ये यात्रा जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। शुभ घड़ी आ गई, इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। कल से ये यात्रा जो है दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी। उससे पहले यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। हम एक बस में इस समय खड़े हैं, ये बस जो है कश्मीर घाटी जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु इस बस में बैठे हुए हैं, इनका उत्साह जो है देखते ही बनता है, खासा उत्साह देखा जा सकता है। हर हर महादेव और बम बम भोले का जयघोष हो रहा है।
5: इतना सौभाग्य मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि एक नई जिंदगी मिल गई है, और जो पहले दिन का दर्शन करता हूँ तो आज मेरे को अलग ही फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कब बाबा की गुफा देखता हूँ, कब बाबा के चरणों में गिरता हूँ। मैं एक ही कहूंगा कि इरादे हजार बनते हैं और हजार टूट जाते हैं, अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बर्फानी बुलाते हैं।
0: इस पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु 259 गाड़ियों में सवार होकर अमरनाथ गुफा की ओर रवाना हुए। हालांकि ये तीर्थयात्री दो रास्तों से अमरनाथ पहुंचेंगे, पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। जम्मू से कड़ी सुरक्षा में निकले ये तीर्थयात्री तय रास्ते पर जब आगे बढ़े तो उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी एक तस्वीर उधमपुर से जबकि दूसरी तस्वीर रामबन से आई है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अमरनाथ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कहीं फूलों की माला और चुनरी भेंट कर तो कहीं ढोल नगाड़ों, फूलों की बारिश और आरती उतारकर स्वागत हुआ।
6: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं, और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे।
7: और जिनके साथ आए उनका 29वां जत्था है ये बाबा के, और अपने पिता के घर आए हैं।

0: यही नहीं, श्रीनगर के पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में भी श्रद्धालुओं की भारी आमद देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे शिव भक्त यहां बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा के साथ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल पैदल यात्रा शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने के लिए तैयार है।
1: लाइनों में जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको तत्काल यहाँ पर अपना पास रजिस्ट्रेशन बनवाना है और उसके लिए ये लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इस पूरा इलाके की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर टेंट सिटी पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहाँ पर रुक सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ये सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे। ये मेन कैंप है, बालटाल का कैंप है, यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़।
0: 57 दिनों तक चलने वाली पवित्र यात्रा में इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुँचने की उम्मीद है। आस्था के सफर पर निकलने के लिए कश्मीर घाटी से बाबा के इन भक्तों का पहला जत्था तैयार है। शुक्रवार को बालटाल और पहलगाम बेस कैंपों से बाबा बर्फानी के दिव्य दरबार के लिए ये तमाम श्रद्धालु रवाना होंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट और बालटाल कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 579 अंकों की बढ़त के साथ 77,502 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 169 अंकों की बढ़त के साथ 24,175 पर बंद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती के बीच आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 3,000 रुपए चढ़कर 1,47,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,35,000 रुपए पर पहुंच गई। 2 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 95.4 के स्तर पर बंद हुआ।
2: फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का टीजर रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड पर। फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में रोमांस, रहस्य, सस्पेंस और चौंकाने वाले ट्विस्ट का मेल है। साथ ही इसमें एक रहस्यमय नकाबपोश आकृति भी नजर आती है, जो सस्पेंस क्रिएट कर रही है। इस फिल्म में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिस्वास मुख्य भूमिकाओं में है। SS एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी और इंदर दास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इंडिया फिल्म नागबंधम रिलीज के लिए तैयार है। शुक्रवार 3 जुलाई को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसके लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें विराट कर्ण, नाभा नटेश, ऋषभ साहनी, ऐश्वर्या मेनन, दक्षा नागरकर, महेश मांजरेकर और गजपति बाबू मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म नागबंधम अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी है।
3: खजाना केवल धरती पर राज करवा सकता है, लेकिन ब्रह्म कमल पूरे ब्रह्मांड पर शासन करवा सकता है। मुझे वही ब्रह्म कमल चाहिए।
2: नागराज मंजुले निर्देशित मराठी फिल्म खाशाबा का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही इस फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। खाशाबा के टीजर की शुरुआत एक शख्स के साथ होती है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन वो खेत में खड़े होकर रस्सी घुमाते हुए नजर आता है। फिर वो अपने घर और कुश्ती के लिए कड़ी मेहनत करता है। टीजर के साथ संगीत की धुन भी सुनाई देती है। ये फिल्म पहलवान शाखावा दादा साहेब जाधव की कहानी पर आधारित है, जो स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता था। हालांकि फिल्म में दिग्गज पहलवान की भूमिका निभा रहे कलाकार का खुलासा अभी नहीं हुआ है। इस फिल्म में जितेंद्र जोशी, महेश मांजरेकर, गिरीश कुलकर्णी, छाया कदम, गार्गी कुलकर्णी जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 1 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बाबा नीम करौली महाराज पर बनी फिल्म हनुमान अंश के मेकर्स इस फिल्म के प्रमोशन को एक अलग अंदाज में कर रहे हैं। इस फिल्म की टीम ने पारंपरिक मार्केटिंग के बजाय प्रमोशन के लिए भक्ति का रास्ता चुना है। मेकर्स ने आध्यात्मिक प्रमोशन अभियान शुरू किया है और इसके तहत ही समय समय पर प्रमुख जगहों पर हनुमान चालीसा पाठ और सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम में लगातार पहुंच रहे भक्त, बाबा के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। अब तक 13,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए किए कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते। एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर कर लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत।

0: हुए एक गरीब शख्स की उसके लिए पंखा झुलाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबको लुभा रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कभी कभी सबसे शुद्ध रूप बस किसी का साथ बैठना होता है, और ये तस्वीर उसी साथ बैठने की उस खूबसूरत पल को दिखाती है। ये शख्स खुद गरीब नजर आ रहा है, लेकिन उसके भीतर की करुणा उसे अमीर बना देती है। सच ही तो कहा गया है कि दया या करुणा को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, ये दिल में बसती है। जो दया करुणा दिखाते हैं आखिर वही तो सच्चे इंसान होते हैं। अब देखिए दो दोस्तों के कमाल के कॉम्बिनेशन और बैलेंस की तस्वीर। तस्वीरें देखते ही आपको महसूस होगा कि बचपन सबसे अलग सबसे जुदा होता है। इन दोनों दोस्तों ने एक ही साइकिल को ऐसा जुगाड़ बना डाला कि तमाम महंगी गाड़ियां इसके सामने फीकी हैं। पेट्रोल की टेंशन नहीं और जुगाड़ से बन रहा है काम। एक साइकिल में दो ड्राइवर का कमाल देख यूजर्स हैरान जरूर हैं, लेकिन इन तस्वीरों से सबको अपना अपना बचपन याद आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें सबको भावुक कर रही हैं, खासतौर पर पिता और बेटियों को। तस्वीर में ये पिता अपनी बेटी को उसकी राजकुमारी होने का एहसास दिला रहा है। पिता चाहे अमीर हो या गरीब, उसकी बेटी उसके लिए क्या अहमियत रखती है ये तस्वीरें बता रही हैं। इसलिए यूजर्स इसे देखकर भावुक हो रही हैं। पिता से दूर बैठी बेटियां इन तस्वीरों को देखकर अपने पिता को याद कर रही हैं और पिता अपनी बेटियों को। जैसे पिता का प्रेम वैसे ही माँ का प्रेम, क्योंकि माँ माँ होती है, इंसान की हो या पशु की। इन वायरल तस्वीरों में इस माँ को देखिए कैसे बाढ़ बारिश में एक खूंटे पर लटकी है, और जब तक मदद नहीं मिलती बच्चे को कसकर पकड़े हुए है, और जब मददगार आते हैं तो वो तुरंत उनकी भावना समझते हुए उनका साथ देती है और अपने बच्चे के साथ बोट पर आ जाती है। सच है, इंसान हो या जानवर, सभी बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर ना सिर्फ भावुक हो रहे हैं बल्कि बचाने वालों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
1: न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे कि UPTET के नाम से भी जाना जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार UPTET का आयोजन कर रहा है। 3 दिन में होने वाली इस बड़ी परीक्षा के पहले दिन आज 60 जिलों के 955 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। UPTET में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी शामिल है। इसमें ऐसे शिक्षक भी हैं जो बिना TET पास किए विद्यालयों में नियुक्त हैं। हर परीक्षा केंद्र पर AI कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से निगरानी की जा रही है। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जबकि उड़न दस्ते लगातार निगरानी कर रहे हैं। आज और कल 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि तीसरे दिन 4 जुलाई को एक ही पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। हाल ही में कई परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने TET को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से हमने बात की और उनकी राय जानी।
2: TET 2026 की पहली पारी की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और परीक्षार्थी परीक्षा दे करके वापस लौट रहे हैं। पेपर कैसा रहा और सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे, इनसे जानते हैं। आपने इस एग्जाम को दिया है, क्या कहेंगे कैसा पेपर रहा?
3: पेपर ठीक था, बढ़िया था, थोड़ा सा टफ आया था। अगर कंटेंट की बात की जाए तो काफी घुमा के दिया था, लेकिन ठीक था। और अगर रही बात सुरक्षा की तो अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर के स्तर से काफी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी और सब कुछ बिल्कुल बाहर से लेके अंदर तक सारी चेकिंग प्रॉपर हुई है। कहीं कोई ऐसा नहीं लगा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है।
4: परीक्षा बहुत अच्छी थी, पेपर भी बहुत अच्छा आया था। यहाँ की सुरक्षा भी मुझे अच्छी लगी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी, पेपर भी अच्छा था। पेपर अच्छा गया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
2: अच्छा, कितनी सुरक्षित यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रही है?
4: सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटियाँ नहीं है यहाँ पर।
5: मैंने तो ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, क्योंकि इससे पहले ये 2022 में हुआ था, तो उस टाइम मैं BEd कर रहा था, एलिजिबल नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया, तो अगर मैं CTET के हिसाब से कंपेयर करूँ अपने एग्जाम को, तो CDP का जो सेक्शन था वो तो बहुत ईजी आया था, लेकिन जो हमारे जनरल पेपर थे, जो मेन पेपर था हमारा, जैसे मेरा सोशल साइंस था, तो उसमें काफ़ी जो है क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए थे जो या तो आउट

0: ऑफ सिलेबस का ही, या तो वो हम लोग ने के जहन में वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम लोग सोशल में अगर सीटेट की बात करें तो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते थे, लेकिन इसमें तो हमने इन्वायरमेंट के भी पेपर को देखा, उसके साथ ईवीएस के भी काफ़ी क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का जो पोर्शन था वो थोड़ा टफ लगा, बट ओवरऑल पेपर बहुत एवरेज था और आसानी से मुझे लगता है हर किसी का 90 मार्क्स डाक सकता है
1: अच्छा,
0: सर।
1: सुरक्षा की बात करें तो कितनी सुरक्षित यहाँ पर व्यवस्था रही है?
0: सर व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षित व्यवस्था तो रही है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर तो अलॉट कर देती है लेकिन जाके कभी भी क्लासरूम में चेक नहीं करती है कि किस तरह की सीटें हैं, किस तरह के पंखे हैं, पंखे की सुविधा है कि नहीं। जिस क्लास में हम लोग बैठे थे उस क्लास में जो छत थे वो करकट के थे, अब आप खुद समझ सकते हैं कि गर्मी में करकट कितना तपता है। उसके बाद पूरे क्लासरूम में सिर्फ 2 पंखे थे, और अगर आप सीट की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी स्कूल इसी तरह के होते हैं।
1: परीक्षा तो सुरक्षा व्यवस्था ठीक था, लेकिन जो अंदर व्यवस्था थी वो करकट का पत्रा
0: मतलब
1: था,
0: गर्मी ज्यादा लगी।
1: गर्मी ज़्यादा, एक क्लासरूम में केवल 2 फैन, एक साइड, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी।
0: अच्छा, नकल विहीन परीक्षा की बात कही है तो क्या लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी?
1: यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई है अभी, अब आगे किस सेंटर पे क्या होता है भगवान जाने।
0: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
1: सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये परीक्षा कंडक्ट होने के बाद अब सुपर टेट की वैकेंसी जल्द से जल्द आए।
2: व्यवस्था अंदर की तो नहीं ठीक, बाहर सुरक्षा तो रखे हैं लोग, चेक करके प्रॉपर भेजे हम लोग को अंदर, लेकिन अंदर वहाँ पे पंखे वगैरह, डेस्क वगैरह अच्छी नहीं थी।
0: पेपर वगैरह
2: पेपर तो
0: सही
2: ठीक
0: हो
2: था,
0: गया।
2: पेपर सही था।
3: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं होनहार बीरवान के हो चुकने पर। दरअसल राजस्थान के कोटा के एक छात्र पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। परिवार के सीमित संसाधनों के बावजूद एक पिता ने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। इसे पूरा करने के लिए उसने काफी संघर्ष किया और अब बेटे ने जेई एडवांस में सफलता हासिल कर अपने पिता के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। चाहे बहुत छोटा हो, संसाधनों की कमी हो या आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन सच्ची लगन के साथ, ईमानदारी के साथ की गई मेहनत मंजिल की ओर बढ़ा ही देती है। कुछ इसी अंदाज में जय कुमार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के कोटा में फ्लोर टाइल्स लगाने वाले कारीगर ललित किशोर के बेटे जय कुमार ने जेई एडवांस में सफलता हासिल कर अपना और अपने परिवार के सपने को पूरा किया और आईआईटी तक पहुंचने का रास्ता बना लिया।
4: मेरी सीआर रैंक 8313 है और कैटेगरी रैंक 196 है। सुबह 8 से 1 तक क्लासेस होती थी, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेता था कोचिंग में, कुछ पापा वहीं पे लंच ले आते थे, फिर वहाँ पे लंच करने के बाद फिर 1 से 2 तक लंच, उसके बाद फिर 2 बजे से थोड़ा किसी से फोन पे बात करने के बाद दोस्तों से, उसके बाद 2 बजे दोबारा बैठ जाता था, फिर वहाँ से 8 बजे तक वहीं पे सेल्फ स्टडी करता था, फिर 8 बजे फिर घर आ जाता था, फिर 10 बजे दोबारा बैठ जाता था।
3: कोटा के डीसीएम इंद्रानगर निवासी जय कुमार ऐसे परिवार से आते हैं जो सीमित संसाधनों में गुजारा करता है। आर्थिक तंगी की वजह से पिता को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन अपने बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए ललित किशोर ने अपने बेटे की शिक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया। अतिरिक्त मेहनत कर इन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई का न सिर्फ खर्च उठाया बल्कि बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए इन्होंने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसका रिजल्ट सामने आने पर परिवार का खुश होना लाजमी है।
5: तो ये गणित में तेज था, सन 2019 में इसने अबेकस का एग्जाम दिया था, तो नेशनल रिकॉर्ड अचीवर किया था इसने, तो इसकी स्कूल की तरफ से इसको क्या बोलते हैं शील्ड भी मिली थी, प्रशस्ति पत्र भी मिला था। तो जब से मुझे लग गया मैंने कि बेटा ये आगे जाके इंजीनियर जरूर बनेगा, फिर हम कोचिंग में गए और इसका एडमिशन करवाया। मैं टाइल और ये टाइल ग्रेनाइट मार्बल की फिटिंग का कार्य करता था और दिन रात मेहनत करता था, इसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए मेहनत करके, तो बच्चों को तकलीफ नहीं हो किसी भी चीज की।
6: अपने परिवार में ऐसा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, बेटा आपको ही मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत मेहनत करी इसको पढ़ाने के लिए इसके पापा ने।
3: पिता के संघर्ष को जय ने जाया नहीं होने दिया, मन लगाकर पढ़ाई की। रोजाना करीब 4 से 5 घंटे कोचिंग में पढ़ाई करने के अलावा 6 घंटे सेल्फ स्टडी को दिया। जेई एडवांस में जय की कॉमन रैंक 8,313 और एससी वर्ग में 196 रही। इससे पहले जेई मेन में जय की ऑल इंडिया रैंक 19,481 और एससी कैटेगरी में 533 रही। 10वीं में जय ने 94.3% तो 12वीं में 94.8% अंक हासिल किए थे। साफ है कि जय शुरू से मेधावी रहे और उनकी इस प्रतिभा को पिता ने पहचान लिया था, जिसके बाद उन्होंने बेटे को इंजीनियर बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष भले ही करना पड़ा, लेकिन जय की पढ़ाई की जरूरतों के लिए किसी तरह की कमी नहीं होने दी और आज अपने पूरे परिवार में आईआईटी में पढ़ाई करने जा रहे पहले सदस्य यानी अपने बेटे को लेकर इनके चेहरे पर फख्र की झलक साफ देखी जा सकती है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंगोलिया में 18 देश के सैनिकों ने खान क्वेस्ट एक्सरसाइज के दौरान भारत सांस्कृतिक संध्या में देखा भारतीय परंपरा, संस्कृति और खान पान को। आइए सीधे आपको लिए चले न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में सांस्कृतिक रंग भरने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया के उलानबटार में शानदार भारत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इसमें 18 देशों के सैनिक शामिल हुए और सबने मिलकर भारत की परंपराओं, संगीत, खान पान और आपसी भाईचारे का जश्न मनाया। शुरुआत भारतीय टुकड़ी के जोश भरे देशभक्तिपूर्ण सामूहिक प्रदर्शन से हुई, फिर भारत की समृद्ध मार्शल आर्ट परंपराओं को दिखाने वाले शानदार प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी। इसके बाद भांगड़ा और देश की पाक कला की विरासत भी नजर आई। यहाँ अलग अलग देशों के सैनिकों ने कई तरह के पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया। चीन के शॉक्सी प्रांत में गर्मी से राहत के लिए इमारतों पर खास मिस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। गर्मी से निपटने के इस अनोखे तरीके से स्प्रिंकलर और मिस्ट की फुहारों के जरिए शहर की सड़कों का तापमान कम रखने की कोशिश की जा रही है। यहां मिस्टिंग सिस्टम से इमारतों और आसपास के इलाकों को ठंडा रखने की पहल की गई है। इस अनोखी तकनीक की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक कंपनी के कर्मचारी इन दिनों देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए ना दीवार तोड़नी पड़ती है ना ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यूरोप में इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। कंपनी के अनुसार हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। बता दें कि यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। न्यूयॉर्क सिटी की 1454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दो स्टंटबाजों ने न सिर्फ इस गगनचुंबी इमारत के बैंड ट्रांसमिशन टावर पर बिना किसी सेफ्टी गियर की चढ़ाई की, बल्कि वहां हवा में लटकते हुए अंगूठी पहनाकर एक दूसरे को प्रपोज भी कर डाला और लड़की ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। ये दोनों स्टंटबाज करीब 30 मिनट तक एंटीना पर रहे और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दोनों नीचे उतरे। एक जुलाई 2021 को हांगकांग की मातृभूमि में वापसी के 29 साल पूरे होने पर शानदार जश्न मनाया गया। यहां आसमान में ड्रोन शो भी हुआ। स्पेस थीम वाली आकृतियों और करीब 2026 ड्रोन की सिंक्रोनाइज्ड उड़ान ने हंग होम न्यू वाटरफ्रंट पर न सिर्फ रोशनी और रंगों से रात का आसमान जगमगा दिया, बल्कि दर्शकों का दिल भी जीता। ये शो हांगकांग की एयरोस्पेस में बढ़ती ताकत के प्रतीक के रूप में पेश किया गया।
8: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
10: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. just favorite your teams and start listening.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
8: अभिषेक और श्रेयस ने बनाए नए रिकॉर्ड। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बन गए हैं। अभिषेक ने 785 गेंद में 100 छक्के जड़े और वेस्टइंडीज के एविन लुइस के 789 गेंद में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के लिए 100 छक्के लगाने वाले अभिषेक 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में जगह बना ली है।
3: टी20 में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज है। इंग्लैंड के खिलाफ महज 20 गेंद पर 50 पूरी करके अभिषेक इंग्लैंड में सबसे तेज टी20 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके जरिए उन्होंने केएल राहुल का 8 साल पुराना 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं इंग्लैंड में जाकर टी20 में 50 लगाने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। श्रेयस ने मैच में 68 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के मैदान पर टी20 में किसी भारतीय कप्तान की ये सबसे बड़ी पारी है। श्रेयस ने इस प्रदर्शन के साथ विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोहली ने 2018 में कार्डिफ के मैदान पर 47 रन की रिकॉर्ड पारी खेली थी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम वहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जाएगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए श्रीलंका में ये टेस्ट सीरीज अहम मानी जा रही है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में भारत फिलहाल 5वें नंबर पर है। इसे मेंटेन करने के लिए और इससे आगे जाने के लिए टीम इंडिया के लिए ये दौरा टेस्ट के लिए चुनौती है। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन कर दिया। किंग खान ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इस स्टेडियम का तोहफा दिया। केकेआर के गवर्नर शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करके लिखा कि जो एक सपना था वो आज हकीकत बन गया। कैलिफोर्निया के पोमोना में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का पारंपरिक पूजा पाठ के साथ अनावरण किया गया। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम सम्पन्न कराया। केकेआर ग्रुप के सीईओ वेंकी मैसूर भी इसमें शामिल हुए। ग्राउंड का इस्तेमाल मेजर लीग क्रिकेट और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किया जाएगा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने शाहरुख खान को बधाई दी है। शाहरुख ने इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए जय शाह और संजोग गुप्ता का शुक्रिया भी अदा किया। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन में मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को महज 98 मिनट में सीधे सेटों में हराकर जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के अगले यानी तीसरे दौर में नोवाक जोकोविच का मुकाबला फ्रांस के 25वें सीड आर्थर रिंडनेच के साथ होगा। 12 जुलाई को मेन सिंगल फाइनल खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
15: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
16: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं।
18: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से एक साथ हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुई कई समझौते। एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलए केआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
13: टेस्ट में
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है।
12: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। इस वक्त हजारों की तादाद में शिव भक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में मौजूद हैं और कुछ घंटों बाद ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। इसलिए देखिए, घाटी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त उत्साह के साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहलगाम में टेंट सिटी की भव्यता भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बेस कैंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस प्रकार से किए गए हैं वो दिखाएंगे। शिव भक्तों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ ने इस साल भी महिला कमांडोज की तैनाती की है। उनकी क्या भूमिका रहने जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप के लिए निकला और शुक्रवार की सुबह सभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था यहां पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। गुड न्यूज टुडे के साथ आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। गुड न्यूज टुडे की हर एक तस्वीर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो आप देखते रहिए पवित्र अमरनाथ की यात्रा गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से भारी सुरक्षा के बीच शिव भक्त निकलने वाले हैं। पहलगाम के नूनवान कैंप पर इस वक्त उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
0: सुबह 5 बजे के आसपास पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर बालटाल बेस कैंप पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लंगर और भंडारे लगे हुए हैं। वहां पर लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरा जो रास्ता जाता है, ये बालटाल से डोमेल की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ की तस्वीरें आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कल से जो यात्रा शुरू हो रही है सुबह से, उस यात्रा के लिए यहाँ से निकलेंगे। इनके लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लंगर की भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बालटाल समिति है, इसमें आप देखिए कि शिव भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर सारे लोग ये लंगर खा रहे हैं। यहाँ इसी तरीके से जितने भी लाइन से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब जगह अलग अलग राज्यों से आकर के इसी तरीके के लंगर लगाए गए हैं, जिससे कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो।
2: ये जो भंडारा है, बटाला पंजाब का भंडारा है, और ये 27वां भंडारा इस साल लगाया गया है बालटाल में। हमारे देश के सभी राज्यों से जो शिव भक्त आते हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए, जैसे साउथ इंडियन, पंजाबी, हर तरह का खाना हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
0: यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान दिए गए हैं, और उन पकवान को खा करके लोग यहाँ अभी रात में यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से यात्रा करेंगे, जो कि 13 से 14 किलोमीटर या तो पैदल जाएंगे या खच्चर के जरिए पालकी से ये तमाम लोग जाएंगे।
1: देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ठहरने, लंगर, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। देखिए पहलगाम से हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये सिर्फ उद्घोष नहीं, विश्वास है। ये केवल नारी नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। किसी की आंखों में दर्शन की चाह है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना लेकर निकला है, तो कोई जीवन की परेशानियों का समाधान लेने आया है। सभी चेहरों पर मुस्कान, दिल में श्रद्धा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी का। हिमालय की वादियाँ, हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बालटाल के बेस कैंप पर शिव भक्तों का जमावड़ा, ये किसी पर्यटन स्थल की हलचल नहीं बल्कि अटूट विश्वास की तस्वीर है।
1: बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहाँ पर पहुँचा हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहाँ पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहाँ पर पहुँचे। देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहाँ से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए सीधे यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
2: ओम प्राणनादम विभुम विश्वनादम जगन्नाथनादम सदानंद बाजम भवद भव्य भूतेश्वरम भूतनादम शिवम शंकर।

0: देश के अलग अलग राज्यों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बसों में सवार होकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला। श्रीनगर यात्री निवास से भी शिव भक्त बेस कैंप पहुंच रहे हैं और घाटी बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के कंधे पर बैग, तो कोई त्रिशूल लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हर पड़ाव पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है और स्थानीय लोग फूलमाला से भव्य स्वागत कर रहे हैं।
1: हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। ये इस्बन जो है मेरे हाथ में, ये हम जलाते हैं, ये हमारे यहाँ कश्मीरी कल्चर में है। कोई बड़ा दिन त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बच्चा कभी डर जाता है, उसको भी ये हम नजर उतारते हैं इससे। तो जो ये है, ये दुल्हन को नजर उतारते हैं। वैसे ही हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हम इसी से करते हैं कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं फूलों से।
0: अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र अध्याय है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। बर्फ अपने आप शिवलिंग का आकार लेती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से यहाँ पहुंचकर पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की राह आसान नहीं होती। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और कठिन रास्ता हर कदम धैर्य की परीक्षा लेती है और यही कारण है कि इस यात्रा को केवल श्रद्धा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है।
2: अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार की तरफ से जगह जगह पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे अमरनाथ गुफा हो चाहे फिर अलग अलग पड़ाव हो, लेकिन प्रमुख बेस कैंप नूनवन और बालटल जो है वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। 20,000 से 25,000 श्रद्धालु वहां पर एक समय रुक सकते हैं। अगर कभी रास्ता खराब होता है या यात्रा रोक दी जाती है तो इन दो बेस कैंप्स पर विशेष तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है वो यात्रा है। एक महिला भी हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए।
3: बेबी पद्मजा।
2: कहाँ से हैं आप?
3: एपी से।
2: आंध्र प्रदेश से।
3: आंध्र प्रदेश से।
2: यात्रा पहले कभी की आपने या पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं?
3: हाँ, पहली बार।
2: पहली बार जा रहे हैं?
3: हाँ।
2: तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में और यहाँ पहुँच कर क्या लग रहा है? तो आंध्र में के हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता क्या बड़ी है। अब चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम विवेकानंद है।
2: विवेकानंद। पहली बार यात्रा पे?
4: या पहली बार आ रहा।
2: अभी आंध्र से?
4: आंध्र से। हम 20 लोग हैं इसी गाड़ी पे।
2: पहली बार। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में? क्यों दिन में इच्छा हुई कि आप भी जो है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे?
4: बाबा जी के बारे में तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, सो इस बार तो मेरा लक है, सो रजिस्ट्रेशन मिल गया, आ रहे हैं, बस इतने।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ। जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
3: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
3: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
3: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
3: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
6: हर हर महादेव।
2: तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही जयकारा है जो कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत इस कठिन यात्रा में देता है।
0: बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, जोश है, जुनून है, आगे यात्रा की कठिन चढ़ाई है। छोटी बड़ी चुनौतियों से भरा होगा रास्ता, लेकिन शिव भक्तों को भला इससे क्या वास्ता? मन में दर्शन की आस और ये उम्मीद कि लौटते समय उनके साथ होगा महादेव का आशीर्वाद। मन की शांति होगी जो जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होगी। बालटाल से अशरफानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप और पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। श्रद्धालुओं के काफिले के साथ बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल, फायर और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है।
0: आगे पीछे बख्तर बंद गाड़ियां, गाड़ियों में हथियार बंद मुस्तैद जवान। और इनके बीच गुजर रही बसों में बेफिक्र जयकारा लगाते शिव भक्त। यात्री निवास से जब श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप पहलगाम की ओर चला तो वादी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। हर जगह, हर मोड़ पर फूलों से, जयकारों से शिव भक्तों का भव्य स्वागत हुआ और पूरे एहतियात के साथ।
8: लखनऊ से, लखनऊ से, लखनऊ से।
9: कैसा लग रहा है आप?
8: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: सड़क किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सतर्क पुलिस टीम, पूरे सफर की निगरानी कर रहे सीआरपीएफ के जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा घेरा है वो अभेद है। ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और बालटाल बेस कैंप तक, जहां से पवित्र गुफा के लिए पहला जत्था शुक्रवार की सुबह निकलने वाला है।

0: तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहां पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम किए गए?
1: देखिए, यहां सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25,000 के लोग यहाँ रह सकते हैं
0: जी। इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का?
1: देखिए, यहाँ सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25,000 के लोग यहाँ रह सकते हैं
0: जी। इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
1: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री हैं, जेएनके पुलिस के साथ मिलके हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता उद्दाम है। और जेएनके पुलिस के साथ CRPF पूरा सुरक्षा देने के लिए।
2: इस साल अमरनाथ यात्रा लंबी है, इसीलिए ज्यादा तादाद में शिव भक्तों के आने की उम्मीद भी है और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कई लेवल की जांच के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा।

0: न सिर्फ बेस कैंप पर बल्कि पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर भी यात्रियों की सुविधा और हिफाजत का हर संभव इंतजाम है। सीआरपीएफ की मैं हेल्प यू टीम खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई है।
1: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मियाई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
2: मैं आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
1: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती, तो उनको कैसे आप बताते
3: हैं? सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है, तो उसमें उनको दिक्कत ना हो इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया।
0: जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है वो छोटा सा इलाका यानी नुनवान अच्छी खासी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे जाएंगे। यात्रा शुरू करने से पहले यहीं 10 से 15,000 शिव भक्तों का ठिकाना होगा। इस टेंट सिटी में दुर्घटनाओं पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कहीं आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर की फायर फाइटिंग टीम भी मुस्तैद है।
1: फायर फाइटिंग करने वाली टीम यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसमें निपटना है उसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थिति ये होती है कि अगर यहां पर सिलेंडर में या किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फायर फाइटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए हैं ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहां बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे यहां पर भंडारे हैं रविंदर जी और लंगर भी चलते हैं, उसमें किस तरीके से निपटा जा रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए?
4: मैं रविंदर शर्मा शिव भक्ति सेवा ट्रस्ट सरौनी दिल्ली से, और चांस की बात है कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाता हूं, लाइफ गार्ड बनाना हमारा ही है, और लास्ट ईयर भी यहां पर आग लग गई थी साथ वाले भंडारे में, तो उसको मैंने ही काबू किया था।
1: आप तस्वीरों में चारों तरफ देखेंगे कि यहां पर टेंट सिटी बना हुआ है और आग का खतरा काफी ज्यादा रहता है। कैंप से ही जो यात्रा है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाती है और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी कल से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेंड लोगों को किया जा रहा है कि अगर फायर की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान किस तरीके से निपटना है।
5: देखिए, अमरनाथ का रास्ता आसान नहीं होता, कठिन चढ़ाई के दौरान यात्रियों को सेहत को लेकर समस्या हो सकती है, इसके अलावा मौसम अगर खराब हुआ तो उनको मदद की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। ये टीम जो है कैसे काम करेगी, देखिए रिपोर्ट।
1: बालटाल बेस कैंप से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लोग चढ़ते हैं तो उस दौरान उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है। ऐसे ही इन इलाकों में दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ जो उनका है वहाँ पर उनको लगाया गया है। इसके साथ ही पहलगाम रूट से भी एरिया उनका जो है वहां पर उनको रखा गया है। ये लोग इक्विप्ड हैं पहाड़ों पर किस तरीके से रेस्क्यू करना है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाके में लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान उनको दिक्कत ऑक्सीजन की हो जाती है या फिर मौसम यहाँ का कभी भी खराब हो जाता है, अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है तो उस दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, इनके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जिनके जरिए ये लोग लोगों की जान बचाते हैं। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है, इसको लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं, रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इस पोर्टेबल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कोई वहाँ पर घायल होता है, लैंडस्लाइड होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो CRPF की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। करीब 21 टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको हर एक इलाके में तैनात किया गया है, जिससे कि इस पहाड़ी इलाके में जब भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम के जो मेंबर्स हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और कैसे इस पूरे इलाके में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई कैसे इनके द्वारा किया जाता है, किस तरीके से आप लोग पहुंचते हैं उस पूरे इलाके में, क्योंकि मौसम कभी भी यहां पर खराब हो जाता है।
6: बिल्कुल, मौसम कभी भी खराब हो जाता है और हम लोग NDRF से ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर होते हैं, तो उसके अलावा हमारी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग इस बार और रिफ्रेशर के तौर पे कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ों का एरिया के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो गई है। पिछले साल भी हम लोगों ने रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसा कि हमको काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज भी किया गया है, और हमारे पास फर्स्ट एड के किट वगैरह हैं, सारे कुछ रोप रेस्क्यू के हैं, तो सारी चीज़ों को मिला करके हम जहाँ खबर मिलती है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं।
1: तो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है, और इसी के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: No.
8: Oh no.
9: Welcome to Get Real.
8: I got something to say.
9: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
8: Oh my God.
10: It's got to be deliciously desperate.
11: Why do these girls forgive him?
12: Well, she has a soft spot for troubled men.
10: Boo bloody who?
9: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
11: Love runs deeper than we know.
9: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
13: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझा

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dicks.com/scorecardplus for details.
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber
3: to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: रात 8 बजे, good news today पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
9: गुड न्यूज टुडे.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
12: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
13: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु. बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज. पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम. हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील. मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी. पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना. देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना. भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते. एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश. अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य. शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनाया क्रिकेट स्टेडियम. मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड. वीडियो शेयर करके लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
13: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ. बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु. पहलगाम बेस कैंप पहुंचे यात्री. बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज. अमरनाथ यात्रा रूट पर मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी इंतजाम पहाड़ी इलाकों में लगाई गई है माउंटेन रेस्क्यू टीम. लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए

0: भी सभी औजारों के साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन और सिलेंडर से लैस है ये टीम। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडोस की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को पैदल शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र यात्रा से पहले उत्साह में भक्त। बालटाल बेस कैंप पहुंचने से पहले राम मन में अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत, भक्तों ने लगाया जयकारे। जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों तीर्थ यात्रियों के लिए लगाए लंगर। शादीपुरा ट्रांजिट कैंप पर भी अमरनाथ यात्रियों का फूलमाला से स्वागत किया गया, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा। भक्तों की अगुवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर रहे मौजूद, यात्रा के सुरक्षित शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से सुखद होने की शुभकामनाएं। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भक्तों का जोश बरकरार। अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। फिलहाल बाबा केदार के धाम में बारिश में भी दर्शन करने के लिए यात्रियों की लगी हुई है लाइन। मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुसार यात्रा का किया जा रहा है संचालन। चमोली जनपद में बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग बंद, सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन का फैसला। पहाड़ों में मानसून ने दी दस्तक, पहाड़ों में बढ़ती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा सुहाना, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। रुद्रप्रयाग तूफान पर अलकनंदा नदी, लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर। बारिश के बाद प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा यात्रा करने के लिए सलाह दे रहा है। पहली बारिश में बद्रीनाथ मार्ग गुलाब कोटी में बंद होने से यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। बारिश के बाद कांगड़ा की वादियां हुई और भी हसीन, सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे पर्यटक। खूबसूरत वादियों ने बढ़ाया आकर्षण, सुहाने मौसम को देखते हुए पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। लगातार बारिश के कारण मुस्तैद हुआ प्रशासन, निर्माण स्थलों से मलबा हटाने के लिए NHAI की विशेष टीम तैनात। सुहाने मौसम के साथ सतर्कता का संदेश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मॉनसून के बीच सुरक्षा पहली प्राथमिकता, संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रशासन की लगातार पैनी नजर। गुजरात के गीर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के बोटाद जिले में जबरदस्त बरसात, मानसून की दस्तक के साथ ही गिर गया तापमान। गुजरात में अगले एक हफ्ते तक के लिए मध्यम से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। भुवनेश्वर में हुई जबरदस्त बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। हुगली में भी जमकर बरसे बदरा, जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। बागेश्वर में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई, मॉनसून आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को परखा गया। ड्रिल में बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी परिस्थितियों से रेस्क्यू ऑपरेशन का परीक्षण किया गया। टिहरी गढ़वाल में जी राम जी योजना का शुभारंभ हुआ, योजना के तहत श्रमिकों को जब अब 125 दिन रोजगार और 300 प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। झारखंड कैबिनेट ने RIMS 2 को हेमंत सरकार ने दी मंजूरी। 30 जुलाई को आ सकता है नीट एग्जाम का रिजल्ट, NTA सूत्रों के हवाले से खबर। हाल ही में बच्चों ने अपने स्कूल टीचर को याद की और यादगार विदाई दी, रिटायर होने पर साफा बांध कर सज्जदा जी घोड़े पर बिठाया गया। बच्चों समेत पूरे स्कूल प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के बीच टीचर को विदा किया। पंजाब के मोगा जिले में एक टीचर के लगन बनी चर्चा का मुख्य विषय, पिछले 4 सालों से एक ही महिला टीचर संभाल रहा है पूरा सरकारी मिडिल स्कूल। जल्द ही कोलकाता में फिर सुनाई देगी मशहूर ट्राम की घंटी, राज्य सरकार ने लगभग 70 पुराने रूटों पर फिर से ट्राम सेवा बहाल करने का ऐलान कर दिया। पहले चरण में मौजूद रूटों का किया जाएगा नवीनीकरण, ऑस्ट्रेलिया और पेरिस के मॉडल से प्रेरित होकर आधुनिक होगा सफर। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, भारत और जापान ने अपने पहला रक्षा सह विकास समझौता किया। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर जताई सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को छोटी बहन बताया। जवाब में ताकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी को भाई कहा। इंडिया जापान बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जापान की मदद से देश में लगेंगे 1000 फर्टिलाइजर कारखाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में उड़ान स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। प्रदेश में लगातार 7वें वर्ष में बिजली की दरों में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। भारतीय नौसेना का एक और बड़ी उपलब्धि, नाम युद्धपोत INS त्रिकंद ने आदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। उधम सिंह नगर में आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन की मॉक ड्रिल। 5 लोगों के डेमो रेस्क्यू में एक बहती हुई कार के साथ साथ आपदा से संबंधित तमाम अभ्यास किए गए। कल बड़े पर्दे पर छाएगा सुपरस्टार्स का जलवा। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्पाय थ्रिलर फिल्म अल्फा होने जा रही है रिलीज। आलिया भट्ट, शर्वरी बाग और बॉबी देओल नजर आएंगे। OTT की महारानी हुमा कुरैशी भी अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार। बेबी के किरदार में नजर आएंगी हुमा कुरैशी, एक दिव्यांग हिट वुमन का किरदार निभा रही हुमा। अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू का एक और रगाना अल्फा क्यों रिलीज हुआ। फिल्म नागबंदम भी पैन इंडिया रिलीज करने के लिए तैयार। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। साउथ के ऑडियंस के लिए फिल्मी फ्राइडे लेकर आ रहा है महेश बाबू का प्रोडक्शन में बनी फिल्म राव बहादुर। OTT पर भी मिलेगा एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज। प्रीतम एंड पेड्रो के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। गोवा के पुलिस ऑफिसर पेड्रो के इर्द गिर्द घूमती है यह फिल्म। सोनी लिप पर रिलीज होने जा रही है मलयालम की पहली म्यूजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म करक्कम। सनी देओल की बहुचर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 पर बॉबी देओल का भावुक पोस्ट, लिखा आप सबसे बेहतरीन भैया। अपकमिंग फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का टीजर हुआ जारी, प्यार धोखा और खौफनाक रहस्य। मराठी फिल्म खशाबा का दमदार टीजर आउट हुआ, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता है। मच अवेटेड पंजाबी फिल्म दस्तार का धमाकेदार ट्रेलर हुआ जारी, पंजाब के गौरव, साहस, बलिदान और पहचान की कहानी। कपिल शर्मा नीतू सिंह स्टारर दादी की शादी OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का किया उद्घाटन, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम का समर्पण। KKR के सह मालिक शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट साझा, लिखा जो एक सपना था वो आज हकीकत बन गया। कैलिफोर्निया के पोमोना में लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड का पारंपरिक पूजा पाठ के साथ अनावरण किया गया। पूजा में KKR समूह के CEO वैंकी मैसूर शामिल। ICC चेयरपर्सन जय शाह ने शाहरुख खान को दी बधाई, शाहरुख ने इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए जय शाह संजोग गुप्ता को शुक्रिया किया। T20 इंटरनेशनल्स में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बन गए अभिषेक शर्मा, अभिषेक ने 785 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के। इंग्लैंड के खिलाफ महज 20 गेंदों पर 50 पूरी करके इंग्लैंड में सबसे तेज T20 50 लगाने का भी रिकॉर्ड। इंग्लैंड में जाकर T20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए श्रेयस अय्यर, उन्होंने खेली 68 रनों की पारी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम। पहला टेस्ट गोल में 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा, वहीं पर दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त के बीच। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स से पहले सिल्वरस्टोन में दिखेगा अनोखा नजारा। लेगो ब्रिक्स से बनी छोटी कारों में परेड लैप करेंगे फॉर्मूला वन ड्राइवर। 28,000 से ज्यादा ब्रिक्स से बनी है ये खास लेगो कार। इन कारों पर लगे हैं टीमों की 2026 लिवरी और ड्राइवर नंबर। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेनिश खिलौना बनाने वाली कंपनी के बीच हुई है साझेदारी। पिछले साल मायामी में भी हुआ था इसी तरीके का शो, जहां पर ड्राइवरों ने हार्ड रॉक स्टेडियम के आर पार से ट्रैक पर लेगो से बनी 10 असली साइज की 2 सीटर इलेक्ट्रिक कारों में किया था ड्राइव। दुनिया भर में हीट वेव के बीच चीन के जिनहुआ में एक अनोखे छाता बना चर्चा का मुख्य विषय। धूप से बचाव के साथ पंखे और मिस्ट देता है। छाते के निचले हिस्से में लगी हुई है पानी की फुहार छोड़ने वाली बॉटल। गर्मी की लहरों का सामना कर रहे देशों में ऐसे छाते बहुत हो रहे हैं लोकप्रिय। व्यापारियों को मिल रहा है मौका। चीनी वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे छोटी लंबी पूंछ वाली पंक्षी प्रजाति बुयुक की खोज की। इस खोज के बाद डायनासोर काल की कई गुत्थियों से उठ सकता है पर्दा। लंदन में पहली बार एनिमेशन आर्ट की मेगा नीलामी। प्रॉप स्टोर 8-9 जुलाई को करेगा लाइव ऑक्शन। द सिम्पसन्स का ओरिजिनल सेल बनेगा स्टार लॉट। होमर, लेनी और कार्ल वाला सेल होगा नीला। ड्रैगन बॉल जी का सेल $19,000 से ज्यादा कीमत में बिक सकता है। एलिस एंड वंडरलैंड की आर्ट का भी ऑक्शन लगा है। किकीस डिलीवरी सर्विस की सेल भी शामिल। आज से 5 जुलाई तक फ्री पब्लिक एग्जीबिशन। 8 जुलाई को पहले दिन वेस्टर्न एनिमेशन की होगी नीलामी। नॉर्थ मैसेडोनिया की कंपनी ने शुरू की अनोखी पहल। पुरानी फुटबॉल जर्सी से बन रहे हैं बैग और टोपी। स्पोर्ट्स वेयर का कचरा अब बन रहा है फैशन। डच पार्टनर FC88 क्लबों में जुटाता है पुरानी जर्सियां। फीफा वर्ल्ड कप से 2 करोड़ टेक्सटाइल वेस्ट का अनुमान। हर महीने बनते हैं 3,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स। बैग, टोपी और एक्सेसरीज शामिल। पर्यावरण बचाने की मिसाल बनी डेपाकॉन। बेकार कपड़ों को मिला नया बाजार। फीफा वर्ल्ड कप के जोश में मिस्रा में झंडों की बढ़ी खूब डिमांड। वर्ल्ड कप थीम से सज रहे हैं कैफे और रेस्टोरेंट्स। जर्सी और झंडों की खूब डिमांड। झंडों से मिस्र बाजार में दिख रहा है वर्ल्ड कप का रंग। फीफा वर्ल्ड कप से शंघाई के कंज्यूमर इकोनॉमी को मिली है रफ्तार। फुटबॉल के क्रेज ने बढ़ा स्थानीय कारोबार। वर्ल्ड कप की थीम पर सजे बाजार और रेस्टोरेंट्स। शहर बना फुटबॉल फैंस का नया ठिकाना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
0: इस वक्त आम का सीजन चल रहा है। कई किस्मों के आम आपको बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कई फल की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली आए भी हैं, तो चलिए आपको चितरंजन पार्क लिए चलते हैं, जहां पर मीठे और रसीले आमों की यह खुशबू सीआर पार्क में आपको महसूस होगी, क्योंकि यहां चल रहा है मैंगो फेस्टिवल, जिसे बंगाल सरकार ने आयोजित किया है। इस फेस्टिवल में आप अगर आएंगे तो आपको अलग अलग तरीके आमों को चखने का मौका मिलेगा, उन्हें खरीदने का मौका मिलेगा।
4: आमों की रसीली मिठास और उनकी भीनी भीनी खुशबू जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। मीठे और रसीले आमों की ये खुशबू इन दिनों दिल्ली के चितरंजन पार्क में बिखरी है, जहां पश्चिम बंगाल के खास और रसीले आमों का मेला लगा है। यहां मालदा से लेकर लंगड़ा और बंगापल्ली आम तक इस मैंगो फेस्टिवल में मौजूद हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल मैंगो फेस्टिवल और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया है।
5: वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया कराया गया है और यहां पर 12 प्रकार के पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले आमों के वैरायटीज प्रदर्शित किए गए हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अमरपाली नाम से आपका ये ब्रांड है और इसमें आम रखा गया है, अमरपाली नाम से है। फिर ये मालदा लंगरा नाम करके, लंगरा नाम से आपका ये आम है, उसकी भी ये यहाँ पर रखा गया है। पहली बार चितरंजन पार्क में ये आयोजन हो रहा है, इससे पहले दिल्ली के जनपथ में होता था। चूंकि चितरंजन पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल से आने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो रहा है और उनका रिस्पॉन्स काफी मिल रहा है।
4: इस मेले में कदम रखते ही आपको बंगाल के बागानों की ताजगी का एहसास होगा। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 अलग अलग किस्मों के मशहूर बंगाली आम मौजूद हैं। हिमसागर से लेकर लंगड़ा, लक्ष्मण भोग और फाजली जैसे खास आमों की महक से पूरा मेला ही गुलजार है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच भी रहे हैं और अपनी मन पसंद आमों की खूब खरीदारी कर रहे हैं।
6: देखिए, मैंगो फेस्टिवल में इसलिए आया हूँ, पर्टिकुलरली सारी मैंगो जो है पश्चिम बंगाल से आया है, मैं भी पश्चिम बंगाल की है, बचपन मेरा उधर ही बीता, हर मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है मेरा घर, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो मालदा का जो फजली है, ये फजली है देखने में, कोई इसमें देखने में कोई खुशबू आता नहीं, लेकिन खाने में ना अजीब से अलग सेपरेट खुशबू आता है।
4: आमों की मिठास के साथ साथ मेले में बंगाल के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबार से जुड़े बेहतरीन आइटम्स भी दिल्ली वालों का मन मोह ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मैंगो मेले में खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने मेले का मुआयना किया और बंगाल के स्वादिष्ट आमों का खूब लुत्फ भी उठाया। तो अगर आप भी आमों के शौकीन हैं और अपने आम के जायके में कुछ खास मिठास घोलना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए दिल्ली के सीआर पार्क, जहां 5 जुलाई तक बंगाल के आमों की ये खुशबू कुछ इसी तरह बिखरी रहेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: कल से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु, बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी, पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से एक साथ हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया, देश में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुई कई समझौते, AI और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर करके लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है आज बृहस्पति और बृहस्पति की वजह से होने वाली बीमारियां, उसके समाधान। आपको बताएंगे कि अगर किसी कारणवश आपकी कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ हो जाता है, वो आपको बीमारियां देता है, उससे आप निदान पाना चाहते हैं तो कौन कौन से समाधान, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। विस्तार से पंडित जी इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपकी बेटी है, कन्या संतान है और उसके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो हर बृहस्पतिवार शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करें और अपनी बेटी के बेहतर वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें, लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 3 जुलाई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 11:46 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी, बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसकी जीवन में भूमिका क्या है वो भी जानेंगे, इसकी वजह से बीमारियां कौन सी होती हैं उसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से हम पूछेंगे, उसके जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी यही सवाल है कि कौन है बृहस्पति, इसकी हमारे जीवन में कितनी खास और कितनी अहम भूमिका है।
1: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह की वजह से जीवन में कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और इन बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं, मंत्रणा करने वाला, सलाह देने वाला ग्रह माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण यानी सोना, वित्त और कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और आपके संस्कार, ये बृहस्पति नियंत्रित करते हैं। शरीर में पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, मेदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को निर्धारित करते हैं। बृहस्पति आपके फैट सेल्स का स्वामी है, इसीलिए बृहस्पति की वजह से व्यक्ति का मोटापा घटता है और बढ़ता है। 5 में बृहस्पति आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए इनका प्रभाव बहुत व्यापक और बहुत विराट है। महिलाओं के जीवन में उनके विवाह की और उनके खुशियों की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति के द्वारा तय होती है। आपके जीवन में जो शुभता है, जो ईश्वर की कृपा है, जो आपके अंदर के संस्कार हैं, वो बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में आते हैं।
0: चलिए बृहस्पति से जुड़े हुए और भी प्रश्न पंडित जी से जानेंगे, उसके जवाब भी पंडित जी हमें देंगे। लेकिन अब बारी आती है राशिफल पर आने की, और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से पूछ लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, आपसे सवाल यह है कि क्या बृहस्पति का मोटापे से कोई संबंध है? ऐसा है कि बृहस्पति आपको मोटापा देता है, अगर देता है तो उसको उसमें सुधार करने के लिए, उससे दूर होने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आप बताएंगे?
1: देखिए, फैट सेल्स जो आपके शरीर में हैं, जो आपका मोटापा है, मैदा है, ये बृहस्पति से संबंध रखता है। तो मोटापा बृहस्पति कैसे पैदा करते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं? शरीर में वसा को, फैट को संचित करने की क्षमता बृहस्पति के पास होती है। जब बृहस्पति लग्न को या लग्न के स्वामी को प्रभावित करता है तो मोटापा बढ़ता है। लग्नेश के नक्षत्र में या कुंडली के वाइटल नक्षत्र में बैठेगा तो भी आपका मोटापा बढ़ेगा। अगर बृहस्पति कमजोर है तो खाने की गलत आदत से मोटापा बढ़ जाता है, और अगर लग्न के आसपास है तो अनुवांशिक कारणों से, जेनेटिक कारणों से मोटापा बढ़ जाता है। बृहस्पति पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, निगेटिव इम्पैक्ट हो, तो बीमारी से व्यक्ति मोटा हो जाता है, जैसे थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। अब अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो आप डॉक्टर से तो संपर्क करेंगे ही, कुछ उपाय भी करेंगे। एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा। महीने में दो एकादशी आती है, लिक्विड लेकर के एकादशी का उपवास रखिए। खाने में नींबू और दही जरूर शामिल करिए। रोज सुबह और शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। अगर आपकी टेंडेंसी मोटापे की है, आप जल्दी मोटे होने वाले श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो पुखराज मत पहनिएगा। जिनकी मोटापे की टेंडेंसी होती है, अगर वो पीला पुखराज पहने तो उनका मोटापा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है।
0: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हैं और कर्क सिंह और कन्या वालों के बारे में आपको जानकारी देंगे पंडित जी कि इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। खान पान में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को बढ़ाते हैं, आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको ही सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से हमारे शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहले दर्शक का सवाल कौन सा है वो जानते हैं
1: जी। आज का पहला प्रश्न शीला जी ने हमें लिखा है और शीला जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 13 जनवरी 2004, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है पुणे। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब मेरा बेटा आगे विदेश जा कर के पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या बेटे को विदेश भेजना उचित रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। शीला जी, आपके पुत्र की जो कुंडली है और जो उनकी दशा चल रही है उस दशा के हिसाब से अभी उनको विदेश भेजना बहुत उचित नहीं है। आगे वो जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हैं अगर वो भारत में ही कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी विदेश भेजने की 2028 तक मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। पढ़ाई के बाद नौकरी करने के लिए 2028 के उपरांत ये विदेश जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इनका करियर अच्छा रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का रुख करते हैं कि कौन सा है दूसरे दर्शक का सवाल, वो भी पंडित जी हमें जानकारी देंगे। पंडित जी
1: जी, अगला प्रश्न इशिता ने हमें लिखा है और इशिता हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। 24 मार्च 2000 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 11:05, जन्म स्थान है मुंबई। इशिता कह रही हैं कि मैं MBBS कर रही हूँ, आगे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन किस क्षेत्र में करना चाहिए, क्या सर्जरी के क्षेत्र में जाना मेरे लिए बेहतर होगा। इशिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सर्जरी में ही जाना चाहिए। जनरल सर्जरी के क्षेत्र में अगर आप जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे जरूरत पड़ने पर सुपर स्पेशलाइजेशन में भी जा सकती हैं। तो आपके लिए सर्जरी का क्षेत्र अच्छा है, उस क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकती हैं। एक माणिक्य बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को प्रातः अपने गले में धारण करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो आपको लाभ होगा।
0: अक्सर देखा गया है कि आप बाहर खाते हैं या किसी कारणवश आपका पाचन या डाइजेशन बहुत गड़बड़ रहता है, तो इसके वजह जो है वो बताई जाती है कि बृहस्पति का गड़बड़ होना। तो पंडित जी ये बताइए कि बृहस्पति का पाचन तंत्र या पेट से क्या संबंध है।
1: देखिए, आपके पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आर्गन है आपका लिवर, उसके बाद आपकी आंतें। तो आपके लीवर का, आपके पाचन तंत्र का सीधा संबंध होता है बृहस्पति के साथ। अगर फैटी लीवर की समस्या है आपको, आंख मूंद के समझ जाइए बृहस्पति अनुकूल नहीं है। भोजन के पचने की प्रक्रिया लीवर पे बहुत कनेक्टेड होती है ना, और ये प्रक्रिया बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है ऐसे लोग जल्दी जल्दी भोजन निगलते हैं, जिससे भोजन पच नहीं पाता। इसके अलावा व्यक्ति का रूटीन सही नहीं होता, कब खाता है, कब सोता है, कब जगता है, ये फिक्स नहीं होता, जो कमजोर पाचन का कारण बनता है। और खाने की आदत, खाने की चीजें, खाने का समय बेहतर नहीं होता तो व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है, पाचन कमजोर हो जाता है। बृहस्पति गड़बड़ है, आपके लीवर में प्रॉब्लम जरूर होगी, लीवर की दिक्कत आपको परेशान करेगी। डॉक्टर से परामर्श जरूर करिएगा, अगर लीवर में दिक्कत है या पाचन तंत्र में दिक्कत है तो डॉक्टर की बात मानिएगा और परहेज करिएगा। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा, और जहां तक हो सके दाल और अनाज थोड़ा कम खाइए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिएगा, रात में तांबे के गिलास में या जग में जल भर करके रखिएगा और सुबह उठ करके उसको घूंट घूंट करके पीजिएगा। एक सोने या पीतल का छल्ला बेहतर होगा, पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करिएगा, आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस आते हुए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है वो भी पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी, एक और प्रश्न है आपसे। अक्सर ये सुना गया है कि बृहस्पति की वजह से कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसे असाध्य रोग के पीछे भी क्या बृहस्पति ही वजह है, और अगर है तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
1: देखिए, जीवन में जो असाध्य बीमारियां हैं, जो हल नहीं हो पाती, जो सॉल्व नहीं हो पाती, जैसे कैंसर, इसके पीछे भी बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा और विशाल कर देता है। अक्सर कुंडली में जिस भाव में रहता है उस भाव को खराब कर देता है, और शरीर के जिस हिस्से में रहता है उसमें बड़ी और दीर्घकालिक लंबी चलने वाली बीमारियां देता है। कैंसर जैसे बड़े और असाध्य रोग के पीछे बृहस्पति होता है वक्री होने पर या कुंडली के छठे भाव में होने पर, ये कैंसर देने की स्थिति में आ जाता है। हालांकि इसमें राहु का सहयोग होना भी जरूरी माना जाता है, और बृहस्पति जब इतनी गंभीर और बड़ी बीमारी देता है तो कभी कभी इसका उपाय और निदान कर पाना बड़ा कठिन होता है, असंभव हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये संभावना है कि बृहस्पति की वजह से आपको कोई बड़ी और असाध्य बीमारी हो सकती है तो क्या उपाय करेंगे? हमेशा अपना आचरण और अपना स्वभाव ठीक रखेंगे, शिव जी या अपने गुरु की नियमित रूप से उपासना करिएगा, रोज सुबह और शाम या कम से कम सुबह के समय रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा, और अगर कोई ऐसा रोग हो गया है तो भगवान शिव या आपके गुरु ही आपकी रक्षा करेंगे, उनकी शरण में जाइए, और हर महीने में लगातार 6 महीने तक एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाइएगा, और अगर इस तरह की बड़ी और गंभीर बीमारी है तो भूल कर भी पीला पुखराज धारण मत करिएगा।
0: चलिए, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य फल में आज क्या है।
1: मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी आप ही दर्शकों का अगला सवाल। उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देती हूं कि आप भी कोई प्रश्न

0: कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूं अपनी नौकरी से, और उसके बाद से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर जीवन के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? कृष्ण कुमार जी, आपकी कुंडली में कोई ऐसी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। हाँ, इतना जरूर है कि रिटायरमेंट के बाद थोड़ा खाली हैं, मन परेशान है, चिंता करते हैं, और इस वजह से आप बीमार पड़ गए हैं, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आप लोगों को पढ़ाएं, एजुकेशन का, शिक्षा का काम करें, या खाने पीने की चीज़ों का, फलों सब्जियों का कोई व्यापार करें, तो उसमें आपको बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। उस डायरेक्शन में आप विचार कर सकते हैं। कुछ काम करिए, कुछ एक्टिव रहिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप बिल्कुल ठीक होंगे।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, 3 जुलाई को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 3 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी आपको जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या काम करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं बल्कि हिंदी कैलेंडर की तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। फिर भी अगर आप जन्मदिन तारीख के हिसाब से भी मनाते हैं तो भी अपने जन्मदिन पर धर्म स्थान पर मंदिर जाकर प्रार्थना करें, और अपने जन्मदिन पर कोई न कोई पौधा जरूर लगाएं और अन्न वस्त्र का निर्धन व्यक्ति को दान करें।
1: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 3 जुलाई 2026 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान

0: समय कैसा चल रहा है? आज की गुडलक राशि है वृष राशि। इस समय पारिवारिक जीवन और रिश्तों का ध्यान रखिए। कोई भी बड़ा निर्णय, चाहे संपत्ति का हो, नौकरी का हो, विवाह का हो, उसको लेने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए।
1: चलिए, तमाम उपाय और तमाम जानकारियां तो पंडित जी ने आज के शो से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है, वो बता दीजिए।
0: जी, आज महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप पत्नी हैं और आपका तालमेल पति के साथ नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगी। रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए प्रातःकाल। सुबह और शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः का जप करिए और शुक्रवार को देवी के किसी भी स्वरूप को, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, इनको सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। निरंतर 3 महीने ये उपाय करें, पति के साथ आपका तालमेल बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं। आप देखते रहिए जीएनटी।
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you and prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: बात करते हैं मानसून की। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। राजधानी में मानसून की दस्तक के साथ मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। कई दिनों तक उमस और चिपचिपी गर्मी झेलने के बाद सुबह हल्की बारिश से लोगों की उमस और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत उनको जरूर मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।

0: मानसूनी बादलों की आवाजाही से पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिन क्षेत्रों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, वहां भी प्री मानसून की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून अब उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है और गुड न्यूज ये कि मानसून ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है और पिछले 4-5 दिनों से जिस उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, उससे आज सुबह बारिश की फुहारों से राहत मिल गई है।
1: लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली NCR में मानसून ने 5 दिन देरी के बाद से ही दस्तक दे दी है। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली और तापमान की अगर बात करें तो तापमान में भी कमी जो है वो देखी गई है। मौसम विभाग का पहले से अनुमान था कि जल्द ही दिल्ली NCR में भी मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है। हालांकि 27 जून की तारीख थी, लेकिन 5 दिन बाद यानी आज 2 जुलाई को जो है मानसून दस्तक दिया है और उसके बाद का जो नजारा है वो वाकई में लोगों को राहत दे रहा है। सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हुई। हालांकि मौसम अभी साफ नजर आ रहा है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। कहां से आए आप ये बताइए?
2: हम वेस्ट बंगाल मालदा से आए हैं।
1: अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए, वहां पर भी बारिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है?
2: दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है। अभी बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, मौसम बहुत खुश मिजाज है।
3: इस मौसम से घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पसीना नहीं निकलेगा, घूमने में फील अच्छा लगेगा।
0: दिल्ली NCR में बादलों का जमावड़ा देखने को मिला और इसके बाद मौसम विभाग ने भी पुष्टि कर दी कि अब तक जो हलचल प्री मानसून के तौर पर देखी जा रही थी वो अब पूरी तरह मानसून है। दिल्ली में मानसून इस बार अपनी तय तारीख से 5 दिन देरी से पहुंचा है। सामान्य तौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इस साल ये 2 जुलाई को पहुंचा है। मौसम विभाग की माने तो साल 2021 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जुलाई महीने में दिल्ली पहुंचा है।
4: देखिए, ये जो मॉनसून का है बारिश, ये भी इसके जो एसोसिएटेड वेदर पैरामीटर्स हैं, फीचर्स होते हैं, उसके अनुसार वर्षा देखने को मिलती है। अभी फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई हैं जिसकी वजह से वर्षा गतिविधि अच्छी देखने को मिल रही है। आगे कैसा इसका वॉल्यूशन होगा उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें भारतवर्ष के लिए, तो एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी और उसके आसपास का जो उत्तरी उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित है, जिसकी वजह से पूरी भारत में वर्षा गतिविधि बढ़ रही है। साथ साथ में जो फेवरेबल कंडीशंस की जैसे जो हमारा पश्चिमी भारत तटीय क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर वर्षा गतिविधि बढ़ रही है। जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर वर्षा गतिविधि अच्छी रहने की संभावना है इस सप्ताह के दौरान।
0: फिलहाल राहत की बात ये कि आज सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और बारिश की वजह से लोगों को उमस से भी राहत मिली है। हालांकि अनुमान यही है कि इस बार मानसून के दौरान कुल बारिश सामान्य से कम रह सकती है।
4: देखिए, अभी हमारा अगर आगे के अनुमान के बारे में बात करें, पूर्वानुमान के बारे में दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली, तो अगले 7 दिनों के दौरान यानी एक सप्ताह के दौरान जो जनरल क्लाउडी स्काई कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी पूरे सप्ताह कंटिन्यू रह सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान जो है वर्षा गति थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिनों के दौरान, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट भी इशू किया गया है।
0: दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हुए ये मानसून केरलम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए अब दिल्ली पहुंचा है। इसके बाद ये उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। 3 दिन की देरी से केरलम से शुरू हुआ मानसून अब देश के 90% से ज्यादा हिस्से को कवर कर चुका है। बारिश की ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब मानसून की मेहरबानी हुई है तो जमकर बादल बरसने लगे। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से मुंबई के तमाम इलाके भीगे हुए हैं। इस बारिश ने मुंबई के लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत जो दी है। मौसम के इस बदले मिजाज से मुंबई के लोगों को एक बार फिर मौसम का लुत्फ उठाने का मौका भी मिला है।
5: मैं इस समय मौजूद हूं पवई झील के दूसरे किनारे पर, जहां की तस्वीरें कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये झरना है और बहुत ज्यादा फेमस है पवई लेक के नाम से। यहां पर वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन आज की जो तस्वीर है मुझे नहीं लगता है कि यहाँ परमिशन मिली होगी कि लोग भीतर की भी तरफ जाएं। आप देखें कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है इस समय ये पवई लेक, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पवई झील का ये दूसरी तरफ का किनारा है और ऊपर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांध है, और उस बांध पर आप देखें छोटे छोटे बोट रखे हुए हैं, छोटी छोटी स्टॉले लगाई गई हैं, जहां पर पवई झील कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं मछली पकड़ने का। फिशिंग यहां पर चल रही है और बहुत ही सुंदर नजारा उनकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो भी बहुत ही शानदार रहा है। तो ये पवई झील से सटा एक किनारा है। जैसे ही बारिश जो बहुत अभी समय मूसलाधार बरस रही है उसकी गति धीमी होगी, वैसे ही गिरने वाला जो झरना है उसकी भी गति धीमी होगी और पानी थोड़े कम स्पीड से यहाँ पर बहेगा, तब लोग यहाँ भीतर जाने लोगों को दिया जाएगा।
0: मुंबई में मॉनसून की तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मुंबई में बारिश में कुछ कमी भी आई जिससे आवागमन फिर से बहाल हो गया है। मुंबई में हो रही बारिश से उपजे हालात की वानगी वहां से सामने आई ये तस्वीरें और वीडियो बता रही है।
6: अब तकरीबन जो बरसात का जो मौसम है वो तो अगले एक डेढ़ दो महीने तक यूं ही बरसात होती रहेगी, लेकिन अगर समस्या ना हो तो मुंबई वासी इस मौसम को पूरा तरीके से एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज़ बरसात नहीं होने से जो अंधेरी सबवे जो सबसे पहले मुंबई में भर जाता है अभी इसमें आवाजाही चल रही है। और इसी तरीके से हालांकि सड़क पे हाईवे पे भी हमने देखा ट्रैफिक थोड़ा स्लो है क्योंकि बरसात तो हो रही है इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लोग अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे।
0: वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी दिन में मुंबई से सटे अरब सागर में हाई टाइड का भी अलर्ट दिया है, लिहाजा मरीन ड्राइव पर तमाम लोग समंदर में उठ रही ऊंची लहरों के नजारे देखने के लिए जमा दिखे।
6: मौसम अच्छा है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा रिलीफ आप सब देख लीजिए। अगर मैं आपको दिखा दूं इतनी भारी तादाद में दरअसल लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं समुद्र किनारे, हाई टाइड में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको इनफैक्ट पुलिस के जो अधिकारी अगर आप देखें वो येलो सूट में जगह जगह पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच के बोल रहे हैं लोगों को समुद्र किनारे से हटने के लिए, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं आप देख लीजिए। काफी सारे लोग खासतौर से रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर है और कोशिश इनकी यही है कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक वीडियोस के साथ वो अपने वीडियोस बना लें।
0: मरीन ड्राइव ही नहीं कुछ ऐसा ही नज़ारा बांद्रा बैंड स्टैंड पर भी दिखा।
7: इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड इलाके पे है, मुंबई में हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। वहाँ जहाँ पर तीन दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है आज 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी हाई टाइड देखने के लिए मिल रही है। ट्रेनें सेंट्रल लेवल पर स्लो चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह से बारिश होने का अंदाजा मुंबई पे दिया गया।
0: मुंबई और दिल्ली ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और श्रद्धालु इसी बारिश के बीच बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ में बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। कुल मिलाकर मौसम का जो मिजाज अभी देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए अनुमान तो यही है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम की ये मेहरबानी बनी रहेगी और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना फिर से करना नहीं पड़ेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख, धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: इस वक्त आम का सीजन चल रहा है, कई किस्मों के आम आपको बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कई फल की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली आए भी हैं तो चलिए आपको चितरंजन पार्क लिए चलते हैं, जहां पर मीठे और रसीले आमों की यह खुशबू सीआर पार्क में आपको महसूस होगी, क्योंकि यहां चल रहा है मैंगो फेस्टिवल जिसे बंगाल सरकार ने आयोजित किया है। इस फेस्टिवल में आप अगर आएंगे तो आपको अलग अलग तरह के आमों को चखने का मौका मिलेगा, उन्हें खरीदने का मौका मिलेगा।
0: आमों की रसीली मिठास और उनकी भीनी भीनी खुशबू जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। मीठे और रसीले आमों की ये खुशबू इन दिनों दिल्ली के चितरंजन पार्क में बिखरी है, जहां पश्चिम बंगाल के खास और रसीले आमों का मेला लगा है। यहां मालदा से लेकर लंगड़ा और बंगापल्ली आम तक इस मैंगो फेस्टिवल में मौजूद हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल मैंगो फेस्टिवल और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया है।
9: वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया कराया गया है और यहाँ पर 12 प्रकार के पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले आमों के वैराइटीज प्रदर्शित किए गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये अमरपाली नाम से आपका ये ब्रांड है और इसमें आम रखा गया है, अम्रपाली नाम से है, फिर ये मालदा लंगरा नाम करके, लंगरा नाम से आपका ये आम है, उसकी भी ये यहाँ पर रखा गया है। पहली बार चितरंजन पार्क में ये आयोजन हो रहा है, इससे पहले दिल्ली के जनपथ में होता था। चूंकि चितरंजन पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल से आने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो रहा है और उनका रिस्पॉन्स काफी मिल रहा है।
0: इस मेले में कदम रखते ही आपको बंगाल के बागानों की ताजगी का एहसास होगा। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 अलग अलग किस्मों के मशहूर बंगाली आम मौजूद हैं। हिमसागर से लेकर लंगड़ा, लक्ष्मण भोग और फाजली जैसे खास आमों की महक से पूरा मेला ही गुलजार है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच भी रहे हैं और अपने मन पसंद आमों की खूब खरीदारी कर रहे हैं।
10: देखिए, मैंगो फेस्टिवल में इसलिए आया हूँ, पर्टिकुलरली सारी मैंगो जो है पश्चिम बंगाल से आया है, मैं भी पश्चिम बंगाल की है, बचपन मेरा उधर ही बीता और मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है मेरा घर, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो मालदा का जो फजली है, ये फजली है देखने, कोई इसमें देखने में कोई खुशबू आता नहीं, लेकिन खाने में ना अजीब से अलग सेपरेट खुशबू आता है।
0: आमों की मिठास के साथ साथ मेले में बंगाल के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबार से जुड़े बेहतरीन आइटम्स भी दिल्ली वालों का मन मोह ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मैंगो मेले में खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने मेले का मुआयना किया और बंगाल के स्वादिष्ट आमों का खूब लुत्फ भी उठाया। तो अगर आप भी आमों के शौकीन हैं और अपने आम के जायके में कुछ खास मिठास घोलना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए दिल्ली के सीआर पार्क, जहां 5 जुलाई तक बंगाल के आमों की ये खुशबू कुछ इसी तरह बिखरी रहेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये हो गया है कि ठंड से बचने की जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगत से भिड़ रहा है। इसलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यूरोप में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ गया है।

0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: Tune in's how to A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
8: La Que Buena.
7: ESPN Radio.
9: We know LeBron has to be the best player on the planet to
7: have. The Daily.
10: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। इस वक्त हजारों की तादाद में शिवभक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में मौजूद हैं और कुछ घंटों बाद ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। इसलिए देखिए, घाटी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवभक्त उत्साह के साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहलगाम में टेंट सिटी की भव्यता भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बेस कैंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस प्रकार से किए गए हैं वो दिखाएंगे। शिव भक्तों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ ने इस साल भी महिला कमांडोज की तैनाती की है। उनकी क्या भूमिका रहने जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप के लिए निकला और शुक्रवार की सुबह सभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था यहां पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। गुड न्यूज टुडे के साथ आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। गुड न्यूज टुडे की हर एक तस्वीर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो आप देखते रहिए पवित्र अमरनाथ की यात्रा गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से भारी सुरक्षा के बीच शिव भक्त निकलने वाले हैं। पहलगाम के नूनवान कैंप पर इस वक्त उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
0: सुबह 5 बजे के आसपास पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर बालटाल बेस कैंप पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लंगर और भंडारे लगे हुए हैं। वहां पर लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरा जो रास्ता जाता है, ये बालटाल से डोमेल की तरफ रास्ता जाता है, और यहां की तस्वीरें आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। और कल से जो यात्रा शुरू हो रही है सुबह से, उस यात्रा के लिए यहां से निकलेंगे। इनके लिए यहां पर अलग अलग जगहों पर लंगर की भी व्यवस्था की गई है। आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बालटाल समिति है, इसमें आप देखिए कि शिव भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहां पर सारे लोग ये लंगर खा रहे हैं। यहां इसी तरीके से जितने भी लाइन से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब जगह अलग अलग राज्यों से आकर के इसी तरीके के लंगर लगाए गए हैं, जिससे कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो।
2: ये जो भंडारा है बटाला पंजाब का भंडारा है, और ये 27वां भंडारा इस साल लगाया गया है बालटाल में। हमारे देश के सभी राज्यों से जो शिव भक्त आते हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए, जैसे साउथ इंडियन, पंजाबी, हर तरह का खाना हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
0: यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान दिए गए हैं, और उन पकवान को खा करके लोग यहाँ अभी रात में यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से यात्रा करेंगे, जो कि 13 से 14 किलोमीटर या तो पैदल जाएंगे या खच्चर के जरिए पालकी से ये तमाम लोग जाएंगे।
1: देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ठहरने, लंगर, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। देखिए पहलगाम से हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये सिर्फ उद्घोष नहीं, विश्वास है। ये केवल नारी नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। किसी की आंखों में दर्शन की चाह है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना लेकर निकला है, तो कोई जीवन की परेशानियों का समाधान लेने आया है। सभी चेहरों पर मुस्कान, दिल में श्रद्धा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी का। हिमालय की वादियाँ, हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बालटाल के बेस कैंप पर शिव भक्तों का जमावड़ा, ये किसी पर्यटन स्थल की हलचल नहीं बल्कि अटूट विश्वास की तस्वीर है।
1: बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूं और यहां पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहां पर पहुंचा हुआ है वो किस तरीके से यहां पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहां पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहां पर नारे लगा रहे हैं। लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहां पर पहुंचे। देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहां से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए सीधे यहां पर पहुंच रहे हैं।
2: प्राणनादम विभुम विश्वनादम जगन्नाथ।

0: శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
1: బోల శంకర్ కీ పూజా కరో జాన చరణో మే
2: देश के अलग अलग राज्यों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बसों में सवार होकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला। श्रीनगर यात्री निवास से भी शिव भक्त बेस कैंप पहुंच रहे हैं और घाटी बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के कंधे पर बैग, तो कोई त्रिशूल लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हर पड़ाव पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है और स्थानीय लोग फूलमाला से भव्य स्वागत कर रहे हैं।
3: हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। ये इस्बन जो है मेरे हाथ में, ये हम जलाते हैं, ये हमारे यहाँ कश्मीरी कल्चर में है। कोई बड़ा दिन त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बच्चा कभी डर जाता है, उसको भी ये हम नजर उतारते हैं इससे। तो जो ये है, ये दुल्हन को नजर उतारते हैं। वैसे ही हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हम इसी से करते हैं कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं फूलों से।
2: अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र अध्याय है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। बर्फ अपने आप शिवलिंग का आकार लेती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से यहाँ पहुँचकर पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की राह आसान नहीं होती। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और कठिन रास्ता हर कदम धैर्य की परीक्षा लेती है और यही कारण है कि इस यात्रा को केवल श्रद्धा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है।
4: अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार की तरफ से जगह जगह पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे अमरनाथ गुफा हो चाहे फिर अलग अलग पड़ाव हो, लेकिन प्रमुख बेस कैंप नूनवन और बालटल जो है वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। 20,000 से 25,000 श्रद्धालु वहां पर एक समय रुक सकते हैं। अगर कभी रास्ता खराब होता है या यात्रा रोक दी जाती है तो इन दो बेस कैंप्स पर विशेष तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है वो यात्रा। एक महिला भी हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए।
5: बेबी पद्मजा।
4: कहाँ से हैं आप?
5: एपी से।
4: आंध्र प्रदेश से।
5: आंध्र प्रदेश से।
4: यात्रा पहले कभी की आपने या पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं?
5: हाँ, पहली बार।
4: पहली बार जा रहे हैं?
5: हाँ।
4: तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में और यहाँ पहुँच कर क्या लग रहा है? तो आंध्र में के हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता क्या बड़ी है। अब चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम विवेकानंद है।
4: विवेकानंद, पहली बार यात्रा पे?
6: या पहली बार आ रहा हूं।
4: अभी आंध्र से?
6: आंध्र से। हम 20 लोग हैं इसी गाड़ी पे।
4: पहली बार। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में, क्यों दिन में इच्छा हुई कि आप भी जो है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे?
6: बाबा जी के बारे में तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, सो इस बार तो मेरा लक है, सो रजिस्ट्रेशन मिल गया, आ रहे हैं, बस इतने।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ। जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: बम बम बोले।
7: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
7: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
7: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
7: बम बम बोले।
5: बम बम बोले।
7: बम बम बोले।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री
5: अमरनाथ।
8: हर हर महादेव।
5: हर हर
4: तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही जयकारा है जो कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत इस कठिन यात्रा में देता है।
2: बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, जोश है, जुनून है, आगे यात्रा की कठिन चढ़ाई है। छोटी बड़ी चुनौतियों से भरा होगा रास्ता, लेकिन शिव भक्तों को भला इससे क्या वास्ता। मन में दर्शन की आस और ये उम्मीद कि लौटते समय उनके साथ होगा महादेव का आशीर्वाद। मन की शांति होगी जो जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होगी। बालटाल से अशरफानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप और पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। श्रद्धालुओं के काफिले के साथ बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल, फायर और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है।
2: आगे पीछे बख्तरबंद गाड़ियां, गाड़ियों में हथियारबंद मुस्तैद जवान। और इनके बीच गुजर रही बसों में बेफिक्र जयकारा लगाते शिव भक्त। यात्री निवास से जब श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप पहलगाम की ओर चला तो वादी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। हर जगह, हर मोड़ पर फूलों से, जयकारों से शिव भक्तों का भव्य स्वागत हुआ और पूरे एहतियात के साथ। सड़क किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सतर्क पुलिस टीम, पूरे सफर की निगरानी कर रहे सीआरपीएफ के जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा घेरा है वो अभेद है। ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और बालटाल बेस कैंप तक, जहां से पवित्र गुफा के लिए पहला जत्था शुक्रवार की सुबह निकलने वाला है,

0: है। तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहां पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम किए गए?
1: देखिए, यहां सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25,000 के लोग यहाँ रह सकते हैं।
0: इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
1: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री हैं जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है और जेएनके पुलिस के साथ सीआरपीएफ पूरा सुरक्षा देने के लिए।
2: इस साल अमरनाथ यात्रा लंबी है, इसीलिए ज्यादा तादाद में शिव भक्तों के आने की उम्मीद भी है और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कई लेवल की जांच के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा।

0: न सिर्फ बेस कैंप पर बल्कि पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर भी यात्रियों की सुविधा और हिफाजत का हर संभव इंतजाम है। सीआरपीएफ की न्याय हेल्प यू टीम खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई है।
1: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मियाई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
2: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
1: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती है, तो उनको कैसे आप बता दें?
3: सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया।
0: जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है वो छोटा सा इलाका यानी न्यूनवान अच्छी खासी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे जाएंगे। यात्रा शुरू करने से पहले यहीं 10 से 15,000 शिव भक्तों का ठिकाना होगा। इस टेंट सिटी में दुर्घटनाओं पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कहीं आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर की फायर फाइटिंग टीम भी मुस्तैद है।
1: फायर फाइटिंग करने वाली टीम यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसमें निपटना है, उसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थिति ये होती है कि अगर यहां पर सिलेंडर में या किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फायर फाइटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए हैं ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहां बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे यहां पर भंडारे हैं रविंदर जी और लंगर भी चलते हैं, उसमें किस तरीके से निपटा जा रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए?
4: मैं रविंदर शर्मा, शिव भक्ति सेवाटा, सरौनी दिल्ली से, और चांस की बात है कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाता हूं, लाइफ गार्ड बनाना हमारा ही है, और लास्ट ईयर भी यहां पर आग लग गई थी सात वाले भंडारे में तो उसको मैंने ही काबू किया था।
1: आप तस्वीरों में चारों तरफ देखेंगे कि यहां पर टेंट सिटी बना हुआ है और आग का खतरा काफी ज्यादा रहता है। कैंप से ही जो यात्रा है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाती है और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी कल से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेंड लोगों को किया जा रहा है कि अगर फायर की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान किस तरीके से निपटना है।
5: देखिए, अमरनाथ का रास्ता आसान नहीं होता। कठिन चढ़ाई के दौरान यात्रियों को सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मौसम अगर खराब हुआ तो उनको मदद की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। ये टीम जो है कैसे काम करेगी, देखिए रिपोर्ट।
1: टाल बेस कैंप से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लोग चढ़ते हैं तो उस दौरान उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है। ऐसे ही इन इलाकों में दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ जो उनका है वहां पर उनको लगाया गया है। इसके साथ ही पहलगाम रूट से भी एरिया उनका जो है वहां पर उनको रखा गया है। ये लोग इक्विप्ड हैं पहाड़ों पर किस तरीके से रेस्क्यू करना है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाके में लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान उनको दिक्कत ऑक्सीजन की हो जाती है या फिर मौसम यहाँ का कभी भी खराब हो जाता है, अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है तो उस दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, इनके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जिनके जरिए ये लोग लोगों की जान बचाते हैं। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है, इसको लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं, रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इस पोर्टेबल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कोई वहाँ पर घायल होता है, लैंडस्लाइड होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। करीब 21 टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको हर एक इलाके में तैनात किया गया है, जिससे कि इस पहाड़ी इलाके में जब भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम के जो मेंबर्स हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और कैसे इस पूरे इलाके में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई कैसे इनके द्वारा किया जाता है, किस तरीके से आप लोग पहुंचते हैं उस पूरे इलाके में, क्योंकि मौसम कभी भी यहां पर खराब हो जाता है।
6: बिल्कुल, मौसम कभी भी खराब हो जाता है और हम लोग एनडीआरएफ से ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर होते हैं, तो उसके अलावा हमारी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग इस बार और रिफ्रेशर के तौर पर कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ों का एरिया के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो गई है। पिछले साल भी हम लोगों ने रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसा कि हमको काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज भी किया गया है, और हमारे पास फर्स्ट एड के किट वगैरह हैं, सारे कुछ रोप रेस्क्यू के हैं, तो सारी चीज़ों को मिला करके हम जहाँ खबर मिलती है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं।
1: तो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है, और इसी के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: छो जाती ऐसी हर एक
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु, बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम, हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी, पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड, वीडियो शेयर करके लिखा नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ऐसे में यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो ऐसी आज दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मोहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे इस वीडियो की पड़ताल करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। क्या है इस वायरल दावे और वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: तेजी से वायरल हो रहा और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम का हालिया वीडियो बताते हुए लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम के हतनारा गांव में 25 जून की रात को मोहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब 2 दर्जन को वेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।

0: शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक काफी बड़ा सा ताजिया देखने को मिला, मतलब ये कि वायरल वीडियो मुहर्रम जुलूस का ही है। इसके बाद हमें वीडियो में नजर आ रहे एक ट्रैक्टर के नंबर प्लेट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे जूम करके ध्यान से देखा तो इस पर यूपी का नंबर प्लेट था। ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि ताजे के बिजली के तार से टकराने के बाद हुए हादसे का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं हादसे के पुराने वीडियो को कोई नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजे के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहां फैले करंट की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और YouTube चैनल पर मिला। यहां इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजिए में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजे के बिजली के तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज स्टूडियो।
0: बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार, एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए। डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो करीब 22 सेकंड का है जिसमें नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग घुस आए, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते

झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बलौठी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेरे हुए है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने लाना जरूरी था, तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा है। इस दौरान हमें ऐसा कई चीजें देखने को मिली जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्किमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पटना हाई स्कूल के गर्दनीबाग इलाके में ये घटना हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। YouTube वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे वायरल दुनिया की वायरल खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों पर आपने उन बच्चों को जरूर देखा होगा जो स्कूल जाने की उम्र में अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, वे सड़क पर खड़े होकर मेहनत से दो रोटी कमाने का काम करते हैं। हाल में ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे अपने पूरे शरीर पर गोल्डन पेंट लगाकर सड़क किनारे लिविंग स्टैचू बनकर खड़े हैं। वे अपने इसी हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे सिर से लेकर पैर तक गोल्डन कलर के पेंट में रंगे हुए हैं। तेज धूप होने के बावजूद भी वे बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहते हैं ताकि राह चलते लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते दिख रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। बच्चों की मेहनत और उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह दोनों बच्चों को पास के KFC रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बच्चों के सामने खाना आता है, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। महिला के छोटे से प्यार भरे कदम ने दोनों बच्चों को भावुक कर दिया और महिला की इस दरिया दिली ने वहाँ मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग कलाकार का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाने वाले इस कलाकार का हुनर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिना कुछ बोले सिर्फ ब्रश और रंगों के सहारे वे ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बड़े ही धैर्य और लगन से पेंटिंग बना रहे हैं। उनके आसपास कई खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई है जो उनकी बेहतरीन कला का परिचय देती है। राह चलते लोग भी रुककर उनकी कला को निहारते नजर आ रहे हैं। अमूमन भारतीय बच्चों को अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में बात करते देखना आम बात है, लेकिन जब केरलम की एक 14 साल की बच्ची फर्राटेदार कोरियन भाषा बोलने लगे तो हैरान होना लाजमी है। इस बच्ची की प्रतिभा को देखकर खुद एक कोरियाई कंटेंट क्रिएटर भी हक्का बक्का रह गई। यह वीडियो कोरियन कंटेंट क्रिएटर मिक्यूंग सॉन्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में अमीना जिस आत्मविश्वास के साथ कोरियन बोल रही है उसने मिक्यूंग को भी दंग कर दिया। अमीना सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि शानदार अंग्रेजी भी बोलती है।
6: ये मैं आज एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी है गोलू कुमार की।
5: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक बच्चे की बोर्ड की आंसर शीट वायरल हो रही है जिसमें उसने पेपर चेक करने वाले टीचर को घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं उसने एग्जाम में पास करने के लिए शायराना अंदाज में लिखा, कॉपी मेरी पहुँच गयी है गुरु के द्वार, 33 नंबर दे के इसे लगा दो पार।
6: अरे भाई साहब, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा।
5: बच्चे की ये कॉपी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल हो रही आंसर शीट किसी गोलू कुमार नाम के स्टूडेंट की है।
6: शॉट पे हेडशॉट थे मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे।
5: हैरत अंगेज बात यह है कि कॉपी में सवाल से जुड़े एक भी जवाब नहीं लिखे हैं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ पास करा देने की गुहार लगी है। ये गुहार भी कोई आम शब्दों में नहीं बल्कि मजेदार शायराना अंदाज में लगाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने आगे टीचर से पेज पलटने का अनुरोध किया है। अगले पेज के बीच प्लीज प्लीज प्लीज लिखा हुआ था, साथ ही 500-500 के नोट दिख रहे थे।
6: अबे भाई ये कितना क्या रख दिया है ये बंदे ने, 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया क्या ये बजरंग बली के नाम का, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
5: जब टीचर ने नोटों की गिनती की तो वो कुल 2100 निकले।
6: पैसा रख दिया है यहाँ पर, बताओ यार क्या करे इस बच्चे का।
5: जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वृंदावन से जुड़े एक खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक विदेशी महिला अपने भारतीय पति और अपने सहेलियों के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों, मुस्कुराते चेहरों और भक्ति से भरे माहौल ने इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय बना दिया है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। जापान के एक चिड़ियाघर से वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चिड़ियाघर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही थी। बाड़े में बंद असली शेरों के रिएक्शन ने इस ड्रिल को एक बेहद मजेदार कॉमेडी शो में बदल दिया। वीडियो में जापानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए शेर के भागने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को शेर की पोशाक पहनाकर भागे हुए शेर की भूमिका दी गई थी। ये वीडियो ऑनलाइन शेयर होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि इसके वायरल होने का कारण मॉक ड्रिल कम और बाड़े में बैठे असली शेरों के विचित्र प्रतिक्रियाएं थी, जो इस पूरे नाटक को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही नकली शेर ने भागने और खतरे का नाटक किया, बाड़े में मौजूद असली शेर भारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए और इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, वहीं कुछ ने शेरों के नजरिए से मजेदार बातें लिखी। प्रकृति कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। जिस टाइगर की गिनती जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में होती है, उसके सामने जब एक भालू तनकर खड़ा हुआ तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहीं भालू भी पूरी आक्रामकता के साथ उससे भिड़ा हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई इस मुठभेड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत टाइगर की चेस के साथ होती है, लेकिन यहाँ भालू डर कर भागने के बजाय टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके जीत की नींव वहीं पड़ जाती है, क्योंकि जो डर के सामने डरा नहीं, उसे आधी सक्सेस वहीं मिल जाती है। वैसे भालू टाइगर से डरा हुआ जरूर होता है, लेकिन उसने भागने के बजाय समस्या का सामना करना चुना होता है। ऐसे में टाइगर जब जंगल में उसके ठीक सामने बैठकर इत्मीनान करने लगता है, तब वह भी रुका हुआ होता है। मगर धीरे धीरे जब वह गौर करता है कि अब टाइगर आराम से बैठा हुआ है, तो आखिर में भालू भाग जाता है और वीडियो खत्म हो जाती है। इन दिनों एक गोरिला का वीडियो इंटरनेट पर अलग ही वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में गोरिला का ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो कोई इंसान किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हो। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो जापान के एक चिड़ियाघर का है, जहां कियोमासा नाम का 13 वर्षीय नर गोरिला अपने साथी के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ। बहस खत्म होने के बाद कियोमासा सीधे पिंजरे में बनी सीढ़ियों पर जाकर अकेला बैठ गया। इसके बाद उसका जो व्यवहार कैमरे में कैद हुआ, उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में कियोमासा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वे अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर दूर कहीं देखता रहता है, कभी सिर खुजलाता है तो कभी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे वह किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये हो गया है कि ठंड से बचने की जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगत से भिड़ रहा है। इसलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यूरोप में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ गया है।

0: गर्मी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पसीने चीन की फैक्ट्रियों में काम करने वालों के छूट रहे हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से चीन में बने इन एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। अभी यूरोप के केवल 20% घरों में एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने बाकी 80% लोगों को भी एसी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक कंपनी में कर्मचारी देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए न दीवार तोड़नी पड़ती है और न ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यूरोप में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। यूरोप में जिस तरह गर्मी का कहर बरपा है, उसने मौसम को लेकर यूरोप की सोच बदल डाली है। यहाँ के जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर लगाना जरूरी नहीं माना जाता था, वहाँ अब एसी और कूलिंग फैन के लिए मारामारी मची हुई है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पोर्टेबल एयर कंडीशनर और कूलिंग फैन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। स्टोर मैनेजर का कहना है कि हर ग्राहक एसी या पंखा खरीदना चाहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ रही है। दरअसल यूरोप की ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और उनमें स्प्लिट एसी लगाना आसान नहीं है। किराए के घरों में मकान मालिक की मंजूरी के साथ साथ यहाँ सख्त बिल्डिंग नियम और ऊंची लागत भी स्प्लिट एसी के लिए मुफीद नहीं है। ऐसे में पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिलहाल सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। एसी को लेकर यूरोप में जिस तरह की बेचैनी है, उसने एक बार फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चिंताओं को नए सिरे से सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। इस वक्त हजारों की तादाद में शिव भक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में मौजूद हैं और कुछ घंटों बाद ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। इसलिए देखिए, घाटी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त उत्साह के साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहलगाम में टेंट सिटी की भव्यता भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बेस कैंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस प्रकार से किए गए हैं वो दिखाएंगे। शिव भक्तों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ ने इस साल भी महिला कमांडोज की तैनाती की है। उनकी क्या भूमिका रहने जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप के लिए निकला और शुक्रवार की सुबह सभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की ये महाकवरेज गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था यहां पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। गुड न्यूज टुडे के साथ आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे की। हर एक तस्वीर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो आप देखते रहिए पवित्र अमरनाथ की यात्रा गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से भारी सुरक्षा के बीच भक्त निकलने वाले हैं। पहलगाम के नूनवान कैंप पर इस वक्त उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
0: सुबह 5 बजे के आसपास पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर बालटाल बेस कैंप पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लंगर और भंडारे लगे हुए हैं। वहां पर लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरा जो रास्ता जाता है, ये बालटाल से डोमेल की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ की तस्वीरें आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कल से जो यात्रा शुरू हो रही है सुबह से, उस यात्रा के लिए यहां से निकलेंगे। इनके लिए यहां पर अलग अलग जगहों पर लंगर की भी व्यवस्था की गई है। आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बालटाल समिति है, इसमें आप देखिए कि शिव भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहां पर सारे लोग ये लंगर खा रहे हैं। यहां इसी तरीके से जितने भी लाइन से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब जगह अलग अलग राज्यों से आकर के इसी तरीके के लंगर लगाए गए हैं, जिससे कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो।
2: ये जो भंडारा है, बटाला पंजाब का भंडारा है, और ये 27वां भंडारा इस साल लगाया गया है बालटाल में। हमारे देश के सभी राज्यों से जो शिव भक्त आते हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए, जैसे साउथ इंडियन, पंजाबी, हर तरह का खाना हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
0: यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान दिए गए हैं, और उन पकवान को खा करके लोग यहाँ अभी रात में यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से यात्रा करेंगे, जो कि 13 से 14 किलोमीटर या तो पैदल जाएंगे या खच्चर के जरिए पालकी से ये तमाम लोग जाएंगे।
1: देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ठहरने, लंगर, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। देखिए पहलगाम से हमारी खास रिपोर्ट।

0: सिर्फ उद्घोष नहीं, विश्वास है। ये केवल नारी नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। किसी की आंखों में दर्शन की चाह है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना लेकर निकला है, तो कोई जीवन की परेशानियों का समाधान लेने आया है। सभी चेहरों पर मुस्कान, दिल में श्रद्धा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी का। हिमालय की वादियाँ, हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बालटाल के बेस कैंप पर शिव भक्तों का जमावड़ा, ये किसी पर्यटन स्थल की हलचल नहीं बल्कि अटूट विश्वास की तस्वीर है।
1: बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहाँ पर पहुँचा हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहाँ पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहाँ पर पहुँचे। देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहाँ से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए सीधे यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
2: हुम प्राणनादम विभुम विश्वनादम जगन्नादनादम सदानंद बाजम भवद भव्य भूतेश्वरम भूतनादम शिवम शंकर।

0: ஹமாரம் சிவம் சங்கரம் சம்பு மீசான மீடே
1: போல சங்கர் கி பூஜா கரோ ஜான சரணோ மே
2: देश के अलग अलग राज्यों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बसों में सवार होकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला। श्रीनगर यात्री निवास से भी शिव भक्त बेस कैंप पहुंच रहे हैं और घाटी बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के कंधे पर बैग, तो कोई त्रिशूल लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हर पड़ाव पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है और स्थानीय लोग फूलमाला से भव्य स्वागत कर रहे हैं।
3: हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। ये इस्बन जो है मेरे हाथ में, ये हम जलाते हैं, ये हमारे यहाँ कश्मीरी कल्चर में है। कोई बड़ा दिन त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बच्चा कभी डर जाता है, उसको भी ये हम नजर उतारते हैं इससे। तो जो ये है, ये दुल्हन को नजर उतारते हैं। वैसे ही हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हम इसी से करते हैं कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं फूलों से।
2: अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र अध्याय है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। बर्फ अपने आप शिवलिंग का आकार लेती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से यहाँ पहुँचकर पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की राह आसान नहीं होती। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और कठिन रास्ता, हर कदम धैर्य की परीक्षा लेती है और यही कारण है कि इस यात्रा को केवल श्रद्धा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है।
4: अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार की तरफ से जगह जगह पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे अमरनाथ गुफा हो चाहे फिर अलग अलग पड़ाव हो, लेकिन प्रमुख बेस कैंप नूनवन और बालटल जो है वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। 20,000 से 25,000 श्रद्धालु वहां पर एक समय रुक सकते हैं। अगर कभी रास्ता खराब होता है या यात्रा रोक दी जाती है तो इन दो बेस कैंप्स पर विशेष तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है वो यात्रा। एक महिला भी हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए।
5: बेबी पद्मजा।
4: कहाँ से हैं आप?
5: एपी से,
4: आंध्र प्रदेश से।
5: आंध्र प्रदेश से।
4: यात्रा पहले कभी की आपने या पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं?
5: हाँ, पहली बार।
4: पहली बार जा रहे हैं?
5: हाँ।
4: तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में और यहाँ पहुँच कर क्या लग रहा है? तो आंध्र में के हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता क्या बड़ी है। अब चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम विवेकानंद है।
4: विवेकानंद, पहली बार यात्रा पे?
6: या पहली बार आ रहा हूं।
4: अभी आंध्र से?
6: आंध्र से, हम 20 लोग हैं इसी गाड़ी पे।
4: पहली बार। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में, क्यों दिन में इच्छा हुई कि आप भी जो है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे?
6: बाबा जी के बारे में तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, सो इस बार तो मेरा लक है, सो रजिस्ट्रेशन मिल गया, आ रहे हैं, बस इतने।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ। जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: बम बम बोले,
7: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
7: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
7: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
7: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
7: बम बम बोले,
5: जय श्री अमरनाथ।
7: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
8: हर हर महादेव।
4: तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही जयकारा है जो कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत इस कठिन यात्रा में देता है।
2: बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, जोश है, जुनून है, आगे यात्रा की कठिन चढ़ाई है। छोटी बड़ी चुनौतियों से भरा होगा रास्ता, लेकिन शिव भक्तों को भला इससे क्या वास्ता। मन में दर्शन की आस और ये उम्मीद कि लौटते समय उनके साथ होगा महादेव का आशीर्वाद। मन की शांति होगी जो जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होगी। बालटाल से अशरफ वानी और जितेन बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप और पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। श्रद्धालुओं के काफिले के साथ बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल, फायर और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है।
2: आगे पीछे बख्तरबंद गाड़ियां, गाड़ियों में हथियारबंद मुस्तैद जवान। और इनके बीच गुजर रही बसों में बेफिक्र जयकारा लगाते शिव भक्त। यात्री निवास से जब श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप पहलगाम की ओर चला तो वादी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। हर जगह, हर मोड़ पर फूलों से, जयकारों से शिव भक्तों का भव्य स्वागत हुआ और पूरे एहतियात के साथ। सड़क किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सतर्क पुलिस टीम, पूरे सफर की निगरानी कर रहे सीआरपीएफ के जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा घेरा है वो अभेद है। ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और बालटाल बेस कैंप तक, जहां से पवित्र गुफा के लिए पहला जत्था शुक्रवार की सुबह निकलने वाला है,

0: है। तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहां पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम किए गए?
1: देखिए, यहां सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25 हजार के लोग यहाँ रह सकते हैं।
0: इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
1: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री हैं जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता उद्दाम है और जेएनके पुलिस के साथ CRPF पूरा सुरक्षा देने के लिए।
2: इस साल अमरनाथ यात्रा लंबी है, इसीलिए ज्यादा तादाद में शिव भक्तों के आने की उम्मीद भी है और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कई लेवल की जांच के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा।

0: न सिर्फ बेस कैंप पर बल्कि पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर भी यात्रियों की सुविधा और हिफाजत का हर संभव इंतजाम है। सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई है।
1: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
2: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
1: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती है, तो उनको कैसे आप बता दें?
3: सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया।
0: जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है वो छोटा सा इलाका यानी नुनवान अच्छी खासी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे जाएंगे। यात्रा शुरू करने से पहले यहीं 10 से 15 हजार शिव भक्तों का ठिकाना होगा। इस टेंट सिटी में दुर्घटनाओं पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कहीं आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर की फायर फाइटिंग टीम भी मुस्तैद है।
1: फायर फाइटिंग करने वाली टीम यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसमें निपटना है, उसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थिति ये होती है कि अगर यहां पर सिलेंडर में या किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फायर फाइटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए हैं ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहां बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे यहां पर भंडारे हैं रविंदर जी और लंगर भी चलते हैं, उसमें किस तरीके से निपटा जा रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए?
4: मैं रविंदर शर्मा, शिव भक्ति सेवाटा, सरौनी दिल्ली से, और चांस की बात है कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाता हूं, लाइफ गार्ड बनाना हमारा ही है, और लास्ट ईयर भी यहां पर आग लग गई थी सात वाले भंडारे में तो उसको मैंने ही काबू किया था।
1: आप तस्वीरों में चारों तरफ देखेंगे कि यहां पर टेंट सिटी बना हुआ है और आग का खतरा काफी ज्यादा रहता है। कैंप से ही जो यात्रा है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाती है और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी कल से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेंड लोगों को किया जा रहा है कि अगर फायर की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान किस तरीके से निपटना है।
5: देखिए, अमरनाथ का रास्ता आसान नहीं होता। कठिन चढ़ाई के दौरान यात्रियों को सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मौसम अगर खराब हुआ तो उनको मदद की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। ये टीम जो है कैसे काम करेगी, देखिए रिपोर्ट।
1: टाल बेस कैंप से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लोग चढ़ते हैं तो उस दौरान उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है। ऐसे ही इन इलाकों में दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ जो उनका है वहां पर उनको लगाया गया है। इसके साथ ही पहलगाम रूट से भी एरिया उनका जो है वहां पर उनको रखा गया है। ये लोग इक्विप्ड हैं पहाड़ों पर किस तरीके से रेस्क्यू करना है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाके में लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान उनको दिक्कत ऑक्सीजन की हो जाती है या फिर मौसम यहाँ का कभी भी खराब हो जाता है, अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है तो उस दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, इनके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जिनके जरिए ये लोग लोगों की जान बचाते हैं। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है, इसको लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं, रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इस पोर्टेबल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कोई वहाँ पर घायल होता है, लैंडस्लाइड होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से यहां पर तैयार है। करीब 21 टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको हर एक इलाके में तैनात किया गया है, जिससे कि इस पहाड़ी इलाके में जब भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम के जो मेंबर्स हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और कैसे इस पूरे इलाके में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई कैसे इनके द्वारा किया जाता है, किस तरीके से आप लोग पहुंचते हैं उस पूरे इलाके में, क्योंकि मौसम कभी भी यहां पर खराब हो जाता है।
6: मौसम कभी भी खराब हो जाता है और हम लोग एनडीआरएफ से ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर होते हैं, तो उसके अलावा हमारी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग इस बार और रिफ्रेशर के तौर पे कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ों का एरिया के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो गई है। पिछले साल भी हम लोगों ने रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसा कि हमको काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज भी किया गया है और हमारे पास फर्स्ट एड के किट वगैरह हैं, सारे कुछ रोप रेस्क्यू के हैं, तो सारी चीज़ों को मिला करके हम जहाँ खबर मिलती है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं।
1: तो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है और इसी के साथ ये तमाम लोग यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे पर
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: इस वक्त आम का सीजन चल रहा है, कई किस्मों के आम आपको बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कई फल की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली आए भी हैं तो चलिए आपको चितरंजन पार्क लिए चलते हैं, जहां पर मीठे और रसीले आमों की यह खुशबू सीआर पार्क में आपको महसूस होगी, क्योंकि यहां चल रहा है मैंगो फेस्टिवल जिसे बंगाल सरकार ने आयोजित किया है। इस फेस्टिवल में आप अगर आएंगे तो आपको अलग अलग तरीके आमों को चखने का मौका मिलेगा, उन्हें खरीदने का मौका मिलेगा।
9: आमों की रसीली मिठास और उनकी भीनी भीनी खुशबू जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। मीठे और रसीले आमों की ये खुशबू इन दिनों दिल्ली के चितरंजन पार्क में बिखरी है, जहां पश्चिम बंगाल के खास और रसीले आमों का मेला लगा है। यहां मालदा से लेकर लंगड़ा और बंगापल्ली आम तक इस मैंगो फेस्टिवल में मौजूद हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ओर से बंगाल मैंगो फेस्टिवल और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया गया है।
10: वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया कराया गया है और यहां पर 12 प्रकार के पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले आमों के वैराइटीज प्रदर्शित किए गए हैं, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये अमरपाली नाम से आपका ये ब्रांड है और इसमें आम रखा गया है, अमरपाली नाम से है। फिर ये मालदा लंगरा नाम से आपका ये आम है, उसकी भी ये यहाँ पर रखा गया है। पहली बार चितरंजन पार्क में ये आयोजन हो रहा है, इससे पहले दिल्ली के जनपथ में होता था। चूंकि चितरंजन पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल से आने वाले बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी लाभ हो रहा है और उनका रिस्पॉन्स काफी मिल रहा है।
9: इस मेले में कदम रखते ही आपको बंगाल के बागानों की ताजगी का एहसास होगा। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 अलग अलग किस्मों के मशहूर बंगाली आम मौजूद हैं। हिमसागर से लेकर लंगड़ा, लक्ष्मण भोग और फाजली जैसे खास आमों की महक से पूरा मेला ही गुलजार है। लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच भी रहे हैं और अपने मन पसंद आमों की खूब खरीदारी कर रहे हैं।
7: देखिए, मैंगो फेस्टिवल में इसलिए आया हूँ, पट्टी वाली सारी मैंगो जो है पश्चिम बंगाल से आया है, मैं भी पश्चिम बंगाल की है, बचपन मेरा उधर ही बीता, हर मालदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही है मेरा घर, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो मालदा का जो फजली है, ये फजली है देखने में, कोई इसमें देखने में कोई खुशबू आता नहीं, लेकिन खाने में ना अजीब से अलग सेफर्ट में खुशबू आता है।
9: आमों की मिठास के साथ साथ मेले में बंगाल के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबार से जुड़े बेहतरीन आइटम्स भी दिल्ली वालों का मन मोह ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मैंगो मेले में खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने मेले का मुआयना किया और बंगाल के स्वादिष्ट आमों का खूब लुत्फ भी उठाया। तो अगर आप भी आमों के शौकीन हैं और अपने आम के जायके में कुछ खास मिठास घोलना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए दिल्ली के सीआर पार्क, जहां 5 जुलाई तक बंगाल के आमों की ये खुशबू कुछ इसी तरह बिखरी रहेगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
11: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
13: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
12: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
14: You're listening to MSNBC.
12: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
15: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीर को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ऐसे में यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो ऐसी आज दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे इस वीडियो की पड़ताल करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। क्या है इस वायरल दावे और वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
15: सोशल मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम का हालिया वीडियो बताते हुए लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम के हथनारा गांव में 25 जून की रात को मुहर्रम जुलूस के दौरान एक

0: रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब दो दर्जन को वेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। वीडियो में एक ताजिया बिजली की तार से टकराता नजर भी आ रहा है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक काफी बड़ा सा ताजिया देखने को मिला, मतलब ये कि वायरल वीडियो मुहर्रम जुलूस का ही है। इसके बाद हमें वीडियो में नजर आ रहे एक ट्रैक्टर के नंबर प्लेट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे जूम करके ध्यान से देखा तो इस पर यूपी का नंबर प्लेट था। ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि ताजे के बिजली के तार से टकराने के बाद हुए हादसे का ये वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं हादसे के पुराने वीडियो को कोई नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा, तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजे के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहां फैले करंट की वजह से दो और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और YouTube चैनल पर मिला। यहां इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजे में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजे एक बिजली की तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्टर।

0: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार। एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए, डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो करीब 22 सेकंड का है जिसमें नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग घुस आए जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बलौठी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने लाना जरूरी था तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा है। इस दौरान हमें ऐसा कई चीजें देखने को मिली जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्किमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पटना हाई स्कूल के गर्दनीबाग इलाके में ये घटना हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। YouTube वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे वायरल दुनिया की वायरल खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों पर आपने उन बच्चों को जरूर देखा होगा जो स्कूल जाने की उम्र में अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, वे सड़क पर खड़े होकर मेहनत से दो रोटी कमाने का काम करते हैं। हाल में ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे अपने पूरे शरीर पर गोल्डन पेंट लगाकर सड़क किनारे लिविंग स्टैचू बनकर खड़े हैं। वे अपने इसी हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे सिर से लेकर पैर तक गोल्डन कलर के पेंट में रंगे हुए हैं। तेज धूप होने के बावजूद भी वे बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहते हैं ताकि राह चलते लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते दिख रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। बच्चों की मेहनत और उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह दोनों बच्चों को पास के KFC रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बच्चों के सामने खाना आता है, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। महिला के इस छोटे से प्यार भरे कदम ने दोनों बच्चों को भावुक कर दिया और महिला की इस दरिया दिली ने वहाँ मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग कलाकार का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाने वाले इस कलाकार का हुनर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिना कुछ बोले सिर्फ ब्रश और रंगों के सहारे वे ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बड़े ही धैर्य और लगन से पेंटिंग बना रहे हैं। उनके आसपास कई खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई है जो उनकी बेहतरीन कला का परिचय देती है। राह चलते लोग भी रुककर उनकी कला को निहारते नजर आ रहे हैं। अमूमन भारतीय बच्चों को अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में बात करते देखना आम बात है, लेकिन जब केरलम की एक 14 साल की बच्ची फराटेदार कोरियन भाषा बोलने लगे तो हैरान होना लाजमी है। इस बच्ची की प्रतिभा को देखकर खुद एक कोरियाई कंटेंट क्रिएटर भी हक्का बक्का रह गई। यह वीडियो कोरियन कंटेंट क्रिएटर मिक्यूंग सॉन्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में अमीना जिस आत्मविश्वास के साथ कोरियन बोल रही है उसने मिक्यूंग को भी दंग कर दिया। अमीना सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि शानदार अंग्रेजी भी बोलती है।
5: ये मैं आज एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी है गोलू कुमार की।
4: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक बच्चे की बोर्ड की आंसर शीट वायरल हो रही है जिसमें उसने पेपर चेक करने वाले टीचर को घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं उसने एग्जाम में पास करने के लिए शायराना अंदाज में लिखा, कॉपी मेरी पहुँच गयी है गुरु के द्वार, 33 नंबर दे के इसे लगा दो पार।
5: अरे भाई साहब, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा।
4: बच्चे की ये कॉपी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल हो रही आंसर शीट किसी गोलू कुमार नाम के स्टूडेंट की है।
5: शॉट पे हेडशॉट थे मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे।
4: हैरत अंगेज बात यह है कि कॉपी में सवाल से जुड़े एक भी जवाब नहीं लिखे हैं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ पास करा देने की गुहार लगी है। ये गुहार भी कोई आम शब्दों में नहीं बल्कि मजेदार शायराना अंदाज में लगाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने आगे टीचर से पेज पलटने का अनुरोध किया है। अगले पेज के बीच प्लीज प्लीज प्लीज लिखा हुआ था, साथ ही 500-500 के नोट दिख रहे थे।
5: अबे भाई ये कितना क्या रख दिया है ये बंदे ने, 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया क्या ये बजरंग बली के नाम का, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
4: जब टीचर ने नोटों की गिनती की तो वो कुल 2100 निकले।
5: पैसा रख दिया है यहाँ पर, बताओ यार क्या करे इस बच्चे का।
4: जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वृंदावन से जुड़े खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक विदेशी महिला अपने भारतीय पति और अपने सहेलियों के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों, मुस्कुराते चेहरों और भक्ति से भरे माहौल ने इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय बना दिया है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। जापान के एक चिड़ियाघर से ये वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चिड़ियाघर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही थी। लेकिन बाड़े में बंद असली शेरों के रिएक्शन ने इस ड्रिल को एक बेहद मजेदार कॉमेडी शो में बदल दिया। वीडियो में जापानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए शेर के भागने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को शेर की पोशाक पहनाकर भागे हुए शेर की भूमिका दी गई थी। ये वीडियो ऑनलाइन शेयर होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि इसके वायरल होने का कारण मॉक ड्रिल कम और बाड़े में बैठे असली शेरों के विचित्र प्रतिक्रियाएं थी, जो इस पूरे नाटक को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही नकली शेर ने भागने और खतरे का नाटक किया, बाड़े में मौजूद असली शेर भारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए और इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, वहीं कुछ ने शेरों के नजरिए से मजेदार बातें लिखी। प्रकृति कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। जिस टाइगर की गिनती जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में होती है, उसके सामने जब एक भालू तनकर खड़ा हुआ तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहीं भालू भी पूरी आक्रामकता के साथ उससे भिड़ा हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई इस मुठभेड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत टाइगर की चेज के साथ होती है, लेकिन यहाँ भालू डर कर भागने के बजाय टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके जीत की नींव वहीं पड़ जाती है, क्योंकि जो डर के सामने डरा नहीं, उसे आधी सक्सेस वहीं मिल जाती है। वैसे भालू टाइगर से डरा हुआ जरूर होता है, लेकिन उसने भागने के बजाय समस्या का सामना करना चुना होता है। ऐसे में टाइगर जब जंगल में उसके ठीक सामने बैठकर इत्मीनान करने लगता है, तब वह भी रुका हुआ होता है। मगर धीरे धीरे जब वह गौर करता है कि अब टाइगर आराम से बैठा हुआ है, तो आखिर में भालू भाग जाता है और वीडियो खत्म हो जाती है। इन दिनों एक गोरिला का वीडियो इंटरनेट पर अलग ही वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में गोरिला का ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो कोई इंसान किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हो। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो जापान के एक चिड़ियाघर का है, जहां कियोमासा नाम का 13 वर्षीय नर गोरिला अपने साथी के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ। बहस खत्म होने के बाद कियोमासा सीधे पिंजरे में बनी सीढ़ियों पर जाकर अकेला बैठ गया। इसके बाद उसका जो व्यवहार कैमरे में कैद हुआ, उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में कियोमासा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वे अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर दूर कहीं देखता रहता है, कभी सिर खुजलाता है तो कभी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे वह किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये हो गया है कि ठंड से बचने की जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगत से भिड़ रहा है। इसलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यूरोप में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ गया है।

0: गर्मी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पसीने चीन की फैक्ट्रियों में काम करने वालों के छूट रहे हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से चीन में बने इन एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। अभी यूरोप के केवल 20% घरों में एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने बाकी 80% लोगों को भी एसी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक कंपनी में कर्मचारी देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए न दीवार तोड़नी पड़ती है और न ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यूरोप में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। यूरोप में जिस तरह गर्मी का कहर बरपा है, उसने मौसम को लेकर यूरोप की सोच बदल डाली है। यहाँ के जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर लगाना जरूरी नहीं माना जाता था, वहाँ अब एसी और कूलिंग फैन के लिए मारामारी मची हुई है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पोर्टेबल एयर कंडीशनर और कूलिंग फैन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। स्टोर मैनेजर का कहना है कि हर ग्राहक एसी या पंखा खरीदना चाहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ रही है। दरअसल यूरोप की ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और उनमें स्प्लिट एसी लगाना आसान नहीं है। किराए के घरों में मकान मालिक की मंजूरी के साथ साथ यहाँ सख्त बिल्डिंग नियम और ऊंची लागत भी स्प्लिट एसी के लिए मुफीद नहीं है। ऐसे में पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिलहाल सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। एसी को लेकर यूरोप में जिस तरह की बेचैनी है, उसने एक बार फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चिंताओं को नए सिरे से सामने ला दिया है।
1: इक्कीस साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। इस वक्त हजारों की तादाद में शिव भक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में मौजूद हैं और कुछ घंटों बाद ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। इसलिए देखिए, घाटी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्त उत्साह के साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहलगाम में टेंट सिटी की भव्यता भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बेस कैंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस प्रकार से किए गए हैं वो दिखाएंगे। शिव भक्तों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ ने इस साल भी महिला कमांडोज की तैनाती की है। उनकी क्या भूमिका रहने जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप के लिए निकला और शुक्रवार की सुबह सभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था यहां पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। गुड न्यूज टुडे के साथ आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। गुड न्यूज टुडे की हर एक तस्वीर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो आप देखते रहिए पवित्र अमरनाथ की यात्रा गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से भारी सुरक्षा के बीच भक्त निकलने वाले हैं। पहलगाम के नूनवान कैंप पर इस वक्त उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
0: सुबह 5 बजे के आसपास पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर बालटाल बेस कैंप पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लंगर और भंडारे लगे हुए हैं। वहां पर लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरा जो रास्ता जाता है, ये बालटाल से डोमेल की तरफ रास्ता जाता है, और यहाँ की तस्वीरें आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और कल से जो यात्रा शुरू हो रही है सुबह से, उस यात्रा के लिए यहां से निकलेंगे। इनके लिए यहां पर अलग अलग जगहों पर लंगर की

0: व्यवस्था की गई है। आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बालटाल समिति है, इसमें आप देखिए कि शिव भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सारे लोग ये लंगर खा रहे हैं। यहाँ इसी तरीके से जितने भी लाइन से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब जगह अलग अलग राज्यों से आकर के इसी तरीके के लंगर लगाए गए हैं, जिससे कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो।
1: ये जो भंडारा है, बटाला पंजाब का भंडारा है और ये 27वां भंडारा इस साल लगाया गया है बालटाल में। हमारे देश के सभी राज्यों से जो शिव भक्त आते हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए जैसे साउथ इंडियन, पंजाबी, हर तरह का खाना हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
0: यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान दिए गए हैं और उन पकवान को खा करके लोग यहाँ अभी रात में यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से यात्रा करेंगे, जो कि 13 से 14 किलोमीटर या तो पैदल जाएंगे या खच्चर के जरिए पालकी से ये तमाम लोग जाएंगे।
2: देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ठहरने, लंगर, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। देखिए पहलगाम से हमारी खास रिपोर्ट।

0: ये सिर्फ उद्घोष नहीं, विश्वास है। ये केवल नारी नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। किसी की आंखों में दर्शन की चाह है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना लेकर निकला है, तो कोई जीवन की परेशानियों का समाधान लेने आया है। सभी चेहरों पर मुस्कान, दिल में श्रद्धा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी का। हिमालय की वादियाँ, हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बालटाल के बेस कैंप पर शिव भक्तों का जमावड़ा, ये किसी पर्यटन स्थल की हलचल नहीं बल्कि अटूट विश्वास की तस्वीर है।
1: बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूं और यहां पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहां पर पहुंचा हुआ है वो किस तरीके से यहां पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहां पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहां पर नारे लगा रहे हैं। लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहां पर पहुंचे। देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहां से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए सीधे यहां पर पहुंच रहे हैं।
2: हुम प्राणनादम विभुम विश्वनादम जगन्नाथनादम सदानंद बाजम भवद्भव्य भूतेश्वरम भूतनादम शिवम शंकर।

0: देश के अलग अलग राज्यों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बसों में सवार होकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला। श्रीनगर यात्री निवास से भी शिव भक्त बेस कैंप पहुंच रहे हैं और घाटी बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के कंधे पर बैग, तो कोई त्रिशूल लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हर पड़ाव पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है और स्थानीय लोग फूलमाला से भव्य स्वागत कर रहे हैं।
1: हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। ये इसबन जो है मेरे हाथ में, ये हम जलाते हैं, ये हमारे यहाँ कश्मीरी कल्चर में है। कोई बड़ा दिन त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बच्चा कभी डर जाता है, उसको भी ये हम नजर उतारते हैं इससे। तो जो ये है, ये दुल्हन को नजर उतारते हैं। वैसे ही हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हम इसी से करते हैं कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं फूलों से।
0: अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र अध्याय है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। बर्फ अपने आप शिवलिंग का आकार लेती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से यहाँ पहुँचकर पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की राह आसान नहीं होती। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और कठिन रास्ता हर कदम धैर्य की परीक्षा लेती है और यही कारण है कि इस यात्रा को केवल श्रद्धा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है।
2: अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार की तरफ से जगह जगह पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे अमरनाथ गुफा हो चाहे फिर अलग अलग पड़ाव हो, लेकिन प्रमुख बेस कैंप नूनवन और बालटाल जो है वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। 20,000 से 25,000 श्रद्धालु वहाँ पर एक समय रुक सकते हैं। अगर कभी रास्ता खराब होता है या यात्रा रोक दी जाती है तो इन दो बेस कैंप्स पर विशेष तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है वो यात्रा है। एक महिला भी हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए।
3: बेबी पद्मजा।
2: कहाँ से हैं आप?
3: एपी से।
2: आंध्र प्रदेश से?
3: आंध्र प्रदेश से।
2: यात्रा पहले कभी की आपने या पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं?
3: हाँ, पहली बार।
2: पहली बार जा रहे हैं? हाँ। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में और यहाँ पहुँच कर क्या लग रहा है? तो आंध्रा में के हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता क्या बड़ी है। अब चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम विवेकानंद है।
2: विवेकानंद, पहली बार यात्रा पे?
4: या पहली बार आ रहा।
2: अभी आंध्रा से?
4: आंध्रा से, हम 20 लोग हैं इसी गाड़ी पे।
2: पहली बार। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में, क्यों दिन में इच्छा हुई कि आप भी जो है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे?
4: बाबा जी के बारे में तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, सो इस बार तो मेरा लक है, सो रजिस्ट्रेशन मिल गया, आ रहे हैं, बस इतने।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ। जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: हर हर महादेव।
2: तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही जयकारा है जो कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत इस कठिन यात्रा में देता है।
0: बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, जोश है, जुनून है, आगे यात्रा की कठिन चढ़ाई है। छोटी बड़ी चुनौतियों से भरा होगा रास्ता, लेकिन शिव भक्तों को भला इससे क्या वास्ता। मन में दर्शन की आस और ये उम्मीद कि लौटते समय उनके साथ होगा महादेव का आशीर्वाद। मन की शांति होगी जो जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होगी। बालटाल से अशरफानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप और

0: पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। श्रद्धालुओं के काफिले के साथ बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल, फायर और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है।
1: आगे पीछे बख्तरबंद गाड़ियां, गाड़ियों में हथियारबंद मुस्तैद जवान। और इनके बीच गुजर रही बसों में बेफिक्र जयकारा लगाते शिव भक्त। यात्री निवास से जब श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप पहलगाम की ओर चला तो वादी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी। हर जगह, हर मोड़ पर फूलों से, जयकारों से शिव भक्तों का भव्य स्वागत हुआ और पूरे एहतियात के साथ। सड़क किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सतर्क पुलिस टीम, पूरे सफर की निगरानी कर रहे सीआरपीएफ के जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा घेरा है वो अभेद है। ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और बालटाल बेस कैंप तक, जहां से पवित्र गुफा के लिए पहला जत्था शुक्रवार की सुबह निकलने वाला है,

0: है। तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है, यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहां पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम किए गए?
1: देखिए, यहां सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25 हजार के लोग यहाँ रह सकते हैं।
0: इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
1: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री हैं, जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता उद्दाम है और जेएनके पुलिस के साथ CRPF पूरा सुरक्षा देने के लिए।
2: इस साल अमरनाथ यात्रा लंबी है, इसीलिए ज्यादा तादाद में शिव भक्तों के आने की उम्मीद भी है और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कई लेवल की जांच के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा।

न सिर्फ बेस कैंप पर बल्कि पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर भी यात्रियों की सुविधा और हिफाजत का हर संभव इंतजाम है। सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई है।

0: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मेयाई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
1: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
0: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती है, तो उनको कैसे आप बता दें?
2: सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया।
3: जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है वो छोटा सा इलाका यानी नुनवान अच्छी खासी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे जाएंगे। यात्रा शुरू करने से पहले यहीं 10 से 15 हजार शिव भक्तों का ठिकाना होगा। इस टेंट सिटी में दुर्घटनाओं पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कहीं आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर की फायर फाइटिंग टीम भी मुस्तैद है।
0: फायर फाइटिंग करने वाली टीम यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसमें निपटना है, उसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थिति ये होती है कि अगर यहां पर सिलेंडर में या किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फायर फाइटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए हैं ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहां बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे यहां पर भंडारे हैं रविंदर जी और लंगर भी चलते हैं, उसमें किस तरीके से निपटा जा रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए?
4: मैं रविंदर शर्मा, शिव भक्ति सेवा ट्रस्ट सरौनी दिल्ली से, और चांस की बात है कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाता हूं, लाइफ गार्ड बना हमारा ही है, और लास्ट ईयर भी यहां पर आग लग गई थी सात वाले भंडारे में तो उसको मैंने ही काबू किया था।
0: आप तस्वीरों में चारों तरफ देखेंगे कि यहां पर टेंट सिटी बना हुआ है और आग का खतरा काफी ज्यादा रहता है। कैंप से ही जो यात्रा है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाती है और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी कल से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेंड लोगों को किया जा रहा है कि अगर फायर की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान किस तरीके से निपटना है।
5: देखिए, अमरनाथ का रास्ता आसान नहीं होता, कठिन चढ़ाई के दौरान यात्रियों को सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मौसम अगर खराब हुआ तो उनको मदद की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। ये टीम जो है कैसे काम करेगी, देखिए रिपोर्ट।
0: बालटाल बेस कैंप से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लोग चढ़ते हैं तो उस दौरान उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है। ऐसे ही इन इलाकों में दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ जो उनका है वहां पर उनको लगाया गया है। इसके साथ ही पहलगाम रूट से भी एरिया उनका जो है वहां पर उनको रखा गया है। ये लोग इक्विप्ड हैं पहाड़ों पर किस तरीके से रेस्क्यू करना है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाके में लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच

0: पहुंचते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ऑक्सीजन की हो जाती है या फिर मौसम यहाँ का कभी भी खराब हो जाता है, अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है तो उस दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों को बचाना है? इनके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जिनके जरिए ये लोग लोगों की जान बचाते हैं। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है, इसको लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं। रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इस पोर्टेबल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कोई वहाँ पर घायल होता है, लैंडस्लाइड होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो CRPF की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। करीब 21 टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको हर एक इलाके में तैनात किया गया है, जिससे कि इस पहाड़ी इलाके में जब भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम के जो मेंबर्स हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और कैसे इस पूरे इलाके में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई कैसे इनके द्वारा किया जाता है। किस तरीके से आप लोग पहुंचते हैं उस पूरे इलाके में, क्योंकि मौसम कभी भी यहां पर खराब हो जाता है?
1: बिल्कुल, मौसम कभी भी खराब हो जाता है और हम लोग NDRF से ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर होते हैं, तो उसके अलावा हमारी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग इस बार और रिफ्रेशर के तौर पर कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ों का एरिया के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो गई है। पिछले साल भी हम लोगों ने रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसा कि हमको काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज भी किया गया है और हमारे पास फर्स्ट एड के किट वगैरह हैं, सारे कुछ रोप रेस्क्यू के हैं, तो सारी चीज़ों को मिला करके हम जहाँ खबर मिलती है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं।
0: तो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है और इसी के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, we all just wanna be big rock stars, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is gonna play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: अच्छी खबर,
6: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
8: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
7: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश, अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम, मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ऐसे में यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो ऐसी आज दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है जिसमें मोहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे इस वीडियो की पड़ताल करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। क्या है इस वायरल दावे और वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम का हालिया वीडियो बताते हुए लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम के हतनारा गांव में 25 जून की रात को मोहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब 2 दर्जन को वेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। वीडियो में एक ताजिया बिजली की तार से टकराता नजर भी आ रहा है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजिए के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहाँ फैले करंट की वजह से दो और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजिए में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजिए की बिजली की तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
1: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार, एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए। डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो करीब 22 सेकंड का है, जिसमें नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग घुस आए, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बलौठी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेरे हुए है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने लाना जरूरी था, तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा कई चीजें देखने को मिली जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्किमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पटना हाई स्कूल के गर्दन

बाग इलाके में ये घटना हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। YouTube वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे वायरल दुनिया की वायरल खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों पर आपने उन बच्चों को जरूर देखा होगा जो स्कूल जाने की उम्र में अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, वे सड़क पर खड़े होकर मेहनत से दो रोटी कमाने का काम करते हैं। हाल में ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे अपने पूरे शरीर पर गोल्डन पेंट लगाकर सड़क किनारे लिविंग स्टैचू बनकर खड़े हैं। वे अपने इसी हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे सिर से लेकर पैर तक गोल्डन कलर के पेंट में रंगे हुए हैं। तेज धूप होने के बावजूद भी वे बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहते हैं ताकि राह चलते लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते दिख रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। बच्चों की मेहनत और उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह दोनों बच्चों को पास के KFC रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बच्चों के सामने खाना आता है उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। महिला के छोटे से प्यार भरे कदम ने दोनों बच्चों को भावुक कर दिया और महिला की इस दरिया दिली ने वहाँ मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग कलाकार का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाने वाले इस कलाकार का हुनर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिना कुछ बोले सिर्फ ब्रश और रंगों के सहारे वे ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बड़े ही धैर्य और लगन से पेंटिंग बना रहे हैं। उनके आसपास कई खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई हैं, जो उनकी बेहतरीन कला का परिचय देती हैं। राह चलते लोग भी रुककर उनकी कला को निहारते नजर आ रहे हैं। अमूमन भारतीय बच्चों को अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में बात करते देखना आम बात है, लेकिन जब केरलम की एक 14 साल की बच्ची फराटेदार कोरियन भाषा बोलने लगे तो हैरान होना लाजमी है। इस बच्ची की प्रतिभा को देखकर खुद एक कोरियाई कंटेंट क्रिएटर भी हक्का बक्का रह गई। यह वीडियो कोरियन कंटेंट क्रिएटर मिक्यूंग सॉन्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में अमीना जिस आत्मविश्वास के साथ कोरियन बोल रही है उसने मिक्यूंग को भी दंग कर दिया। अमीना सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि शानदार अंग्रेजी भी बोलती है।
6: ये मैं आज एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी है गुलू कुमार की।
5: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक बच्चे की बोर्ड की आंसर शीट वायरल हो रही है जिसमें उसने पेपर चेक करने वाले टीचर को घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं उसने एग्जाम में पास करने के लिए शायराना अंदाज में लिखा, कॉपी मेरी पहुँच गयी है गुरु के द्वार, 33 नंबर दे के इसे लगा दो पार।
6: अरे भाई साहब, मेरी बग्घी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा।
5: बच्चे की ये कॉपी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल हो रही आंसर शीट किसी गोलू कुमार नाम के स्टूडेंट की।
6: शॉट पे हेडशॉट थे मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे।
5: हैरत अंगेज बात यह है कि कॉपी में सवाल से जुड़े एक भी जवाब नहीं लिखे हैं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ पास करा देने की गुहार लगी है। ये गुहार भी कोई आम शब्दों में नहीं बल्कि मजेदार शायराना अंदाज में लगाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने आगे टीचर से पेज पलटने का अनुरोध किया है। अगले पेज के बीच प्लीज प्लीज प्लीज लिखा हुआ था, साथ ही 500-500 के नोट दिख रहे थे।
6: अबे भाई ये कितना क्या रख दिया है ये बंदे ने, 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया क्या ये बजरंग बली के नाम का, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
5: जब टीचर ने नोटों की गिनती की तो वो कुल 2100 निकले।
6: पैसा रख दिया यहाँ पर, बताओ यार क्या करे इस बच्चे का।
5: जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वृंदावन से जुड़े खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक विदेशी महिला अपने भारतीय पति और अपने सहेलियों के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों, मुस्कुराते चेहरों और भक्ति से भरे माहौल ने इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय बना दिया है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। जापान के एक चिड़ियाघर से ये वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चिड़ियाघर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही थी। लेकिन बाड़े में बंद असली शेरों के रिएक्शन ने इस ड्रिल को एक बेहद मजेदार कॉमेडी शो में बदल दिया। वीडियो में जापानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए शेर के भागने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को शेर की पोशाक पहनाकर भागे हुए शेर की भूमिका दी गई थी। ये वीडियो ऑनलाइन शेयर होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि इसके वायरल होने का कारण मॉक ड्रिल कम और बाड़े में बैठे असली शेरों के विचित्र प्रतिक्रियाएं थी, जो इस पूरे नाटक को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही नकली शेर ने भागने और खतरे का नाटक किया, बाड़े में मौजूद असली शेर भारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए और इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, वहीं कुछ ने शेरों के नजरिए से मजेदार बातें लिखी। प्रकृति कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। जिस टाइगर की गिनती जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में होती है, उसके सामने जब एक भालू तनकर खड़ा हुआ तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहीं भालू भी पूरी आक्रामकता के साथ उससे भिड़ा हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई इस मुठभेड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत टाइगर की चेस के साथ होती है, लेकिन यहाँ भालू डर कर भागने के बजाय टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके जीत की नींव वहीं पड़ जाती है, क्योंकि जो डर के सामने डरा नहीं, उसे आधी सक्सेस वहीं मिल जाती है। वैसे भालू टाइगर से डरा हुआ जरूर होता है, लेकिन उसने भागने के बजाय समस्या का सामना करना चुना होता है। ऐसे में टाइगर जब जंगल में उसके ठीक सामने बैठकर इत्मीनान करने लगता है, तब वह भी रुका हुआ होता है। मगर धीरे धीरे जब वह गौर करता है कि अब टाइगर आराम से बैठा हुआ है, तो आखिर में भालू भाग जाता है और वीडियो खत्म हो जाती है। इन दिनों एक गोरिला का वीडियो इंटरनेट पर अलग ही वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में गोरिला का ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो कोई इंसान किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हो। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो जापान के एक चिड़ियाघर का है, जहां कियोमासा नाम का 13 वर्षीय नर गोरिला अपने साथी के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ। बहस खत्म होने के बाद कियोमासा सीधे पिंजरे में बनी सीढ़ियों पर जाकर अकेला बैठ गया। इसके बाद उसका जो व्यवहार कैमरे में कैद हुआ, उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में कियोमासा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वे अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर दूर कहीं देखता रहता है, कभी सिर खुजलाता है तो कभी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे वह किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये हो गया है कि ठंड से बचने की जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगत से भिड़ रहा है। इसलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यूरोप में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ गया है।

0: गर्मी यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पसीने चीन की इन फैक्ट्रियों में काम करने वालों के छूट रहे हैं। यूरोप में गर्मी की वजह से चीन में बने इन एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। अभी यूरोप के केवल 20% घरों में एयर कंडीशन है, लेकिन इस बार की भीषण गर्मी ने बाकी 80% लोगों को भी एसी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक कंपनी में कर्मचारी देर शाम तक काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में पोर्टेबल एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लगाने के लिए न दीवार तोड़नी पड़ती है और न ही बाहरी यूनिट की जरूरत होती है। यही वजह है कि यूरोप में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक हाल के दिनों में यूरोप से पोर्टेबल एयर कंडीशनर की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है। यूरोप में जिस तरह गर्मी का कहर बरपा है, उसने मौसम को लेकर यूरोप की सोच बदल डाली है। यहाँ के जिन देशों में कभी एयर कंडीशनर लगाना जरूरी नहीं माना जाता था, वहाँ अब एसी और कूलिंग फैन के लिए मारामारी मची हुई है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में पोर्टेबल एयर कंडीशनर और कूलिंग फैन का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। स्टोर मैनेजर का कहना है कि हर ग्राहक एसी या पंखा खरीदना चाहता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ रही है। दरअसल यूरोप की ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और उनमें स्प्लिट एसी लगाना आसान नहीं है। किराए के घरों में मकान मालिक की मंजूरी के साथ साथ यहाँ सख्त बिल्डिंग नियम और ऊंची लागत भी स्प्लिट एसी के लिए मुफीद नहीं है। ऐसे में पोर्टेबल एयर कंडीशनर फिलहाल सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। एसी को लेकर यूरोप में जिस तरह की बेचैनी है, उसने एक बार फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चिंताओं को नए सिरे से सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते। एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में LAKR का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राष्ट्र का स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। इस वक्त हजारों की तादाद में शिवभक्त पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में मौजूद हैं और कुछ घंटों बाद ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। इसलिए देखिये, घाटी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। शिवभक्त उत्साह के साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको पहलगाम में टेंट सिटी की भव्यता भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बेस कैंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस प्रकार से किए गए हैं वो दिखाएंगे। शिव भक्तों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ ने इस साल भी महिला कमांडोज की तैनाती की है। उनकी क्या भूमिका रहने जा रही है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आज तड़के श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप के लिए निकला और शुक्रवार की सुबह सभी दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। गुड न्यूज टुडे पर अमरनाथ यात्रा की ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे आपको लगातार दिखाता रहेगा।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था यहां पर पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। गुड न्यूज टुडे के साथ आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे की। हर एक तस्वीर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो आप देखते रहिए पवित्र अमरनाथ की यात्रा गुड न्यूज टुडे के साथ।
1: जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से भारी सुरक्षा के बीच भक्त निकलने वाले हैं। पहलगाम के नूनवान कैंप पर इस वक्त उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए।
0: सुबह 5 बजे के आसपास पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा, लेकिन तस्वीरें आपको यहां पर बालटाल बेस कैंप पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये लंगर और भंडारे लगे हुए हैं। वहां पर लोग भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरा जो रास्ता जाता है, ये बालटाल से डोमेल की तरफ रास्ता जाता है, और यहां की तस्वीरें आप देख करके ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। और कल से जो यात्रा शुरू हो रही है सुबह से, उस यात्रा के लिए यहां से निकलेंगे। इनके लिए यहां पर अलग अलग जगहों पर लंगर की भी व्यवस्था की गई है। आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो बालटाल समिति है, इसमें आप देखिए कि शिव भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और यहां पर सारे लोग ये लंगर खा रहे हैं। यहां इसी तरीके से जितने भी लाइन से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सब जगह अलग अलग राज्यों से आकर के इसी तरीके के लंगर लगाए गए हैं, जिससे कि बाबा बर्फानी के भक्तों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो।
2: ये जो भंडारा है, बटाला पंजाब का भंडारा है, और ये 27वां भंडारा इस साल लगाया गया है बालटाल में। हमारे देश के सभी राज्यों से जो शिव भक्त आते हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए, जैसे साउथ इंडियन, पंजाबी, हर तरह का खाना हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं।
0: यहाँ पर जो ये भंडारा चल रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान दिए गए हैं, और उन पकवान को खा करके लोग यहाँ अभी रात में यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद फिर ये लोग सुबह सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ से यात्रा करेंगे, जो कि 13 से 14 किलोमीटर या तो पैदल जाएंगे या खच्चर के जरिए पालकी से ये तमाम लोग जाएंगे।
1: देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र गुफा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन को लेकर भक्तों में खास उत्साह है। पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ठहरने, लंगर, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद शिव भक्तों का विश्वास अटूट है और हर कदम बाबा के आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। देखिए पहलगाम से हमारी खास रिपोर्ट।

0: उद्घोष नहीं, विश्वास है। ये केवल नारी नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। किसी की आंखों में दर्शन की चाह है, कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना लेकर निकला है, तो कोई जीवन की परेशानियों का समाधान लेने आया है। सभी चेहरों पर मुस्कान, दिल में श्रद्धा और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी का। हिमालय की वादियाँ, हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बालटाल के बेस कैंप पर शिव भक्तों का जमावड़ा, ये किसी पर्यटन स्थल की हलचल नहीं बल्कि अटूट विश्वास की तस्वीर है।
1: बालटाल बेस कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर भोले के भक्तों को देखते ही बनता है किस तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था यहाँ पर पहुँचा हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि डमरू बजा करके भगवान भोले का स्वागत करने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी जो घाटी है वो किस तरीके से लोगों से यहाँ पर भरी पड़ी हुई है और लगातार ये लोग हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लगातार कोशिश इनकी यही है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जोशो खरोश के साथ यहाँ पर पहुँचे। देखिए हाथों में इनके डमरू है और किस तरीके से बाबा बर्फानी को ये लगातार यहाँ से खुश कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ सामने आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहीं से सीधे रास्ता जाता है पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए और ये लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए

0: देश के अलग अलग राज्यों से लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। भगवती नगर बेस कैंप से बसों में सवार होकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकला। श्रीनगर यात्री निवास से भी शिव भक्त बेस कैंप पहुंच रहे हैं और घाटी बम बम भोले के जय घोष से गूंज रही है। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के कंधे पर बैग, तो कोई त्रिशूल लिए आगे बढ़ता जा रहा है। हर पड़ाव पर शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम है और स्थानीय लोग फूलमाला से भव्य स्वागत कर रहे हैं।
1: हर जगह से, हर स्टेट से यहाँ यात्री आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। ये इसबन जो है मेरे हाथ में, ये हम जलाते हैं, ये हमारे यहाँ कश्मीरी कल्चर में है। कोई बड़ा दिन त्योहार होता है, कुछ भी होता है, बच्चा कभी डर जाता है, उसको भी ये हम नजर उतारते हैं इससे। तो जो ये है, ये दुल्हन को नजर उतारते हैं। वैसे ही हमारे मेहमान आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल हम इसी से करते हैं कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं फूलों से।
0: अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र अध्याय है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। बर्फ अपने आप शिवलिंग का आकार लेती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से यहाँ पहुँचकर पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की राह आसान नहीं होती। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, बदलता मौसम, लंबी चढ़ाई और कठिन रास्ता हर कदम धैर्य की परीक्षा लेती है और यही कारण है कि इस यात्रा को केवल श्रद्धा नहीं बल्कि संयम, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है।
2: अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार की तरफ से जगह जगह पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे अमरनाथ गुफा हो चाहे फिर अलग अलग पड़ाव हो, लेकिन प्रमुख बेस कैंप नूनवन और बालटल जो है वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। 20 से 25 हजार श्रद्धालु वहाँ पर एक समय रुक सकते हैं। अगर कभी रास्ता खराब होता है या यात्रा रोक दी जाती है तो इन दो बेस कैंप्स पर विशेष तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो है वो यात्रा है। एक महिला भी हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए।
3: बेबी पद्मजा।
2: कहाँ से हैं आप?
3: एपी से।
2: आंध्र प्रदेश से?
3: आंध्र प्रदेश से।
2: यात्रा पहले कभी की आपने या पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं?
3: हाँ, पहली बार।
2: पहली बार जा रहे हैं। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में और यहाँ पहुँच कर क्या लग रहा है? तो आंध्रा में के हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता क्या बड़ी है। अब चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम विवेकानंद है।
2: विवेकानंद, पहली बार यात्रा पे?
4: या पहली बार आ रहा।
2: अभी आंध्रा से?
4: आंध्रा से, हम 20 लोग हैं इसी गाड़ी पे।
2: पहली बार। तो क्या सुना था अमरनाथ यात्रा के बारे में, क्यों दिन में इच्छा हुई कि आप भी जो है अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे?
4: बाबा जी के बारे में तो बहुत बचपन से ही सुन रहे हैं, सो इस बार तो मेरा लक है, सो रजिस्ट्रेशन मिल गया, आ रहे हैं, बस इतने।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ। जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: बम बम बोले,
5: बम बम बोले,
3: जय श्री अमरनाथ।
5: जय श्री
3: अमरनाथ।
5: जय श्री अमरनाथ।
3: हर हर महादेव।
2: तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही जयकारा है जो कहीं न कहीं उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत इस कठिन यात्रा में देता है।
0: बाबा के भक्त बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। आस्था है, श्रद्धा है, जोश है, जुनून है, आगे यात्रा की कठिन चढ़ाई है। छोटी बड़ी चुनौतियों से भरा होगा रास्ता, लेकिन शिव भक्तों को भला इससे क्या वास्ता। मन में दर्शन की आस और ये उम्मीद कि लौटते समय उनके साथ होगा महादेव का आशीर्वाद। मन की शांति होगी जो जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति होगी। बालटाल से अशरफानी और जितेन बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ट्रांजिट कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप और पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। श्रद्धालुओं के काफिले के साथ बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा बलों की टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल, फायर और हेल्प डेस्क जैसी सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा रही है।
0: आगे पीछे बख्तर बंद गाड़ियां, गाड़ियों में हथियार बंद मुस्तैद जवान। और इनके बीच गुजर रही बसों में बेफिक्र जयकारा लगाते शिव भक्त। यात्री निवास से जब श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप पहलगाम की ओर चला तो वादी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। हर जगह, हर मोड़ पर फूलों से, जयकारों से शिव भक्तों का भव्य स्वागत हुआ और पूरे एहतियात के साथ।
7: लखनऊ से
8: कैसा लग रहा है आप?
9: बहुत अच्छा।
0: सड़क किनारे थोड़े थोड़े फासले पर सतर्क पुलिस टीम, पूरे सफर की निगरानी कर रहे सीआरपीएफ के जवान। अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा घेरा है वो अभेद है। ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग और बालटाल बेस कैंप तक, जहां से पवित्र गुफा के लिए पहला जत्था शुक्रवार की सुबह निकलने वाला है,

0: है। तस्वीरों में आपको तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम सीआरपीएफ के द्वारा किए गए हैं उसको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी मौजूद है। जो भी रास्ते हैं इन तमाम रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। पहला जत्था कल सुबह दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहां से निकलेगा। यहां पर आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरीके से जो पूरा टेंट सिटी तैयार किया गया है, यहां पर सुरक्षा कैसे दी जा रही है। हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं जो कि पूरे इस इलाके के नोडल ऑफिसर हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से आप यहां पर किस तरीके से देखते हैं, कितने लोग एक साथ यहां पर रह सकते हैं और क्या इंतजाम किए गए?
1: देखिए, यहां सिक्योरिटी का हर व्यवस्था किया गया है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ इस कैंप की कैपेसिटी 20 से 25 हजार के लोग यहाँ रह सकते हैं
0: जी। इसके साथ ही सुरक्षा जो लोग आ रहे हैं, थ्रेट परसेप्शन किस तरीके का है और क्या तैयारियां हैं डोमेल और इसके ऊपर जो गुफा तक के लिए पूरा रास्ता जाता है?
1: देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री हैं जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। सिक्योरिटी का काफी रिव्यू किया गया है। जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे यहाँ बालटाल कैंप में, उनको RFID दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालटाल सबसे बड़ा बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा बेस कैंप है। वहां आएंगे उनको RFID दिया जाएगा और डोमेल के पास उनको चेक करके, यहाँ कैंप में भी जो आएंगे हर आदमी का फ्रिस्किंग चेकिंग होता है, RFID का चेक होता है, आदमी का जो होता है सामान का चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। हमारे लोग हर तरह के सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी, तो इस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता उद्दाम है और जेएनके पुलिस के साथ सीआरपीएफ पूरा सुरक्षा देने के लिए।
2: इस साल अमरनाथ यात्रा लंबी है, इसीलिए ज्यादा तादाद में शिव भक्तों के आने की उम्मीद भी है और उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कई लेवल की जांच के बाद ही यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाएगा।

0: न सिर्फ बेस कैंप पर बल्कि पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर भी यात्रियों की सुविधा और हिफाजत का हर संभव इंतजाम है। सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए तैनात की गई है।
1: बालटाल कैंप में सीआरपीएफ की मे आई हेल्प यू टीम भी यहां पर तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ की महिला कमांडोज हैं वो यहां पर जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री पहुंचते हैं उनके लिए यहां पर इनको लगाया गया है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयार और कैसे लोगों की मदद यहां पर कर रहे हैं।
2: मे आई हेल्प यू एक टीम है जिसका उद्देश्य है आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनकी मदद करना। उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू होती है या रहने की या किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हम उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं।
1: आप लोग यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं को किस तरीके से उनको जानकारी देते हैं? कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी भाषा अलग होती, तो उनको कैसे आप बताते
3: हैं? सर, हमारे टीम में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज वाले हैं कि उनके हेल्प कर सकते हैं, कि जैसा साउथ से हो या नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, उनकी हेल्प मीन्स लैंग्वेज जो हमारी टीम बनी हुई है उन लोग लैंग्वेज जानते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मे आई हेल्प यू ये टीम पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें महिला जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, जिससे कि महिलाएं जो कि यहां बालटाल बेस कैंप में पहुंचती हैं उनको अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा करनी होती है तो उसमें उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए यहां पर इनको तैनात किया गया।
0: जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है वो छोटा सा इलाका यानी नुनवान अच्छी खासी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे जाएंगे। यात्रा शुरू करने से पहले यही 10 से 15,000 शिव भक्तों का ठिकाना होगा। इस टेंट सिटी में दुर्घटनाओं पर काबू पाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर कहीं आग लग गई तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए एक्सपर्ट्स और जम्मू कश्मीर की फायर फाइटिंग टीम भी मुस्तैद है।
1: फायर फाइटिंग करने वाली टीम यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उसमें निपटना है, उसके लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थिति ये होती है कि अगर यहां पर सिलेंडर में या किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, यहां पर आप देख रहे हैं ये फायर फाइटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए हैं ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहां बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत सारे यहां पर भंडारे हैं रविंदर जी और लंगर भी चलते हैं, उसमें किस तरीके से निपटा जा रहा है फायर फाइटिंग करने के लिए?
4: मैं रविंदर शर्मा, शिव भक्ति सेवाटा, सरौनी दिल्ली से, और चांस की बात है कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाता हूं, लाइफ गार्ड बनाना हमारा ही है, और लास्ट ईयर भी यहां पर आग लग गई थी सात वाले भंडारे में तो उसको मैंने ही काबू किया था।
1: आप तस्वीरों में चारों तरफ देखेंगे कि यहां पर टेंट सिटी बना हुआ है और आग का खतरा काफी ज्यादा रहता है। कैंप से ही जो यात्रा है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाती है और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। 3 जुलाई यानी कल से ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेंड लोगों को किया जा रहा है कि अगर फायर की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान किस तरीके से निपटना है।
5: देखिए, अमरनाथ का रास्ता आसान नहीं होता। कठिन चढ़ाई के दौरान यात्रियों को सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। इसके अलावा मौसम अगर खराब हुआ तो उनको मदद की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए सीआरपीएफ ने यात्रा मार्ग पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। ये टीम जो है कैसे काम करेगी, देखिए रिपोर्ट।
1: टाल बेस कैंप से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में जो पहाड़ी इलाका है ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब लोग चढ़ते हैं तो उस दौरान उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीआरपीएफ की टीम की तरफ से माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है। ऐसे ही इन इलाकों में दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है, जो कि अलग अलग एरिया ऑफ जो उनका है वहां पर उनको लगाया गया है। इसके साथ ही पहलगाम रूट से भी एरिया उनका जो है वहां पर उनको रखा गया है। ये लोग इक्विप्ड हैं पहाड़ों पर किस तरीके से रेस्क्यू करना है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाके में लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचते हैं, उस दौरान उनको दिक्कत ऑक्सीजन की हो जाती है या फिर मौसम यहाँ का कभी भी खराब हो जाता है, अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है तो उस दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, इनके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जिनके जरिए ये लोग लोगों की जान बचाते हैं। ये पोर्टेबल ऑक्सीजन है, इसको लेकर के यहाँ से ये लोग जाते हैं, रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो इस पोर्टेबल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन उनको दिया जाता है। इसके साथ ही इस तरीके के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उनके पास मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, अगर कोई वहाँ पर घायल होता है, लैंडस्लाइड होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। करीब 21 टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको हर एक इलाके में तैनात किया गया है, जिससे कि इस पहाड़ी इलाके में जब भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस दौरान उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम के जो मेंबर्स हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और कैसे इस पूरे इलाके में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई कैसे इनके द्वारा किया जाता है। किस तरीके से आप लोग पहुंचते हैं उस पूरे इलाके में, क्योंकि मौसम कभी भी यहां पर खराब हो जाता है?
6: बिल्कुल, मौसम कभी भी खराब हो जाता है और हम लोग एनडीआरएफ से ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर होते हैं, तो उसके अलावा हमारी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग इस बार और रिफ्रेशर के तौर पे कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ों का एरिया के बारे में हमको विस्तृत जानकारी हो गई है। पिछले साल भी हम लोगों ने रहे हैं यहाँ तो बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसा कि हमको काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज भी किया गया है, और हमारे पास फर्स्ट एड के किट वगैरह हैं, सारे कुछ रोप रेस्क्यू के हैं, तो सारी चीज़ों को मिला करके हम जहाँ खबर मिलती है तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं।
1: तो अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है, और इसी के साथ ये तमाम लोग यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ बालटाल से जितेंद्र सिंह।
5: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
8: Good news today is really good. It's in this, it's खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
5: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा, ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को जिसे चलने फिरने में दिक्कत है ठेले पर बिठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा, लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना, पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
10: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
9: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
11: Because people who all watch games, they hear the voice.
9: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
12: क्या बृहस्पति की वजह से ही व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है? क्या बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्याएं देता है? क्या बृहस्पति किसी व्यक्ति को असाध्य रोग भी देता है? कौन सी हैं बृहस्पति की बीमारियां और क्या हैं उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: आज से पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंपों में बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय होने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थ यात्रियों से सहयोग की अपील। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी। पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते। एआई और डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। शाहरुख खान ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में बनवाया क्रिकेट स्टेडियम। मेजर लीग क्रिकेट में एलएकेआर का होगा होम ग्राउंड। वीडियो शेयर करके लिखा, नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत है।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई सासुच का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ऐसे में यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो ऐसी आज दो खबरों की पड़ताल हम करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे इस वीडियो की पड़ताल करेंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। क्या है इस वायरल दावे और वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सोशल मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ताजिया बिजली के तार से टकरा जाता है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के रतलाम का हालिया वीडियो बताते हुए लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम के हतनारा गांव में 25 जून की रात को मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया बिजली के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। रतलाम हादसे में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन बंद नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी रतलाम हादसे का बताकर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग किसी जुलूस में या हुसैन हुसैन के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पलों के बाद एक ताजिया बिजली की तार से टकराता है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है, मध्य प्रदेश का रतलाम, चार तो डायरेक्ट हूरों की बाहों में चले गए, करीब 2 दर्जन को वेटिंग मिला है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में 25 जून को हुए हादसे का है, जिसमें मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। वीडियो में एक ताजिया बिजली की तार से टकराता नजर भी आ रहा है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में एक काफी बड़ा सा ताजिया देखने को मिला, मतलब ये कि वायरल वीडियो मुहर्रम जुलूस का ही है। इसके बाद हमें वीडियो में नजर आ रहे एक ट्रैक्टर के नंबर प्लेट पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे जूम करके ध्यान से देखा तो इस पर यूपी का नंबर प्लेट था। ऐसे में हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि ताजे के बिजली के तार से टकराने

0: हमारा अगला सवाल कि कहीं हादसे की पुराने वीडियो को कोई नया एंगल देकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए इस वीडियो का सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें ये वायरल वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। इस वीडियो को 29 जुलाई 2023 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। हाई टेंशन लाइन से एक ताजिए के टकराने की वजह से धमाका हो गया था। इससे पहले वहां फैले करंट की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हुए थे। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एक और YouTube चैनल पर मिला। यहां इसे 29 जुलाई 2023 को पोस्ट किया गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो अभी का नहीं है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 29 जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के अमरोहा में एक मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इससे धमाके के साथ ताजिए में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुलसने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस तरह ये साबित हो जाता है कि रतलाम मुहर्रम हादसे का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो न तो अभी का है और न ही मध्य प्रदेश का है। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो जाता है कि ताजिए की बिजली की तार से टकराने के वीडियो को भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। असल में ये वीडियो साल 2023 में यूपी के अमरोहा में हुए एक हादसे का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज स्टूडियो।
0: बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के अंदर बंदूकें लेकर घुसते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार के एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग स्कूल में घुस गए जिससे छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: कुछ चेहरे ढके हुए, कुछ चेहरे बेपर्दा, हाथों में हथियार, एक स्कूल के बिल्डिंग में तेजी से ये लोग दाखिल होते हुए। डर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ दाखिल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये कैसा बिहार है जहां दिन दहाड़े स्कूल में हथियार लेकर घुस जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो करीब 22 सेकंड का है जिसमें नकाबपोश लोग हाथ में हथियार लेकर इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है पटना हाई स्कूल। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में एक स्कूल में दिन दहाड़े हथियार लेकर कुछ लोग घुस आए जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले के बलौठी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी विपक्ष बिहार सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ लोगों के सामने लाना जरूरी था तो दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा कई चीजें देखने को मिली जिसको देखने के बाद ये इशारा मिला कि ये रियल घटना नहीं है, ये दृश्य किसी शूटिंग का हिस्सा हो

सकता है। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के बाद हमें मूवी शूटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले काले फ्लैग और स्किमर भी दिखाई दिए। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि पटना हाई स्कूल के गर्दनी बाग इलाके में ये घटना हुई है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हमें नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि अगर दावा सही है तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में जानिए।

0: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो में कुछ की फ्रेम्स को निकालकर उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से 25 जून 2026 को अपलोड किया गया मिला। दोनों ही वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे मूवी और वेबसाइट की शूटिंग का बताया गया था। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक YouTube अकाउंट से 20 जून को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो में दिख रहे दृश्य वायरल वीडियो से मेल खा रहे थे। साथ ही वायरल वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को इस वीडियो में उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है। YouTube वीडियो में हमें साफ साफ कैमरा भी दिखाई दिया और साथ ही निर्देश मिलने के बाद कलाकारों के अभिनय रोकने के दृश्य भी मिले, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक शूटिंग का ही दृश्य है। इस वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में भी इसे पटना के गर्दनी बाग स्थित पटना हाई स्कूल में फिल्म शूटिंग का ही बताया गया था। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि एक एक्स यूजर ने भी 26 जून 2026 को इस वीडियो को समान दावे के साथ शेयर करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में बिहार पुलिस ने जानकारी दी थी कि ये वायरल वीडियो फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा है, इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि बिहार के पटना हाई स्कूल में गोलीबारी के दावे से वायरल हुआ ये वीडियो असल में एक फिल्म की शूटिंग का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे वायरल दुनिया की वायरल खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Good news today is really good. It's good in this case. It's good in this case.
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है। सड़कों पर आपने उन बच्चों को जरूर देखा होगा जो स्कूल जाने की उम्र में अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, वे सड़क पर खड़े होकर मेहनत से दो रोटी कमाने का काम करते हैं। हाल में ऐसे ही दो बच्चों का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छोटे बच्चे अपने पूरे शरीर पर गोल्डन पेंट लगाकर सड़क किनारे लिविंग स्टैचू बनकर खड़े हैं। वे अपने इसी हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे सिर से लेकर पैर तक गोल्डन कलर के पेंट में रंगे हुए हैं। तेज धूप होने के बावजूद भी वे बिना हिले डुले एक जगह खड़े रहते हैं ताकि राह चलते लोग उनकी परफॉर्मेंस देखें और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी मदद करें। इतनी गर्मी में घंटों तक इस तरह खड़े रहना किसी भी इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन रोजी रोटी के लिए ये बच्चे पूरी लगन से अपना यह काम करते दिख रहे हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। बच्चों की मेहनत और उनकी हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वह दोनों बच्चों को पास के KFC रेस्टोरेंट में ले जाती है और उन्हें भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बच्चों के सामने खाना आता है, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। महिला के इस छोटे से प्यार भरे कदम ने दोनों बच्चों को भावुक कर दिया और महिला की इस दरिया दिली ने वहाँ मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग कलाकार का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। फुटपाथ पर बैठकर पेंटिंग बनाने वाले इस कलाकार का हुनर देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिना कुछ बोले सिर्फ ब्रश और रंगों के सहारे वे ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग कलाकार सड़क किनारे बैठकर बड़े ही धैर्य और लगन से पेंटिंग बना रहे हैं। उनके आसपास कई खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई है जो उनकी बेहतरीन कला का परिचय देती है। राह चलते लोग भी रुककर उनकी कला को निहारते नजर आ रहे हैं। अमूमन भारतीय बच्चों को अंग्रेजी या किसी स्थानीय भाषा में बात करते देखना आम बात है, लेकिन जब केरलम की एक 14 साल की बच्ची फराटेदार कोरियन भाषा बोलने लगे तो हैरान होना लाजमी है। इस बच्ची की प्रतिभा को देखकर खुद एक कोरियाई कंटेंट क्रिएटर भी हक्का बक्का रह गई। यह वीडियो कोरियन कंटेंट क्रिएटर मिक्यूंग सॉन्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में अमीना जिस आत्मविश्वास के साथ कोरियन बोल रही है उसने मिक्यूंग को भी दंग कर दिया। अमीना सिर्फ कोरियन ही नहीं बल्कि शानदार अंग्रेजी भी बोलती है।
6: ये मैं आज एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये कॉपी है गोलू कुमार की।
5: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक बच्चे की बोर्ड की आंसर शीट वायरल हो रही है जिसमें उसने पेपर चेक करने वाले टीचर को घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं उसने एग्जाम में पास करने के लिए शायराना अंदाज में लिखा, कॉपी मेरी पहुँच गयी है गुरु के द्वार, 33 नंबर दे के इसे लगा दो पार।
6: अरे भाई साहब, मेरी बग्घी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा।
5: बच्चे की ये कॉपी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल हो रही आंसर शीट किसी गोलू कुमार नाम के स्टूडेंट की है।
6: शॉट पे हेडशॉट थे मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे।
5: हैरत अंगेज बात यह है कि कॉपी में सवाल से जुड़े एक भी जवाब नहीं लिखे हैं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ पास करा देने की गुहार लगी है। ये गुहार भी कोई आम शब्दों में नहीं बल्कि मजेदार शायराना अंदाज में लगाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने आगे टीचर से पेज पलटने का अनुरोध किया है। अगले पेज के बीच प्लीज प्लीज प्लीज लिखा हुआ था, साथ ही 500-500 के नोट दिख रहे थे।
6: अबे भाई ये कितना क्या रख दिया है ये बंदे ने, 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया क्या ये बजरंग बली के नाम का, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज।
5: जब टीचर ने नोटों की गिनती की तो वो कुल 2100 निकले।
6: पैसा रख दिया यहाँ पर, बताओ यार क्या करे इस बच्चे का।
5: जब परेशानी बड़ी हो तो देसी दिमाग भी कमाल कर जाता है। बारिश नहीं हुई तो किसान ने खेत तक पानी पहुंचाने का ऐसा जुगाड़ लगाया कि लोग हैरान रह गए। बांस के सहारे खुद को बांधकर वो साथियों की मदद से एक खेत से दूसरे खेत में झूले की तरह पानी पहुंचाता नजर आया। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और किसान की सूझबूझ की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों वृंदावन से जुड़े खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वीडियो में एक विदेशी महिला अपने भारतीय पति और अपने सहेलियों के साथ पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। रंग बिरंगे परिधानों, मुस्कुराते चेहरों और भक्ति से भरे माहौल ने इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय बना दिया है। लोग इसे बार बार देख रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। जापान के एक चिड़ियाघर से ये वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दरअसल चिड़ियाघर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल चल रही थी। लेकिन बाड़े में बंद असली शेरों के रिएक्शन ने इस ड्रिल को एक बेहद मजेदार कॉमेडी शो में बदल दिया। वीडियो में जापानी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए शेर के भागने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को शेर की पोशाक पहनाकर भागे हुए शेर की भूमिका दी गई थी। ये वीडियो ऑनलाइन शेयर होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि इसके वायरल होने का कारण मॉक ड्रिल कम और बाड़े में बैठे असली शेरों के विचित्र प्रतिक्रियाएं थी, जो इस पूरे नाटक को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे ही नकली शेर ने भागने और खतरे का नाटक किया, बाड़े में मौजूद असली शेर भारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए और इंटरनेट यूजर्स ने इस पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी। ज्यादातर लोगों ने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, वहीं कुछ ने शेरों के नजरिए से मजेदार बातें लिखी। प्रकृति कई बार हमें सरप्राइज कर देती है। जिस टाइगर की गिनती जंगल के सबसे ताकतवर शिकारियों में होती है, उसके सामने जब एक भालू तनकर खड़ा हुआ तो नजारा देखने लायक था। एक तरफ जहां टाइगर पीछे हटने को तैयार नहीं था, वहीं भालू भी पूरी आक्रामकता के साथ उससे भिड़ा हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में हुई इस मुठभेड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो की शुरुआत टाइगर की चेस के साथ होती है, लेकिन यहाँ भालू डर कर भागने के बजाय टाइगर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके जीत की नींव वहीं पड़ जाती है, क्योंकि जो डर के सामने डरा नहीं, उसे आधी सक्सेस वहीं मिल जाती है। वैसे भालू टाइगर से डरा हुआ जरूर होता है, लेकिन उसने भागने के बजाय समस्या का सामना करना चुना होता है। ऐसे में टाइगर जब जंगल में उसके ठीक सामने बैठकर इत्मीनान करने लगता है, तब वह भी रुका हुआ होता है। मगर धीरे धीरे जब वह गौर करता है कि अब टाइगर आराम से बैठा हुआ है, तो आखिर में भालू भाग जाता है और वीडियो खत्म हो जाती है। इन दिनों एक गोरिला का वीडियो इंटरनेट पर अलग ही वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में गोरिला का ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो कोई इंसान किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हो। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो जापान के एक चिड़ियाघर का है, जहां कियोमासा नाम का 13 वर्षीय नर गोरिला अपने साथी के साथ रहता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर हल्का फुल्का विवाद हुआ। बहस खत्म होने के बाद कियोमासा सीधे पिंजरे में बनी सीढ़ियों पर जाकर अकेला बैठ गया। इसके बाद उसका जो व्यवहार कैमरे में कैद हुआ, उसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वीडियो में कियोमासा बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वे अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर दूर कहीं देखता रहता है, कभी सिर खुजलाता है तो कभी दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसके हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे वह किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहा हो।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
8: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
7: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: कुछ दिनों से यूरोप पहली बार गर्मी का 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। ब्रिटेन से लेकर स्पेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ये हो गया है कि ठंड से बचने की जुगाड़ खोजने वाला यूरोप इस बार गर्मी से लड़ने की जुगत से भिड़ रहा है। इसलिए पहली बार यूरोप में एयर कंडीशनर की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यूरोप में पड़ रही इस प्रचंड गर्मी की वजह से चीन में एसी बनाने वाली कंपनियों पर किस तरह का दबाव बढ़ गया है।